क्या तू उनसे कुछ मांग रहा है? तेरे लिए तो तेरे रब का दिया ही बेहतर है और वो बेहतरीन राजक है। तू तो उनको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो राह रास्त से हट कर चलना चाहते हैं। अगर हम इन पर रहम करें और वो तकलीफ जिसमें आजकल

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل و

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, आज हम बात करेंगे उस खास मौजू पर जो खास तौर पर बराह रास्त हमारी माओं, बहनों और बेटियों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, तो बात होगी खवातीन की सेहत और फिटनेस पर। हम सब जानते हैं कि खवातीन खानदान की रीढ़ की हड्डी हैं और एक सेहतमंद खातून ही सेहतमंद घर और सेहतमंद माशरे को जन्म देती है। लेकिन कुछ बदकिस्मती से खवातीन अक्सर अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं। घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, नौकरी या पढ़ाई में इतनी मसरूफ हैं कि अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, अपनी आराम करने की जो आदत है उसको भी नज़रअंदाज कर देती हैं, जो ज़रूरत है उसको भी नज़रअंदाज कर देती हैं और एक्सरसाइज का तो ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाती। अब ये कि मुख्तलिफ ज़ावियों से ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह से खवातीन जो हैं अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं। खवातीन में आयरन की कमी की वजह से, जो कि बहुत ही एक आम मसला है, खून की कमी हो जाती है, तो इसके लिए पालक, दालें, अंडे और गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है और उनसे वो मजबूत बनाता है, तो दही, दूध और धूप से विटामिन डी हासिल किया जा सकता है। अक्सर खवातीन खाने के बजाय सिर्फ चाय या फिर फास्ट फूड पर गुजारा करती हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। एक और बहुत ही जो खास बात वो ये है, खवातीन समझती ये हैं कि सिर्फ घर के काम ही काफ़ी हैं और ये बात मुकम्मल दुरुस्त नहीं है। घर के कामों से जिस्म हरकत में रहता है, लेकिन ये एक्सरसाइज का मुतबादिल बिल्कुल भी नहीं है। रोजाना कम अज कम 20 से 30 मिनट वॉक, योगा या कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिस्म को मुतवाजन रखती है। इस तरह वजन की ज्यादती भी नहीं होती और वर्जिश से ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सुकून भी मिलता है। ज़हनी दबाव कम करने के लिए खवातीन को वक्तन फवक्तन अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मतालिया हो, मौसीकी सुनना हो या किसी दोस्त से बात करना हो। इसी तरह से दौरान हमल खवातीन को इजाफी ग़िज़ा, विटामिन और आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर खवातीन खुद पर तवज्जो देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पर तवज्जो देती हैं। तो करना यह है कि खवातीन को चाहिए कि रोज़ाना आप जो एक्सरसाइज कीजिए, और इसके अलावा एक अहम बात यह है कि बाकायदगी के साथ हर साल अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाइए। ब्लड प्रेशर, शुगर, विटामिन्स की कमी और बहुत से मसाइल वक्त पर अगर हमें पता चल जाते हैं तो बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तो फिर बात यह है कि खवातीन की सेहत सिर्फ खवातीन का मसला नहीं है बल्कि पूरे ख़ानदान का मसला है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए और दूसरों को भी याद दिलाइए। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107 दिल से देसी।
0: Maximum music, maximum fun.
3: On FM 107, Dil Se Desi.

0: 7. Log into our website, urduradio.qa, or download the app, QMC Now.
1: Absolute cinema.
2: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं. पर reviews, वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं. और आप interval से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry, मैं हूँ ना. भरोसेमंद review देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर review of the week rolling. हर Friday शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता. इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं. तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ. प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर.
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: दोस्तों, एक बार की बात है कि एक खूबसूरत से गांव में एक चूंटियों का खानदान रहा करता था। वो सख्त मेहनती थे और हमेशा वक्त की कदर करते थे। जब गर्मियों का मौसम होता था तो वो अपना ज्यादातर वक्त खाना जमा करने और जखीरा करने में गुजारते थे ताकि सर्दियों में उनके पास खाने के लिए कुछ हो। एक दिन जब वो अपने जमा किए हुए दाने खुश कर रहे थे, एक भूखा टिड्डा उनके पास आया। टिड्डे ने चूंटियों के सामने आकर कहा, मेरे प्यारे भाइयों, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो? चूंटियों ने टिड्डे की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, अरे तुमने सर्दियों के लिए कुछ खाना क्यों नहीं जमा किया? टिड्डा थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ और बोला, सच कहूँ तो मैं सारा मौसम गर्मा बहुत मसरूफ रहा हूँ, मुझे खेलने में बहुत मजा आता है, तो मैं तो बस यहाँ वहाँ खेल कूद करता रहा, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया कि सर्दियों के लिए भी कुछ जमा कर लूँ। चूंटियों ने एक दूसरे को देखा और फिर बड़े सुकून से कहा, हमने तो तुम्हें पहले भी समझाया था कि जब मौसम अच्छा हो तो खाना पीना जमा कर लिया करो ताकि तुम अपनी सर्दियाँ आराम से गुजार सको और तुम्हें कोई मुश्किल पेश ना हो। देखा तुमने कितना वक्त जाया किया और अब तुम्हें खुद इसका खामियाजा भुगतना होगा। टिड्डा बड़ी मायूसी के साथ उनके जवाब को सुनता रहा। वो जानता था कि उसने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया और अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चींटियों ने दोबारा काम शुरू कर दिया और टिड्डा वहां से चला गया। वो बहुत अफसरदा था और अपने किए पर पछतावा कर रहा था। उसने सोचा, अगर मैंने वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल किया होता तो आज मुझे मदद की जरूरत ना पड़ती। कुछ दिनों बाद सर्दियों का मौसम आ गया, बर्फबारी शुरू हो गई और हर तरफ सर्दी ही सर्दी फैल गई। चूंटियों के पास उनका जखीरा था जिससे वो आराम से सर्दियों की रातें गुजार रही थी, लेकिन टिड्डा

टिड्डा जिसने मौसम गर्मा में कोई काम नहीं किया था और सिर्फ खेलता कूदता रहा था, बहुत मुश्किल में था। उसे सर्दी से बचने के लिए जगह नहीं मिल रही थी और उसके पास कोई खाना भी तो नहीं था कि जिसको खाकर वो थोड़ा बहुत वक्त गुजार ले। एक दिन टिड्डा सर्दी से थरथराता हुआ चूंटियों के घर के करीब आया और दरवाजा खटखटाया। चूंटियों ने दरवाजा खोला और टिड्डे की हालत देखी। वो बहुत कमजोर और भूख से निढाल था। चूंटियों ने उसे अंदर बुलाया और कहा, आओ तुम सर्दी से बचने के लिए हमारे पास आराम कर सकते हो, लेकिन याद रखो हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब तुम गर्मियों में खेल कूद कर रहे थे तब तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। टिड्डे ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया और अब मुझे ये सबक मिल चुका है कि खेलने के साथ साथ मेहनत भी जरूरी होती है। चींटियों ने कहा, हम तुम्हें इस वक्त के लिए तो खाना दे सकते हैं और तुम्हें थोड़ी देर आराम करने की जगह भी दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए याद रखना बहुत जरूरी है हमारे दोस्त कि हर काम का एक वक्त होता है। खेलने के लिए भी एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन जब मेहनत करने का वक्त हो तब वो जाया नहीं करना चाहिए। टिड्डे ने दिल से उनका शुक्र अदा किया और कहा, अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि जिंदगी में तवाजन जरूरी है। जब काम का वक्त हो तो काम करना चाहिए और जब खेलने का वक्त हो तभी लुत्फंदोज होना चाहिए। फिर सर्दियों में जब टिड्डे ने चूंटियों के साथ वक्त गुजारा उसने बहुत कुछ सीखा। उसने फैसला किया कि आइंदा वो जब भी कोई काम करेगा उसमें तवाजन रखेगा और जिंदगी के हर पहलू का एहतराम करेगा। तो साथियों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जिंदगी में काम और खेल दोनों का एक मखसूस वक्त होता है। जब काम का वक्त हो तो मेहनत करनी चाहिए और जब खेल का वक्त हो तो हमें खेल

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है, किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नासिया FM 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स। जी हां, आज का जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है वो है मॉनेटरिज्म। जी हां, मॉनेटरिज्म एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो पैसे की सप्लाई और उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी पर असर को फोकस करती है। इस थ्योरी का असल मकसद ये समझना है कि किस तरह से पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को मैनेज किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले इस थ्योरी को मिल्टन फ्रेडमैन ने, जो कि बहुत ही बड़े जाने माने मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, आपने इंट्रोड्यूस और प्रमोट किया था। वैसे मॉनेटरिज्म के कई इम्पोर्टेंट पहलू भी हैं। देखा जाए तो मॉनेटरिज्म का कहना ये है कि इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इसलिए सेंट्रल बैंक्स को पैसे की सप्लाई को कंट्रोल हमेशा करना होता है। वहीं पर मॉनेटरिस्ट ये मानते हैं कि इन्फ्लेशन का असल सबब पैसे की ज्यादा सप्लाई ही है। जब ज्यादा पैसे मार्केट में होते हैं तो लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, जो कि प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। मॉनेटरिज्म के मुताबिक इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पैसे की सप्लाई की स्टेबल ग्रोथ पर डिपेंड करती है। अगर पैसे की सप्लाई स्टेबल रखी जाए तो इकोनॉमी भी स्टेबल ही रहेगी। वैसे मैं आपको बताऊं कि मिल्टन ने ये सजेस्ट किया था कि अगर सेंट्रल बैंक्स पैसे की सप्लाई को 3-5% के आसपास रखें तो इकोनॉमी हमेशा स्टेबल रहेगी। वैसे ये मिल्टन फ्रेडमैन का के रूल भी कहलाता है। हाँ, अल्फाबेट के ये रूल कहलाता है। 1980s के दौर में फेडरल रिजर्व ने पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया था, लेकिन इसकी वजह से रिसेशन भी आ गया था। वैसे तो ये एक मॉनेटरिज्म का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हुआ, लेकिन आज के दौर में भी मॉनेटरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही

0: रेलेवेंट है, खासकर जब हम इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था, हाँ, उसके बाद इकोनॉमीज ने स्टिमुलस पैकेजेस दिए, तो पैसे की सप्लाई में इजाफा हुआ, इससे इन्फ्लेशन में बढ़ावा आया, जो कि आजकल हर मुल्क के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। वेल, आजकल के सेंट्रल बैंक्स जैसे कि फेडरल बैंक पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करते हैं। ये मॉनिटरिज्म का एक प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है। वहीं पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक मुल्क की मॉनिटरी पॉलिसी दूसरे मुल्क पर भी असर डालती है। हाँ हाँ, इसीलिए मॉनिटरिज्म की समझ आज के इकोनॉमिक डिसीजंस में काफी जरूरी हो जाती है। आजकल दुनिया के बहुत से मुल्कों में इन्फ्लेशन का मसला बहुत बड़ा हुआ है। मॉनिटरिज्म के प्रिंसिपल्स को समझकर गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। जब आप सुनते हैं कि बड़ी बड़ी पॉलिसीज आ रही हैं, नए रूल्स और रेगुलेशंस आ रहे हैं, तो समझ लीजिए किस तरह से किस कॉन्सेप्ट को सप्रेस या फिर उसे सबसाइड करने की कोशिश की जा रही है। मॉनिटरिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो पैसे की सप्लाई और इकोनॉमिक एक्टिविटी के दरमियान ताल्लुक को समझने में मददगार साबित होती है। आज के दौर में जब इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात होती है, तो मॉनिटरिज्म के प्रिंसिपल्स को समझना और इन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस थ्योरी से पॉलिसी मेकर्स को ये समझने में भी मदद मिलती है कि किस तरह से वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को मैनेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ दोस्तों कि मैं आपको मॉनिटरिज्म कॉन्सेप्ट को समझाने में कामयाब हुई हूँ। वेल, आपकी नॉलेज में इजाफा करने में कामयाब हुई हूँ। दोस्तों, आज के लिए बस यही कॉन्सेप्ट। नए एपिसोड में एक और नए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

मॉडर्न फुटबॉल में इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी केन को दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक करार दिए जाते हैं। दुनिया के बेहतरीन सितारों में से एक तो है ही है केन। दरअसल देखा जाए अच्छे स्कोरर हैं जो खेल को काबू में रखकर कई स्कोर के रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। अब फैबुलस स्कोरर, एक टाइम था 1980s में जब हम इंग्लैंड के गैरी लिनेकर के बारे में बात करते थे, बड़े ही अच्छे अच्छे स्कोर्स किए उन्होंने। और उसके बाद अगर कोई एक और खिलाड़ी उसके बाद, गैरी लिनेकर के बाद अगर कोई आया था तो थे वो वेन रूनी। रूनी के बाद अगर जिस खिलाड़ी ने बड़ा धमाल मचा रखा है, व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग फ्रॉम द 18-yard बॉक्स, एंड ही हैज टू बी हैरी केन। हैरी केन नहीं बल्कि हैरी केन। उन्होंने यूथ लेवल पर हर मैचों में गोल किए हैं और फिर मार्च 2015 में 21 साल की उम्र में ही सीनियर टीम की तरफ से खेलते हुए पहले ही मैच में गोल किया। मैंने कहा था ना कि उनको अंदाज है, उनको बॉक्स के बारे में पता है, पेनल्टी बॉक्स के बारे में पता है कि कहाँ शूट होनी चाहिए, द परफेक्ट शॉट जिससे उसको गोल मिल सकता है। इंग्लैंड की तारीख में हैरी केन ने कई मैचों और बड़े टूर्नामेंट में गोल करने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है। 2018 फीफा वर्ल्ड कप से कबल केन को कप्तान बनाया गया था और हैनी डिजर्व्ड इट एक्चुअली। और इस वर्ल्ड कप में वो टॉप स्कोरर रहे और 2018 वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट अवार्ड भी जीता। 103 मैचेस में 69 गोल्स के साथ हैरी केन इंग्लैंड के अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। और 2023 में हैरी केन ने बुंडेसलीगा की तारीख का सबसे महंगा खिलाड़ी के तौर पर बायर्न म्यूनिख क्लब को ज्वाइन किया। और अपने पहले सीजन में उन्होंने बुंडेसलीगा में ना सिर्फ 36 गोल स्कोर किया बल्कि अपना पहला यूरोपीय गोल्डन शू अवार्ड भी जीता।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और लाइफ को इजी बनाने के लिए लाइफ हैक्स आपके सामने पेश करते हैं। तो अब सबसे पहला लाइफ हैक है आज का, चाबियों का चक्कर नेल पॉलिश से सॉल्व। मतलब चाबियों का गुच्छा इतना कंफ्यूजिंग होता है कि घर की कौन सी, गाड़ी की कौन सी, लॉकर की कौन सी, बस ढूंढते ही रह जाते हैं। तो सिंपल सा जुगाड़ है, अलग अलग रंग के नेल पॉलिश उठाओ और हर की के हेड पर एक डिफरेंट कलर लगा दो। बस अब ना कोई कंफ्यूजन होगी, ना कोई टाइम वेस्ट होगा, प्लस आपकी कीज अगर बैग में है तो एकदम से पॉप करेंगी, सही है ना। वेल, दूसरा लाइफ हैक है उबलता हुआ पानी और लकड़ी का चम्मच। हाँ, ग्रेट कॉम्बिनेशन है। वेल, ये वाला तो क्लासिक दादी नानी का नुस्खा है, बट इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो किचन में चाहे आप दूध या पानी जो भी उबाल रहे हो, डरो मत, क्योंकि हमारे दिल में ये ख्याल होता है कि शायद ये पानी या दूध एकदम से उबलते उबलते कहीं नीचे ना गिर जाए। तो सिंपल है, उस पॉट के ऊपर एक लकड़ी का चम्मच रख दो, दैट्स इट। जादू ये है कि लकड़ी बबल्स को तोड़ देती है और उसका ठंडा टेम्परेचर स्टीम को वापस पानी बना देता है। इट्स अ साइंस। तो इससे ना तो पानी ना तो दूध अगर उबल रहा है तो बाहर नहीं गिरेगा, यानी कि नो मोर मैसी गैस स्टोव, सही है ना। तो जरूर ट्राई करना। फॉर मोर लाइफ हैक टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: मेत्राज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेत्राज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हेलो,
2: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.
4: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में। हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम ट्रैवल के तरीकों पे बात करेंगे जो सस्टेनेबल है और एनवायरनमेंट को कम डैमेज करते हैं। कार पूलिंग से हम अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं और पोल्यूशन भी रिड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक कार का यूज करके हम कार्बन इमिशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बाइसाइकिल का यूज करें, ये पोल्यूशन फ्री और हेल्दी ऑप्शन है। बस और मेट्रो सिस्टम का इस्तेमाल करें जो एफिशिएंट है और ज्यादा फ्यूल कंजप्शन नहीं करते। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट आपको इको फ्रेंडली ट्रैवल का ऑप्शन देता है जो आपकी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए अच्छा है। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज़।

कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ

0: प्रैम वे लुक बोथ वेज। प्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आज नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

Assalamu alaikum and good morning. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे भावेश खान और मैं आ गई हूँ 6:00 हो रहे हैं 1 मिनट. मेरा आपका साथ रहने वाला है 9 बजे तक यहाँ पे और ये कि इस 9 बजे तक हम वही रोज़ाना की तरह अपडेट्स देंगे आपको. इसके साथ ही गेम भी खिलाएंगे. गेम बड़ा ज़रूरी है तो वो ज़रूर खेलिएगा, ठीक है. और इसके साथ ही साथ मतलब बहुत कुछ रहेगा. आपकी कॉल्स होंगी, आपके मैसेजेस होंगे, टॉपिक होगा एक, तो मैं आपको बताती जाऊँगी आहिस्ता चीज़ें और इंशाल्लाह ताला आप भी शरीक होते रहेंगे, शो में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, ठीक है. चलिए, उम्मीद सबसे पहले तो ये है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, ठीक ठाक.

होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छी सी सुबह का आगाज़ हो गया होगा, और अगर आप लोगों ने निकल जाना था तो अब तक निकल गए होंगे, रस्ते में होंगे या फिर पहुँच भी गए होंगे, मेरी तरह हो सकता है, मुमकिन है। खैर जो कुछ भी हो, मामला आपके साथ खैर ही खैर का हो, ये हमारी दुआ है। और मौसम वैसे ना मतलब गर्मी तो हो रही है, लेकिन आप ये सुबह के वक्त की ना एक अलग ही कुछ खूबसूरती होती है। सुबह का वक्त बड़ा सुहाना, बड़ा खूबसूरत सा होता है, क्योंकि कल भी मतलब अच्छी हवाएं चल रही थी, गर्मी थी, टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कि मतलब ज़्यादा था, 35 डिग्री सेंटीग्रेड था सुबह में, आज का मैं आपको बताऊँगी, लेकिन हवा चल रही थी। जब हवा चल रही हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना मतलब अच्छी लगती हैं, तो गाड़ी आप चला रहे हो, दरख्त के पत्ते हिल रहे हो, तो इतना खूबसूरत सा लगता है। आज भी मैं सुबह जब आ रही थी अभी, तो वो परिंदे उड़ते हुए जा रहे थे, और मैंने मतलब होता है बाज़ औक़ात बनता, फोकस करता है बाज़ औक़ात नहीं करता, लेकिन जब आपकी नज़र ऐसी किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ जाती है ना, तो आपको अच्छा सा अच्छा फील हो रहा होता है, और लगता है कि मतलब अच्छा आगाज़ हो गया। तो आज मुझे वो वाला लग रहा है कि अच्छा आगाज़ हो गया, जबकि रात में मैं काफ़ी सेट सोई थी। अच्छा सेट सोनी क्या रीज़न है वो मैं बताऊंगी बाद में, लेकिन अभी ये कि मतलब जो ना सुबह में अच्छा लगा, सुबह में जब ये परिंदे वरिंदे उड़ते हुए देखे, हवा चलती हुई थोड़ी सी देखी, तो दिल खुश हो गया कि चलो वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह की खूबसूरती ही अलग है। अच्छा हमारे कंपाउंड में मैं रोज़ाना देखती हूँ, कम अज़ कम जब मैं आ रही होती हूँ ना, तो 3-4 खवातीन तो मुझे नज़र आ जाती हैं अलील सुबह वॉक करती हुई, तो मैं मुझे उनके ऊपर सिर्फ रश्क होता है, क्योंकि अगर मैं घर पर होती इस वक्त आ रही होती हूँ, तो वो तो फिर मतलब एक बहाना है कि अभी तो हम वॉक कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर मैं घर पे होती और अभी ये समर वेकेशन ही चल रहा होता, तो मैं क्यों जाग रही होती, मैं तो सो रही होती, तो इसलिए मैं सिर्फ उनके ऊपर रश कर सकती हूँ, वैसा वाला जिसमें मेरा करने का कोई इरादा नहीं है वाला काम, लेकिन अच्छी बात है भाई, मतलब अच्छी चीज़ है सुबह सुबह की वॉक, और ये सुबह जो आपको ऑक्सीजन मिलती है वो इतनी मतलब प्योर होती है, इतनी साफ़ सुथरी और सब अच्छा होता है ना सुबह के वक्त में वॉक करना, जो लोग करते हैं बड़ी बात है भाई, मतलब है बड़ी बात, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं, फ़ायदे भी बड़े। जी आज अभी वॉक के हवाले से बात हो गई इत्तेफाक से, और आज मेरे पास जो बेसिकली तहरीर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है कुछ, जब आप वॉक करते हैं तो बीमारियों से दूर रहते हैं ना, तो आज हम बीमारी के हवाले से बात करेंगे कि हम अक्सर औकात ये होता है कि बीमारी को हम किसी और तनाजुर में देख रहे होते हैं। अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं उनके जहन में कुछ और होता है, बल्कि इवन उनके जहन में क्या होता है, उनको जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके दिमाग में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी कि बीमारी इस्लाम में वैसी नहीं है जैसे कि हम समझते हैं। अगर आप कभी ज़िंदगी में बीमार हुए हैं या आपसे कोई वाबस्ता शख्स जो है वो बीमार रहता है, या इस वक्त किसी बीमारी, तकलीफ, दर्द, एंजाइटी या कमज़ोरी से गुजर रहे हैं, तो इस बात को मतलब आपने बहुत ही गौर से सुनना है। हर जुमला दिल में उतर जाने दीजिए, क्योंकि इस्लाम बीमारी को सिर्फ एक जिस्मानी तकलीफ नहीं समझता, अल्लाह ताला के नज़दीक इसका मकाम और हिकमत हमारी सोच से कहीं ज़्यादा गहरी है। अक्सर जब इंसान बीमार होता है तो उसके जहन में पहला ख्याल ये आता है कि शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ है, या शायद मेरी कोई गलती है, लेकिन हर बीमारी सज़ा नहीं होती, बहुत मर्तबा बीमारी अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की तरफ से बुलावा होती है, और अपने बंदे को अपने और करीब करने का ज़रिया होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है, जो कि यह है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ आदम के बेटे, मैं बीमार था लेकिन तुम मेरी अयादत के लिए नहीं आए। तो बंदा अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, मैं तेरी अयादत कैसे करता जब तू तो तमाम जहानों का रब है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम ना था कि मेरा फला बंदा बीमार था और तुम उसकी अयादत के लिए नहीं गए, अगर तुम उसके पास जाते तो मुझे उसके पास पाते। और ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो इस हदीस पे आप गौर कीजिए और समझिए इस बात को कि अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहे कि अगर तुम उसके पास जाते तो तुम्हें सिर्फ सवाब मिलता, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझे उसके पास पाते। ये अल्फाज इंसान को डेफिनेटली हिलाने के लिए काफ़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह किसी जगह मतलब महसूस या हुलूल की सूरत में मौजूद है, अल्लाह हर किस्म की मखलूक से बुलंद और बेमिसाल है। इस हदीस का मकसद ये बताना है कि बीमार इंसान के पास अल्लाह की रहमत, कुर्ब और ख़ास तवज्जो होती है। जो शख्स इखलास के साथ किसी बीमार की खैरियत पूछता है, उसकी हिम्मत बंधाता है और उसके लिए दुआ करता है, तो वो अल्लाह की रहमत के बहुत करीब होता है। सोचिए, जिस इंसान को दुनिया नज़रअंदाज कर रही होती है, जिसके पास लोग कम आते हैं, जो अपने बेड पर तन्हा दर्द सह रहा होता है, अल्लाह उसके हाल से गाफिल नहीं होते, अल्लाह उसके आंसू देखते हैं, अल्लाह उसकी हर

0: दिन खैर और बरकत से भर दे, गमों को खुशी में बदल दे और आपको दीन और दुनिया की कामयाबियां अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे महविश खान के।

राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM समर मॉर्निंग विद आरजे महवेश खान, और मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ आ गई हूँ. फिर जी, सिलसिला क्या है? सिलसिला ये है कि हम करेंगे अब आपसे शेयर सबसे पहले तो वेदर अपडेट कि अभी क्या मौसम के हाल चाल हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि और सिलसिला क्या है. ठीक है, मतलब मुझे बैकग्राउंड इस वक्त बेसिकली अपना जो है ना, जो अंडरले चल रहा है वो थोड़ा सा इरीटेट कर रहा है, क्योंकि आज मैंने उतना नहीं एडिट किया जितना मैं रोज़ाना करती हूँ. तो वो आपको भी अंदाजा हो रहा होगा कि आज थोड़ा सा मुख्तलिफ साउंड कर रहा है. लेकिन खैर, अभी बात करने के दौरान ठीक है, मैं मल्टीटास्कर हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं हूँ कि बात करने के दौरान एडिट कर दूँ. कोशिश अलबत्ता मैंने की थी. खैर, ये थोड़ी देर में करते हैं इसको, और उससे पहले आपसे वेदर अपडेट शेयर कर देते हैं. आपको बताती चलूँ कि आज का जो कम से कम टेम्परेचर रहेगा वो होगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 43 तक. ठीक है, यानी आज कल के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा जाएगा. ठीक है, तो आज आपने ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना है कल के मुकाबले में. इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड. और आज और क्या सिलसिला है? आज सिलसिला ये है मौसम का कि ह्यूमिडिटी 22% है, कम ही है कुछ, मतलब थोड़ा सा ड्राई ही इन्वायरमेंट है. और इसके साथ ही जी मॉडरेट एयर क्वालिटी है, पोअर क्वालिटी नहीं है, जो यूजुअली मैं 2-3 दिन से बता रही थी आपको, तो वो बेहतर हो गई थोड़ी सी. यूवी इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए घर से बाहर निकलें तो आपने अपना इस्तेमाल करना है सनस्क्रीन लाजमी, इसके साथ ही सनग्लासेस भी लेके निकलें, और फिर उसके बाद मतलब धूप से जितना हो सके उस एक्सपोजर से अपने आप को बेसिकली आपने बचाना है. चाहे आप अम्ब्रेला लें, चाहे आप सन हैट लें, कुछ भी लें, लेकिन ज़्यादा देर तक एक्सपोजर स्किन पर डायरेक्टली नहीं होना चाहिए. हमें पता ही है डेफिनेटली कि उसके कितने नुकसान होते हैं, तो उससे बचें. रंग काला नहीं होता सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे और दीगर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन इशूज़ हो सकते हैं. तो इसलिए इन चीज़ों का आपने रखना है ख्याल. और इसके साथ ही आ जाते हैं हम यहाँ के आज के दिन कौन कौन से दिन दुनिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं. फर्स्ट जुलाई को, आज फर्स्ट जुलाई है, सबसे पहले तो आप लोगों को जुलाई मुबारक. तो फर्स्ट जुलाई को सबसे पहले जो दिन मनाया जाता है वो होता है इंटरनेशनल जोक डे मनाया जाता है. अच्छा, मैं इतना लेवल भी देख लूँ, आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है?

राइट, तो आवाज़ अब मेरी बेहतर हो गई होगी डेफिनेटली. तो अब ये सिलसिला है, मैं आपको बताती हूँ कि आज सबसे पहला जो दिन है वो कौन सा मनाया जाता है. उसके साथ ही मैं अपना ये जो बैकग्राउंड है ना, वो जो मुझे इरिटेट कर रहा है, वो थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ. राइट, अब सही हो गया. नहीं जी, तो अब क्या सिलसिला है. हाँ, 1 जुलाई को सबसे पहला दिन जो मनाया जाता है वो होता है इंटरनेशनल जोक डे. और हर साल ये दिन मनाया जाता है. जोक डे यानी लोग मजाक करते हैं, एक दूसरे से जोक सुनाते हैं. और इस दिन का मकसद होता है लोगों को हंसाना, मुस्कुराहट फैलाना और स्ट्रेस को कम करना. और रिसर्च के मुताबिक हंसना सिर्फ मूड को बेहतर नहीं बनाता बल्कि दिल की सेहत और साथ ही इम्यून सिस्टम, ज़हनी सुकून के लिए भी बड़ा ही मुफीद होता है. तो हंसते रहना चाहिए. वैसे इस दिन लोग अपने दोस्तों और घर वालों के साथ जोक्स शेयर करते हैं. आज के दिन जोक्स शेयर करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं. अच्छा, अक्सर लोगों को तो वैसे ही लतीफ़े शेयर करने का बहुत ही शौक होता है. तो आज आप लोगों के लिए खुली छुट्टी है, लेकिन अच्छे वाले लतीफ़े भेजिएगा प्लीज़. मतलब ज़रा मतलब लगे ना कि लतीफ़ा भेजा है, जोक हो तो जोक हो, ठीक है, तो अच्छा वाला हो. फ़नी स्टोरीज़ भी सुनाते हैं, ठीक है, कॉमेडी शोज़ देखते हैं, ऑफिस और स्कूल में हल्का फुल्का माहौल बनाते हैं. ओके, और ये दिन बेसिकली मुस्कुराहट के लिए होता है. मुस्कुराहट भी एक सदका है और हर चेहरे पर मतलब मुस्कुराहट लाना बड़ा ही कीमती अमल है. तो इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन, इंटरनेशनल जोक डे. तो ये है. खैर जी, इसके साथ ही दूसरा जो दिन मनाया जाता है वो है इंटरनेशनल रेगे डे.

अच्छा, रे ने मुझे पहली दफ़ा पता चला कि ये बेसिकली म्यूज़िक का एक जॉनरा है, म्यूज़िक का ही एक जो है ना कुछ मुख्तलिफ किस्म का म्यूज़िक है। क्या है मैंने अभी देखा था, हाँ मैं देख के आपको फिर से बताती हूँ कि ये बेसिकली ट्रेडिशनल जो अफ्रीकन और यूरोपियन म्यूज़िक स्टाइल है ना, ये बेसिकली उन दोनों का एक तरह का फ्यूजन है। ठीक है, तो ये दिन जमैका की मशहूर रेगे म्यूज़िक को ट्रिब्यूट देने के लिए शुरू किया गया था। और इस म्यूज़िक ने सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि बेसिकली इसका जो मकसद था, ये जो म्यूज़िक जॉनरा हुआ था इन्वेंट, उसका मकसद ये था कि ये अमन, इंसाफ और इंसानी हकूक के पैगाम के तौर पे ना, मतलब इसमें मैसेजेस दिए जाते थे, तो उस म्यूज़िक को कहते हैं बेसिकली, जो कि एक तरह का आप कह सकते हैं कि राइट्स वगैरह के लिए ना वो कैंपेन वगैरह चलती है, तो ये म्यूज़िकल कैंपेन रेगे म्यूज़िक, और उसमें थोड़ा सा लो बीट टाइप म्यूज़िक होता है, ये रेगे उसे कहते हैं। और ये जमैका में बेसिकली शुरू हुआ था, तो ये होता है, इसके कॉन्सर्ट्स होते हैं दुनिया भर में, ऑनलाइन फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसके साथ ही जमैका के कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है, और दुनिया भर के आर्टिस्ट जो हैं वो रेगे म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं, तो ये सिलसिला आज के दिन होता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा जी कनाडा में हर साल 1 जुलाई को कनाडा का नेशनल डे मनाया जाता है, क्योंकि 1867 में इसी दिन कनाडा के मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने मिलकर एक फेडरेशन बनाई, जिससे मॉडर्न कनाडा की बुनियाद पड़ी थी, तो ये होता है। इसके अलावा इंडिया में 2 दिन मैंने देखा जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो होते हैं, पहला दिन होता है डॉक्टर्स डे, और ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है इंडिया में। ये दिन जो है ना बेसिकली फिजिशियन और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल डॉक्टर बिंदन चंद्र रॉय की राय में, की याद में मनाया जाता है, कि राय में नहीं कि इनकी याद में मनाया जाता है, उनकी पैदाइश और वफात दोनों ही 1 जुलाई को हुए थे बेसिकली। तो डॉक्टर्स की खिदमात को सराहा जाता है, हॉस्पिटल्स में अप्रिसिएशन प्रोग्राम्स होते हैं, मेडिकल अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं, और पेशेंट अपने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, और COVID-19 के बाद इस दिन की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये सिलसिला। अच्छा, इस हवाले से ना थोड़ी देर के बाद मैं एक बात करूँगी, थोड़ी देर के बाद, अभी तो हम दिनों के हवाले से बात करें, लेकिन डॉक्टर्स को लेके कभी थोड़ी देर के बाद चीज़ शेयर करेंगे आपसे। अच्छा, दूसरा जो है वो एक और दिन जो इंडिया ही में मनाया जाता है डॉक्टर्स डे के बाद, वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, ये मनाया जाता है, और ये बेसिकली 1949 में पहली दफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का क़याम अमल में आया था। तो ये दिन उन प्रोफेशनल्स के नाम होता है जो कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखते हैं, बिजनेसेस को गाइड करते हैं, और टैक्स और ऑडिटिंग के निज़ाम को मजबूत बनाते हैं, तो ये दिन भी मनाया जाता है इंडिया में, यानी 2 दिन। ठीक है, इसके साथ ही जी और क्या है सिलसिला, आज जो है नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी मनाया जाता है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स में मनाया जाता है। अमेरिका में नेशनल पोस्टल वर्कर डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, और इस दिन उन तमाम पोस्टल वर्कर्स को ट्रिब्यूट दिया जाता है जो हर मौसम और हर हालत में लोगों तक लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स और पार्सल्स पहुंचाते हैं। तो लोग जो हैं पोस्टल सर्विस जो स्टाफ है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अप्रिसिएशन मैसेजेस भेजते हैं, उनकी मेहनत को एक्नॉलेज करते हैं बेसिकली। तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा मज़े का दिन है, मतलब तो इतने सारे दिन हैं, आज भी बहुत सारे दिन हैं, 1 जुलाई को बहुत कुछ मनाया जाता है। अच्छा, जो अगला दिन है वो है इंटरनेशनल चिकन विंग डे, और इस दिन जो है ना दुनिया के कई मुल्कों में इंटरनेशनल चिकन विंग डे के तौर पे सेलिब्रिटीज़ को किया जाता है, रेस्टोरेंट्स डिस्काउंट देते हैं और न्यू फ्लेवर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, और फूड लवर्स इस दिन अपनी जो फेवरेट जो है ना चिकन विंग वो उसको इंजॉय करते हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हैं। जब विंग्स बहुत मशहूर होते हैं, बहुत सारे लोग विंग्स को बहुत पसंद करते हैं, चिकन विंग्स की बात कर रही हूँ, तो ये बेसिकली किया जाता है आज के दिन। ठीक है, और इसके अलावा खाने पीने वाले अब जो लोग हैं, शौकीन हैं, उनके लिए एक और दिन होता है आज। आज है, मैं पिछले दिन आपको बता चुकी थी ना कि आइसक्रीम डे होता है, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट है, आज थोड़ा सा क्रिएटिव कर दिया है इन्होंने। अच्छा, आने वाले दिनों में ना मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि अगर कोई नेशनल हॉलीडे आप लोगों ने रखना हो तो आपका कौन सा हॉलीडे होगा, आप कौन सा हॉलीडे रखेंगे। देखिए, उसमें मैं बता क्यों रही हूँ कि ये वाले हॉलीडेज होते हैं, कि आप ये जो ना इस तरह के चिकन विंग डे रख दिया आपने, चिकन लेग पीस डे रख दिया आपने, मतलब कोई भी रख सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो रोज़ाना के दिन मैं आपको बता रही होती हूँ उसमें से। खैर जी, क्रिएटिव आइसक्रीम फ्लेवर्स डे मनाया जाता है आज, और ये तमाम जो है ना उन लोगों के लिए जो नए नए और यूनिक आइसक्रीम फ्लेवर्स ट्राई करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए इस दिन होममेड आइसक्रीम्स भी बनाई जाती हैं, न्यू रेसिपीज एक्सपेरिमेंट की जाती हैं आइसक्रीम्स की, और आइसक्रीम शॉप्स खास तौर पे कॉम्बिनेशन से लॉन्च करती हैं, तो ये होता है। ठीक है, अच्छा, अभी मैं बात कर रही थी शुरू में कि लोग जो सुबह सुबह वॉक कर रहे होते हैं, तो आज के दिन 1 जुलाई को
अर्ली बर्थ डे में मनाया जाता है, और ये उन लोगों के लिए होता है जो कि सुबह जल्दी उठने के आदि

0: और वो छुट्टी वाले दिन भी जल्दी उठ जाते हैं. तो उन लोगों को हेल्दी मॉर्निंग रूटीन जो शुरू करते हैं, एक्सरसाइज और वॉकिंग कर लेते हैं सुबह सुबह, मतलब ना सिर्फ ये कि उठ जाते हैं, उनके अंदर इतना हौसला, इतनी हिम्मत होती है सुबह सुबह कि वॉक और एक्सरसाइज भी शुरू हो जाती है. प्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल उनका जो है ना, उसको प्रमोट करते हैं. तो ये उन लोगों के नाम है आज का दिन. और साथ ही आपको एक दो दिन और बता देती हूँ, इंटरनेशनल फ्रूट डे है. तो यहाँ कई कम्युनिटीज़ के ऑर्गेनाइज करती हैं और सेलिब्रेट करती हैं हेल्दी ईटिंग को, प्रमोट करती हैं सीजनल जो फ्रूट्स हैं उनकी अहमियत वगैरह को बताती हैं. तो ये सब कुछ होता है भाई, मतलब बहुत कुछ है आज के दिन. बड़ा ही हैपनिंग डे है 1 जुलाई. और बेसिकली इसका पता है रीज़न भी है, वो ये कि आज से साल जो है ना आधा हो चुका है और आधा साल बाकी रह गया है. ये साल का 182वां दिन होता है, 82वां कहते हैं, 82 दिन जो है ना वो होता है. अभी कैसे बोलते हैं मुझे सही तरह से नहीं पता, यानी 182 डे है आज, 182 डे, ठीक है. और ये मतलब अब इसके बाद 184 डेज बाकी हैं साल के. तो ये बिल्कुल एक तरह से मतलब आधा साल गुजर चुका है और आधा साल रह गया है. तो इसलिए 1 जुलाई को बहुत अहमियत दी जाती है, ठीक है, जिससे आप समझ ही गए होंगे. 10-12 मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं. खैर जी, इसी के साथ हम मूव करते हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है. टॉपिक बड़ा मजे का है, तो थोड़ी देर में बताते हैं आपको.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa. हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में. वज़ारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ. ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है. MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर. Don't miss it.
2: दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए रोड सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें और ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखें. पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें ना सिर्फ पेडेस्ट्रियन बल्कि ड्राइवर्स और अथॉरिटीज भी शामिल हैं. हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखें और सिग्नल का इंतजार करें. अगर आपको क्रॉसिंग का वक्त मिल रहा हो तो उसका फायदा उठाएं और सेफली रोड क्रॉस करें. ट्रैफिक रूल्स का तायुन करना सबकी जिम्मेदारी है. जब भी आप रोड पार कर रहे हों, अपने सफर को इंतहाई एहतियात और आराम के साथ पूरा करें. कभी भी जे वॉकिंग ना करें और हमेशा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें. ड्राइवर्स को भी ये जरूरी है कि वो पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखें और उन्हें क्रॉस करने का मौका दें. ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखें और रोड पर हर वक्त एहतियात बरतें. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब. सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान के साथ.

Alright, welcome back. आप सुन रहे हैं 107 FM शो है समर मॉर्निंग और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे महाशान। अच्छा जी, सिलसिला ये है कि अब सवाल का वक्त आ गया, तो सवाल मैं आपको बताती चलती हूँ। आज का सवाल काफ़ी मज़े का, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो सवाल ये है कि अगर आप अपने यंगर सेल्फ को कोई सजेशन, कोई मैसेज, कोई मतलब कुछ उसको देना चाहते हैं ना, उसको बताना चाहते हैं कुछ, तो क्या बताएंगे उसे? ठीक है, तो ये आपने मुझे

0: बताना है, अगर अपनी यंगर सेल्फ को आप देना चाहते हो कुछ मशवरा, तो वो मशवरा क्या होगा, कौन सी एडवाइस होगी वो, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है कॉल करके। इजी है, मतलब अगर समझें कि आप जो है वो अपने 18 साल के वर्जन को कुछ बताना चाहते हैं, जो अभी खुद 18 के, वो अपने 9 साल के वर्जन को कुछ बताना चाहते हैं जब वो इतने छोटे हुआ करते थे, तो वो क्या मशवरा होगा, क्या एडवाइस होगी, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। चलो पहले हम लोग गिनती गिन लेते हैं, एक इकाई दो इकाई का वाला पहले। अच्छा, सात भाई सात कई साठ, सात साढ़ साठ साठ कैसे करके, जो पहले एक लड़का था उसमें क्लास में, तो जब गिनता था ना तो सात सात साढ़ साढ़ साढ़ सब करके इतना लंबा
0: क्या बोलते हैं उसका, होते हैं भाई मुझे पता है 82 होता है, लेकिन वो मेरे मुंह से वो नहीं निकल रहा।
1: वो मुझे पता है
0: 82 पता है मुझे, लेकिन अब आप मुझे बताएं उसको वहाँ कैसे लगाएंगे उसके साथ, बताएं मुझे। जैसे 22वां होता है ना, 22वां हो गया, ठीक है, लेकिन ये 82वां, हाँ ये था वो दिन वो निकल ही नहीं रहा था मुंह से।
1: हाँ तो 67 को इतना लंबा सड़ करता था ना, इतना इतना मजाक उड़ाया जाता था। असल में जो हम लोग छोटे थे तो एक बच्चा खड़ा होके गिनती गिनाता था, एक इकाई, तो सारे बच्चे बोलते थे एक इकाई, ऐसे दो इकाई ऐसे करके।
0: अच्छा, मैंने तो ये उर्दू वाली जो गिनती है ना, वो आके यहाँ पे जब मैं वो बताती थी ये जो करेंसी रेट्स, तो उस दौरान याद की, वरना उससे पहले मुझे उर्दू की गिनती मतलब शायद आई थिंक 30 तक आती थी, उसके बाद फिर मिस हो जाती थी।
1: नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो इसका पहाड़ा और गिनती, ये तो हम लोग का जो मतलब जो गांव में नर्सरी की उसमें ही होती है पढ़ाई।
0: गुड गुड।
1: हम लोगों ने रट्टा मार लिया था, बहुत लंबा रट्टा, वही सब रट्टा मारा जाता था, और बड़ा सख्ती से इसके ऊपर ये किया जाता था, कलमा याद करो, दुआ याद करो, याद करो, पांचवा कलमा सुनाओ, और ये छठवा सातवा, इतना लंबा ये होता था प्रेशर कि, और वो उसको इतना ये करके भी बहुत ज्यादा उसको अपने जहन में मुतासिर भी थे बच्चे उस पर कि हाँ हमें ये करना ही है बिल्कुल। उसको उसे अब तो बिल्कुल उस चीज से अलग कर दिया गया है, थोड़ा सा अलग एक्टिविटी, मतलब हालांकि
0: अब तो उर्दू की गिनती बिल्कुल पता ही नहीं होती, मतलब फिर भी मुझे भी नहीं पता थी, वैसे जो सीधी सी बात है।
1: नहीं, लेकिन नहीं, अभी भी हमारे इधर तो बच्चों का तकरीबन अभी चल रहा है उर्दू की जो फर्स्ट, हाँ। मतलब जो है स्टार्टिंग वो उर्दू से ही शुरू होती है, और
0: अच्छी गिनती बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ। अभी भी गिनती उनकी और पहाड़े ये सब अभी तकरीबन चल रहे हैं, अभी जो गांव के जो छोटे छोटे स्कूल हैं उसमें वो एक्टिविटी चल रहा है, अभी भी माशाल्लाह वो खत्म नहीं किया गया है, वो जरूरी भी है।
0: जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है वाकई लैंग्वेजेस को जो है ना, आपकी जो भी लैंग्वेज हो उसको प्रिजर्व रखना चाहिए,
1: खोना नहीं चाहिए। हमें मतलब ये ना हो कि मतलब हमें थोड़ा सा ये करके जहाँ पे जाए अगर वो अपना लैंग्वेज बोलने वाला है तो उसका मजाक उड़ाते हैं और बड़ा बड़ा शर्म महसूस करते हैं, यार कहाँ ये शुरू हो गया अपनी लैंग्वेज, ये मतलब मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। अपना जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो उसको आदमी को अपने उसमें रखना चाहिए जहन में, और याद भी होना चाहिए। तो हम लोग को याद है अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें जो हम लोग पढ़ते थे, हम लोग क्या उधर अभी भी सारे मतलब बच्चों का जो खासकर मुस्लिम जो बच्चे मुस्लिमों के जो बच्चे हैं, क्योंकि अब हम लोग तो मिक्स रहते हैं नॉन मुस्लिम और मुस्लिम गाँव में, सारे मिक्स है हम लोग के इधर, तो तकरीबन मेरे ख्याल से कि 99% तकरीबन बच्चों को सबसे पहले उर्दू के ही उससे उनकी स्टार्टिंग का मतलब ये किया जाता है, टीचिंग का ही स्टार्टिंग किया जाता है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह।
0: सही,
1: ये भी बहुत बहुत बड़ी मतलब ये है कि वो खासकर नॉन मुस्लिम के बच्चे तो तकरीबन उसमें जाते हैं, लेकिन मुस्लिम के बच्चे स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, उसके बाद में थोड़ा आगे जाके निकल भी जाते हैं, लेकिन तकरीबन स्टार्टिंग यहीं से होता है मदरसों से ही।
0: अच्छा अच्छा, गुड, जबरदस्त, अच्छी बात है, अच्छी बात है माशाल्लाह। तो ये सिलसिला है। आज ये बताएं भाई कि अगर आपने अपनी यंगर सेल्फ को, जब आप छोटे हुआ करते थे, उसको कोई एडवाइस देनी है तो वो क्या होगी?
1: मेरे ख्याल से एडवाइस जो पहले के लोग जिम्मेदारी समझते थे, क्योंकि खासकर अपनी फाइनेंशियली और सारी चीजों से वो ये रहते थे, उससे मुतासिर रहते थे, और उन्हें वो उस पर मजबूर होना पड़ता था कि हाँ हमें कुछ करना है आगे। और आजकल के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं तो उनकी अलग ही सोच होती है उनको अच्छे से अच्छा मतलब सारी चीज उनको
0: नहीं ये आजकल के बच्चों की बात नहीं करी मैं आप ही की बात कर रही हूँ आप जब छोटे हुआ करते थे अगर आज आपको कहा जाए कि अब जब तुम छोटे हुआ करते थे उसको मतलब आपको मिल जाए कहीं अपना वो छोटा वाला वर्जन जब आप कॉलेज जाते थे स्कूल

0: भूल जाते थे, तो उसको क्या मशवरा देना चाहेंगे? अब तक आपने जो सीखा हो, जो उस वक्त गलती करते हो कुछ हो, तो वो उसको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे?
1: उसी के ऊपर मैं आ रहा था बात करके, उसी के ऊपर मैं आ रहा था बात करके कि अब जो पहले के थे वो उनके अंदर कुछ ये होता था कि हाँ हमें कुछ बनना है, तो क्या करना है यार, पढ़ाई करके इतना लंबा और ये करके हमको नौकरी करके, मतलब गैर जिम्मेदारी। आजकल खासकर ये शहरों के बच्चे तो थोड़ा कम, लेकिन देहात के बच्चे उसके ऊपर ज्यादा मतलब फोकस नहीं करते कि क्या करना है हमें, जाके बाहर में नौकरी करना, खासकर गल्फ कंट्री में, और ये वो चीजों को अपने वक्त को जाया ना करें, अपने वक्त की कदर करें। मेरे ख्याल से अपना जो मुस्तकबिल है वो अपने माँ बाप अगर आपको मौका अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो आप उसको मतलब अच्छे से इस्तेमाल करें, और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद मतलब ये करें कोशिश की मतलब हम कुछ कर सके आगे जाके। अपना वक्त जाया, आजकल तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और तरह तरह के उससे अपना वक्त जाया करते हैं, तो इसको ना करके बल्कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने उसके लिए मुस्तकबिल के लिए अगर कुछ ये करें कि मतलब हाँ हमें कुछ बढ़ के आगे बढ़ के कुछ करना है अपने तरफ से, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। आजकल हम अपने वक्त को ना बर्बाद करें और ये ना सोचे कि नहीं अब हम हमको कहाँ यार इतना ज्यादा हमको क्या करना है। हम खुद मतलब इस्लाम ने हमें हर चीज को अपने अपने तरफ से ये करें कुछ ऐसा नया कि मुस्तकबिल में वो दूसरे उससे फायदा उठा सके, आपके उससे एक्टिविटी से वो फायदा उठा सके और वो आपको अज्र भी मिलेगा, आप अज्र के मुस्तहिक भी बनेंगे।
0: सही,
1: कोई भी चीज हो, छोटी छोटी चीज हो,
0: यानी आप अपने आप को ये मैसेज देंगे वक्त जाया ना करो, राइट?
1: हाँ, वक्त का कदर करें बस, मेरे ख्याल से वक्त सबसे ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पे बर्बाद किया जाता है, खासकर बच्चों को ये करके, तो उसको अपने वक्त को जाया करके और अपने मुस्तकबिल को भी वो समझ लो कि वो बर्बाद कर रहे हैं, फ्यूचर को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, उसको जाया ना करें, अपने वक्त की कदर करें। और वक्त एक बार निकल गया हमारे उससे तो फिर, और खास कर ये 20 ईयर के बाद में फिर आपको 22 ईयर के बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा।
0: सही हो गया
1: उनको जब जिम्मेदारी आती है तो फिर वो जो पढ़ाई वाला कॉलेज वाला जो एक टाइम होता है वो समझ लो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा समझ लो कि एक ब्राइट टाइम होता है। अगर उसमें हमने अपने आप को ये कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम समझ लो पीछे के पीछे फिर पछताना पड़ता है मेरे ख्याल से। तो मैं यही कहूंगा कि वक्त का कदर करें और अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए कुछ ना कुछ अपना एक सोच बना के रखें कि हमें ये बनना है, ये करना है आगे चल के अपने फ्यूचर के लिए, तो एक प्लानिंग बना के रखें, प्लानिंग जरूरी है हर चीज के लिए।
0: सही हुए, बिल्कुल ठीक
1: है। ठीक है, मैंने शुरुआत किया और हमारे भाई आएंगे
0: इंशाल्लाह,
1: और मैं रही बात कर रहा हूँ लोग,
0: जी जी बिल्कुल,
1: नाम से भी शिकायत रहता था कि यार नाम नहीं बताया जाता है, तो थोड़ा सा नाम बता देते हैं क्योंकि आप लोग को पता है तो और भाई लोग को नहीं पता हो तो थोड़ा सा
0: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रही जी, तो सवाल मेरा ये है कि आपने अपने ही यंगर सेल्फ को, राइट, मतलब अभी आजकल के बच्चों को नहीं, अपने ही यंगर सेल्फ को अगर आप अपनी जवानी से या अपने बचपने से मिल जाते हैं, आपका टकरा हो जाता है, उसको क्या एडवाइस देंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग एफएम 107।
0: गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके?
2: जी ठीक ठाक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है अभी?
2: सेम वही रूटीन आपको आई थिंक शेयर की है, नफीस बात कर रहा हूँ, ड्यूटी टाइमिंग होती है रस्ते हुए।
0: अच्छा ठीक,
2: रस्ते वाली ड्यूटी हो रही होती है।
0: सही, ड्राइव चल रही है अभी, सही हो गया
2: जी, बिल्कुल ड्राइव चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और कॉल इस मेरे से पहले जो कॉलर थे उनकी वजह से ही आज कॉल वजह बन गई है कि यार कॉल।
0: अच्छा?
2: बड़ी प्यारी बात की इन्होंने।
0: हाँ
2: सीरियसली, क्योंकि मैंने भी आपका सवाल सुनने के बाद ना दिल आया कि दो मिनट लूं आपके, कोई यंगर जेन्युइन ही सुन ले 18 प्लस या 18 से नीचे भी।
0: हाँ, लेकिन आपने नफीस अपने आप को जब आप 18 के थे, जब आप 16 के थे, उस वर्जन को, मतलब अगर आपकी समझे अपने आप से मुलाकात हो जाती है, ठीक है, उस वक्त में जब आप 16 साल के थे, 18 साल के थे, उस वक्त में आप जो मुश्किलात गुजार रहे होंगे, जो कुछ आपके दिमाग में ख्याल होंगे ना, हर बंदा फ्यूचर बना रहा होता है, ये वो परेशान भी होते हैं बहुत सारे लोग, जिन लोगों को होता है कि जल्दी से कुछ बनना है ये वो, तो अब इस स्टेज पे आके लाइफ के अब आप उसको क्या मैसेज देंगे, क्या एडवाइस करेंगे?
2: थोड़ा सा आपके क्वेश्चन के आंसर के चक्रों में मतलब मेरे ज़हन में कुछ और चल रहा था,
0: मैं समझ

0: क्योंकि रईस भाई भी रईस भाई से मैंने बताया रईस भाई को मैंने बताने की कोशिश की कि सवाल ये है, उन्होंने कहा हमें उसी पे आ रहा था, फिर उन्होंने वही जवाब दिया जो उन्होंने सोचा हुआ था, इसलिए मैंने कहा मैं आपको करेक्ट करवा दूं।
1: नहीं बड़ा अच्छा किया आपने। ये एक मजेदार चीज है कि अगर मैं उस स्टेज दोबारा देख पाऊँ सामने अपनी शक्ल में, नहीं किसी छोटे भाई या किसी
0: नहीं अपनी अपनी आपकी आपकी आपकी बात हो रही है।
1: अच्छा अपने आप से ही
0: अपनी आप से ही
1: तो हाँ। और जो मैं भी फिर तो सेम ही है कि यार वो लाइफ ऐसी होती है उसमें एंजॉय करना चाहिए, परेशानी फ्यूचर की सब कुछ ये फजूल खा जाता है टाइम ये, क्योंकि जो आपके नसीब में है ना टू बी ऑनेस्ट वो सब लोग बिलीव करते हैं वो मिलके रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन ये जैसी होती है ना अपने आप में फ्यूचर की तैयारी प्लानिंग स्टडीज के बारे में सोच रहे हो, अगर फैमिली को पैकअप करना है तो उसकी टेंशन, तो वो टाइम पड़ा ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। कुछ लोग तो अच्छा है किसी खेल कूद या किसी चीज में टाइम गुजार लेते हैं, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बस यही एक मेरी अपने उस फेस से जो रहेगी कि अपने आप से मिले बंदा तो ये एक नई यार उस टाइम की
0: लाइफ बन जाएगी, लाइफ बन जाएगी।
1: यार आपने उस दिन तो मैं बाद में काफी देर सुनता रहा न्यू कॉलर को भी आप बता रहे कि लाइफ बन लाइफ पढ़ना फिर मजा नहीं देता। एक होता है जिंदगी, तो हम लोग ना पंजाबी आपको बताइए मैं जरा पंजाब वाली साइड से बिलोंग करते हैं
0: जी जी।
1: तो हम लोग ना जिंदगी बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: जिंदगी का थोड़ा ये जिंदगी बन जाएगी यार।
0: हाँ तो अपने यंगर सेल्फ को अब यही मैसेज देंगे कि भाई इतनी फिक्र ना करो।
1: क्लियर यही थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि टाइम से गुजरे है ना, वो टाइम ऐसे ही पैनिक अपने ऊपर ताड़ी रहता है बंदे के, यार फ्यूचर होगा मैं पढ़ाई करके मैं जॉब क्या करूंगा, मैंने ये लेना मैंने वो लेना है, टू बी ऑनेस्ट यकीन माने वो जाकिर खान इंडियन एक कॉमेडियन है
0: जी जी।
1: बस एक मिनट लूंगा, उन्होंने ना एक स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं शायद सुना होगा आपने
0: जी जी, देखा है मैंने, देखा है जी जी,
1: देखा है। अच्छा वो एक स्टैंड अप कॉमेडी में ना ऐसे ऑडियंस से कहते हैं कि यार कौन ऐसे हैं जो टॉपर्स थे हाथ ऊपर करो, तो वैसे 20-25 पीपल हाथ ऊपर कर करते हैं फिर नीचे करो। अच्छा वो बताएं जो फेल और लास्ट पे रहते रहे हैं वो हाथ ऊपर करें। तो वो भी 25-50 हाथ खड़ा किया, कहते ये देखो आपने टॉप पे आके तो उखाड़ नहीं लिया कुछ, हम भी वही है तुम भी वही हो।
0: बाकी बात सही है। हाँ बात सही है।
1: अच्छा वो इन मॉरल वो बात बड़ी सही है कि यार पैनिक होके परेशान होके क्या कर लेना है, और अच्छाई जो लिखी है उसको मिलके लेगी।
0: हाँ सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मशवरा आपने देना है कि भाई चिल रहो, चिल रहो,
1: वो पैनिक में टाइम ना गुजार क्या होगा।
0: सही सही
1: चले गुड टाइम होता है, आप भी गुजरी है उसी टाइम से,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: एज ए जेंट भी। हाँ तो वो बड़ा
0: बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होती हैं, तो वही वाकई मतलब फिर बंदा एक स्टेज पे पहुंच के मतलब सोचता है कि इतना तो मुश्किल नहीं था जितना हम समझ रहे थे चीजों को, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए। बिल्कुल
1: ऐसे ही। और एक यहाँ पे हल्की सी बात ऐड कर लेंगे आसानी करने के लिए अपनी लाइफ में उन लोगों के लिए, या जैसे मैं 18 साल का हूँ तो मैं अपनी लाइफ तो मुझे उस टाइम ये पक्का समझ जाना चाहिए कि हाँ यार ये वो वालद साहब हो सकते हैं, माँ हो सकती है, कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई टीचर अच्छा हो सकता है, जो मजेदार लाइफ के बारे में एडवाइस देना, तो बस वो उस पर यकीन करके चलना चाहिए, क्योंकि ना इनर सेंस पता चल जाता है कि यार ये अच्छी बात कर रहा है। बस मेरा काम है कोशिश करना, तो मैं कोशिश करूंगा, उसके अलावा कोई परेशानी ना लूं।
0: हाँ।
1: एडवाइजर कोई अच्छा हो, वालद साहब होते हैं कोई भी, तो उनकी बात के साथ मतलब उसकी लाइन पे अगर वो कुछ समझा रहे हैं वो चलने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा लिखा होता है दूसरे नियत वालों के साथ, हमेशा अच्छा होता है।
0: सही बात,
1: उसका फर्क अमल है, वो टाइम ऐसा होता है कि आप अच्छे से चलें, अच्छी नियत को अडॉप्ट करें, और आगे वाले जब 30s एज आती है ना यकीन माने उसके बाकियात मिलते हैं, उसकी वापसी मिलती है। अच्छा बस थोड़ी सी इमोशनल बात भी ऐड कर दूं, टाइम है आपके पास।
0: हाँ, कर दीजिए, अभी फिलहाल कॉल नहीं है।
1: तो मैं वरना मैं नहीं इतना सीरियस होता।

0: मावी जो वो टाइम है ना, उसमें बहुत मौके मिलते हैं. वो टाइम ऐसा होता है कि आपको ऑलमाइटी अल्लाह ऐसा कुछ की आपकी वो भी निकल जाती हैं कुछ मसले, क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि मौकों का टाइम है, अपॉर्चुनिटीज का टाइम है. जो ही आप 30+40 इस लाइन में आते हैं ना मावी, तो फिर कदम बड़ा सोच समझ के रखना होता है. क्योंकि उसके बाद ना आपके पास टाइम रहता है संभलने का, और फिर बताऊं आपको जो असरात है ना वो भी जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं अगर अच्छा किया उसका भी, और जो अगर किसी के साथ आपने बुरा किया है
1: तो उसका
0: चीज ऐड करूंगा. और ये यकीन माने 100% है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ ये टू फेज है. फर्स्ट फेज आप 20 के पास या 20 प्लस भी ले लें, टाइम अपॉर्चुनिटीज सब कुछ भरपूर होता है. टाइम भी होता है बंदे के पास.
1: सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल जी नफीस. तो जबरदस्त, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का और इतनी अच्छी चीजें शेयर करने का. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू, ख्याल रखिए अपना.
1: जी जी बिल्कुल सेम हियर. थैंक यू जी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज. जी जाए तो हमारे साथ जो है नफीस भाई थे और जबरदस्त कॉलर हमारे, हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी बातें शेयर की उन्होंने. अच्छा उसके साथ कॉल भी आ रही है, लेकिन एक दो मैसेजेस पहले पढ़ दूं फिर मैं आ जाती हूँ कॉल की तरफ. ठीक है, मोहम्मद अलवकरा से मोहम्मद तौफीक ने अस्सलाम वालेकुम कहा है मुझे. वालेकुम अस्सलाम. इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसे हैं आप? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आरिफ अंसारी का मैसेज है, आप बताएं कैसे हैं आरिफ? ठीक ठाक हैं. और अस्सलाम वालेकुम एफएम 107 की टीम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू इंक्लूड तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम बिफोर द स्टार्ट ऑफ मॉर्निंग अस्कार. अच्छा, इमरान सरदार का मैसेज है, मैं बिल्कुल यहाँ पे बता दूंगी. ठीक है चले जी, इसके साथ ही हम मूव करते हैं कहाँ आपकी कॉल की जानिब. हेलो
2: जी, अस्सलाम वालेकुम.
1: हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम.
2: माजिद बात कर रहा हूँ, मुझे आपका नाम नहीं पता, सॉरी मैं नहीं कर पा रहा आपको.
1: माजिद नाम बता रहे हैं अपना.
2: जी जी, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम महावश है.
2: एक मिनट मुझे आवाज, असल में जी आप बोलिएगा प्लीज.
1: मेरा नाम है महावश. महावश
2: जी, महावश जी, महावश
1: जी.
2: सॉरी, मैं असल में आपका शो पहली दफा सुना है मॉर्निंग में. इससे काफी अर्सा पहले मैं मॉर्निंग शो सुनता था, तो कुछ और लोग कर रहे होते थे, फिर
1: जी,
2: कुछ
1: जी,
2: और
1: जी,
2: लोग आगे. अभी ये काइंड ऑफ अ चेंज फॉर मी, तो इसलिए आपका नाम नहीं पता था.
1: जी जी, कोई मसला नहीं.
2: और मैंने दूसरे कॉलर की, पहले वाले कॉलर की बात सुनी है, और उस पर मैं अपने इनपुट देना चाहूंगा. वो ये कि अगर मैं, लेट्स से अगर यंगर सेल्फ कह रही है, तो कोई एज स्पेसिफिक बोल रही हैं आप या फिर?
1: नहीं नहीं, बस आपका यंगर सेल्फ, आपका यंगर सेल्फ जिस दौर में आप स्ट्रगल्स कर रही हो, कुछ होता है ना हार्ड ब्रेक्स भी हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को अपनी टीन एज में, तो इस तरह का कुछ भी तो टाइम था जो मुश्किल था उस वक्त में, क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
2: एक एडवाइस अपने आप को मैं ये करना चाहूंगा, जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टाइम पे था, कि मुझे पीयर प्रेशर नहीं लेना चाहिए था. किसी को भी लेना नहीं चाहिए. और स्ट्रांग रहना चाहिए अपने बिलीव्स में, और अपने जो भी आपकी एडवाइसेस हैं बड़ों की, इंस्टेड कि आप पीयर प्रेशर की वजह से अपनी लाइफ के डिसीजंस लें. ठीक है, तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा किसी डिसीजन को, लेकिन इससे बेहतर हो सकता था एक दो चीजों में. बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र और एहसान है कि बहुत बेहतर चीजें होती रही आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में.
1: अच्छा, ये पीयर प्रेशर आपने लिया या आपको दिलवाया गया, डाला गया?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, डाला नहीं गया. डाला भी होता है, जाहिर सी बात है, जब आप यू आर इन अ ग्रुप देन यू कांट से कि डाला गया या नहीं, लेकिन आप ले लेते हैं अगर आपके साथ ग्रुप में ऐसी इन्फ्लुएंसेस, दूसरी डिफरेंट एनर्जीज वाले लोग होते हैं जो आप पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो बहुत लकी रहा मैं कि एक दो जगह पर जब मैंने पीयर प्रेशर लिया, तो बहुत अच्छा, जो मेरी गैदरिंग थी वो ऐसी थी कि बहुत फायदा हुआ मुझे. तो लेना भी चाहिए, इफ इट इज अ गुड थिंग, बट मोस्टली नेगेटिव होता है.
1: सही,
2: तो यू शुड अवॉइड. अपने बच्चों को भी ये एडवाइस दें,

0: को स्ट्रॉन्ग करे और फियर प्रेशर से बचाए।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, और वही मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे कोई अंकल कोई आंटी, वो इस तरह की चीज़ें मतलब ना दूसरों से कंपटीशन किसी भी चीज़ से, चाहे उनकी इंटेंशन बुरी नहीं होती, लेकिन वो कभी कभी इस तरह का मामला होता है कि वो दूसरों से एक कॉम्पिटिशन मतलब एक खुद ब खुद डेवलप हो जाता है, तो वो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ जैसे आपने कहा कि अच्छी आपकी गैदरिंग है, अच्छे मतलब जो ना इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कुछ आगे बढ़ने वाले लोग हैं, तो उनके दरमियान रह के अगर ये खुद ही डेवलप हो जाता है ना कहीं पे कि भाई देखो मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो ये पॉजिटिव भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज जो मैं अपने 30s के एंड पर मैं आपको मशवरा देता हूँ उस टाइम पर, वो ये था कि भाई तुम जो है ना जो तुमने किया है बिल्कुल सही कर रहे हो और इस पे लगे रहो, ठीक है, और आगे ये टेंशन बहुत ज्यादा मत लो। जैसे पिछले वाले भाई ने बात की ना चिल करना चाहिए, आगे का जितना सोचेंगे ना। अच्छा मैंने थोड़ा देर से समझा कि यू शुड लिव इन प्रेजेंट और आगे की फिक्र बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और हाँ जो आपका प्रेजेंट पास्ट गुजरे है उससे आप सीखे जरूर, बट उसमें उसमें रहना नहीं है,
1: रहना
0: नहीं है कि अच्छा मैं तो
1: एग्जैक्टली
0: ऐसा मेरे साथ हो गया तो ऐसा ही होगा, ऐसा ऐसी बात नहीं है। यू शुड लर्न फ्रॉम दैट एंड डोंट रिपीट दैट, और बट स्टे इन प्रेजेंट के ज्यादा से ज्यादा जो अभी करंट आपके लाइफ का जो टाइम चल रहा है उसको एंजॉय भी करें और उसमें इन्वेस्ट भी करें और पूरी तरह से जिए।
1: सही बात है, ये एक बात समझ में आती है हर बंदे को तकरीबन ना, कि हम लोग ना मतलब एक जब हम टीन एज में होते हैं खासतौर पे, तो उस वक्त या तो हमें मतलब फ्यूचर की लगी हुई होती क्या होगा, मैं क्या बनूंगा क्या बनूंगी क्या ये वो सब कुछ ना, फिर उसके साथ दूसरी चीज़ मतलब जो ना ये होती है कि पास्ट में जो कुछ हो रहा होता है तो वो भी मतलब ना एक तरह से चल रहा होता है साथ साथ, स्कूल छोड़ने का गम है, कभी किसी चीज़ का गम है, तो वो सारी जो चीज़ें ना ये चलती हैं साथ साथ, गिल्ट्स रहते हैं बहुत सारे, कोई दोस्त छोड़ के चला गया।
0: मैं 30s में था तो इसी तरह की फिक्रें मेरे जैसे भी थी।
1: एक मिनट माजिद आप हमारे साथ ही रहिएगा, बस हम एक जिंगल ब्रेक के बाद आते हैं आप, ठीक है, आप होल्ड पे रहिएगा।

0: राइट राइट वेलकम बैक. और हमारे साथ माजिद हैं लाइन पे. जी माजिद
1: जी, बस आखिरी बात ये कहना चाह रहा था कि जैसे 30s में काफी चीजें समझ आ जाती हैं लाइफ के अंदर, और आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर चुकी होती है, वो शादी वगैरह का मामला हो चुका होता है या होने वाला होता है, तो उसमें जो एडवाइस मुझे मेरे पेरेंट्स ने दी, तो मैं समझता हूँ कि वो बेस्ट एडवाइस थी दो तीन जगहों पर. जब इस तरह की परेशानी होती है, अच्छा कि यार मैं क्या करूंगा, या अभी इतनी सैलरी है और मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ या मैं चेंज करना चाहता हूँ जॉब को, तो अगेन हमारे पेरेंट्स इतने जो टाइम चेंज हो रहा था, तो हमारी इंडस्ट्री भी डिफरेंट है, हमारी जॉब भी डिफरेंट है, उनकी लाइफ बड़ी डिफरेंट गुजरी है, तो वो उस तरह से एडवाइस नहीं कर सकते आपकी एजुकेशन या प्रोफेशनल स्किल्स

0: के हवाले से, लेकिन जो एडवाइस उन्होंने दी ये है कि आपको यू ऑलवेज हैव टू लुक टुवर्ड्स योर द पीपल हु आर बिलो यू, आपके नीचे वाले लोगों को देखकर उनको तरफ देख के फिर आप आगे चले, ना कि आप आगे वालों को देखकर और वो एहसास से कमजोरी में रहें, बल्कि हमेशा नीचे वालों को देखें कि यार आपकी फैमिली में आपकी रूट्स क्या हैं और दूसरे लोग जो हैं आपसे नीचे वो भी तो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं ना. तो यू कैन डू बेटर इफ यू लुक टुवर्ड्स देम एंड लर्न फ्रॉम देम, इंस्टेड कि आप आगे वालों को देख देख के जो है ना परेशान होते रहे.
1: बिल्कुल,
0: एडवाइस ने बहुत फायदा दिया मुझे और ये हमेशा काम आती है एडवाइस मेरी लाइफ में.
1: बिल्कुल ऐसे ही.
0: और एक और चीज पूछना चाह रहा था, आपने नाम बताया
1: महावश,
0: मैन महावश
1: जी, जी, जी.
0: तो ये महवेश मेरी भी एक कजन है, उनका नाम महवेश है. तो क्या
1: बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, नाम तो मेरे भी अम्मा अब्बा ने मेरा महवेश ही रखा था. ठीक है, लेकिन फिर हुआ क्या कि मैंने रेडियो ज्वाइन किया, मतलब कराची में, तो वहाँ पे हमारे बॉस होते थे, तो उन्होंने मुझे पहले दिन ही कहा कि ये वही लड़की है जिसका, वो बड़े मतलब एक रोबदार सी पर्सनैलिटी थी उनकी ना, तो ये वही लड़की है जिसके नाम के ऊपर बड़ी कन्फ्यूजन चल रही थी. तो मैं हैरान परेशान में देखने लगी उनको कि मेरे नाम पे क्या कन्फ्यूजन है, सीधा सा तो नाम है. तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है तुम्हारा, मैंने कहा महवेश. तो कहने लगे महवेश क्या होता है, महवेश कुछ नहीं होता, महावश होता है, महवेश कोई नाम नहीं है. तो फिर मुझे उस वक्त उन्होंने फिर बताया, कहने लगे महवेश जो है ना, मैं जो होता है वो आपको पता है कि शराब को कहते हैं, और विश जो है ना वो कहते हैं जहर को. तो जब आप महवेश बोलते हैं तो बेसिकली आप ये जो है ना एक तरह जहरीला जहरीला क्या कहेंगे आप, इस तरह का नशा कुछ इस तरह का कुछ हो जाएगा, मतलब वो ये मतलब हो जाएगा. लेकिन महावश जो है ना वो असल पर्शियन नेम है, और उसका मतलब है महा का मतलब चांद और वश का मतलब होता है चेहरा, तो चांद चेहरा बनता है फिर ये. तो थोड़ा सा मतलब जेर लगाने से जबर हटा के ना आपका नाम का मतलब कुछ का कुछ बन जाता है.
0: वही पूछना चाह रहा था कि हमारी जो कजन है उनको तो हम महवेश बोलते हैं शुरू से,
1: अब आप उनको महावश बोला करें.
0: लेकिन जो स्पेलिंग है वो आपने चेंज नहीं किया, M E H ही रहने
1: नहीं, मैंने लिखने में अपने आप, क्योंकि NIC में तो वही था, विश था, महावश था, तो मैंने, लेकिन अब उसको मैं लिखने भी लगी हूँ, मेरी आदत ही पड़ गई है, क्योंकि उन्होंने इतना डांटा था कि उसके बाद फिर मैंने अपने आप को महावश ही कहा हमेशा. लोग अभी भी मुझे महावश कहते हैं, लेकिन ये कि असली जो नाम है वो वश है, महावश.
0: मैं समझ गया, मैं ये पूछना चाह रहा था, मुझे क्लैरिटी नहीं थी. थैंक यू सो मच फॉर द एक्सप्लेनेशन.
1: जी जी, बहुत शुक्रिया माजिद, अच्छा लगा बात करके आपसे. आप पाकिस्तान से?
0: जी जी जी, बिल्कुल पाकिस्तान से. आप कौन से रेडियो स्टेशन में होती थी कराची में?
1: कराची 101.
0: 101 में बिल्कुल सुना है, काफी सुना है.
1: आसिम बशीर होते थे और ये लोग तो बहुत अरसे रहे ना, तो शायद आपने उनको ज्यादा सुना हो. आसिम बशीर थे, और मतलब
0: उस वक्त तो मैं सुनता था, जो अपना कम टाइम मिलता था गाड़ी मेरे पास, बिल्कुल जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी तब मेरे पास वहाँ पर आई, लेकिन मैंने कराची में कम जॉब की, मैं इस्लामाबाद मूव हो गया था. तो
1: इस्लामाबाद का भी 101 बहुत मशहूर है, इस्लामाबाद का भी. उधर नादिया खान जो हमारी एक्ट्रेस है, उन्होंने वहाँ से शुरू किया था, और काफ़ी सारे लोग हैं, तौसीक हैदर भी करते थे आई थिंक 101 से. तो बेसिकली 101 मेरा क्या रहा कि दोनों जगह पे मैं गवर्नमेंट के रेडियो से वापस आ रही हूँ.
0: गवर्नमेंट का था ना, तो उसके मुझे 101 के सिग्नल ही इतने अच्छे नहीं आते थे. तो मैं 107 में आरजे, ये जो है ना क्या नाम है इनका, अदील, आप जानती होंगी अदील,
1: पूरा नाम बताएं,
0: क्या नाम है उनका पूरा नाम, पूरा नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, अदील अजहर, सॉरी
1: अदील अजहर. हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानती
0: हूँ. ये 107 पर शो करते हैं, और इनका ये कम्बिनेशन होता है, एक तो एंटरटेनमेंट तो मिलती है, साथ में इंफोटेनमेंट, स्पोर्ट्स, फाइनेंशियल एडवाइसेस, तो वो सारा एक ना समझ लें कि आपको 360 डिग्री न्यूज भी मिल जाती है, तो वो बड़ा अच्छा रहता है सुनने में. और उनका यूट्यूब पे भी आता है कभी कभी, मैं वो भी सुन लेता हूँ, लाइव करते हैं,
1: टीवी भी करते हैं ना वो, तो माजिद के पाकिस्तान की अगर आप रेडियो इंडस्ट्री देखे ना, तो उसका लेवल जरा कुछ मतलब बहुत डिफरेंट है, मतलब क्योंकि मैंने भी पाकिस्तान से शुरू किया है, हमारी है मतलब बहुत ही कुछ एक अलग जो है ना, अलग अलग तरह के लोग भी आपको मिलते हैं, तो अदील अजहर भी बहुत अच्छे हैं, सुना हुआ है मैंने उनको. थैंक यू माजिद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंशाल्लाह फिर बात होती है. थैंक यू जी,
0: मुझे भी खुशी हुई.
1: अल्लाह हाफिज़. रोहित जी तो हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे कॉलर थे, काफ़ी अच्छी उन्होंने बात की, अपनी यंगर सेल्फ को भी उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी शेयर की. तो इसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात

0: नहीं मतलब जैसे आप वही हैं उसी दौर में हैं, कोई मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, वही दौर चल रहा है, आप परेशान भी हैं घर को लेके, घर के मामलात को लेके, ठीक है। तो इस वक्त में जब आप यहाँ तक पहुँच गए और आपने देख लिया ज़िंदगी के कितने मामलात आसान हो गए, तो अब आप उसको क्या मशवरा देंगे?
1: अभी यही मशवरा देंगे कि अपने ना सबसे ज्यादा ना क्वालिफिकेशन पढ़ाई
0: पढ़ाई पे तवज्जो दो,
1: पढ़ाई पे ज्यादा तवज्जो, और घर का ना फुल सपोर्ट और मोटिवेशन मिलना ही चाहिए, क्योंकि भले किसी कैसी भी हालत हो, गुर्बत हो, जो भी हो, लेकिन है ना घर से बेहतरीन एक है ना मोटिवेशन होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक जिंदगी में मिसाल है ना, मेरा सगा भांजा ही है, मेरी जो छोटी बहन है ना, मेरी जो जीजी है ना, उनकी पान पट्टी की दुकान है हैदराबाद में। हाँ, लेकिन वो पढ़ाई उसने ऐसे किया, दोस्तों से दोस्तों पहले गए यूएस में, अभी वो यूएस में है, उसको तकरीबन 3 साल हो गए जाके।
0: अच्छा अच्छा, तो सही।
1: मार्केटिंग भी कर लिया उसने और अभी जॉब पे भी माशाल्लाह। हाँ
0: माशाल्लाह,
1: कहीं वो कैलिफोर्निया गया हुआ था, वहाँ पर कुछ ईद की छुट्टियां थी ना, उसमें कहीं निकले थे लोग, तो वो सब सारे फोकस में चेयर किया। यानी बड़ी खुशी होती है ना कि देखो इतने सारे बच्चों को मतलब इस कदर पढ़ाई पे तवज्जो देखे ना, एक
0: हमारे
1: टाइम पर ये था ना, या इलम या हुनर, अगर पढ़ाई नहीं होती तो चलो हुनर सीख लो, चलो भाई घर के मतलब अपने जिम्मेदारियां पे आप आ जाओ। तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अपना जितना भी है ना मेहनत है ना पढ़ाई पे लगाए, एक क्वालिफिकेशन एक अच्छा एक अपना एक ब्रांड है ना इशू करे अपने आप में, नहीं या स्पोर्ट एक्टिविटी अगर आप में अगर ऐसा टैलेंट है वो जाके आप दुनिया देख रही है, आप कितने एग्जांपल है जो चल रहे हैं इस तरह के, जो अभी अपने हमारे यंग स्टार जो 15 इयर्स है ना सूर्यवंशी इनका डेब्यू हो गया है, ठीक है, अभी ये इंग्लैंड के दौरे में इनका डेब्यू है। तो उनके फादर का भी जो हिस्ट्री जो पढ़ो ना, वो 4 साल की उम्र से उसको लेके जाते थे,
0: सही सही सही
1: करने,
0: गुड
1: टारगेट लेके चले और अचीव किया,
0: सही
1: तो
0: सही।
1: तो अभी उस तरह से ना अपने आप को मेडिटेशन करके और वो टारगेट लेना है और वो टारगेट अचीव करना है बेहतरीन,
0: गुड जबरदस्त सलीम, बिल्कुल मैं समझ गई। और अगले कॉलर है हमारे साथ, लेकिन ये कि आपने कहा ना एक ब्रांड बनना चाहिए, शहजादा सलीम ऑलरेडी एक ब्रांड है, ठीक है, इसको ब्रांड बनने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू शहजादा सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, इंशाल्लाह बात होती है आपसे, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। राइट, ये कॉलर है होल्ड पे, जब मैं होल्ड करवा देती हूँ तो टेंशन में आ जाती हूँ कि इतनी देर वेट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: जी जमाल बात कर रहे हैं, कैसे हैं जमाल?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है,
0: जबरदस्त जबरदस्त
2: हंसी आई है। और ये अच्छी बात है कि अगर कोई आसान है तो बस बड़ी मतलब क्या कहते हैं पॉजिटिव एक मुस्बत पहलू है।
0: हाँ, आप क्या कहेंगे जमाल अपने यंगर वर्जन को, जब आप छोटे हुआ करते थे तो उस वक्त के जमाल को आप क्या कहेंगे?
2: मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मुझे जो समझ में आता है आप इतनी जिंदगी गुजारने के बाद उस वक्त के अपने खुद से अपने आप को मशवरा देना हो या अपने तरह के और तमाम अफजलियों को मशवरा देना हो, तो मैं ये कहूंगा कि उस वक्त आप अपनी नजर एक मकाम की तरह से सिर्फ और सिर्फ उन शख्सियतों पर, बड़ी बड़ी शख्सियतों पर या उन लोगों पर ज्यादा जमाए रखें जो आपको दिख रहे हैं कि बहुत हद तक ये कामयाब है और हर लिहाज से कामयाब है। तो वहां से जो चीज आपको मिलेगी वो आपको आपके अपने अपने स्किल को बिल्ड करने में है ना अंथक बनाएगी और एक वे मिल जाएगा आपको, एक रास्ता मिल जाएगा, एक तरीके कार मिल जाएगा। तब आप चारों तरफ से अपनी नजर हटा के देखिए, वो एज बड़ी खतरनाक होती है, इंसान है ना वो जवानी की दहलीज की तरफ कदम बड़ी तेज रफ्तारी से बढ़ा रहा होता है और तब सही में सोच और समझ इतनी पुख्ता नहीं होती है कि आप बहुत सारी चीजें सोच पाओ। लेकिन यह है कि अगर इस तरफ फाइल किया जाए कि वो अपने से बहुत ज्यादा कामयाब तर लोगों पर अपनी निगाह जमाए रखें तो शायद कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन मिल जाएगा और कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर ये बात समा सकती है कि नहीं यार, अगर हमको अपने मुस्तकबिल को मुकम्मल रोशन करना है, अगर अपने फ्यूचर को ताबनाक बनाना है, तो उसके लिए हमें जद्दोजहद अभी से करनी पड़ेगी। जिसने कहा था कि सदाए पीछे मजदूर है तेरा नगमा, तू संगो खिश्त से चंगो रिबाब पैदा कर,
0: जबरदस्त जबरदस्त,
2: चल रिबाब शबाब पैदा कर।
0: बहुत आला जमाल,
2: ये बात समझ

0: रही है कि उस वक्त अगर निगाह वहाँ पर होती है ना, तो शायद हम मतलब किसी और तरफ मुड़े होते,
1: सही हो,
0: शायद कुछ और किया होता।
1: हाँ ये बिल्कुल, चले जी जमाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी, थैंक

सलीम माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉलर हैं हमारे. जी जी जी बहुत अच्छे कॉलर हैं. बिल्कुल जी ऐसे है बिल्कुल. चले जी जमाल बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपको एक अच्छा सा गाना सुनवाती हूँ ठीक है. चले जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया. चले जी इसी के साथ लिसनर्स हम जो है गाने की तरफ मूव करते हैं. गाना सुनते हैं वापस आते हैं. आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं उनकी तरफ आऊँगी. आपसे एक अपडेट भी शेयर करूँगी और आपकी कॉल्स भी लूँगी. आज सवाल मैंने आपसे किया है कि अगर आपका सामना हो जाता है अपने ही यंगर वर्जन से तो उसको क्या एडवाइस करेंगे.

0: RJ Mehvish Khan ke saath sirf FM 107 par Dil Se Desi.
1: Right, welcome back. आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं एक दफा फिर आप लोगों के साथ आ गई हूँ और जिसके साथ ही मेरे पास मैसेज है. हाँ, ये वाला तो मैंने इमरान सरदार वाला तो पढ़ लिया था. उसके बाद जो है एक भाई ने कहा था, अस्सलाम वालेकुम मावश सिस्टर, कुड प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज तहरीर, जज़ाकअल्लाह. अच्छा, आज की जो तहरीर थी वो मैं आपको लिख के भेज देती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मुझे नहीं मिल सकेगी. रिकॉर्डिंग एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर मैं आपको भेजूँगी कैसे, मसला ये आ जाएगा. तो इसलिए वो तो नहीं, लेकिन ये कि मैंने आपको जो तहरीर थी ना जो शेयर की थी वो मैंने आपको भेज दी है, ठीक है. और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, गुड गुड मॉर्निंग माही मैम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह. नाइस तहरीर, आमीन सुमा आमीन. आवाज़ आ रही है अफरोज़ खान चकवा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट अफरोज़ खान चकवा. इसके साथ ही गुलाम रसूल आजिज़, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कहाँ थे भाई आप, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है. अच्छा, आजिज़ का मैसेज तो मैं रोज़ पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुलाम रसूल आजिज़ हैं. और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं हमें, आई एम एन अर्ली बर्ड और बियासवा, मैं अभी भी गलत बोल रही हूँ. आई विल से टू 18 ईयर्स ओल्ड माई सेल्फ, शाबाश फैजान, कीप इट अप, बस टाइम वेस्ट ना करना, ग्रेट हो गया. चलिए जी, कौन है हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, खैरियत है?
1: खैरियत है, बिल्कुल खैरियत है. नूर भाई आप बताएं, आपके यहाँ खैरियत है? नूर ही नूर है,
2: अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोगों की दुआ है
1: जबरदस्त.
2: मैं आज इतनी खुश हूँ.
1: हाय अल्लाह, क्यों?
2: जो चीज फील कर रहा था वो चीज मुझे को मतलब साबित हुआ कि हकीकत. उसी चीज से आपने शुरुआत की प्रोग्राम का, जैसे कोई मेरा दोस्त है तो वो तकरीबन मैं भी साथ में आता हूँ 2 साल से, वो कभी बीमार नहीं हुआ. वो अपने आप बहुत मतलब खुशी अदा करता है कि मैं इतना खुश हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, ये नहीं हूँ. तो बोला भाई बीमारी एक अल्लाह का नजदीक ही लाता है, ठीक है,
1: सब्र
2: मत कर.
1: बिल्कुल.
2: और मैं सोच रहा था शायद हो सकता है, फिर मैंने सोचा अगर गुनाह होता ये चीज, अगर बीमारी की अगर बुरी चीज होते तो आपने पूरी चीज फरमा दी है, जैसे सहाबा हो इतने बीमार थे, इतने तकलीफ से थे, तो सहाबा के ऊपर बिल्कुल ही नहीं आती अगर ये खराब चीज होती.
1: बिल्कुल ऐसे.
2: बस मैं अपने आप को महसूस किया कि शायद मैंने जो हदीस पढ़ा या किसी मौलाना से सुना वो हकीकत है, शायद मैं उससे मैं आज मैं फाकर कर रहा हूँ कि वो गलत है और मैं सही हूँ. और आपकी प्रोग्राम यकीन माने कि मैं शुरू में सुनने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, जैसे आप दीन की तालीम से शुरुआत करते हैं. मैं तो अलार्म लगा के रखा हूँ 5:56 का,
1: अच्छा
2: मुझसे नीचे हो. पहले बात की प्रोग्राम मिस हो जाए कोई मुश्किल नहीं है, और मुझे ये चीज सीखने को बहुत कुछ मिला है.
1: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आपको अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया. और पता क्या, वाकई अंदाजा. जी जी जी जी,
2: वेद भाई का प्रोग्राम था, तीनों का प्रोग्राम मतलब कि अलग अलग टाइप का.
1: हाँ,
2: वो कॉमेडी टाइप का करता था. नाजिया जी जो आप जो टॉपिक छेड़ते हैं ना, वो टॉपिक थोड़ा बहुत मतलब मुख्तलिफ टाइप से छोड़ के वो अपने आप को समझाती, लास्ट में वो सब समझाते थे, लेकिन इसका रीजन ये निकलता है. और आपका प्रोग्राम है जो शुरुआत होते हैं दिन की तरह से, असल से मैं यकीन ऐसे दिलाऊं बहुत मतलब बेहतरीन लगता है.
1: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह. और चीज़ वो ये कि बस बात हमें समझ में आनी चाहिए. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम नहीं समझ रहे होते, किसी और तरह से ले रहे होते हैं, लेकिन वो यही है कि हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि भाई इस तरह का मामला है, ताकि हम खुद भी दिल ना दुखाएं, कोई हमारा दिल भी ना दुखाए.
2: बोलने का इतना होता है ना, अंदाज अच्छा हो या तजुर्बा है नहीं, लेकिन एक वे सुना हो किसी मौलाना से, एक मियां बीवी थे, उसके शोहर ऐसे ही बीमार नहीं पड़े, तो काफी दिन देखा, वो सोचा मतलब होता है ना कि इसे इलादा हो जाऊँ, उसने बोला कि मेरे को तुमसे अलग होना, बोला कि अगर तुम बीमार नहीं होते हो ये हो अल्लाह ताला तुमसे मतलब कि राजी नहीं है शायद. तो रास्ते में जा रहा था मतलब काजी के पास अलग होने के, उसने उसके रास्ते में मौलाना ने कह रहा था बयान फरमा रहा था, उसने उससे ठोकर लगा और नाखून उतर गया, फिर उसका जो अपने दुपट्टा से उसको बंद किया, वहीं से वो मतलब कदम पीछे खींचना कि नहीं अब मुझे तुम्हारे ही साथ रहना. तो बंदा भी मतलब वो हो गया. कहने का मतलब मेरा तजुर्बा ये है अंदाजा साहब को पता चला होगा कि मुझे बोलने में थोड़ा वो हो रहा है.
1: नहीं नहीं मैं समझ
2: समझ गया होगा.
1: हाँ हाँ बिल्कुल समझ रही. ये किस्सा बेसिकली ना थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको बताती हूँ. हुआ ये था कि किसी साहब ने किसी खातून को जो है ना प्रपोज किया था शादी के लिए. तो उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनके ऊपर तो कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है, मतलब कोई किसी किस्म का मसला नहीं. पूछा उनसे कि कैसा आपका रोज़गार है और सेहत का क्या है. तो उन्होंने हर चीज़ में अच्छा अच्छा बोला, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है. तो उन्होंने अपने तौर पर फैसला किया कि नहीं, जिस बंदे के ऊपर बिल्कुल भी आजमाइश नहीं थी, मुझे उससे तो शादी नहीं करनी है. ये शादी से पहले की बेसिकली बात थी. लेकिन फिर वो चलते हुए गए और वहां पर ठोकर लगी और उन्होंने उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा. तो इन्होंने ये खड़ी हुई ऑब्जर्व करी थी, इन्होंने कहा कि अच्छा, मतलब तकलीफें आती तो हैं लेकिन ये बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मतलब आदी है. तो ये मतलब ना तकलीफ आती है, जिसके ऊपर तकलीफ नहीं आती अल्लाह ताला बेसिकली उससे नाराज होता है कि उसको तकलीफ देता ही नहीं है कि ना तकलीफ आएगी ना ये मेरी तरफ मुतवज्जो होगा. लेकिन जिस पर तकलीफ आती है अल्लाह ताला उसको अपने आप से करीब करना चाहता है. तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ.
2: सलमान है उसका नाम. उसका बयान मैं काफी सुनता हूँ, ऐसे पूरा तो सुनता हूँ. डॉक्टर जाकिर नाइक हो गया, आपका पाकिस्तान का तारिक जमील साहब हो गया, मतलब पूरा का बयान सुनता हूँ. पर सबका बयान थोड़ा अलग टाइप का होता है. पर जो मुझे अच्छा लगता है उसे मैं ज्यादा अमल करता हूँ. ये चीज मुझे आपने आज जो बयान किए
1: ना,
2: असल से मैं बहुत ही खुश हूँ इसके बारे में.
1: चलें बहुत शुक्रिया भाई.
2: आपका प्रोग्राम 19 तारीख का है, फिर
1: 19
2: के बाद प्रोग्राम की हिसाब से स्टार्ट होगा, अल्लाह जानता है. तो मैं टॉपिक पे आता हूँ.
1: जी जी
2: शॉर्टकट में
1: अच्छा,
2: इतना लंबी बात हो गई मेरा. तो मैं कहना वाला था, जो मैं मेरे अब्बू ने हो या मेरे अम्मी ने जो मुझे पढ़ाने की कोशिश किया और मैं उसका ऊपर खड़ा नहीं उतरा बराबर, तो वही पैगाम मैं अपने बच्चों को दिया और मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह उस पर खड़ा उतरा. मतलब पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट है कि आज मैं महसूस करता हूँ कि काश मैं भी पढ़ा होता तो मेरे माँ बाप खुश होते. जैसे मैं अपने बच्चे से कभी कभी नाराज होता हूँ, तुम बच्चे में बात नहीं मानते हो, इसी तरह से शायद मेरा भी माँ बाप मुझसे नाराज हुआ होगा. तो यही कहूँगा, बस बच्चे को तालीम देना बहुत इम्पोर्टेंट है. और मेरे कुरान में भी लिखा हुआ है, पहला अब यही आया है कि इस तरह बिस्म रब्बिल करीम, मतलब इंसान को पढ़ना बहुत जरूरी है. तो मेरे हिसाब से बस ये टॉपिक इंसान को देना चाहिए.
1: गुड, जबरदस्त नूर मोहम्मद मंसूर.
2: जी जी, और मेरा एक पाँच साल से इतने दिन से तो मैं फरमाइश नहीं किया था, हो पाएगा कि नहीं.
1: तो
2: मेरे पैसे नेपाल से हूँ.
1: जी जी,
2: तो मेरा काम है कि बस कोई नेपाली समय तो बच जाए तो
1: नेपाली गाना सुनना चाहते हैं.
2: जी
1: अच्छा अच्छा, चले मैं कोई नेपाली गाना निकालती हूँ आपके लिए लगा देती हूँ. ठीक है, चले रही. बहुत शुक्रिया नूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना. थैंक यू जी. रही जी, तो हमारे साथ नूर मोहम्मद मंसूर साहब थे और इसके साथ ही हम जो है गाना वाना तो लगाना है, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे अभी तक कोई अपडेट शामिल नहीं की है, तो वो मुझे जो है ना शामिल करनी है. और मैं साथ में एक निकाल के नेपाली सॉन्ग भी रख देती हूँ. चलें ये वाला ये लगा देते हैं. ठीक है, थोड़ी देर के बाद चलेगा. और उससे पहले हम जो है ना आपको बताते चलें कि म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट अपनी कलेक्शंस को सिर्फ डिस्प्ले करने तक महदूद नहीं रखना चाहता, बल्कि कतर में जो रहने वाले मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लिए उन्हें मीनिंगफुल और रेलिवेंट भी बनाना चाहता है. तो MIA की क्यूरेटर हैं जिन ईरानियन लैंड्स, इनका जो नाम है फैज़ी. उन्होंने बताया कि म्यूज़ियम के क़याम को तकरीबन हो चुके हैं 20 साल, और 2022 में ये रीओपनिंग के बाद म्यूज़ियम ने अपनी एग्जीबिशन को नए अंदाज में पेश करना शुरू किया था. तो उन्होंने कहा कि MIA सिर्फ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स प्रिजर्व नहीं करता, बल्कि उन्हें लोगों की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश भी करता है. और इसलिए म्यूजियम ने

0: भिजवा रही हैं वो शादीशुदा नहीं है, तो ये सोचने में आपको मतलब लगता है कि ये आजकल के माशरे में मुमकिन है? नहीं है। तो पहले की जो खवातीन होती थी ना वो बहुत इंडिपेंडेंट थी। हम जो ये बात कर रहे होते हैं फ्रीडम की और मतलब दुनिया भर में बातें हो रही होती हैं फेमिनिज्म और ये वो, अगर आपने असल जो हुकूक और ये सब कुछ देखना है ना तो आप इस्लाम का इब्तदाई दौर देखें, आपको पता चलेगा इंडिपेंडेंट वुमेन होती क्या थी और किस तरीके से वो अपने फैसले करती थी। कोई किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं होती थी। हाँ ये है कि वली का होना ज़रूरी है लेकिन अपने फैसले अपनी शादी के वो खुद अपनी मर्ज़ी से करती थी। तो अभी हमें बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही होती लेकिन वो डेफिनेटली वो किसी के साथ ही होंगी लेकिन फैसला उनका अपना था, वो फैसला वो खुद सुना रही थी।
1: मैं इस बात से एग्री करता हूँ क्योंकि आप जिस इलाके की बात करें अरब और हम लोग जिसमें सब कॉन्टिनेंट में जिसमें वही खातून जिसका खामन फोत होता था और वो साथ में उसको सकी कर देते थे, हमने कई चीज़ें यहाँ से अडॉप्ट कर ली
0: exactly.
1: तो वो चीज़ें और इस तरह मिक्सअप हो गई। और बाकी नसीहतें और जैसे आपका वो शुरू में चल रहा था कि हम अपने आप को नसीहतें, चलें हम तो जो उस फेज़ में चले गए, जो बंदा खुद ऑब्जर्वेशन करता है ना देखता है, नसीहतें आप कई दफ़ा खुद लेते करते हैं लेकिन जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है और अपने आप के लिए, अच्छा फेलियर होना कोई मसला नहीं है, मिसाल के तौर पर मैंने इतने काम किए मैं कामयाब नहीं हुआ उसमें, लेकिन मैं मुख्तलिफ लोगों से मिला, मुझे मुख्तलिफ रस्ते मिले, मैं मुख्तलिफ समझ लो भूल भलाइयों से निकलता निकलता कहाँ से कहाँ पहुँचा, और उसमें उन चीज़ों का आपकी ये जो जस्तजू या कोशिश है ना इसका बड़ा अमल दखल होता है। यानी मेरी जॉब के लिए यकीन करें हमारे रिश्तेदार इतनी अच्छी जॉब्स पर इतने अच्छे ओहदों पर इन चीज़ों पर थे, किसी ने ज़ीरो हेल्प की और इसने भी बड़ा अच्छा किया। एक तो मैं उनका एहसान मंद रही, लेकिन एहसान तो रिश्तेदारों पे करना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे नहीं करना चाहिए या लोगों को नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अल्लाह ने रिश्ते इसीलिए बनाए हैं, आप किसी के बाजू बने उसकी हेल्प करें। उसकी वजह से एक तो अल्लाह से कनेक्शन रहा। मैं अपने बच्चों को कह रहा था, हमारा स्कूल 8वीं तक था, उसके बाद हमने 9-10 में एडमिशन लेना था, तो 8वीं से ना अरे जुम्मे को मैंने दो नफल पढ़ने के, या अल्लाह मेरे एक तो ग्रेड अच्छे हैं दूसरे मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला मिले। वो आज तक जारी है क्योंकि उसमें ऐड होती गई चीज़ें, कहीं आपकी रोज़गार के लिए, फिर मुझे जॉब नहीं मिल रही थी उसके लिए, फिर उसके लिए, तो अल्लाह से कनेक्शन मजीद ना कनेक्शन बनता गया। तो भाई आपने जुम्मे को जितनी थी आपने दुआ करने के लिए थी, 2-4-5 रुपए जितनी औकात थी आपने खैरात करनी, उसके बाद अल्लाह से दुआ कर दी। इट्स मैटर आपको कनेक्शन रहता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है आप जो अल्लाह ताला से करते हैं तो वाकई अल्लाह ताला ने ना सिर्फ पाकिस्तान में, मैं एमिरेट्स में रहा, ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे मुझे सीढ़ी तक या ऊपर तक पहुँचाया, नोबडी नो। तो बाकी अल्लाह से रब्ता वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। कुरान पढ़ें या समझें, आजकल ये जो अफरा तफरी मोबाइल इंटरनेट वाकई वो कहते हैं ना कि यूके में इसको एक लत का नाम दे दिया है, कह रहे हैं कि आप कोई और चीज़ एडिक्शन करते हैं उसकी 10-15% और ये तकरीबन 30% उसकी वजह है सोते में तो इसको रूम में रखें ही ना, साइड पे रखें ही ना, दिमाग को रिलैक्स रखें, अल्लाह की तरफ नमाज पढ़ रहे होते हैं दिमाग में मैसेजेस फलानी फलानी चीज़ें, अब हम लोग मोबाइल जो है लाउंज में रख के सोते हैं रूम में, हर शुरू से रखा ही नहीं है, ताकि
0: सुबह
1: खुद ही उठते हैं, क्यों नहीं उठते
0: मतलब बगैर अलार्म के उठ जाते हैं।
1: हाँ अलार्म की आपकी रूटीन है अभी फजर की,
0: क्या
1: रूटीन आपने
0: मतलब खुद ही आँख खुल जाती है,
1: खुद ही आँख खुल गई, नमाज पढ़ी थोड़ा सा सो गए।
0: हाँ
1: मिसेज मेरी ने अलार्म रखा हुआ है, उसका एक वो पहला वाला मोबाइल था जो जब वो भी इसलिए कि जब ये स्कूल के लिए उठना नमाज के लिए उठना शॉर्ट वक्फे से, और उसको थोड़ा नींद का भी इशू था, डॉक्टर ने कहा करें तो वो फिर अगर सो जाए करे तो उसको बड़ा मसला था, तो उसने वो रखा हुआ था आज से 15-20 साल पहले, वो टूट फूट के जब बैटरी फट गई तो उसने कोई दूसरी चीज़।
0: तो आप लोग रोज उठ जाते हैं, आपको उम्मीद होती है आप उठ जाएंगे पक्का पक्का, ये नहीं होता मतलब कि अगर ना उठे तो
1: उसमें देखे ना, अभी मैं मेरी वाइफ दो बच्चे जो उठेगा वो है, लेकिन सबसे पहले मैं ही उठ जाता हूँ, और अक्सर का थे ना
0: हम तो अगर इस तरह से मतलब अगर हमारे घर का हम बगैर अलार्म के सोए तो सब सोते ही रहेंगे सारी के सारे सोएंगे मिलकर
1: ये मेरी आदत थी मैंने बकायदा क्लॉक रखी हुई थी, और सबसे मेरी बुरी आदत ये थी, ये तकरीबन 15-20 साल पहले तक मैंने अलार्म की पहले एक क्लॉक रखता था और मैं नींद में अलार्म बंद करके सो जाता था, फिर कहता था ये मैं उठा क्यों नहीं, उसका फिर मैंने हल ये निकाला, अलार्म की जो है ना काफी दूर में रखता है।

0: तो स्नूजिंग पे लगा के काफी दूर, फिर जब मैं उठ के जाके उसको बंद करूंगा ना, और मैं एसी जो था ये स्प्लिट
1: यूनिट नहीं, मतलब रखते थे ना, लेकिन अब तो आप रखते ही नहीं है, मतलब आप खुद अब अलार्म क्लॉक बन चुके हैं आप।
0: अब ना अब मैं खुद उठ जाता हूं।
1: ये जबरदस्त है।
0: और ये जो आपका है ना स्प्लिट यूनिट, इसमें बल्कि हब में टाइमर लगा दिए थे, इतने घंटे के बाद बंद हो गया, इसका भी नॉइज हो तो अलार्म बेचारा क्या करे।
1: सही
0: नॉइज आपने बंद कर दिया और अलार्म बजना शुरू हो गया और दूर।
1: हाँ,
0: फिर बाकी जहाँ आपने जाना है ना पहुंचे तो खुद बताएंगे आप पहुंचे।
1: वही तो उससे पूछे आजकल कितनी टेंशन है मुझे। जबकि मैं उठती हूँ, जबकि उठती हूँ, वैसे भी उठती थी, पहले भी उठती थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा होता है अगर मैं ना उठी तो, अगर मैं ना उठी, और ये सवाल का मुझे जवाब नहीं मिलता कि फिर होगा क्या।
0: ये भी बड़ी टेंशन रहती है कि ये ना हुआ, नहीं है। लेकिन जब घर जाते होंगे कहते होंगे लोग तो कामों पे आ रहे हैं।
1: मेरे साथ तो पता है आपको क्या हुआ है कि मैं जाके दोबारा सो गई और दोबारा सोकर उठी हूँ और मैंने एकदम से ना टाइम देखा 12 बज रहे हैं। मैंने कहा ये यार मेरा तो शो था, मैंने देखा, मैंने कहा आई भी होंगी मतलब सलावातें सुनाने के लिए कॉल्स, जब कॉल्स नजर नहीं आई ना तो फिर मुझे हुआ नहीं मैं तो शो कर आ गई हूँ। ये वाला भी कंडीशन होती है, मतलब इस तरह के हालात से गुजरना पड़ रहा है। सुबह सुबह का शो मतलब ऐसे वाकई, मतलब सलाम है उन लोगों को जिन्होंने अरसे से ये शो किया, बहुत मुश्किल शो है इस हवाले से ना, मतलब उठते हैं हम लेकिन फिर भी ये टेंशन होती है कि ना उठे तो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है
0: ये। लेकिन उसके बाद अगर आप यूज टू हो जाए तो आपको दिन में इतने काम कर लें तो आपको लगता है कि दिन अभी बाकी है।
1: हाँ, ये तो है
0: आपके पास टाइम बड़ा मिल जाता है।
1: ये तो है।
0: तो ये जरा अपना चेक कीजिएगा कि हमारी जो आवाज़ है खास तौर पे कॉलर की, ये पता नहीं मुझे लग रहा है कुछ इतनी ठीक नहीं है, मैं दोनों की भी सुन रहा था, आपकी आवाज इतनी वाजिए थी।
1: आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है सुल्तान साहब, लेकिन कुछ कॉलर्स के साथ ऐसा होता है कि मैं उनको बोल भी रही होती हूँ कि आपकी आवाज कम है, ये है वो है, लेकिन फिर भी वो मतलब किसी ने ब्लूटूथ का यूज कर रहे होते हैं, कोई किसी के कुछ और मसला होता है, कहीं दूर रख के बात कर रहे होते हैं, आपकी आवाज बिल्कुल सही है, आपकी आवाज में मसला नहीं है।
0: मैं फिर घर में लैंडलाइन से हैंडसेट से यूज कर रहा हूं, ये वजह।
1: हाँ, ये रीजन है आपका, नहीं सही, मोबाइल भी हो तो सही है, करीब किया हुआ। अक्सर लोग ना ब्लूटूथ या फिर स्पीकर पे बात करते हैं, जो मुझे अंदाजा हो जाता है गाड़ी चलाते हुए बात कर रहे हैं ये वो, तो इसलिए आपको मसला लगता होगा। फिर मैं आवाज बढ़ाती हूँ उनकी, लेकिन फिर भी उतनी रहती है क्योंकि उनकी अपनी तरफ से मसला होता है, तो ये है चक्कर। चलिए जी सुल्तान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट आपकी कॉल के लिए, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रोहित जी तो हमारे साथ कॉलर थी और उसके साथ ही अब बहुत टाइम हो गया, हमने गाना एक चलाया अभी तक, तो अब गानों की तरफ जाते हैं, नेपाली गाना भी चलाऊंगी आपके लिए, इन्जॉय कीजिए, सुनते रहें FM 107।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं।

वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: राइट राइट वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM समर मॉर्निंग विद आरजे मावेश खान। राइट, और मैं एक दफ़ा फिर से आ गई हूँ, कुछ मैसेजेस पढ़ देती हूँ, फिर कॉल है हमारे साथ। और ये है अस्सलाम वालेकुम मावेश खान साहिबा, और मुझे लग रहा है हा एक और मुश्किल नाम का। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत खूब चल रहा है, सुनने में मज़ा आया। ठीक है, सुनने में मज़ा आ रहा है, लेकिन ये क्या एक और मुश्किल नाम, क्या क्या नहीं समझ में आई मुझे बात। खैर जी, इसके साथ ही हैं, शुक्रिया कहते हैं, शुक्रिया शुक्रिया जमाल साहब, शहजादा सलीम का कहना है। इसके साथ अफरोज खान चकवा ने भेज दिया मुझे एक फूल, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही बस करो अच्छा कॉलर को बुला हुआ है। ठीक है, अमजद इकबाल साहब, ओके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भाई, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कतर जी, सबको सलाम। आपकी तो बड़ी तशवीश हो रही थी, कहाँ थे आप? लोगों ने आपको पूछा कि अमजद इकबाल कहाँ गायब हो गए, तो चलें अच्छा हुआ आज आपने मैसेज कर लिया। और उसके साथ कॉलर को ले लेते हैं, फिर आती हूँ मैं मैसेज की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं?
4: नदीम।
3: नदीम नज़ाकत, कैसे हैं? ठीक ठाक है नदीम नज़ाकत अब्दुल समद। यस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है,
4: ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सही कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह।
4: अच्छा, और मैं रोजाना फिलहाल तो सुन ही रहा हूँ आपको, लेकिन बस टाइम लिमिट पता है कॉल करने के लिए भी, और जिस टाइम कॉल करता हूँ आपको तो बिजी इतना रहता है आपका, मुझे नहीं पता है। तो परसों तो सरवर भाई को मैंने कम से कम 65 कॉल किए, लेकिन बात नहीं,
3: बात नहीं हुई, फिर भी नहीं हुई,
4: फिर भी नहीं हुई।
3: ये चल रहा है,
4: ये चल रहा है। मुलाकात करने के लिए भी आया, लेकिन मुलाकात भी
3: नहीं मिले।
4: नहीं मिले,
3: कहाँ थे?

0: पूछो आपने?
1: मैंने गार्ड से पूछा तो बोले कि आए नहीं है, शायद आए थे तो मैंने मैसेज छोड़ गया था। तो फिर उनसे उस दिन तो खैर बात हुई थी, मैंने कहा कि आपसे कोई मिलने आया था, हाँ बोले आए वो था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, सही से। तो वो बेसिकली 11 बजे उनका शो हो रहा है, तो हो सकता है कि वो लेट आए।
1: लेट लेट आए। और कबीर भाई किस टाइम आ रहे हैं?
0: कबीर भाई तो आजकल शाम में आ रहे हैं ना, 5 से 7।
1: अच्छा, 5 से 7 आ रहे हैं।
0: 5 से 7 आ रहे हैं।
1: अगर उन लोगों के लिए कोई चीज दी जाए तो उनको कैसे पहुंचेगी, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो 7 से 9:30 तक रहता हूँ, 9:30 तक रहता हूँ।
0: सिक्योरिटी गार्ड जो बैठे हुए होते हैं उनको आप पूछ सकते हैं। हाँ, उनको से पूछ सकते हैं। वैसे खैर मतलब ये मतलब देना दिलाना ना वैसे मना है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे।
1: तो कोई गिफ्ट भी किसी को देना मना दिए?
0: वैसे उसूलन मना है। हाँ, क्योंकि वो आप एक हाँ समझ ही सकते होंगे। हाँ, मैं क्या बोलूं तो ये है, तो वो सिलसिला है। लेकिन ये मिलने के लिए आए ना कभी आप, तो ये जो गार्ड्स वगैरह बैठे हुए हैं तो उनसे आप मालूम कर सकते हैं। तो
1: वो खैर एक के लिए नहीं था, वो 3 लोगों के लिए था।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए मैंने पता किया।
0: नहीं, वो वैसे ऑफिशियली देखा जाए तो वाकई जो मैं कह रही हूँ सही बात है, लेकिन बाकी आपका अपना मामला है, आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सिलसिला है। तो खैर जी, तो नदीम नज़ाकत साहब
1: मेरे 3 फेवरेट थे, एक आप, एक कबीर भाई और सरवर भाई। वैसे तो माशाल्लाह सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर आप लोगों से बात होती है तो जिससे बात
0: बहुत
1: होती
0: बहुत है, शुक्रिया। बस आप समझे, आपने मुझे तो कह ही दिया ना, तो मुझ तक पहुंच गया, खुलूस पहुंच गया आपका, मुझे अब चीज की जरूरत नहीं है, खुलूस पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए नदीम भाई। और बाकी ये कि आप जो है वो इनमें से किसी से भी मिलना चाहें तो आप आके कहेंगे ना तो मिल लेंगे आप इजीली।
1: कबीर भाई से तो खैर मैं पर्सनली, मेरा नंबर है उनका, मैं बात कर लूंगा।
0: चले ठीक है, और सरवर भाई से भी बस थोड़ा सा किसी दिन मौका मिले तो आप इस वक्त आ जाइएगा, तो फिर मुलाकात हो जाएगी आपकी 11 बजे के आसपास। ठीक है। अच्छा, मेरे जहन में ये था कि वो न्यूज के लिए आते हैं, लेकिन हाँ आजकल वो न्यूज में नहीं है, वरना तो वो सुबह में लाजमी मौजूद होते थे, तो आजकल वो न्यूज में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा होगा बंदा। ये सिलसिला हो गया।
1: हाँ, मौसम भी अच्छा है, थोड़ा गर्मी का में हवा भी चल रही है।
0: कल भी अच्छी हवा थी, कल भी हवा अच्छी चल रही थी। हाँ, ऐसे ही। अच्छा नदीम भाई, ये बताएं भाई कि आपकी मुलाकात हो जाती है अपने छोटे वर्जन से, जब आप 15, 16, 17, 20 साल तक के थे, तो उस वक्त के आप नदीम नज़ाकत को क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे?
1: बहुत शगल की बात है वो।
0: अच्छा,
1: क्योंकि क्योंकि मैं अपने से यानी कि 15 नहीं, मैं 12 साल की बात करता हूँ। मैं नदीम से मिलूंगा ना,
0: हाँ,
1: तो ये समझिए कि बहुत जिम्मेदारी में, तो
0: जिम्मेदारी के साथ। शगल, शगल मुझे लगा मजाक की बात है, तो मैं इस बात पे हंस पड़ी। शगल तो मजाक को कहते हैं।
1: शकल, शकल यानी अरबी का लफ्ज है। कोई मुश्किल है तो मैम बहुत जिम्मेदारियाँ रही, क्योंकि हालात इतने नहीं थे। बेहतर आप जान सकती हैं कि मेरे वालिद ड्राइवर थे, तो ड्राइवर्स की कैसी वो होती है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं, पढ़ाई भी नहीं करी, मुझे कोई इसमें वो भी नहीं होता है बोलने में कि नहीं यार मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों में बेटा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की सोहबत मिली मुझे। और माशाल्लाह मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो मैंने परेशानियां या मुसीबतें उठाई हैं, जो भी तकलीफें अपने टाइम में देखी हैं, मैं ये चाहूंगा कि वो मेरे बच्चे उस चीज को ना देखें, उनको हर चीज का आराम मिले। और उनसे यही कहूंगा कि जो मैंने टाइम बर्बाद किया है, वो जो 12 से 14 साल का, 14-15 साल का था वो जो टाइम मैंने बर्बाद किया है, 4-6-7 साल का, वो मैं ये चाहूंगा कि मेरे बच्चे ना करें। क्योंकि अगर मैं किसी के साथ बाहर चला जाता था घूमने फिरने या कहीं पर भी, तो वालिद, जाहिर सी बात है वालिद या वालदा जो है वो यही चाहते कि हमारे बच्चे अच्छे बने, अच्छे उठें, पढ़ाई लिखाई करें। लेकिन मुझे वो उस टाइम पता नहीं क्या था कि मैं समझ में नहीं आता था कि ये सब चीजें बेकार हैं। लेकिन वालिद हमारे कहते थे कि जब तुम अपनी समझ पे आओगे तब पता चलेगा कि ये क्या चीज होती है। तो आज उसका भुगतान मुझे करना पड़ता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैंने वालिद या वालदा की बात मान ली होती तो हो सकता है कि मैं

0: किसी अच्छी जॉब में होता।
1: सही, नहीं बात बिल्कुल सही नदीम भाई, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगी कि वो बात ठीक है कि जिस वक्त में वो बात कह रहे थे ना वो उस वक्त बड़ी वैलिड बात थी, लेकिन अगर उस वक्त हो गई ना, हो जाती है, इंसान ही होता है, गलती होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, आज बैठ के उस पर पछताया ना करें। अल्लाह ताला ने आपके लिए ये वाला जो रास्ता ना, देखिए हर बंदे के लिए, मैं जो बैठ के जिंदगी देख रही होती हूँ ना, अगर हम सभी मतलब समझे सब डॉक्टर बन जाएं, सब इंजीनियर्स बन जाएं, सब, तो मामलाती जिंदगी जो है ना वो चल नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हर किसी का एक मामला रखा है कि कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, इसी तरीके से हम एक पूरी एक दूसरे के साथ ना जुड़ के जिंदगी गुजारेंगे, है ना। तो ये होना था एक तरह से, अब समझे नसीब में जो लिखा हुआ है उसको कबूल करें और अब उस पर बैठ के पछताए नहीं। हाँ, अपने बच्चों के लिए एडवाइस करना बड़ा जरूरी है।
0: नहीं नहीं, पछताता नहीं हूं, अल्लाह का बहुत बहुत लाख।
1: हाँ, बहुत अच्छी बात है, मतलब वो हो गया सो हो गया।
0: जी जी, मैं उस पल को याद करता हूँ कि अगर ऐसा, अगर मैं मान लेता अपने वालिद वालिदा की बात, तो मुझे शायद हो सकता है कि इससे अच्छी कुछ अपॉर्चुनिटी
1: वालिदैन की है जो,
0: तो मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ कि देखो तुम पढ़ोगे तो माशाल्लाह तुम अपनी लाइफ के लिए खुद सेटलमेंट हो सकते हो, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर उसका पछतावा तुम्हें खुद करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल माँ बाप मसला ये हो गया है कि अगर बच्चे थोड़े से होशियार हो जाते हैं, अगर उनको आप प्रेशर करोगे ना, तो आजकल बहुत, मैं बता नहीं सकता कि अभी शायद 12 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली, अब आप समझ सकते हैं, यानी कि वो क्या मालूम उसको क्या टेंशन थी क्या नहीं, सिर्फ यानी कि माँ बाप ने ये कहा कि नहीं मोबाइल नहीं देखो, आजकल सारे बच्चे मोबाइलों में घुसे हुए।

0: तो उसने बच्चों को बिल्कुल मोबाइल से अलग रखा है। मेरा माशाल्लाह बड़ा बेटा 15 साल का है और छोटा बेटा 4.5 साल का है माशाल्लाह। तो यानी कि माशाल्लाह 5 बेटे हैं लेकिन एक को भी उसने मोबाइल नहीं दिया, एक को भी।
1: बहुत बड़ी बात है जमाने के हिसाब से।
0: ये कहने के आप मोबाइल चलाओगे बहुत टाइम पड़ा है लेकिन पहले अपनी स्टडी पे ध्यान दो। लेकिन माशाल्लाह वो लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। किसी का अब वो उनमें भाइयों में कंपटीशन होता है, मैं तो उनके सामने एक टास्क रख देता हूँ छोटा सा कि जिसके माशाल्लाह अच्छे नंबर होंगे, जो अच्छा पढ़ेगा उसके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। तो अभी भी सलमान है वो थोड़ा पढ़ने में सबसे वीक है, तो मैंने उससे कहा सलमान बेटा तुम अगर पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए टेबलेट लेके भेजूंगा। बोले जो मैं कहूंगा वो, मैंने कहा ठीक है। तो बोले अच्छा बाबा टेबलेट नहीं, आप ऐसे करना कि मुझे एलईडी लेके भेज दीजिएगा और लगवा दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने
1: कहा
0: हाँ, तो मैंने कहा लेकिन नंबर सबके अच्छे होने चाहिए तब लगेगी। तो माशाल्लाह एक के महेश मैम 89 थे, एक के 91 थे और जो सबसे वीक था पढ़ने में सलमान उसके 96।
1: वाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, तो हर दफा बोला करे उसे कुछ ना कुछ का।
0: मैं टास्क रख देता हूँ कि जो अच्छी पढ़ाई करेगा उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो मैं तो सारे माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ज्यादा फोर्स ना करा करें किसी भी चीज के लिए, क्योंकि उनका जो माइंड है वो बहुत डिस्टर्ब होता रहता है। मेरी वाइफ जो है वो थोड़ी सी सख्त है इस मामले में, बहुत उनको चीखती हैं लेकिन फिर भी मैं उनको रिलैक्स करता हूँ कि नहीं देखो चीखा मत करा करो, और वो चीखती है मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता हूँ।
1: ये होना चाहिए बैलेंस, इसी को कहते हैं। माँ बाप में से एक सख्त होना चाहिए और एक को नरम होना चाहिए।
0: आप कभी कभी वो सलमान जो है तीसरे नंबर पे माशाल्लाह तो बोलता है आप इतना चीखती हैं हमारे पर इतना बुरा भला कहती हैं और बाबा हमें कुछ भी नहीं कहते।
1: लेकिन बोले बाबा की चलाकी है मैं अच्छा बन रहा हूँ।
0: लेकिन फिर जिस टाइम वो सोच होती है फिर मैं थोड़ा सा हार्ड हो जाता हूँ कि हाँ नहीं ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि बच्चे कामयाब हो जाए, और सारे माँ बाप की दुआएं यही होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाए। और मैं आज जो यहाँ पर हूँ ना, मैं बहुत बेकार था, सही बताऊँ आपको बहुत बेकार था। लेकिन कोई होता है ना जिंदगी में कि अगर आपको कुछ वर्ड्स बोल दे तो वो आपके दिल पे जाके लगते।
1: अच्छा पता है क्या, आने वाले दिनों में ये टॉपिक भी है मेरा कि कोई ऐसा आपको किसी ने मशवरा दिया था, किसी की ऐसी बात जो आप भूले नहीं जिसने आपकी जिंदगी चेंज कर दी, तो अभी नहीं भूलिएगा, आने वाले दिनों के लिए रखा हुआ ये टॉपिक मैंने। आएगा आएगा अगले हफ्ते आएगा मेरा ख्याल है।
0: मेरे लाइफ का सबसे जो मैं आज यहाँ पर हूँ जिसकी वजह से यहाँ पर हूँ मैं,
1: अभी नहीं बताया
0: उसका मैं आपको आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊंगा कि क्या था।
1: सही,
0: लेकिन हाँ
1: उस दिन जिस दिन ये टॉपिक होगा ना उस दिन आप अगर मतलब कॉल नहीं मिल रही हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूंगी ठीक है, ताकि हम ये बात करें जरूर। ये यहाँ पे आपको रुकवा तो रही हूँ, ये ना आपको बोलने का मौका ना मिले, तो आप कॉल मुझे मैसेज कर दीजिएगा ठीक है।
0: और इस मैम को मैम इस बात को तकरीबन 27 इयर्स हो गए।
1: हाय हाय गुड जबरदस्त, चलें जरूर सुनेंगे नदीम भाई। बस अभी एक न्यूज शामिल कर लूं और कुछ मैसेजेस हैं ठीक है, चलें जी अपना बहुत ख्याल
0: रखिएगा। मैं आपको माशाल्लाह मेरे भांजी का कल उसका शादी का उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा मैं।
1: अच्छा
0: उसको फहद को, और माशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी दूल्हा बनने वाले
1: हैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह ग्रेट जबरदस्त
0: जी
1: तो बस बहुत बहुत मुबारक इंशाल्लाह ताला, और उनकी शादी भी अल्लाह ताला मतलब जो ना बहुत अच्छे उनके नसीब करे, सब कुछ बहुत अच्छा रहे। तो हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं।
0: आमीन आमीन। थैंक यू
1: थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी तो हमारे साथ है नदीम भाई, और आपने अपने यंगर सेल्फ को क्या मैसेज देना है उसके लिए मैसेजेस आपके मेरे पास आए हुए हैं। मैं जल्दी से बस एक झटपट न्यूज़ शामिल कर दूं फिर आपके मैसेज की तरफ आती हूं। आपको बता दें चलूं कि कतर एनर्जी ने जुलाई 2026 की जो फ्यूल प्राइजेस हैं उसका ऐलान कर दिया है, और कतर एनर्जी के मुताबिक जो न्यू फ्यूल प्राइजेस हैं वो कुछ यूँ हैं। डीजल आपको मिलेगा 2.5 पर लीटर और कोई तब्दीली नहीं है। सुपर गैसोलीन 95 जो है 2.10 पर लीटर, कोई तब्दीली नहीं है। जबकि प्रीमियम गैसोलीन आपको 2.5 पर लीटर, इसमें थोड़ा सा इजाफा किया गया है। तो हर महीने की तरह इस बार भी कतर एनर्जी ने इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए फ्यूल प्राइसेस अपडेट किए हैं। तो ये थी मेरे पास खबर।

right, और इसके साथ ही आपका मैसेज है मेरे पास. सलाम मैडम, हाउ आर यू, प्रोग्राम गोइंग गुड. माशाल्लाह खलील पराचा, क्या हाल चाल है खलील भाई, ठीक ठाक हैं. और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मामश मैम, खैरियत से हैं अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं रोज़ आपका प्रोग्राम सुनता हूँ. मैं सऊदी अरब से सरदार समी, एक गाने की फरमाइश है राजा हिंदुस्तानी का, जो गाना है कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया. अच्छा चलें ठीक है, मैं ना ये वाला गाना लगाती हूँ. अच्छा इस दौरान कि जब तक मैं ये गाना निकाल रही हूँ उस तक ना मैं एक वो देना चाह रही हूँ. मैं सोते सोते ना अजीब अजीब आपके अजीब अजीब सी जगहों पे आपके दिमाग में ना आइडियाज़ आते हैं. तो मैं सोच रही थी कि इस हफ्ते तो हमने ये वाला रखना है ना, एक्टर का नाम बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे फिल्म का नाम, एक्टर का नाम बताऊंगी फिल्म का नाम बताएंगे, इस तरह से होगा. नेक्स्ट वीक अगर हम ऐसा रखें कि हमारे साथ दो कॉलर्स आएँ शुरू में, ठीक है, गेम जैसी शुरू हो, हमारे साथ दो कॉलर्स आएँ और हम अंताक्षरी करवाएँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा सिलसिला, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. उसमें होगा ये कि जो कॉलर फौरन फौरन अंताक्षरी के गाने गाता रहेगा, आप जिन लोगों को गाने का शौक है उनका गाने का शौक भी पूरा हो जाएगा, तो वो तो रहेगा जो जब तक गाता रहेगा जब तक वो रहेगा, ठीक है. और लेकिन जो कॉलर जहाँ पे नहीं बता पाएगा तो उसको हम हटा के दूसरे कॉलर को ले लेंगे, ठीक है. इस तरह से देखेंगे कितनी देर तक कोई कॉलर जो है ना वहाँ पे रह सकता है. तो ये अंताक्षरी कैसा रहेगा आइडिया, दोनों कॉलर्स हमारे साथ एक दफ़ा में रहेंगे. हमारे पास ये है ना कि दो नंबर पे हम रख सकते हैं, तो हम इसी तरीके से रखेंगे और जो कॉलर नहीं बता पाएगा उसको निकाल के दूसरे को ले लेंगे, ठीक है. तो मुझे बताएं खासतौर पर मोहम्मद यूसुफान, आपकी राय का मुझे इंतज़ार है. आप बताइएगा, बाकी और लोग भी बताइएगा जो गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि अंताक्षरी कराएं क्या, ठीक है, मज़ा आएगा मुझे लगता है ऐसा. तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर हम पूरे हफ्ते अंताक्षरी ही कराएंगे. अच्छा कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, ये है, मैं थोड़ी देर में चलाऊंगी आपका गाना, मैंने लाइनअप कर दिया सरदार समी. और इसके साथ ही जी मेरे पास है मैसेज ये वाला. अस्सलाम वालेकुम, आप ही वेरी नाइस टॉपिक माशाल्लाह. मैं असमत आफरीदी, अगर आज अपने बचपन या टीनेज वाले असमत को कोई मशवरा देता हूँ तो ये होता कि जितना इंडिपेंडेंट या स्पेशली इतनी आवाज़ में आज उठाता हूँ हमारे माशरे में जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, हमारे गलत कल्चर्स के ख़िलाफ़, उन दीन फरोशों के ख़िलाफ़ जिन्होंने हमेशा हमें दीन के नाम पर कहानियाँ बेचीं और हमें उनके इस अमल को ऐन दीन समझ के उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे, काश के 15 साल के असमत को ये चीज़ उस वक्त समझ आ जाती तो आज बहुत सारा चेंज ला सकता था मैं. चेंज वो लोग ला सकते हैं जो तूफ़ान का सामना करें, ना कि तूफ़ान के साथ बह जाएं. और मुझे लगता है कि 15 साल असमत भी उन सारे तूफ़ानों में बह गया था. काश मैं उस वक्त ढाल थाम के खड़ा होता तो आज बहुत सारे बच्चों और बच्चियों के साथ वो जुल्म ना होता जो मैंने होते देखा हमारे यहाँ. और 15 साल असमत भी खामोश तमाशाई बनके कहीं ना कहीं उन

मन में था वो ही चला दिया। ओए होए क्या बात है नूर मोहम्मद मंसूर, आज तो भाई आपका खुशी का पक्का पक्का वाला दिन है। और पिज़्ज़ा, जूस, फूल और क्रूसेंट सब कुछ आ गया है मेरे पास नसीम की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, और ब्लेस दिस मंथ विद गुड न्यूज़, पीस, लव, हैप्पीनेस, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर, नाम ये कभी नहीं लिखते, रोज़ मैं बोलती हूँ लेकिन रोज़ नाम नहीं लिखते। चलिए जी, एस के मजरुद्दीन का मैसेज मैं पढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले चला देते हैं ये वाला ट्रैक, फिर उसके बाद गेम भी खेलना है। गेम में ज़रूर आइएगा भाई, ठीक है, आपको कसम है आपने आना है। चलिए जी, इसके साथ ही हम बजा रहे हैं आपके लिए ये वाला ट्रैक।

0: Joker.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: It's summer morning with Arjun Mahavish और मैं आ गई हूँ दोबारा से। मुझे असर मजरुद्दीन का जो मैसेज था, उन्होंने गाने की फरमाइश की रिम झिम सॉन्ग, ये कहाँ हो रही है रिम झिम। और टॉपिक पर यही कहूँगा कि मैं थोड़े पहले ट्यूनिंग किया है कि अगर मैं 16-18 साल खुद से मिलूँ तो बस गले लगा कर कहूँगा सुनो डरना मत, तुम आगे चलकर बहुत मजबूत बनने वाले हो और बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और खुलकर जीना, मुझे तुम पर नाज है। और उसके हेयर को छूंगा और तारीफ भी करूंगा बिकॉज अभी मेरे थोड़े हेयर जो है ना गिर चुके हैं। सही है, बालों का मलाल था ये। ओके जी, चलिए जी, कॉलर है हमारे साथ, फिर मैं भी बताऊंगी कि मैं

0: जिस वक्त आए हैं ना, ये जिस वक्त आप आए हैं तो वो गेम का वक्त हो गया है। टॉपिक पे एक लफ्ज बोल दें, कुछ ना कुछ जो बोलना चाहते हैं, फिर हम गेम भी खिलाएंगे आपको।
1: गेम अगर कल वाला ही है तो ज्यादा तो बेहतर है, क्योंकि मैं
0: अरे कल से यार अब तक प्रैक्टिस कर लेता बंदा कोई। अच्छा चले, आप मैसेज दे दें जो आपने बताना है ना, टॉपिक पे बोल लें, फिर हम दूसरे कॉलर ले लेते हैं, ठीक है? कोई मसला नहीं है।
1: मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर मैं अपने बचपन में अपने आप को कोई नसीहत करना चाहूँ तो सिर्फ ये होगी कि अपने फैसलों पे साबित कदम रहना।
0: फैसलों पे
1: इंसान जो है बहुत ज्यादा जो है ना सोचता है कि दूसरे बंदे उन्हें बोल दिया, बोल दिया ठीक है यार, अच्छा ये करके देख लेते हैं। हाफ में अपनी जिन्हें छोड़ देते हैं, जो आप अपना फैसला करते हो हाफ में छोड़ देते हो, और जिसकी वजह से बाद में आप पछताते हो, काश अगर मैं ये कर लेता तो वो ज्यादा बेहतर था। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं अगर करता तो मेरे साथ यही होता।
0: सही हो गया। तो मतलब ये आप देंगे कि भाई जो भी करो जम के करो और करते रहो, मुस्तकिल मिजाज ही लेकर आओ, कंसिस्टेंसी। राइट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाम आपने नहीं बताया, लोग सुनने वाले सोच रहे होंगे क्या नाम है।
1: मेरा नाम हमजा
0: है। हमजा है, अली हमजा। अच्छा हमजा खोकर है, हमजा खोकर है, ठीक है। आज अली हमजा गायब है। चले जी, गुड, जबरदस्त। हमारे पास दो दो हमजा है इस वक्त।
1: दो नहीं, तीन है, एक मेरे ख्याल से सैयद हमजा भी है जो शाम में आते हैं।
0: अच्छा, नहीं मैं उनको नहीं जानती क्योंकि उनकी अभी तक मेरे पास कॉल नहीं आई है। तो अली हमजा है, हमजा खोकर है, फैजान हमारे पास बहुत सारे, एक दो उस्मान भी हैं। तो चले मतलब वैरायटी है हमारे पास।
1: हम तो पूरे दिन होते हैं ना, तो वो मैं अभी आपके शो से शुरू होता हूँ और शाम में कबीर भाई के शो तक होते हैं हम लोग।
0: अच्छा,
1: तो पूरे दिन में बहुत सारे कॉलर्स वगैरह हम लोग देखते हैं।
0: सही सही सही, चलें जी, गुड, जबरदस्त हमजा। और कुछ कहना है या फिर हम इजाजत लें आपसे?
1: बस दुआओं में याद रखें, अल्लाह खुश रखे,
0: अल्लाह आपको भी बहुत बहुत खुश रखे, थैंक यू, थैंक यू जी। बहुत अच्छा लगा आपसे आज भी बात करके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होती है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ जी। तो इसके साथ ही भाई गेम के लिए कॉल कीजिए 4434377 पे, आपने गेम के लिए कॉल करनी है। गेम हमारा कल वाला ही है क्योंकि पूरे हफ्ते की मुझे कहा था ना थीम रखनी, थीम यही होती है ना कि रोजाना एक ही गेम होगा। तो आप लोग जो है कॉल कीजिए, कॉल करके हमारे साथ हिस्सा लीजिए। मैं आपको एक्टर बताऊंगी, आपने फिल्म का नाम बताना है फौरन फौरन फौरन फौरन, ठीक है? तो जल्दी से कॉल कीजिए, मैं आपकी कॉल का वेट कर रही हूँ। जब तक मैं शामिल कर देती हूँ कुछ मैसेजेस, कॉल मी कहता है कौन, चलो कॉल कर देते हैं आपको, और जो भी है अब पता चल जाएगा कि कौन है ये। मुझे लग रहा है मैं समझ गई, ये अली हमजा है। अली हमजा की कॉल हम लगा लेते हैं और अली हमजा से बात करते हैं। अली हमजा, गेम खेलना पड़ेगा आपको, ठीक है? अच्छा जी, इसके साथ ही हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मावश मैम, मैं खैरियत से हूँ, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और रोज़ाना आपका शो सुनता हूँ। अच्छा, ये तो वही वाला है ना, वही वाला मैसेज दोबारा पढ़ी मैं, दिल से शुक्रिया कहा हुआ इन्होंने, ओके। और अस्सलाम वालेकुम मावश मैम, मेरी भी गाने की फरमाइश है, लगी तुमसे मन की लगन, ओके। राहत फतेह अली खान का मैं कौन कौन से चलाऊँ, चलिए कोशिश करती हूँ। आपने पहली दफा फरमाइश की है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग,
0: गुड मॉर्निंग। हां अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अली हमजा क्या हाल है?
2: हां जी अल्हम्दुलिल्लाह,
0: अभी हम आपको याद ही कर रहे थे।
2: मैंने इसलिए मैसेज किया, मैंने कहा मेरा जिक्र हो
0: रहा है। चले अच्छा किया आपने। ये बताएं भाई गेम तो खेलेंगे ना?
2: गेम चले ट्राई करते हैं, अगर मुझे कुछ आइडिया हो, लेकिन मैं इतना कुछ जानता नहीं इस बारे में।
0: नहीं जानते, पर बहुत इजी है, फिल्में तो देखी होंगी ना?
2: नहीं इतनी खास नहीं, मैंने कुछ देखी लेकिन देखी होंगी सारी तो नहीं,
0: थोड़ी बहुत तो देखी होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने फिल्में ना देखी हो, ऐसा तो नहीं होता। चलिए मैं आपको कुछ ना मशहूर एक्टर्स के नाम जल्दी जल्दी बताती हूँ, 30 सेकंड होंगे हमारे पास, आपने जितने मैक्सिमम लोगों के नाम ले लिए, ठीक है?
2: ठीक है,
0: ठीक है। चलें, सबसे पहला नाम संजय दत्त,
2: बताना है क्या इसका?
0: मूवी का नाम बताना है ना?
2: संजय दत्त,
0: कोई भी नहीं पता मुझे। अच्छा चलें पास बोल दीजिएगा, पास बोल दीजिएगा, ठीक है? तो आपका जो है, अब मैं खुद में कंफ्यूज हो गया, शाहरुख खान
2: दिल वाले,
0: ओके। सलमान खान
2: इसका पास,
0: पास, ओके। सलमान खान की फिल्म नहीं पता, और ये तो लाजमी नहीं पता होगी, वरुण धवन
2: दिल वाले,
0: अच्छा। और
2: अजय देवगन पास,
0: ओके। शाहिद कपूर,
2: शाहिद

0: food.
1: वैसे 30 सेकंड से ज्यादा हो गए, रहने दे रहने दे. अली हमजा थैंक यू फॉर योर कॉल. एक और कॉलर है हमारे पास, ठीक है, थैंक यू जी. अच्छा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी कौन, नसीम भाई या फिर नूर मोहम्मद मंसूर? नूर मोहम्मद मंसूर. हाँ हाँ, चले जी आपके साथ शुरू करते हैं, 30 सेकंड अब हमारे शुरू हो गए. अमिताभ बच्चन,
0: मोहब्बत.
1: अच्छा, अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन, आर्यन पास. जॉन अब्राहम,
0: जॉन अब्राहम.
1: ओके, अनिल कपूर
0: बेटा.
1: ओके, और मनोज वाजपेयी.
0: मनोज वाजपेयी बोले तो आई डोंट नाम याद.
1: चार हुए, ठीक है, चार हुए. नूर मोहम्मद मंसूर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, थैंक यू जी. ओके जी, तो हमारे साथ नूर मोहम्मद मंसूर, आप भी जल्दी से कॉल कर सकते हैं 4434377 पे. चार जो है अभी तक सबसे ज्यादा नूर मोहम्मद मंसूर का ही है, और देखते हैं कि कौन है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं?
2: रमेश
1: तो बता देंगे, रमेश बताएं, आपसे शुरू कर लेंगे.
2: हाँ जी जी बिल्कुल,
1: चलें ठीक है. तो पहला नाम मैं आपको देती हूँ, इमरान हाशमी.
2: इमरान हाशमी. मर्डर.
1: आमिर खान.
2: दिल.
1: रणबीर कपूर.
2: वीर कपूर. पास.
1: प्रियंका चोपड़ा.
2: प्रियंका चोपड़ा. किस्मत.
1: ओके, करीना कपूर.
2: जबी में.
1: ओके, अनुष्का शर्मा.
2: अनुष्का शर्मा.
1: रब ने बना दी जोड़ी. चलें जी, आपके पांच हो गए. रमेश,
2: जल्दी जल्दी पूछती नहीं है.
1: मैं जल्दी जल्दी तो पूछ रही हूँ, और कितनी जल्दी पूछूं?
2: और फास्ट पूछना चाहिए.
1: अच्छा चलें भाई, इससे भी फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है.
2: ओके जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया रमेश, थैंक यू जी. रही जी, तो आप भी कॉल करना चाहते हैं, आप जल्दी से हमें कॉल कीजिए 4434377 पे और शामिल हो जाइए. जल्दी से देखते हैं कि कौन आता है. पांच हो गए हैं जी, ठीक है, पांच जो हैं रमेश के हैं, और इससे पहले चार जो हैं वो नूर मोहम्मद मंसूर के हैं. इनसे ज़्यादा किसी का हो सकता है, तो देखते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि इससे ज़रा ज़्यादा फास्ट पहुँच सकूँ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम
1: जी, कौन बात कर रहा है?
3: गुड मॉर्निंग, राज.
1: अब तो लोग गए, अब नहीं हो सकता कुछ. चले जी राज. अच्छा जी, चले हम कोशिश करते हैं, मैं ज्यादा जल्दी जल्दी आपको दूं और आप जल्दी जल्दी से बताएं, ठीक है. तो शुरू करते हैं हम, 15 मिनट. आलिया भट्ट.
3: आलिया भट्ट.
1: श्रद्धा कपूर.
3: श्रद्धा कपूर. पांच.
1: ओके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी.
3: नवाजुद्दीन सिद्दीकी. पास.
1: ओके,
3: गैंग्स ऑफ वसईपुर. और श्रद्धा कपूर स्त्री.
1: ओके, अक्षय कुमार.
3: अक्षय कुमार खिलाड़ी.
1: जॉन अब्राहम.
3: जॉन अब्राहम धूम.
1: ओके, मनोज बात पर पूछ ले, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हो गए. टाइगर श्रॉफ.
3: टाइगर श्रॉफ. गणपत.
1: ओके, तपसी पन्नू.
3: तपसी पन्नू. थप्पड़.
1: जानवी कपूर.
3: जानवी कपूर.
1: पास. लेकिन फिर भी मेरा ख्याल आपने पांच कर लिए हैं. मैं मोहम्मद यूसुफ से या किसी से कहूंगी कि जो सुन रहे हो गौर से, वो मुझे बताएं. राज के अभी भी दो तीन पास के बावजूद भी मेरा ख्याल से पांच हो गए. जबरदस्त राज, बहुत बहुत शुक्रिया राज, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय. तो रमेश, राज, नूर मोहम्मद मंसूर ने पहले कॉल की थी, आप दो लोग हैं ना पाँच पाँच पे जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम सलाम.
1: कौन बात कर रहे हैं?
4: रईस बात कर रहा हूँ. चलो हम भी
1: रईस बात कर रहे हैं. रईस भाई, टॉपिक समझ में आ गया या अभी नहीं आया?
4: अरे भैया, आपने हमको गोल गोल घूम के घूम के.
1: अरे गोल गोल नहीं घुमाया मैंने आपको, उस वक्त बोलने की कोशिश की, लेकिन आपने कहा मैं उधर ही आ रहा हूँ.
4: बात मैं ये बोल रहा हूँ कि वो तकरीबन मेरे बातों के ही करीब लोगों का हर बात.
1: नहीं था रईस भाई, आपने अपने बच्चों को एडवाइस दी, आपको अपने आप को एडवाइस देनी थी. मैं आपको कह रही थी अपने आप को
4: ही एडवाइस देना कि आदमी को अपना वक्त.
1: अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी से गेम खेलते हैं, ठीक है. हो सकता है आपने वही बोला मुझे, लेकिन लगा कि आप बच्चों को ही एडवाइस दे रहे हैं. अच्छा जी, तो
4: नहीं, बच्चों को नहीं एडवाइस, तकरीबन अपने ऊपर भी था, क्योंकि आपने डायरेक्ट कह दिया मतलब अपने आप को.

0: क्या सजेस्ट करेंगे, तो हम सोचे कि कुछ चुन के चलना चाहिए, ये नहीं कि अगर आप कुछ चुनेगा नहीं अपना सब्जेक्ट तो फिर वो कैसे कामयाब होगा आगे, कैसे
1: अपने लिए। अब यकीन माने अपने लिए ना बहुत शफीक हैं, आपने अपने आपको वैसी एडवाइस की जैसे अपने बच्चों को करते हैं। अक्षय कुमार
0: खिलाड़ी,
1: विकी कौशल,
0: नहीं पास,
1: सैफ अली खान,
0: मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी,
1: अनिल कपूर
0: बेटा,
1: ओके, मनोज वाजपेयी,
0: ये कौन सा वर्षो ये करके बरसोवा ये करके क्या मतलब गैंग, ये अरे गैंग उन लोग के मूवी का नाम नहीं आ रहा है।
1: अच्छा, ऋतिक रोशन,
0: ऋतिक रोशन का मतलब ये भी देखो
1: तीन हो गए, तीन टाइम ओवर। चलिए रईस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, कौन बात कर रहे हैं? आरिफ अंसारी, क्या हाल चाल है? ठीक है, जबरदस्त। तो आपके साथ खेले? चलें जी, ठीक है, आपका जो नाम शुरू करते हैं जल्दी से। हाँ, अब से शुरू। अजय देवगन,
2: अजय देवगन सिंगम,
1: पंकज त्रिपाठी
2: क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज चलेगा ना?
1: हाँ हाँ, ओके।
2: इमरान हाशमी और अपन,
1: ओके, कैटरीना कैफ, ओके, विद्या बालन
2: पास,
1: ओके, और यामी गौतम
2: पास,
1: ओके, जानवी कपूर
2: पास, न्यूकमर आई डोंट लाइक,
1: तीन हो गए, तीन, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपकी कॉल के लिए, थैंक यू जी। तो हमारे साथ जो है अभी तक मुझे लग रहा है कि राज और बाकी हमारे रमेश, मतलब इन दोनों के ही पांच हैं। एक दफ़ा मैसेज भी देख लूँगी मैं कि इतने ही हैं, यही मैं सही बता रही हूँ कि नहीं। अच्छा जी, एक और कॉलर आ गए हैं तो उनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, खैरियत मनुष्यन जी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं?
3: जसीम खान,
1: ठीक ठाक हैं आप?
3: जी बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनका नाम यही वाला बता दूं, वो तो आप
1: नहीं समझे, जेएस खान।
3: अरे माशाल्लाह, क्या बात है।
1: नहीं, याद रहता है भाई, ऐसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होती मैं। ठीक है, चले जी, तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं। आपके 30 सेकंड आपके, और पहला नाम है काजोल।
3: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे,
1: ठीक है। सोनम कपूर,
3: प्रेम रतन धन भाई,
1: ओके। अनन्या पांडे,
3: पास,
1: ओके। और फिर शाहिद कपूर
3: और रोमियो,
1: ओके। शाहरुख खान,
3: दिलवाले,
1: चार हुए। चले जी, जसीम खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी।
3: थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया रई जी। तो हमारे साथ हमारी कॉलर्स, और इसके साथ ही वक्त मेरा ख्याल है तमाम हो गया है। तो आज के भी जो एक तो राज ने, जबकि 2-3 दफ़ा उन्होंने पास बोला, मुझे लगा कि हाँ, पहले मैंने उनको बोल दिया था कि भाई आप आ गए हैं तो कोई आपके सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने 5 बताए, और रमेश ने भी जो है वो 5 बताए। तो आप दोनों ही एक तरह के हमारे विनर हैं, तो दोनों के लिए क्लैपिंग, बहुत सारी। राइट, और इसके साथ ही जो है ना मेरे पास है जसविंदर सिंह का मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के हिस्सा लेने का। और वो जो कह रहे थे कि मैं फास्ट पिंक, पता नहीं मुझे एक्टर्स वगैरह के नाम इतना ज़्यादा पते क्या हो जाता है कि आपने एक चीज़ से निकल जाते हो ना, तो वो फिर निकल जाते हो वहाँ पर, आपका रहना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरे साथ वही वाला मामला हो रहा है, अगर पहले मैं ये वाला गेम खिलाती तो मुझे एक्टर्स के नाम मतलब थे, फिंगर टिप्स पे थे, लेकिन अब जो है ना वो सोचना पड़ता है, लिखे हुए भी नज़र आ रहे होते हैं लेकिन फिर भी सोचना पड़ता है कि कौन सा वाला नाम लूँ, ये वाला सीन हो गया। खैर जी, गुड मॉर्निंग मैडम जी, वेरी गुड मॉर्निंग, और वेरी गुड शो, वेरी गुड सॉन्ग, जसविंदर सिंह काला, दिल से देसी। और आपने भी की है एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट, मैं किस किस की पूरी करूं, मैंने एक गाना तो लगा दिया, कुछ गाने मैं भूल चुकी हूं कि क्या रिक्वेस्ट की थी। मन की लगन मैंने लगा दी है क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा रिक्वेस्ट की थी, जिनका अभी मेरे पास आया था। ये पानी दा बुलबुला कलवल चलाते हैं ना, ठीक है, याद दिला दीजिएगा, फिर चलाऊंगी। अच्छा, इसके साथ ही है कौन, इसके साथ है मेरे पास 7 किसके 7 थे कुछ बताइए, कौन है ये? और मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं राज भाई का 6 का स्कोर है, ओके, राज भाई के 6 हो गए भाई, तो इसका मतलब है मोहम्मद यूसुफ खान के राज आज के भी विनर बनते हैं ये, चलें ठीक है। तो भाई 6 का स्कोर जो है राज का है, और राज ने

दो तीन पास बोलने के बावजूद भी आज विन कर लिया, तो ये है सिलसिला। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ, और थोड़ा सा ये ना हिसाब लगा लिया करें क्योंकि एकदम से मुझे टाइम भी देखना था और वो था तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। चले नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों के मैसेजेस थे और इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है कल, वीकेंड का शो होगा, इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपका अंताक्षरी खिलवाएंगे, वो इतना मुश्किल नहीं होगा ना, मतलब टाइम वगैरह का इतना ध्यान नहीं होगा, बस हम 30 से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन आखिर तक चलता है। राज जरूर जरूर जरूर कॉल कीजिएगा नेक्स्ट वीक में और मैं सुनना चाहूंगी कि आपकी आवाज कैसी है जब आप गाना गाते हैं। ठीक है, चलिए जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत मन की लगन, और फिर मैं देखती हूं अगर किसी और का गाना भी लाइनअप हो सकता है तो मैं लगा देती हूं। एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।

अरे मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मन की लगन के बाद रिमझिम लगा रही हूँ वो नहीं रह सकता, उसके मैंने पहले लाइन अप किया हुआ था, तो बैक टू बैक आप सुनेंगे भाई एस के मजहरुद्दीन रिमझिम रिमझिम, ठीक है, ये बैक टू बैक चलेगा आपके लिए, इंजॉय कीजिएगा, फाइनली बाय बाय।

0: लाइंस में। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 मैच में दो मर्तबा के चैंपियन फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एम्बेपे ने दो गोल्स और ब्रैडले बर्कोला ने एक गोल किया। अगले मरहले में फ्रांस का सामना पैराग्वे से होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 मैच में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को एक के मुकाबले में दो गोल से शिकस्त दी। नॉर्वे का सामना अब ब्राजील से होगा। दुनिया के नंबर दो टेनिस खिलाड़ी एलेना रिबाकिना ने विंबलडन के पहले राउंड में फ्रांस की लोई बॉयसों को 6-4, 1-6, 6-3 सेट से हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जर्मनी के मारूफ गोलकीपर मैनुअल नॉर ने वर्ल्ड कप से टीम के जल्द ही बाहर होने के बाद दूसरी मरतबा इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 40 साल न्यूयॉर्क को टूर्नामेंट से पहले रिटायरमेंट से वापस बुलाया गया था। और ऑस्ट्रेलिया ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज़ हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: FM 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद मोहम्मद नफीस।
2: वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा से अमरीकी नुमाइंदों की होने वाली मुलाकात में अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के तहत जारी मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। शूरा कौंसिल ने आइसलैंड के शहर जनेवा में होने वाले बैन अलाक्वामी पार्लियामानी यूनियन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिरकत की। इजलास में शूरा कौंसिल की नुमाइंदगी कौंसिल की नायब सदर डॉक्टर हमदा बिन हसन सुलैती ने की है। कतर की मुसल्ला अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ने बहरीन में होने वाले खलीजी ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक की मुसल्ला अफवाज के सरबराहान की आला अस्करी कमेटी के इजलास में शिरकत की है। कतर की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के कायम मकाम सरबराह ने मिस्र के सिविल एविएशन के वजीर और अरब सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात की है। कतर हिलाल अहमर ने शिमाली शाम में अलकुलूब रहीमा यानी दिल मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। इस मंसूबे के तहत दिल के ऑपरेशन और एंजियोग्राफी की जदीद सहूलतें फराहम की गई हैं। गजा पट्टी के जनूब में काबिज इसराइली फोर्स के फजाई हमलों के नतीजे में दो फलस्तीनी शहीद जबकि कई दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। सामाइन इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर एफ एम 107 का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडियो से हमारी साउंड टेक्नीशियन नूर और सोशल मीडिया से टीम से युसरा और न्यूज रूम से मोहम्मद अमीन और मुझे मोहम्मद नफीस को अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
2: कुछ मिलेगा यहाँ।
1: ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it.
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे शरीफ यूनुस के बारे में। शरीफ यूनुस कतर के मशहूर बीच वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, जो असल में सेनेगल में पैदा हुए लेकिन बाद में वो कतर को रिप्रेजेंट किया। उनका टॉल और एथलेटिकली स्ट्रॉन्ग फ्रेम उन्हें बीच वॉलीबॉल के लिए परफेक्ट बनाता है। शरीफ ने अपने करियर में कतर की नेशनल टीम को वर्ल्ड स्टेज पर पहचान दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। वो अपने पार्टनर अहमद तिजान के साथ मिलकर FIVB बीच वॉलीबॉल वर्ल्ड टूर और ओलंपिक गेम्स जैसे बड़े इवेंट्स में कतर की रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। उनकी खेलने की स्टाइल एग्रेसिव ब्लॉकिंग और पावरफुल स्पाइक्स पर मबनी है। शरीफ कोर्ट पर बहुत फोकस्ड और डिसिप्लिन नजर आते हैं और उनकी टीम वर्क एबिलिटी उन्हें दुनिया की टॉप प्लेयर्स के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव बनाती है। कतर ने बीच वॉलीबॉल में जो तरक्की की है उसमें शरीफ का बड़ा हाथ है। उन्होंने एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी शानदार परफॉर्मेंस दी है। शरीफ यूनुस सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि कतर के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का एक सिंबल बन चुके हैं। उनकी मेहनत, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन ने उन्हें इंटरनेशनल बीच वॉलीबॉल का एक रेस्पेक्टेड नाम बना दिया है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे उन रोजमर्रा आदात के बारे में जो मर्द हजरात की सेहत को बेहतर बना सकती हैं। जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें ज़्यादातर बैठे बैठे काम करने का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे वज़न में इजाफा, कमर दर्द, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों का ख़तरा ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं या बहुत ही जो फास्ट जो वॉक है वो करें, या सीढ़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और इसी तरह से साइकिलिंग कीजिए या हल्की एक्सरसाइज भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। नींद को हमेशा तरजीह दीजिए और रोज़ाना 7 से 8 घंटे की मायारी नींद जिस्म को तवानाई देती है, ज़हनी कारकर्दगी बेहतर बनाती है और बीमारियों के ख़तरे को कम करती चली जाती है। बढ़ती हुई उम्र के साथ प्रोस्टेट के मसाइल और बाज़ इकसाम के कैंसर का ख़तरा बढ़ सकता है, और अगर यूरिन में दुश्वारी हो, बार बार यूरिन आए या कोई गैर मामूली अलामत महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से राबिता कीजिए। मुसलसल ज़हनी दबाव दिल की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनता है, इसलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मुराकबा कीजिए, वर्जिश और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना हमारे ज़हनी सुकून को ज़्यादा बेहतर बनाता है। दोस्तों और ख़ानदान के साथ मजबूत ताल्लुकात ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर मुस्बत असर डालते हैं। तन्हाई और समाजी दूरी ज़हनी दबाव को ज़्यादा कर सकती है। तो लिसनर्स, ख़ास तौर पर हमारे मर्द हजरात, हमारे जो भाई हैं, उनके लिए सेहतमंद ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, अच्छी नींद और

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा मरहबा, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आप हैं मेरे साथ मेरी पहचान पर। तो कैसे हैं आप? आई एम श्योर कि आप सब बहुत मजे में होंगे, लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी, ये पूरा वीक बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। वेल, आज आप अमिता के साथ हैं, यानी कि मेरे साथ हैं, और मेरी पहचान की शुरुआत करने से पहले आज एक बहुत जरूरी सवाल मैं आपसे पूछना

करती हूँ, ठीक है? पिछली बार जब आपने अपना फोन उठाया या फिर सोशल मीडिया के जो अलग अलग पेजेस हैं उसे स्क्रॉल किया, तो आपने क्या देखा? शायद किसी फ्रेंड की द पर्ल में यॉट पार्टी, या किसी की मुशेरब में वो परफेक्ट फैमिली डिनर की फोटो, या फिर कोई अजनबी जिसकी स्किन बिल्कुल बेदाग है, करियर परफेक्ट है और जिंदगी जैसे किसी मूवी का सीन हो। अब ये सब देखकर आपने क्या महसूस किया? इंस्पायर्ड या फिर थोड़ा सा छोटा? ऐसा लगा जैसे आप कहीं पीछे छूट गए हैं? तो ब्यूटीफुल लेडीज, अगर आप मेरे साथ हैं तो आज हम बात करने वाले हैं उस चोर की जो हमारी खुशियां चुरा लेता है। यस, द कंपैरिजन ट्रैप। आज हम एक ऐसे दौर, एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां हम अपने बिहाइंड द सीन्स, यानी हमारा बिखरा हुआ किचन, हमारी थकी हुई आंखें, हमारी टेंशन, उसे दूसरों के हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। हम फिल्टर्स के पीछे भाग रहे हैं जबकि ये दुनिया असलियत की भूखी है। हाँ जी, I'm talking about reality। आज हम उन फिल्टर्स को उतार फेंकेंगे जो हमें सच्चाई से काफी दूर ले जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम खुद को इस ट्रैप से आजाद कर सकते हैं। तो आप अभी क्या करेंगे? मुझे व्हाट्सएप करेंगे 6622107 पर, 6622107 पर, और बताएंगे वो कौन सा स्टैंडर्ड है जिसे पूरा करते करते आप थक चुके हैं। क्या वो परफेक्ट बॉडी है, परफेक्ट पेरेंटिंग है, या परफेक्ट घर है? खुल कर बात कीजिए। अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी बातें हैं, आप जरूर मुझसे शेयर कर सकती हैं 6622107 पर, 6622107 अपने नाम के साथ, क्योंकि आज बात हो रही है आपकी अपनी पहचान की।

बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आप हैं मेरे साथ मेरी पहचान पर. कहा जाता है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, यानी तुलना खुशी की चोर होती है. लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में मैं इसमें थोड़ा ना चेंज या यूं कहें बदलाव करना चाहूंगी. आज कंपैरिजन सिर्फ खुशी नहीं चुरा रहा, ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान भी चुरा रहा है. कभी सोचा है आपने कि जब हम सुबह उठते हैं बिना आंखें खोले, मतलब ऐसे मूंदी हुई आंखों से फोन उठाते हैं और स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम अनजाने में अपनी शख्सियत, अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसको दूसरों के तस्वुर से तोल रहे होते हैं, या यूं कहें दूसरों की इमेज से तोल रहे होते हैं. जब हम घंटों दूसरों की लाइफ देखते हैं, उनका खाना, उनके कपड़े, उनकी हंसी, तो हम अपनी खुशी का जो ब्लूप्रिंट है ना, जो नक्शा है, उसे कहीं खो देते हैं. हम वो चीजें चाहने लगते हैं जो शायद हमें पसंद भी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्क्रीन पर एक एस्थेटिक फिल्टर के साथ अच्छी लग रही है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं. We are chasing someone else's dream, जबकि हमारे खुद के सपने हमारा इंतजार कर रहे हैं. पर हमारी कम्युनिटी में ये बीमारी कोई नई नहीं है, बस आप डिजिटल हो गए हैं तो बस फिर देखिए. पहले ये बातें सिर्फ जो कहते हैं ना किटी पार्टीज या शादियों तक लिमिटेड थी, मगर अब ये हमारी जेब में है, हमारे फोन में 24 घंटे मौजूद है. बच्चों के मार्क्स कंपेयर करना, ज्वेलरी के डिजाइंस पर चर्चा करना, या ये देखना कि सो एंड सो रिश्तेदार ने कौन सा नया वेकेशन लिया है. हमने जिंदगी को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बना दिया है, एक ऐसी रेस जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है. हम लोग क्या कहेंगे कि डर से इतना गिर गए हैं कि हमने अपना सुकून, अपना पीस गिरवी रख दिया है. हम भूल जाते हैं कि हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर इंसान की अपनी एक स्ट्रगल की कहानी होती है. जो फोटो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक मोमेंट है, पूरी जिंदगी नहीं. हम दूसरों के हाईलाइटेड रील्स को देख कर अपने बिहाइंड द सीन्स को बुरा भला कहने लगते हैं. इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? चलिए एक मिसाल के रूप में ले लीजिए कि सड़क पर चलती हुई हर गाड़ी ब्रांडेड हो सकती है ना, चमकती हुई हो सकती है, मगर हर एक का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो अलग होता है. कोई स्पोर्ट्स कार है जो सिर्फ स्पीड के लिए बनी है, कोई 4x4 SUV है जो रेगिस्तान की रेत में चलने के लिए बनी है, और कोई फैमिली कार है जो कंफर्ट और सेफ्टी के लिए है. अब अगर वो स्पोर्ट्स कार ये सोचने लगे कि वो रेत में क्यों नहीं चल पा रही, या फिर वो SUV ये सोचने लगे कि वो ट्रैक पर सबसे तेज क्यों नहीं है, तो ये बात जो है ना वो नाइंसाफी होगी, है कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही एक की जिंदगी दूसरे से बेहतर नहीं है, बस अलग है. सबका सफर अलग है, सबकी मंजिलें अलग है, तो फिर हम अपनी जिंदगी की गाड़ी किसी और के ट्रैक पर क्यों चला रहे हैं? क्यों हम दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर खुद को फेल अनाउंस कर देते हैं? योर लाइफ इज योर यूनिक जर्नी एंड इट्स टाइम यू स्टॉप, है ना? तो आप दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी का आईना ना बनाए और किसी और की कार को अपनी कार ना बनाए. मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल आपको कुछ हद तक समझ में जरूर आया होगा, है कि नहीं? वैसे मुझे एक फिल्म का बड़ा प्यारा डायलॉग याद आ रहा है, एंड वो शुरू इस तरह से होता है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता. तो इस डायलॉग में एक बहुत गहरा सबक, यूं कहे लेसन छुपा है. दौड़ना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, मगर अपनी डायरेक्शन में. हम दौड़ तो रहे हैं मगर दूसरों के पीछे. जो आपकी सोच है बस इतनी ही है. आपकी रफ्तार कोई रेस नहीं है. कंटेंटमेंट यानी सुकून तब नहीं मिलता जब आपके पास वो सब हो जो दूसरों के पास है. असली सुकून तब मिलता है जब आप ये यकीन करती हैं, ये बिलीव करती हैं कि आपके पास जो भी कुछ है वो आपके लिए परफेक्ट है, वो आपके लिए बेस्ट है और आपके कल के सफर के लिए बिल्कुल काफी है. तो अब जब आप सोशल मीडिया को अपने फोन पर स्क्रॉल करें, तो मैं कहूंगी कि एक चीज का ख्याल जरूर रखें,
देखे तो जरूर लेकिन अपनी पहचान खो कर नहीं, अपनी खुशियों को खो कर नहीं. रिमेम्बर यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये जो हम रोजाना स्क्रॉल करते हैं ना, ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, इट्स अ कंपैरिजन ट्रैप कि एक बहुत बड़ी कीमत हमारा जिस्म और हमारा दिमाग चुकाता है. कभी सोचा है आपने कि सोने से पहले जब आप वो आखिरी बार फोन चेक करते हैं तो आपके जहन में क्या चल रहा होता है? वेल, साइकोलॉजिस्ट इसे डिजिटल एंग्जाइटी कहते हैं. हमारा दिमाग उस ब्लू लाइट और दूसरों की चमकती लाइफ्स को देखकर इतना हाइपर हो जाता है कि सुकून की नींद एक ख्वाब बन जाती है. हम अपने स्लीप साइकिल को तबाह कर लेते हैं. और क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारा दिमाग अनजाने में उन चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है जो असली में है ही नहीं. हम फिल्टर्ड चेहरे देखते हैं, वो स्किन स्मूदिंग फिल्टर्स, वो जॉ लाइन शार्पनर टूल्स, और फिर जब हम फोन बंद करके मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमें अपनी स्किन, अपने कर्व्स और अपनी उम्र से थोड़ी सी ना गिला होती है. और कभी कभी तो हम हेट भी करते हैं. उफ, वी स्टार्ट लुकिंग आवर फ्लॉस, जो कि वो एक मास्टरपीस है. तो जनाब, हम यहाँ कतर में रहते हैं. दोहा एक ऐसा शहर है जो खूबसूरती और लग्जरी से भरा हुआ है. यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है और इस लाइफस्टाइल के साथ आता है एक अनस्पोकन प्रेशर भी. चाहे वो द पर्ल में कोई फ्राइडे ब्रंच हो, मुशरब में एक कॉफी डेट हो, या फिर किसी नामी मॉल में शॉपिंग हो. क्या ये जो आपके सोशल मीडिया पे चीजें दिख रही होती हैं आपको प्रेशर देती हैं? आई एम वेरी सर्टन देती होंगी. ये प्रेशर इतना एग्जॉस्टेड कर देता है कि हम मोमेंट को इंजॉय नहीं कर पाते. यस, जिस मोमेंट में हम अपनों के साथ हो रहे होते हैं, हम सडनली भूल जाते हैं कि ये लाइफ जो भी प्रेजेंट में चल रही है वो हमारी है, ना कि जो हम अपने फोनों की स्क्रीन पर देख रहे हैं. हम खाना खाने से पहले उसकी तस्वीर खींचते हैं, मिलने से पहले चेक करते हैं कि लाइटिंग सही है या नहीं. इससे पैदा होता है बॉडी डिस्मोर्फिया, एक ऐसी हालत जहां हमें अपने जिस्म में सिर्फ गलतियां नजर आती हैं. हम हमेशा फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में रहते हैं कि कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट गई, कहीं मेरी लाइफ बोरिंग तो नहीं हो गई. ये पिक्सल्स की दुनिया हमारे बैलेंस को ना बिगाड़ रही है. और तभी हम जब फिल्म

ये देखते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है। मुझे सडनली याद आया डियर जिंदगी फिल्म का शाहरुख खान का वो डायलॉग जो कहता है कि सेफ फील करने के लिए पहले सारे डर निकालना जरूरी है। डोंट लेट योर पास्ट और समवन एल्सेस प्रेजेंट ब्लैकमेल योर फ्यूचर। कितनी गहरी बात है ना। हम दूसरों के प्रेजेंट को देखकर, उनकी फिल्टर्ड फोटोज को देखकर अपने आने वाले कल को ना ब्लैकमेल करते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक मैं वैसी नहीं दिखूंगी मैं खुश नहीं हो सकती, जब तक मेरा घर वैसा नहीं होगा मैं कामयाब नहीं हूँ। हमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उनको दे दी है। हम भूल गए हैं कि सेफ्टी और कंफर्ट हमारे अंदर से आता है, ये किसी फिल्टर से नहीं आता। योर बॉडी इज नॉट अ ट्रेंड। कपड़ों का फैशन बदलता रहता है, फोन के मॉडल्स बदलते रहते हैं, मगर आपका जो जिस्म है वो हर साल बदलने के लिए नहीं बना है। यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें। तो कहना चाहूंगी कि हमेशा ये याद रखिए, आपका जिस्म कोई डिस्प्ले पीस नहीं है कि जो किसी भी मॉल के विंडो में रख दिया जाए। ये आपकी रूह का घर है, इसे सजा मत दीजिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये किसी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज जैसा नहीं दिखता। हम फिटनेस के नाम पर खुद को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि हम उस स्टैंडर्ड में फिट हो सकें जो किसी AI एल्गोरिदम ने सेट किया है। बैलेंस तब आता है जब आप अपनी औकात या यूं कहें अपनी अहमियत को पहचानते हैं। जब आप ये समझते हैं कि आपकी स्किन पर जो निशान है ना वो आपके जीने की गवाही देता है, आपकी आंखों के नीचे जो थकावट है वो आपकी मेहनत की कहानी सुना रहा है। इसे छुपाइए मत, इसे ओन कीजिए। योर वर्थ इज नॉट मेजर्ड इन पिक्सल्स, इसका ख्याल जरूर रखें। ये मेजर करता है कि भाई आपने अपनी जिंदगी को किस तरह से होल्ड किया है। चलिए अब एक रियल मिरर चैलेंज की बात करते हैं। तो आज का आपके लिए चैलेंज है कि जब आप घर जाएं या घर पर आपको जब मौका मिले तो आईने के सामने खड़े होइए और अपने फोन को साइड पर रख दीजिए। एक असली आईने में देखिए, वो भी फिल्टर फ्री होकर। अपनी आंखों में देखिए और खुद से कहिए, मैं जैसी हूँ काफी हूँ। बैलेंस पिक्सल्स में नहीं प्रेजेंस में है। तो कल जब आप दोहा की सड़कों पर निकले तो सोशल मीडिया रेडी होने के लिए नहीं बल्कि लाइफ रेडी होने के लिए निकले। अपने वजूद का जश्न मनाए, आया समझ, तभी आपकी लाइफ आसान होगी। मैं हूँ अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं मेरी पहचान। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं उस छुपी हुई मैं के बारे में जो कि आप हैं। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

Assalamualaikum, welcome once again. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आप हैं मेरे साथ मेरी पहचान पर. हाँ जी, आज का एपिसोड हमारा बड़ा कमाल का है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं द कंपैरिजन ट्रैप के बारे में. हाँ जी, तो शो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो कौन सा एक स्टैंडर्ड है जिसे आप मेंटेन करते करते परेशान हो गई हैं. और हम आगे अपनी बातों को बढ़ाए उससे पहले चले कुछ मैसेजेस की तरफ रुख करते हैं. तो हमें सारा का मैसेज है जो कि पहले कहती हैं सलाम. सो सारा आपको भी सलाम. बोलती हैं कि ऑनेस्टली बोलूं तो मैं उस परफेक्ट

में जो भी हमने बातें की और वो सुनने के बाद अगर आप ये हमें मैसेज कर रहे हैं, then really hats off to you. वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपकी अच्छी बातें अगर किसी एक के लिए भी काम आ जाए तो आप सक्सेसफुल हैं. बस वही मुझे महसूस हो रहा है. चले आगे बढ़े, जोया का मैसेज क्या कहता है. जोया कहती है कि मेरे लिए सबसे बड़ा बोझ होता है परफेक्ट घर दिखाना, वो वाइट सोफा, वो बिना मिट्टी वाला किचन. असलियत में वैसा घर सिर्फ फोटोज में ही होता है. मेरे घर में हर जगह खिलौने, किचन में मसालों के दाग, और मतलब रियलिटी में देखा जाए तो फिल्टर के बिना घर कहीं भी दिखाना या सोशल मीडिया पर दिखाना इट्स नॉट इजी. तो मैंने अब सोच लिया है कि भाई मेरा घर कोई म्यूजियम नहीं है, इसलिए जैसा है वही रहेगा. वेल जोया, यहाँ पर मैं आपको हाई फाई देना चाहूंगी बिकॉज एग्जैक्ट फीलिंग मुझे भी आती है. एंड ये जो आज मैंने टॉपिक लिया है हमारे शो का, ये इसके बारे में मैंने बहुत सोचा क्योंकि पर्सनली मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ इसी तरह का रहा. जब हम परफेक्ट होम की बात करते हैं तो मेरे घर में भी काफी सारे लोग हैं, बच्चे हैं, तो जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ घर बिखरा ना हो तो ये इम्पॉसिबल है. सो डोंट वरी, वी आर ऑन द सेम ट्रैक. अब उसके बाद हमें अगला मैसेज आया है मारिया का, और ये कहती है कि हाय अमिता, मेरा स्ट्रगल हमेशा से परफेक्ट बॉडी को लेकर रहा है. हर दूसरी पोस्ट पर वही ग्लास स्किन और जीरो साइज वेस्ट देख करना और स्ट्रेच मार्क्स के बिना जो लेडीज इतनी खूबसूरत लगती हैं वो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं भी वैसे हूँ या मैं वैसे अपने आप को मेंटेन करूँ. पर आज रियलाइज हुआ कि ये थकी हुई आंखें मेरे परिवार की जो खिदमत की निशानी है ना, ये वो है. मैं इन फिल्टर्स की भूखी दुनिया से अब थोड़ा सा दूर रहने वाली हूँ और मैं अपने मोमेंट्स को एंजॉय करने वाली हूँ. सो मारिया, रियली हैट्स ऑफ टू यू. इट्स नॉट एन इजी थिंग जो भी आपने हमें मैसेजेस के थ्रू बताई, इट्स नॉट एट ऑल. सो रियली हैट्स ऑफ टू यू. और आप अपनी लाइफ को अपने दम पर खुशियों के साथ एंजॉय करें, मतलब कंपैरिजन ट्रैप से दूर रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को वैसे भी बहुत स्मूथली एंजॉय कर सकते हैं. फरा का मैसेज है जो कहती है कि मुझ पर हमेशा एक भूत सवार रहता है कि मैं सुपर वूमन दिखूं. आ हा हा फरा, ये सिर्फ आपकी नहीं, ये सारी इस जनरेशन की लेडीज की प्रॉब्लम है. मतलब अब जब मैं देखती हूँ, ठीक है हमारी मम्मियों का दौर डिफरेंट था, लेकिन आज की हर औरत एक्चुअली सुपर वूमन बनना चाहती है. फिर चाहे ऑफिस का काम हो, घर का दस्तरखान हो और दोस्तों के साथ सोशल लाइफ हो, सब परफेक्ट होना चाहिए. आई रियली अग्री टू दैट. इस चक्कर में ना मैं खुद को भी भूल गई हूँ. फरा, मैं समझ सकती हूँ. और अब कहती है वो कि आज मैं कबूल करती हूँ कि मैं थक जाती हूँ और हर चीज में परफेक्ट होना एक धोखा है भाई, मुझसे नहीं होगा, मैं अब इम्परफेक्ट ही रहूंगी. फरा, मैं बताए आपके जैसे पहले थी, ऐसे नहीं कहूंगी कि अमिता बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट है. मेरे अंदर भी ये भूत सवार था कि मैं तो सुपर वुमन ही बनूंगी. हाँ, मैं अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, दैट्स समथिंग दैट आई डू. लेकिन सुपर वुमन वाला जो भूत था वो काफी टाइम पहले मेरा उतर गया जब मेरी हेल्थ पर बात आने लगी. सो यस, आई थिंक अगर अभी आपने ये बात सोच ली है देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक. अब मुझे मैसेज है आयशा का जो कहती है कि हमेशा दूसरों की हाईलाइट रील्स, जैसे कि वेकेशन हुए, उनके गिफ्ट्स हुए, कॉन्स्टेंट पार्टीज देख करना मैं सोचती थी कि मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है भाई. पर सच तो ये है कि उन फोटोज के पीछे भी ना कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही होते हैं. तो भाई अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इंजॉय करूंगी सोशल मीडिया को, लेकिन उससे अपनी लाइफ से कंपेयर नहीं करने वाली हूँ. तो देखें, हमारी ब्यूटीफुल लेडीज के जो कुछ चुनिंदा मैसेजेस आए, उन्होंने कितनी खूबसूरत बातें कही कि देखिए ये सब स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम मेंटेन करते करते करते थक गए, एंड नाउ वी जस्ट वांट टू बी फ्री. तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हाँ? आई एम वेरी सर्टेन कि हम अब से कंपैरिजन ट्रैप से थोड़ा बच जाएंगे. चलिए, मैसेजेस का आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया. और जो मैसेजेस मैं पढ़ नहीं पाई हूँ उन्हें मैं शो के बाद जरूर पढ़ने वाली हूँ. सो प्लीज डोंट माइंड, एंड अपने दिल की बातें, जो भी आपको लगता है, आप चाहते हैं कि मेरी पहचान शो में ये भी अमिता चीज है जिसके बारे में आप बात करें, देन 666-22-107 इज आर नंबर, 666-22-107, अपने नाम के साथ अपने मैसेजेस जरूर हम तक पहुंचाएं.

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: और अब हम बात करेंगे छुपी हुई मैं के बारे में। अच्छा चलिए एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। कभी सोचा है कि जब जो हमारे घर का वाईफाई बंद होता है, जब मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और जब वो स्क्रीन की रोशनी एकदम गुल हो जाती है, तो वो छुपी हुई मैं कौन होती है? Who is the hidden you when the world is not watching? जब आपको कोई देख नहीं रहा है तो आप कौन है? वो एक ऐसी औरत है जो शायद बिखरे हुए बालों में रहती है, जो खुलकर बिना किसी डर के हंसती है, ये सोचे बिना कि उसकी हंसी एलिगेंट लग रही है या नहीं। वो है जो एक पुराने थोड़े से टूटे हुए कप में भी ना करक को इंजॉय कर रही होती है, पकोड़ों के साथ, बिस्किट्स के साथ, क्योंकि उसके लिए जायका या यूं कहें टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉकरी नहीं कि भाई बिल्कुल लग्जूरियस स्टफ उनके घर में होना चाहिए, है कि नहीं। अब उस छुपी हुई मैं के पास ऐसी कहानियां हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कोई फिल्टर, कोई लेंस कभी कैप्चर कर ही नहीं सकता। उसके चेहरे की लकीरें उसकी मेहनत की दास्तान सुनाती है और उसकी आंखों की चमक उसकी असली खुशी का आईना होती है। इस छुपी हुई मैं को

किसी लाइक की जरूरत नहीं है कि खुद को प्यारा महसूस कराने के लिए मुझे लोगों के लाइक्स की जरूरत है या मुझे लोगों के फॉलोइंग्स की जरूरत है. उसे हजारों फॉलोअर्स नहीं चाहिए ये मानने के लिए कि वो इस दुनिया में मौजूद है, कि वो कीमती है. कम ऑन, असली हरियाली, असली ग्रीनरी जिसे हम कहते हैं, तो तब आती है जब आप कंपैरिजन की जो तलवार है ना उसे नीचे रख देते हो, जब आप दूसरों से ना खुद की तुलना करना छोड़ देते हो, तब सही मायनों में आप जीना शुरू करते हो. अब आप उन छोटे लम्हों की कद्र करना शुरू करोगे जो आप यूं ही इग्नोर कर देते थे, क्योंकि ये छोटे छोटे लम्हे ना बहुत सेक्रेड होते हैं. उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट करने का दिल भी नहीं करता, लेकिन न जाने क्यों कंपैरिजन ट्रैप में हम वो सब करते हैं. वो बच्चे की मासूम शरारतें, वो दोस्तों के साथ फिजूल की बातें, या वो खामोशी से जो आप अपने साथ आराम से बैठकर अपनी दुनिया के बारे में सोचते हैं, ये सब आपकी हिडन आइडेंटिटी है. अपनी हिडन आइडेंटिटी को पहचानिए, उसे गले लगाइए. यकीन मानिए वो किसी भी डिजिटल फिल्टर से कहीं ज्यादा नायाब और खूबसूरत है. तो अब सवाल ये उठता है कि अमिता, हम इस ट्रैप से निकले कैसे? Well, इस ट्रैप से बाहर कैसे आएंगे? सुकून और कंटेंटमेंट कैसे पाएंगे? चलिए आज से हम मिलकर कुछ नए नियम बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं, एक नया ब्लूप्रिंट बना लेते हैं. सबसे पहला कदम है डिजिटल डिटॉक्स का. उन अकाउंट्स को बिना किसी हेजिटेशन के अनफॉलो कीजिए जो आपको कम महसूस करवाते हैं. अगर किसी की प्रोफाइल, किसी की फोटोज देखकर अगर आपको अपनी जिंदगी सही नहीं लगती, या यूं कहें आप अपने आप को अनसक्सेसफुल मानने लगते हो, तो हिट दैट अनफॉलो बटन राइट नाउ. याद रखिए, ये कोई बदतमीजी नहीं है, ये सेल्फ केयर है. अपनी जहनी सुकून, यूं कहें मेंटल पीस की हिफाजत करना है, और ऐसा करने से आपको जरूर फर्क पड़ेगा. और दूसरा नियम है द 5 मिनट ग्रेटिट्यूड रूल. सुबह उठ के फोन को हाथ लगाने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालिए. 3 ऐसी चीजों के नाम लीजिए जिनके लिए आप दिल से शुक्रिया करते हैं. अपनी असलियत को पहले अपनाइए, इससे पहले कि आप किसी और के डिजिटल फैंटेसी में कदम रखें. जब आपका दिन शुरू होता है तो ग्रैटिट्यूड के साथ उसे शुरू कीजिए, तो दूसरों की चमकती हुई जिंदगी आपको फीकी लगेगी. ओके, तो अब बात करेंगे जोमो ओवर फोमो की. हाँ जी, आजकल हर कोई फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में जी रहा है, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ जोमो के बारे में सोचे, यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट. हाँ, इसको सेलिब्रेट कीजिए. हर पार्टी में होना, हर ट्रेंड का हिस्सा बनना, हर नई जगह पर चेक इन करना जरूरी नहीं है. कभी कभी घर पर बैठकर पुरानी किताबें पढ़ना या सिर्फ खामोशी को सुनना सबसे बड़ी कामयाबी है. योर वैल्यू इज नॉट मेजर्ड बाय सोशल कैलेंडर, है कि नहीं? और मेरी कुछ पर्सनल टिप्स है आपके लिए जो मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपके जरूर काम आने वाली है. दैट इज ऑडिट योर फीड, यानी कि अगर कोई अकाउंट आपको स्मार्टर, वेल्दियर या हैप्पियर नहीं बना रहा तो वो क्लटर है भाई, उसे साफ कर लो. सेलिब्रेट अदर्स, अगर किसी की कामयाबी देखकर थोड़ी जलन हो रही है तो उसे तुरंत एक कॉम्प्लीमेंट में बदल दो. उन्हें दिल से बधाई दो, उन्हें दिल से मुबारकबाद दो, और खुद को याद दिलाओ कि उनकी जीत मेरी हार नहीं है. सबका अपना वक्त आता है. एंड देन रियल कनेक्शन, इस हफ्ते किसी एक ऐसे दोस्त से मिलो और शर्त ये रखो कि फोन टेबल पर उल्टा रहेगा, यानी कि आप उनके साथ अपना वक्त अच्छे से गुजारेंगे, क्योंकि असली मुश्किलों पर बात की जाती है, असली हंसी इंजॉय की जाती है. सिर्फ दोस्तों के साथ मिलना एक तस्वीर के लिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए. क्यों, तो मैंने सही कहा ना? तो फिर आज आप अपनी इस छुपी हुई मैं को पहचानिए और मेरी पहचान पर अपने आप को एंजॉय कीजिए. और अभी लेट्स एंजॉय द ब्यूटीफुल ट्रैक. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ, और अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का. वैसे मेरी पहचान में आज हमने इस कंपैरिजन ट्रैप के बारे में जो बात की, आई एम वेरी सर्टेन कि इससे हम अब जरूर निकल पाएंगे. वैसे अगले हफ्ते हम एक बहुत ही नाजुक और जरूरी बात करने वाले हैं, मेंटल लोड ऑफ मदरहुड. हाँ जी, अब हम इसे नेविगेट करेंगे, वो बोझ जो दिखाई नहीं देता मगर हर माँ उसे उठाती है. आज के लिए मैं कहूंगी इस कंपैरिजन ट्रैप से अपने आप को निकालिए, और फिर जो भी माँ है या जो भी माँ की हर एक प्रॉब्लम्स को समझती है वो इस अगले टॉपिक से जुड़ जाएंगी. और जिन्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता, मतलब हमें हमेशा लगता है कि माएँ तो सुपर वुमन होती है कि नहीं, हमें नहीं पता कि जब वो सुपर वुमन बन जाती हैं तो वो क्या कुछ सैक्रिफाइस कर रही होती हैं. यस, वी विल टॉक अबाउट दैट. और हम कोशिश करेंगे कि हर माँ का जो लोड है, जो मेंटल लोड है, उसे कम कैसे किया जाए. ठीक है, तो अगर आपके भी कोई सजेशंस वगैरह हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर. और अभी के लिए अपनी अमिता को दीजिए इजाजत, क्योंकि अगले हफ्ते इस कमाल के टॉपिक के साथ हम मिलने वाले हैं मेरी पहचान शो पर. और अभी के लिए आप क्या करेंगे, हमारे एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, या फिर अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ के आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं. अभी के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे. हम मिलेंगे अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम प्लेस. Stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
5: दोस्तों लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन।

0: किराए पर,
1: माहिरीन किराए पर।
0: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड।
1: हेल्थ गाइड,
0: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक।
1: इलाज और एहतियात तक।
0: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: दिल से देसी।
0: याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हला हला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 11:02
4: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
3: हां जी वेलकम अहलन व सहलन खुश आमदीद एंड स्वागतम सभी को। और भैया बिल्कुल 11 बज गए और आ गया हूं मैं। और भाई सभी के लिए मैं तो कहूंगा गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी मेरी मॉर्निंग तो आपके साथ अभी शुरू हुई है, भले ही आफ्टरनून आने वाला हो तो सबह नूर सबह खैर भी मेरी तरफ से। और भैया लीजिए आ गया वेडनेसडे, बुध का दिन आ गया। बुध लोग आज के दिन पैदा हुए हैं क्या? मैं उनमें से ही हूँ, मेरी पैदाइश भी वेडनेसडे की है भाई। अब आप समझ लीजिए आगे। और साथ ही भैया 1 जुलाई नया महीना हो चुका है शुरू, यानी एक नया महीने कई नया दिन नई शुरुआत। तो भाई क्यों ना नई उम्मीदें हो, नए गोल्स हो, नई अपॉर्चुनिटीज का हम इंतजार भी करें साथ मिलकर। और अगर पिछला महीना आपके लिए कामयाब रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं या रह गई थीं तो आज उन्हें पूरा करने का एक नया मौका आपके सामने है। क्योंकि हर नए दिन और हर नया महीना जो है हमें एक अच्छी शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो गुजर गया वो गुजर गया। तो साहब उम्मीद है कि दिन आपका अच्छा शुरू हुआ होगा, एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ, एक नई स्टार्ट के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, और इसी पॉजिटिव सोच के साथ और यकीन के साथ कि भैया आगे भी बेहतरीन होने वाला है इंशाल्लाह ताला, ये सोचते रहिए। और प्रोग्राम में तो आपको पता ही है आपके लिए ताज़ा ताज़ा खबरें हैं, वेदर अपडेट्स हैं, ट्रैफिक अपडेट्स हैं, आज कुछ सेलिब्रिटीज़ का बर्थडे है हमारे सिंगर्स का, उनके भी सॉन्ग हम प्ले करेंगे। साथ ही 1 जुलाई को बहुत सारी बर्थडेज हैं तो वो भी हम एक साथ मना रहे होंगे। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं, जी हां बिल्कुल। तो भैया हमारा और आपका साथ रहने वाला है पूरे 1 बजे तक, और आप तो इस वक्त बेस्ट जगह पर हैं ही, अपने बेस्ट प्लेटफॉर्म पे। तो जनाब बताइए मुझे कि क्या है आपका हालचाल, क्या है आपकी प्लानिंग, क्या है आपके लिए खासम खास दिन? आज कुछ एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो मेरे साथ जरूर शेयर करें और प्रोग्राम का हिस्सा बने। और वो कैसे बन सकते हैं? और बहुत ही आसान से 2 तरीके हैं। 666-22-107 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, और वहीं भैया 443-443-777 पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वाई डॉट 443-443-77। तो क्या कहती है पब्लिक, यहाँ पर कॉलर मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए, तो बिस्मिल्लाह कर दी जाए। चलिए साहब कर दी जाए आपका प्रोग्राम, आपका दिन। हेलो सलाम अलैकुम।
5: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
3: अहलन व सहलन नसीम भाई हमारे साथ, क्या बात है, कैसे हैं नसीम भाई, खैरियत से?
5: अल्हम्दुलिल्लाह।
3: कैसा शुरू हुआ आज का दिन?
5: अभी शुरू हो जाएगा।
3: अभी अभी शुरू होगा? मेरे साथ ही शुरू
5: तो शुरू हो जाएगा।
3: अरे नसीम भाई कैसे, इनमें पैसे ही पैसे। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर होगी इंशाल्लाह ताला। नसीम भाई कहाँ हैं अभी एग्जैक्टली, किस तरफ?
5: मतोरिया जा रहा हूँ।
3: शाहनिया से कहाँ जा रहा हूँ?
5: मतोरिया।
3: ये क्या है, मतरिया? ये कौन से जा रहा
5: है? मतोरिया।
3: अच्छा मेरे वाकई समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रही मेरी? अच्छा उससे भी आगे। ओए होए होए होए।

0: क्या बात है भाई। चलिए साहब, तो क्या कहते हैं नसीम भाई, कुछ शायरी वगैरह लेके आए आज हमारे लिए?
1: आज आपके लिए खास है।
0: खास है? ओए होए होए, चलिए साहब अता कीजिए।
1: मुझे अभी आपके पास से ही एक मेरे जहन में आया था, तो मैं सोचा थोड़ा बोल दूं। वैसे मैं कुछ बोलूंगा नहीं।
0: ओके।
1: मुझे क्या मालूम था कि आप बुद्धू।
0: मैं बुद्धू? अच्छा, वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। ओके, मुझे क्या मालूम था कि आप बुद्धू हो।
1: कि मुझे क्या मालूम था कि आप बुद्धू हो, वो न तेरे इंतजार में मैं फूल बिछा देते।
0: ये मिल तो नहीं रहा, मगर फिर भी बनाया ताजा ताजा है, इस बात के पैसे है। क्या बात है भाई। तो आज वाकई बुध के दिन जो जो लोग पैदा हुए हैं बहुत समझदार होते हैं। कहने वाली बात है क्या बुध? ऐसी बात नहीं है नसीम भाई।
1: वैसे मेरी तो तारीख है वो जुमरात
0: की है। अच्छा, आपकी जुमरात की पैदाइश है, तो चलिए कल आपकी भी आ रही है। अच्छा, बर्थडे को भी हमने अब दिनों में पार्ट लिया है। बाहर हाल नसीम भाई, हर इंसान का एक नाम होता है, लेकिन अक्सर घर वालों, दोस्तों या स्कूल के यारों ने हमें कोई ना कोई एक निक नेम दिया होता है, घर का नाम दिया होता है, है ना, एक नाम हमारा रखा हुआ होता है भाई। किसी को गोलू, किसी को चिंटू, किसी को कुछ ना कुछ। हम अपने नॉर्मल वे में भी किसी को डाक साहब भी कह देते हैं, भाई, पार्टनर, हीरो, है ना, और घर में तो नाम होते ही होते हैं। तो कुछ निकनेम्स तो इतने अजीब होते हैं कि सुनते ही भाई हंसी आने लगती है। मैं अपना भी बताऊंगा आज सबको। तो कुछ लोग अपने निकनेम से बहुत प्यार भी करते हैं, और अगर कोई असल नाम से बुला ले तो अजीब सा लगता है, सुनते ही नहीं पहले तो कहते हैं, हाँ भाई किसको बुला रहे हो? अच्छा, मुझे बुला रहे हो, ओके ओके। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने निकनेम सुनते ही भाई शर्मिंदा भी हो जाते, कहते हैं यार ये नाम मत लो यार, क्योंकि है ना मसला है यार, ये शर्म हो जाएगी यार, तो उनको कहीं ना कहीं शर्म भी आती है। तो आज का हमारा मुद्दा जो है, आज का हमारा टॉपिक जो है, वो यही रहने वाला है। क्या आपको अपना निकनेम जो है, घर का नाम जो है, प्यार का नाम जो है, उससे मोहब्बत है, और वो क्या है, या उसे सुनकर आप शर्मिंदा हो जाते हैं, शर्माती, छुपाना चाहते हैं, और आपका निकनेम किसी को आप बताना नहीं चाहते अपना नाम जो है। तो ये बताइए नसीम भाई, घर का नाम पहले तो क्या है, और आप खुश होते हैं इसको सुन के?
1: मेरा नाम तो नसीम ही है, मेरे ननियाल वाला तो हमेशा यही नाम से पुकारा है,
0: ननिहाल वाले।
1: ददियाल वाले कुछ नाम रखे हुए थे जो मुझे पसंद नहीं और किसी भी पसंद नहीं।
0: अच्छा, क्या क्या है बताओ, बताओ तो यार, नसीम शेयर करो यार, बताओ तो सही क्या है,
1: बताने वाले नहीं।
0: अरे बता दो यार कोई ऐसे, भाई प्यार का नाम है तो प्यार से भरा हुआ ही होगा।
1: प्यार से नहीं था, वैसे ही लोग रखे
0: यार। देखो ये बताना तो पड़ेगा नसीम भाई, ऐसी बात नहीं है, हल्के से बता दो, खाली मुझे बता दो हल्के से, कोई नहीं सुनना।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह।
0: यार बता देते तो मजा आता यार नसीम भाई, अपना ही प्रोग्राम है यार, अपने ही लोग हैं सब सुनने वाले, बता दो, कोई बात नहीं। छोटू फिर?
1: छोटू
0: तो बहुत अच्छा है। फिर भी बता दो नसीम भाई यार, आई इंसिस्ट, नहीं बताओगे यार? यही तो देखो प्रोग्राम का मौजू है, आज ही बताते तो मजा आता है। आधा बता दो, आधा आधा बता दो, आधा आधा, अरे बता दो यार, इतना कहलवा रहे हो। फिर कभी यार, ऐसा भी क्या है, प्यार का नाम तो इतना भी वो नहीं होता। अच्छा, कुछ मतलब ज्यादा ही टेढ़ा है लग रहा है। क्या गुस्से में रखा है? अच्छा अच्छा, चलिए साहब, टेढ़ा है मगर मेरा है। नसीम भाई का भी प्यार का नाम जानने की हम कोशिश करते रहेंगे। बहरहाल और कुछ शेयर करना चाहते हैं नसीम भाई?
1: बस इतना ही।
0: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।
1: हैं? कुछ आता है तो बोलता।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शेयर कीजिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्वातीन हजरात, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज का जो हमारा भैया मुद्दा है, मौजू है, उस पे यही बात हो रही है कि आपका घर का नाम जो है वो क्या है भाई, और क्या उसको लेने से आपको शर्म महसूस होती है या आप खुशी का इजहार करते हैं और चाहते हैं। भैया मैं बता दूं जैसे आज सबको, और अगर किसी को हंसी आए तो बात अलग है, और कोई मेरे नाम को मैच करना चाहे तो भी बात कुछ और है। मेरा नाम घर का या निकनेम जो है वो है डिम्पू। कौन कौन हंसा सुन के? और मुझे बचपने से ही डिम्पू के नाम से बुलाया जाता है, और डिम्पू से ही मतलब घर में भी, और यहाँ तक के स्कूल कॉलेज तक में भाई हमें तो टीचरों ने भी डिम्पू कह दिया, इतना ज्यादा हमारा नाम अच्छा लगा सबको। तो भाई आप भी बता सकते हैं अपना नाम, और हमारे साथ आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं और कॉल करके भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं। कभी कोई आपको ऐसा किस्सा याद आता है इस नाम की वजह से, इस बात की वजह से, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 4434377 पे कॉल कर सकते हैं या 2222107 पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई और हमारे साथ जुड़ गया है, आइए जानते हैं उनका क्या है घर का नाम। हेलो, सैयद खादिम हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, कैसे हैं आप?
2: बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सब ठीक है, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाम तो शुक्रिया आपको डिम्पू बोला हुआ है, डमरू नहीं बोला।
0: बिगाड़ लो। देखो आज सच्ची बात है भाई, मैंने कहा ना दूसरों का भी जानूंगा तो अपना भी बताऊंगा, तो अपना तो बताइए क्या है।
2: नहीं, वो बात तो सही है, शुक्र है डमरू नहीं बोला।
0: अरे बस करो, कितनी बार रिपीट करोगे, मैंने एक बार सुन लिया।
2: ये तो सबर करो, फजील भाई और कबीर भाई, नाजिया बहन, ये सबको पता चले ना।
0: अरे सबको पता है भाई, आपसे लगता है कि नहीं पता होगा।
2: तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे पता ना चला अभी तक?
0: देखिए आज जो जाहिर कर तो रहा हूँ मैं, तो खादिम भाई क्या कहते हैं अपना नाम तो बताइए।
2: अपना नाम एक बार ऐसे कि मुझे अगर किसी ने हादिम भी हो बुलाया ना, तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: अच्छा,
2: इसीलिए हमारे बाबा बहुत सख्ती से मना करते थे।
0: अच्छा,
2: जो नाम है वही नाम लिया करो, नहीं
0: बड़ों का कहना।
2: नाम ऐसे मेरा बेटा है, अभी मैं अपनी बात करूं कि मेरा बेटा जाहिद हुसैन नाम है उसका, सैयद जाहिद हुसैन बड़ा बेटा, उसको जाहिद किसी ने बुलाया,
0: ठीक है,
2: और हमारे बाबा ने सुन के इतना गुस्सा, इतना
0: जाहिद हुसैन क्यों नहीं कहा इसको, पूरे नाम से क्यों नहीं बुलाया है, ऐसे ही है,
2: पूरे नाम से क्यों नहीं बोला। अगर ये जाहिद बोले जो कि हल हो सकते कल बाहर दूसरा कोई और नाम रखे, ये तो ये आज तक हमारी फैमिली में किसी ने भी ऐसा नाम नहीं रखा, वो निकनेम यानी वो जो पूरा नाम लेता है,
0: पूरा नाम लिया जाता है आपकी फैमिली में। ओके,
2: पूरा नाम लिया जाता है।
0: मगर फिर भी देखो प्यार से तो कही देते हैं भाई, देखिए बेटा है मेरी जान, मेरे छोटे, मेरे बेटे, मेरे प्यारे, ये तो चलता ही रहता है। खैर ये तो प्यार
2: में चलते रहता है बेटा। असल में हमारी एक ये रिवायत है कि हम लोग जो बेटी होती है उसको भी बेटा ये करो बेटा वो करो।
0: एग्जैक्टली, अपना हमारे भी ऐसे ही सेम है वो, क्योंकि और ये अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, इट्स नॉट अबाउट के हम बेटे की वजह से बेटी को भी बेटा कह रहे हैं, वो क्योंकि इक्वालिटी हो, बेटा ही निकलता है यूजुअली मुंह से, आए मेरा बेटा प्यारा, ऐसे ही निकलता है।
2: बिल्कुल, असल उसमें ये वजह से जो उर्दू स्पीकिंग है ना
0: जी,
2: उर्दू स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग, वो यही बोलते हैं। बाकी कभी भी मैं आप सुनो इंग्लिश वाले नहीं बोलते, दूसरी लैंग्वेज वाले नहीं बोलते।
0: क्या बात है, क्या तो, बात है, हाँ, क्या बात है।
2: उर्दू और हिंदी ये दोनों लैंग्वेजेस ऐसे हैं कि ये इसमें रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है।
0: एग्जैक्टली, ये बात तो है खादिम भाई, ये बात तो है, हमारे यहाँ इतने ज्यादा लिहाज है माशाल्लाह उर्दू और हिंदी दोनों में, है ना, बड़ों का छोटों का हर तरीके से उनका नाम जो है वो हम लेकर बुलाते हैं, प्यार का हो, मोहब्बत का हो, और वहीं माजरत के साथ जब गुस्सा आता है तो जलालत भरे नाम भी बहुत रखे हुए हैं। मतलब हमारे काफी चीजें ऐसी हैं कि आप बिल्कुल माजरत के साथ तकलीफ पहुंचा दें इंसान को, दूसरी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
2: वो बात सही, तो बात सही है बिल्कुल, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन हमारी जुबान में जो आप यानी हम लोग ये तुम गलत है।
0: हाँ बिल्कुल सही,
2: हम लोग ज्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं।
0: बिल्कुल सही,
2: और अगर इंग्लिश में यू है, उसके अलावा तो कुछ और नहीं है।
0: बिल्कुल,
2: वही है ना,
0: तो हम अपना आप लगा दिया करें ना, हर जगह इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं आप, यू वेयर आर यू गोइंग आप।
2: लेकिन ये है कि माशाल्लाह उर्दू और हिंदी ये रेस्पेक्ट वाली जुबान है, बहुत ज्यादा एहतराम है माशाल्लाह।
0: अच्छा खादिम भाई यार, एक माजरत के साथ अब मैं नाम रख देता हूँ आज आपका, कोई प्यारा सा, क्या कहते हैं?
2: ये तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता,
0: बोले नहीं, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा अंजलि। यार अंजलि से मैं याद आया कि हमारे वो एक भाई और थे जो सुनील शेट्टी से मिलते हैं, क्या नाम है यार उनका, याद नहीं आ रहा मुझे, वो आजकल गायब है यार बिल्कुल। हाँ वो अपने, अगर हमें सुन रहे हैं तो मैं देखूं जरा अगर मुझे फोन में कहीं मिल जाता। खैर आप अपनी बात मुकम्मल करें खादिम भाई।
2: अच्छा बस चलो ठीक है, मेरी बात कंप्लीट हो गई और बस सबको सलाम और आपके लिए भी सलाम। बस यही कि हमारे हमारे फैमिली हमारी फैमिली में ये निक नेम, ये छोटे छोटे नाम, ये बिल्कुल कोई भी नहीं ले सकता,
0: कोई नहीं ले अपना, सकता
2: अपने नाम से कि ये।
0: चलिए मैं रखूंगा जल्दी एक, आपको तीन चार नाम भेजूंगा, उसमें से बताइएगा आपको कौन सा पसंद आया।
2: नहीं वो नाम चेंज करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए अपने पूरे जो लिसनर्स हैं ना, सुनने वालों को दावत देनी है फिर।
0: ओहो सब एक साथ बैठेंगे फिर नामकरण होगा।
2: चलो बहुत
0: चलिए भाई, खादिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया,
2: खुश रखे सलामत रखे, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते और आपको सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अहलन वसहलन सर, थैंक यू सो मच, सेम हियर,
2: खुश रखे, अस्सलाम वालेकुम,
0: आमीन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हां भैया छोटू गोलू गप्पू मेरे प्यारे, कौन कौन है आइए और बताइए। मैंने देखो अपना नाम बता दिया भाई सबसे पहले ही। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब क्या हाल चाल, खैरियत?
0: जैस भाई
3: जी भाई,
0: यहाँ तो पूरी दुनिया आपको प्यार के नाम से ही बुला रही है यार, क्या बात है, आपका तो नाम पूरी दुनिया में यही मशहूर है भैया। ये अच्छा हुआ यार, इसलिए सही वक्त सही दिन पे कॉल करी आपने। कैसे है? मैं सभी को बता दूं इनका नाम जसीम है और जसीम को प्यार से जैज कहा जाता है, म्यूजिक की जो धुन है उस पे इनका नाम रखा गया है। क्या बात है भाई, जैज भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? जैज भाई ये नाम दोस्तों ने रखा है या घर वालों ने?
3: नहीं दोस्तों ने रखा भाई,
0: दोस्तों ने रखा। घर में कुछ और है? मेरे भाई जस्सू कहते हैं क्या?
3: अगर अभी घर में भी सब जैसी बोलते हैं, क्योंकि जब से दोस्त ने नाम दिया है तब वही बोलते हैं।
0: अरे भाभी तो किसी और नाम से बुलाती होंगे ऐसे?
3: नहीं भाई वो डायरेक्ट जसीम बोलती हैं।
0: ए इधर आ इधर आ,
3: डर लगे भाई। नहीं अपनी हमें जो है ना अपनी मैडम की पर्सनैलिटी से डर लगे भाई, सब माशाल्लाह जो है ना पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त है, डुबले इंसान है।
0: क्या बात है यार, जबरदस्त भाई जबरदस्त। तो घर वालों ने भी, अच्छा देखिए भाई ये भी कितनी शानदार बात है कि दोस्तों ने प्यार का नाम दिया जो घर तक पहुंचा, क्या कहने यार, वाह।
3: नहीं वो इसलिए है ना भाई क्योंकि मेरा एक ही दोस्त है।
0: अच्छा ऐसा भी है, उनका नाम क्या है?
3: बचपन से वो ही है और वही अभी तक है और आगे भी।
0: नाम तो बताओ।
3: आमिर खान
0: कौन से, वही बॉलीवुड वाले?
3: नहीं भाई साहब बॉलीवुड वाले में कोई बोल नहीं।
0: अच्छा आमिर भाई के पार का नाम क्या? अम्मू, आप उनको क्या कहते? अमीर,
3: मीर, मीर।
0: अच्छा मीर, ओके आखिर आधा ले लिया। हाँ मीर, अच्छा नाम है यार, क्या बात है यार। चलिए साहब जबरदस्त, और कहाँ हैं अभी जैस भाई?
3: बस घर पे ही है भाई, मंगा थोड़ा बाहर को निकले, मंगा देखे यार भाई होंगे, भाई ने बोला है कि हाजिरी लगानी है।
0: मेरा भाई कैसा, जैस भाई में पैसा ही पैसा, गर्मी क्या कह रही है, बाहर निकलते ही नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी
3: भाई साहब, बस घूमने दे रही हूँ, थोड़ी सी देर रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, अभी जो है मिश्रा तैयार कर दूँ,
0: नहीं छोड़ूंगी इस बार, नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है यार, और कुछ शेयर करना चाहते हैं जैस भाई?
3: नहीं बस भाई आपसे बात हो जाए वही सबसे बड़ी शेयरिंग है
0: यार, मोस्ट वेलकम,
3: आपकी हंसी आपकी मुस्कुराहट सुनने बस वही काफी है,
0: मोस्ट वेलकम, मोहब्बत है, बड़प्पन है और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच जैस भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हाँ भैया चिंटू बबलू, बबलू यार कितना कर रहा था यार, बबलू और भी हैं हमारे यहाँ तो, पप्पू भी हैं। पब्लिक भाई क्या कहने यार, मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं और नाम रखने वालों की कमी नहीं।

0: कहाँ से प्यारा नाम घर वालों से यार दोस्तों से
1: जो जो रखे हुए हैं जितने नाम हैं जितने पासपोर्ट लिए टहल रहे हैं आप सारे बताइए
0: जितने नाम है आपका नाम तो ठीक है मुदस्सर खान पंकज
1: अब वो तो ठीक है घर वाले क्या कहते हैं
0: घर वाले तो खैर अपने नाम से
1: अरे बताओ यार शेयर करो शर्म की क्या बात है मेरा डिम्पू है मैं तो नहीं शर्मा रहा
0: नहीं नहीं खैर बड़ों का तो सर भाई हम वो नहीं है लेकिन हमारे जो छोटे हैं हमारे भांजे भांजे वगैरह जो छोटे भांजे होते हैं
1: हाँ
0: हाँ वो क्या बोलते हैं मेरे को चाचू मामू बोलते हैं वो मेरी को सर भाई
1: अरे वो तो रिश्ता हुआ ना यार वो तो ठीक है वो तो समझ में आता है मगर फिर भी कोई
0: मुझे पता है आप निकनेम की बात
1: अच्छा भाभी किस नाम से बुलाती चलिए वही बता दी अच्छा चलिए तो आपका भी कोई ऐसा खास पड़ा नहीं है नाम अभी तक है
0: मैंने बोला ना कि गवारों अपने नाम से बुला दे बाकी जो दोस्त है वो दूसरे नाम से बुला दे जो निकनेम रखा है
1: वो क्या है
0: वो है नायक
1: नायक ओए होए ये क्यों रख दिया फैसला करने वाला
0: मेरे ख्याल में नायक आप सिंपल उर्दू का लफ्ज है हम पश्तो में भी नायक बोलते हैं और उर्दू में
1: हाँ हाँ नायक हिंदी में भी नायक है भाई
0: एग्जैक्टली उसका जो वो लोग जिस प्रकार से मेरे को बोलते हैं या ये जो नाम रखे है मेरा निक नेम वो जो हमारे ग्रुप था जो हमारे दोस्त थे उस समय थोड़ा सा सीन आता थोड़ा सा
1: हाँ.
0: तो वो लोग जब हम लोग दोस्त बाहर वगैरह
1: बिल्कुल क्योंकि मेरा नाम भी आसपास है सर्वर का भी एक मतलब जो होता है लीड करने वाले का होता है और नायक भी वैसे ही हीरो हो गया लीडर हो गया
0: एग्जैक्टली सरबरा या लीडर या
1: सही
0: सर भाई आप तो हमारे दोस्ती मुझे बस नायक बोलते थे
1: वाह अच्छा यार ये तो आपके शरीफ दोस्त हैं यार वरना तो क्या क्या नाम पड़ रहे आपको क्या बताऊं मैं आप तो जानते ही हैं
0: सरल भाई हो शरीफ जब मैं हो शरीफ तो काफी बात है वो भी शरीफ होंगे और मैं भी शरीफ रखा
1: है खत्म हो गई अब मैं कुछ नहीं कह सकता आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई वाह तो कहाँ है मुदस्सर भाई अभी किस जगह है नहीं एग्जैक्टली है किस जगह अभी
0: एग्जैक्टली शमाल रोड
1: ओके क्या हाल है ट्रैफिक वगैरह ऑल सेट
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सेट है ओके रिपोर्ट ओके
1: ओके रिपोर्ट है चलिए साहब क्या कहने बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई या कह लूँ मेरा दोस्त है मुदस्सर उसको मैं मैडी कहता हूँ एक्चुअली और यूजुअली मुदस्सर के नाम से मैडी हमारे लड़कों में तो बहुत आम है तो चलिए साहब
0: चलो जो हमारे कतर में हमारे दोस्त है जो हमारे रूम में रोमेट है जो हमारे दोस्त रहते हैं मेरे साथ रूम में वो मुझे मूडी बोलते हैं
1: मूडी ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है मूडी है आप बहुत अच्छा मतलब
0: ये मैं बोला था लेकिन हम भी बोलते हैं मेरे कहा चलो ये भी बोल रहे
1: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया मैडी भाई हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना नाम शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और बात होगी जरूर
0: चलो सर भाई बहुत शुक्रिया
1: ओके ओके अल्लाह हाफिज हाँ ओके तो भाई ये हो रहा है इस वक्त और क्या क्या नाम है आप लोग भी अपने शेयर कर सकते हैं हमारे साथ और यहाँ नाम शेयर करने वालों की बाहर तो चलिए साहब ब्रेक पे नहीं जाता हूँ अभी पहले नाम जान लेता हूँ खूब सारे नए नए हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं
1: खो कर
2: सरदार भाई नहीं बोलूंगा अरे भाई बोलूंगा
1: तो मेरा नाम सुना नहीं शायद घर वाला तुमने मुझे लग रहा है
2: यार मैं आपने पहले ही जना खादिम भाई को बोला बार बार नहीं दोहराया मैंने सुन लिया है तो इस वजह से मैं
1: नहीं नहीं भाई बोलता अरे मुझे शर्म थोड़ी है तो खादिम भाई अभी नहीं बता रहे थे तो आप कोई ऐसा मसला नहीं आधी दुनिया इसी नाम से पुकार रही है खैर वैसे हमदा आपका क्या घर का नाम है ये बताइए प्यार से क्या बुलाया जाता है गोलू
2: भाई नहीं घर पे तो कुछ नहीं किसी ने कोई नाम नहीं दिया और बाहर जो है हाँ घर पे मुझे किसी ने कोई नाम नहीं दिया सिंपली हमजा के नाम से बुलाते रहे
1: ओके नाम ही

0: प्यारा है माशाल्लाह। वैसे दोस्त क्या कह के बुलाते हैं या छेड़ते हैं?
1: दोस्तों ने भी शुरू से ही हमदे ही कहा है, लेकिन मैं जो अपनी शॉप पे खड़ा होता रहा हूँ, अपनी शॉप संभालता रहा हूँ, तो उस वक्त जो है मुझे जो बुजुर्ग वगैरह आते थे मेरे शॉप पर, उन्होंने मुझे मेरे वाले साहब के नाम से बुलाना होता था।
0: ओके।
1: और उन्होंने सीधे वाले कहने रियाज, निक्के रियाज।
0: अच्छा, ठीक है, मतलब छोटे रियाज, छोटे रियाज है निक्के
1: जी,
0: निक्के निक्के रियाज, क्या बात है यार। ये भी अच्छा है,
1: वो होता रहा। बाकी अब जो है दोस्तों में सिर्फ एक ही नाम फैला हुआ है।
0: होते तो बहुत है यार हम भाई, हमारी मजबूरी है कि हम शेयर नहीं कर सकते।
1: नहीं, मैं वैसे आपकी स्टार्टिंग वाली बात से मैं यही सोचा था, मैं यार कभी जिंदगी में नाम पढ़ा ही नहीं भाई।
0: चाहिए, अच्छा है, अच्छी बात है। ये तो एक मजाक का पहलू है और एक हकीकत है जो मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ऐसे नाम रख लेना और उनसे पुकारे जाना, उसके बारे में भी बताऊंगा।
1: पूरे घर में किसी का कोई नाम नहीं रखा गया।
0: वेरी गुड,
1: सबके नाम प्रॉपर नाम ले जाते हैं। और हाँ, प्यार में मैंने जो है ज्यादातर मैं अपने छोटे बहन भाइयों को चंदा, बेटू या जानिया ऐसे नहीं करो, या अपनी बेटी को भी इसी तरह।
0: अब हम रोक रोक के परेशान हो जाते हैं, हमें हमारे नाम से कितने कम लोग बुला रहे हैं और ज्यादातर घर के नाम से जाए भैया, ऐसा क्यों, असली नाम तो बुला लो।
1: और आपने भी आगे थोड़ी देर पहले कहा था ना पप्पू भी नाम है किसी का।
0: हाँ, गोलू है, बबलू है, पप्पू है, शालू है,
1: हमारे
0: शीलू है,
1: हमारे उधर एक अंकल है, अंकल है, भाई नहीं अंकल है, तो उनका नाम है पप्पू शाह।
0: ओके ओके।
1: और उनको पूरी दुनिया पप्पू शाह ही बोलती है, नाम नहीं किसी को।
0: अरे अरे बहुत, बिल्लू बिल्लू जैसे है वो मोहल्ले में होते हैं, तो वो असली नाम पता ही नहीं होता किसी को।
1: आपको एक बड़े मजे का सीन बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक फैमिली रहती है, वो बांग्लादेश के कराची की बात कर रहा
0: हूँ,
1: तो वो जो आंटी है ना अराउंड 70 प्लस होंगी।
0: ओके।
1: तो उनको ना सारे भाभी भाभी बोलते हैं।
0: अच्छा, मतलब अच्छा, ओ ओके, मतलब बड़े छोटे बच्चे।
1: हाँ,
0: होता होता है, एक ऐसे भी है, ऐसी कई शख्सियत होती है मोहल्ले के अंदर, ऐसी कई शख्सियत। अब भाई मैं अगर अपने घर की बात करूं तो हमारी जो दादी थी उनको नानी कहा करते थे, जैसे उनके नवासे और नवासियां, तो हमारे अब्बा अम्मा सब लोग उनको नानी कह के ही बुलाते थे। अरे नानी
1: भाई, वही कहानी है ना
0: अपनी अम्मा को भी,
1: बच्चा वो भी भाभी, छोटा बच्चा वो भी भाभी, जो उनसे बड़ी एज का बंदा है वो भी भाभी।
0: और लेडीज के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उम्र छुप जाती है तो सबके लिए भाभी, कोई किसी के लिए कुछ नहीं।
1: और पहले तो ऐसा होता था कि मोहल्ले में जो बूढ़ी माइयां थी, ठीक है, तो वो अगर उन्होंने कोई शॉप वगैरह बनाई हुई है तो चीज वाली आंटी हो गई या चीज वाली खाला हो गई।
0: ऐसा ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल,
1: खाला हो गई।
0: यार क्या क्या याद आ गया,
1: सारे खाला ही कहते थे, चाहे छोटे चाहे बड़े, सबने खाला ही कहना।
0: सही। और वो स्पेसिफिक चीज जो उनके मिलती है तो वो उसका नाम पहले लगा दिया जाता है, चीज वाली खाला। चीज वाली
1: खाला, सुपारे वाली खाला।
0: अरे भाई,
1: पढ़ा रही है तो वो सुपारे
0: वाली खाला। अब अगर नाम अच्छा है जबकि देखा जाए तो भाई सुपारे वाली खाला खुशी की बात है, बट ये नाम रख दिए जाते हैं। सही सही है। चलिए साहब,
1: चलता है,
0: और कुछ शेयर करना चाहते हैं?
1: मजा आया आपका नाम, मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपको सामने रख के आपका।
0: बिल्कुल मिलता जुलता है भाई, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। अब नहीं बताऊंगा, जितनों ने सुन लिया सुन लिया, अब आगे नहीं बताऊंगा किसी को भी। ओ माय गॉड, तो कैसे हमजा और कहाँ है अभी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं फिलहाल त्यौहार माल के सामने से गुजरता हुआ कतर यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ।
0: क्या रिपोर्ट है ट्रैफिक की?
1: ट्रैफिक अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, आज तो गर्मी भी बहुत कम है यार।
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह निकला,
0: अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी खैर होगी इंशाल्लाह। मतलब तपिश उस हिसाब से कम है जितनी कल थी, ऑब्वियसली तो अल्लाह ताला एक दिन। हाँ बिल्कुल,
1: सूरज भी छुप छुप के निकल रहा है, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा साया आ जाता है।
0: चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला भाई सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पानी वगैरह सब पीते रहें और बहुत ही ख्याल से ड्राइविंग करें इंशाल्लाह ताला।
1: आपके लिए शेर निकाला था मैंने।
0: आए हाय हाय हाय हाय हाय हाय, नहीं व्हाट्सएप क्यों भैया, पढ़ दो यार, याद है?
1: दोबारा निकालना पड़ेगा, शेर याद नहीं रहते, एक मिनट मेरे पास है।
0: अरे देखो, निकालो निकालो,
1: जस्ट गिव मी अ मोमेंट,
0: शेर ही निकालना, कुछ और।

0: मसला हो जाएगा अगर निकाल लिया तो?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इकबाल साहब का
0: अरे वाह वाह वाह, इरशाद
1: लिखा है, पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी।
0: पर्दा आंखों से हटाने में, अरे हल्के हल्के यार मजा लेते हैं, उसकी चाशनी इकबाल साहब का शेर है यार। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी,
1: हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर,
0: हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी।
1: जमाना जान गया था कितने वफादार हैं हम।
0: ओए होए होए होए, जमाना जान गया था कितने वफादार हैं हम,
1: मगर तुम्हें ये बात समझाने में बहुत देर।
0: नहीं यार, मैं तो तुम्हारी वफा का पूरा एहतराम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर जहां तक ये शेर पहुंचाना है मैं पहुंचा दूंगा। बहुत खूब भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप पहले ही हाथ पीछे कर लें या खुद पीछे हो जाए ना, तो वो आपके लिए भी मुस्बत साबित होते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: दूसरे इंसान के लिए भी बहुत मुस्बत साबित होते हैं।
0: वाह,
1: मैं ये समझता हूँ कि इंसान को देख कर और ये चीजें नोट कर कर चलना चाहिए कि यार जहाँ आपकी कदर नहीं है या आपकी वैल्यू नहीं है, कोशिश करें वहां से थोड़ा सा कदम पीछे करना, ताकि अगले बंदे को आपकी एक तो वैल्यू हो
0: वाह,
1: और दूसरा आपको वो चीजें फेस नहीं करनी पड़े जो आप आगे जिंदगी में कर सकते हैं, आपको शर्मिंदगी नहीं फेस करनी पड़े।
0: बिल्कुल सही,
1: तो
0: है
1: ये कहानी है
0: आपकी, ये बातें बड़ी अच्छी लगती है मुझे, और कम उम्री में इतनी जहानत वाली और बुर्दवारी वाली बातें आपकी वाकई काबिले तारीफ है, एहतराम है, और आप वैसे भी बहुत प्यारे हैं हमजा भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमजा, थैंक यू, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन, जज़ाकअल्लाह भाई, शुक्रान शुक्रान, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हाँ भैया राजू, इधर आइए भैया, जरा पानी पिला दे। घर का नाम आपका कौन सा है? आज सरन साउंड पे इसी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, और क्या वो नाम आपको पसंद है या उससे आप छुपते फिरते हैं? आज कर दो इजहार यार, कोई बात नहीं, देखो मैंने भी बता दिया सुबह सुबह। एक कॉल और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ब्रेक की जाने। हेलो, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई।
2: जी सर,
0: क्या बात है, आपकी तो वैसे ही नाम में इतनी नजाकत है कि आपने नाम के आगे ही नजाकत लगवा ली है। फिर भी घर का नाम क्या है नदीम भाई?
2: घर में तो वैसे मुझे सब लोग नदीम से ही ज्यादा।
0: अरे यार ऐसे कोई सची नहीं बताना चाह रहा यार, हाथ हो गई, मैंने नाम बता के अपना गलती कर दी शुरू शुरू में।
2: नहीं नहीं नहीं, वैसे ही जो मेरा निकनेम जो है वो नदीम ही है, लेकिन सब लोग मुझे अब्दुल समद के नाम से जानते हैं।
0: ये तो खूबसूरत नाम हुआ यार, मैं तो वो पूछ रहा हूँ जो बिगाड़ा गया।
2: मैं आपको एक बात और बताऊँ, मेरे वालिद आला उनको जन्नत नसीब करे, वो मुझे कहते थे कि तुम्हारा नाम जो है वो खुर्रम है, तो वो मुझे खुर्रम साहब कहते थे।
0: ओ अच्छा, ओके ओके। अच्छा हाँ, नहीं ऐसा होता है कि पहले नाम कुछ और रख दिया गया, मतलब असली नाम ही असल नाम ही, और फिर वो पसंद नहीं आता फिर वो चेंज किया जाता है, या किसी ने कुछ और रखना था और भी कुछ उसके पीछे, खैर हम उतना डीप नहीं जाएंगे, मगर वजूहत होती है तो नाम चेंज भी कर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, और गलमन शायद मैं भी इस बात का शिकार हुआ था, मुझे याद नहीं, हमारी अम्मा बताया करती थी पहले ये नाम रख रहे थे फिर तुम्हारा नाम हमने ये रखा, मैंने कहा अच्छा किया, चलो जो भी पहुंचा अच्छा ही पहुंचा, अल्लाह ताला ने रखवा दिया।
2: माशाल्लाह मेरे बेटे हैं, तो मैं बड़े वाले बेटे का नाम अब्दुल मोहसिन है, लेकिन मैं उसको हसमुख कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: हसमुख?
2: हसूनी, हसूनी,
0: हसूनी क्या मतलब हुआ इसका, कोई मतलब है या मतलब प्यार में ही बस?
2: नहीं, प्यार में, प्यार में।
0: अब तो हंसते ज्यादा है क्या माशाल्लाह वो मोहसिन?
2: जी जी,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको इस हस्ते में।
2: वो उमरान है, तो उनको मैं, उनको सब घर में उन्नी उन्नी कहते हैं, उमरान को उन्नी।
0: बेचारा अभी तो बर्दाश्त कर रहा है, बड़ों के यही कहेगा क्या कर रहे हैं उन्नी उन्नी, हटो यहाँ से, तभी से नाम लेके बुलाया करो।
2: तीसरे नंबर पे चलो सलमान है, वो उनको सब, मैं तो सल्लू भाई कहता हूँ, उसको सब बूंदू बूंदू करके बुलाते थे
0: क्योंकि नाम ही ऐसा रख दिया।
2: जी, और तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे अफजान, तो सब उसको अज्जी अज्जी कहते हैं, अज्जी अज्जी।
0: वाह, यानी अज्जू, अज्जू भी नाम अक्सर पड़ जाता है, और मतलब बड़ा कॉमन नाम है हमारे यहाँ देखा जाए तो। सही, चलिए।
2: और लास्ट वाले जो है माशाल्लाह उनका नाम शाजिल है, तो अच्छा। मैं उन्हें शाज शाज कह देता हूँ,
0: शाजिल
2: भाई के। जी, बस प्यार में।
0: बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने

0: अपनी बात शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू
1: भाई, आपने उस दिन मुझे बड़ा जबरदस्त गाना सुनाया और मैंने बहुत फील करके गाना सुना।
0: अच्छा चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच।
1: और हाँ, मैं तो आज आपसे मुलाकात करना था मुझे, लेकिन अच्छा। मैं अभी बस उधर से निकला हूँ आधे घंटे पहले, अभी कतर यूनिवर्सिटी पहुंचूं।
0: चलिए इंशाल्लाह ताला जरूर भाई नजीम भाई, व्हाई नॉट, जब भी आप तशरीफ लाएं इधर तो जरूर।
1: तो मुझे एक बार अपना टाइम बताइएगा कि किस टाइम आप मौजूद हो।
0: जरूर जरूर इंशाल्लाह ताला, जरूर इंशाल्लाह। ओके ओके, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पलक देखूं, गमी देखूं, जहां देखूं तेरा चेहरा वहीं देखूं, भाई इससे ज्यादा क्या कहूं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से टूट गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, फजील के साथ संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और सामाजिक पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन
2: लाइव अपडेट्स बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट
1: गेम ऑन
2: वॉल्यूम अप
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: वेदर का हाल 107 देनाल।
4: हाँ जी आइए जान लेते हैं कि क्या है वेदर का हाल। और इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूं मेरे सामने भाई 44 डिग्री है टेम्परेचर और फील्स लाइक भी 44 है तो कहीं से कहीं मिलावट नहीं है भाई। और साहब इस वक्त दोहा में टेम्परेचर जैसे कि 44 बताया जा रहा है मौसम धूप से भरपूर है और आसमान ज्यादातर साफ है। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री तक जाने तक लग रहा है और मिनिमम जो है वो 34 डिग्री तक रहने के इम्कान है।

0: हल्की सी हवा भी चल रही है और हल्की बोले तो 26 किलोमीटर पर आर, जो कि अब बिल्कुल हल्की नहीं है इस वक्त, और ह्यूमिडिटी 13% पे है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा और ज्यादा आराम है आज के वेदर में। वहीं आज भी गर्मी की शिद्दत जो है वो भाई बरकरार है और वो रहेगी भी, इसलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पानी ज्यादा पी लीजिए भाई, धूप से बचने की कोशिश करें, और खास तौर पर ये जो टाइम होता है 11 से 4 बजे का, इसके दरमियान अगर कोई काम नहीं है तो फिर जबरदस्ती घर से निकलने से फायदा नहीं है, और अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, देन इट्स फाइन। तो जितने भी एहतियाती तदाबीर हैं उन पे ख्याल करते हुए, प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखते हुए ही आप अपना काम वगैरह करते रहिए। अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी का एसी और कूलेंट वगैरह सब चेक करें, सीट बेल्ट जो है उसको ज़रूर लगाएं, बांधें, और अपने सफ़र पे ध्यान दें, मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, और हमसे भी जब अगर बात करनी होती है तो फिर गाड़ी को आराम से किसी सेफ पार्किंग में लगा कर ही आप हमारे साथ जुड़ें। सही हो गया भाई? तो चलिए साहब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर आज सन एंड साउंड में सन तो अपनी हीट पे बरकरार है और साउंड आपकी गूंज रही है, और जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि हर इंसान का एक नाम होता है, लेकिन अक्सर घर वाले, दोस्त और स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में हमें एक निकनेम भी मिल जाता है या रख दिया जाता है, गोलू, चिंटू, बबलू, पप्पू, सोनू हैं या फिर शोना बाबा, ये तो घर से मिलता है, आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ठीक है, तो ऐसे नाम, आपका क्या नाम है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, कि आपको शर्म आती है उसको शेयर करने में, या आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा नाम है, बिल्कुल आराम से बोलो, आराम से लो। तो कुछ लोग अपने निकनेम से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, और अगर कोई असल नाम से बुला ले और उनका पसंद नहीं है तो उनको अजीब सा भी लगता है। तो क्या आपको अपना निकनेम अच्छा लगता है, उससे मोहब्बत है, या उसे सुनकर शर्म आती है थोड़ी सी समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर हमारे साथ कोई जुड़ गया, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 666-22107 इस पे मैसेज कर सकते हैं, और वहीं कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम डिंपू भाई
0: क्या बात है
1: क्या बात बाहर कपड़े वेट कर रहा हूँ आपका,
0: क्या बात है भाई, हैं कौन हमारे साथ ये तो बताइए, आज अपना वाला नाम जो घर वाला है वो बताना है।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है सरवर भाई, आज तो पकड़े गए।
0: अरे अपना नाम तो बताइए
1: अदील,
0: ना ना ना ना ना ना, अदील तो बात कर रहा, वहाँ पे वो घर का नाम तो बताओ बोला घर का नहीं, प्यार का नाम, प्यार का नाम, सरवर है बता ले बोलू।
1: नहीं नहीं, मुझे अपना अदील नाम है, और घर में जो पहले बुलाते थे, अब तो शादी हो गई, अब तो अदील ही कहते हैं, पहले जब शादी नहीं हुई थी तब तो मुझे दिलियां कहते थे, दिलियां
0: मुझे दादा हंसी आ रही है, शादी हो गई जो आपने बोला, उसके बाद तो कई सारे नाम हैं आपके, आप नहीं लेना चाहते तो बात अलग है, बट मैं समझ सकता हूँ अदील भाई माय गॉड क्या बात है यार अदील भाई। तो ये बचपन से ही कहा जाता है घर पे या कैसे?
1: नहीं, मुझे बचपन से जो है ना वो, मतलब मैं उधर जाता था, अपने सिस्टर की शादी जहाँ की थी ना, वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो वो सारे बड़े थे मुझसे, मैं छोटा था, और वो अदील नाम था, मुझे दिलियां पतीलियां, दिलियां पतीलियां खेलते होते थे तो मैं दुआ भी नहीं देता
0: अच्छा नहीं लगता था जाहिर। तो फिर अभी तक ऐसे ही चल रहा है क्या, अभी भी ऐसे ही चल रहा है?
1: नहीं नहीं, अब तो माशाल्लाह सारे ही अपना शादीशुदा हो गए हैं, अब कोई बाहर चला गया, कोई रहा ही है किसी से, मैं भी कतर हूँ, तो बस काफी पुरानी बातें हैं।
0: क्या बात है यार, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात रही।
1: अब तो एक ही नाम से जाने जाते हैं, मानो
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या सच्ची बात हो रही है भाई, देखिए क्या कहने भाई, क्या कहने, बहुत खूब, बड़े अच्छे हसमुख मिजाज हैं आप। कहाँ हैं अदील भाई अभी, और किस जगह हैं दोहा में?
1: मैं इस वक्त अलमीरा पे खड़ा हूँ।
0: कौन सी वाली अलमीरा, किस जगह? अच्छा, मंसूरा में, ओके, क्या हाल चाल है? अभी तो अंदर है, तो चलिए, बाहर आते वक्त ट्रैफिक वगैरह सब सेट उस तरफ?
1: हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रैफिक, कोई इतनी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक,
0: और मेरे ख्याल में वेदर में भी अभी थोड़ा आराम है अल्हम्दुलिल्लाह।

भेजा है तो मैं जरूर सुन लेता हूँ। मेरे भाई अरबाज खान ने भेजा है वॉइस नोट, तो मैं सुन लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रहमत है हमारे साथ, रहमत रेन, कैसे हैं रहमत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर वॉइस नोट यार खूब सारे आए हुए हैं और मैं भाई बिल्कुल कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ब्रेक पे जाते ही। मानी ने भी कुछ लिख के दिया, लिख के नहीं मतलब वॉइस नोट भेजा है तो सुनता हूँ मैं। कहते भाई सबको भेज दो। ओके ओके ओके, पहले तो मैं ही सेव कर लेता हूँ। अरे यार मैसेज आना, थोड़ा सा रुकें तो मैं इसको सेव कर सकूं। चलिए लगे हाथों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इधर नंबर सेव करके और बढ़ाता भी हूं। तो साहब ये एक छोटा सा ब्रेक, यूं गया यूं वापस आया।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: लीजिए साहब, बज गए 12 बज के सही 3 मिनट और आज भैया मोहम्मद इरफान और सुदेश भोसले जी का बर्थडे है। बेहतरीन सिंगर, बड़े बड़े सिंगर, तो इन दोनों को हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर कुछ बैक टू बैक सॉन्ग जो आपको हमेशा पसंद है। इरफान ने बड़े प्यारे प्यारे गाने गाए हैं। हाँ, नाम शायद उनका इतना हिट नहीं हो पाया और ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, बट अब जो मैं इनके 2-3 सॉन्ग आपको आज सुनाने वाला हूँ तो आपको एहसास होगा अच्छा दिस इज मोहम्मद इरफान। और वही कोशिश करेंगे कि भाई सुदेश साहब का भी एक गाना आपको सुनाया जाए। फिलहाल एंजॉय कीजिए ये अ वेरी फर्स्ट सॉन्ग ऑफ मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और एक और है, इसमें मुझे नाम नहीं मिल रहा अभी, कि उन्होंने भी इनका साथ निभाया है, तो बहुत ही प्यारा गाना है।
4: एक सुकून मिला,
3: दिल समझा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। एंजॉय कीजिए ट्रैक। साउंड सुन रहे हैं आप FM 107 पर दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दोस्त, सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
2: हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखिला की हर एक एक्टिविटी जरूर

जरूरी खबरें और आप की फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस सब कुछ मिलेगा यहाँ ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है MOI वीकली अपडेट आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर डोंट मिस इट

0: बात है यार, ये तो मेरे आपके दिल की बात हो गई। अरबाज खान कह रहे हैं कि मुझे वाकई नहीं पता था कि इरफान ने गाना गाया। बिल्कुल ऐसे ही इरफान ने बड़े प्यारे प्यारे गाने गाए हैं, मगर उनको उतनी पहुंच और नाम नहीं मिला। आज है मोहम्मद इरफान का बर्थडे, हम उनको कहते हैं हैप्पी बर्थडे।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: हाँ जी, वेलकम बैक, एलन वसेलन, खुश आमदीद, स्वागत हम बिल्कुल सन एंड साउंड पे। इस वक्त सन तो अपने एकदम शबाब पे और साउंड आप लोगों की गूंज रही है यहाँ पर। तो भाई अभी तक तो प्रोग्राम में जो हुआ वो तो सबको पता ही है। आज गोलू मोलू सोनू पप्पू टीटू, और टीटू भी तो होता है यार, ये भी तो सारे नाम है प्यारे प्यारे। हर इंसान का एक नाम होता है भाई, लेकिन अक्सर घर वाले, दोस्त और कॉलेज वगैरह के फ्रेंड्स जो हैं उनको एक अपना नाम दे देते हैं। उसी हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, क्या आपको अपने निकनेम से मोहब्बत है या उसे सुनकर शर्म आ जाती है? तो खैर शेयर तो हमारे साथ कीजिए, और मैंने भी देखो अपना नाम आज शेयर कर दिया सभी के साथ यार। तो यहाँ पर मैसेज नहीं, पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कौन है हमारे साथ?
2: शोएब सर।
0: शोएब भाई, शोएब भाई, अहलन वसहलन, कैसे हैं शोएब भाई?
2: अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बस अल्लाह का शुक्र है शोएब भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शोएब भाई क्या कहते हैं, क्या है निकनेम, घर का नाम?
2: मैंने आपका नाम नहीं सुना, पहले आप मुझे अपना वाला।
0: मुझे भाई डिम्पू कहते हैं, DIMPU, और प्यार से भी और गुस्से से भी यही मेरा नाम है। ऐसा मुझे कोई शर्म नहीं है, जग जाहिर है, ज्यादातर लोग इस नाम से जानते भी हैं। अगर अपने मुल्क की, अपने शहर की बात करूं तो इसी नाम से बदनाम हूं मैं, ये कह सकता हूं। अब बताइए भला, बार्टर सिस्टम चल रहा है क्या, नाम के बदले में नाम लो?
2: मेरा नाम बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, देखो मेरा नाम कसम से, मेरा नाम मेरे मामा ने रखा था सैयद शोएब जैदी, जैदी जो कि हमारा बड़े प्यार से उन्होंने रखा था।
0: हाँ,
2: और सैयद लोग हम लगाते हैं अपने नाम के आगे,
0: समझ गया,
2: पूरी फैमिली का।
0: समझ गया, समझ गया।
2: ठीक है, अभी जिस मुझे मतलब 5-6 साल का था तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, सबसे ज्यादा।
0: ओके,
2: मतलब उस टाइम के मैंने कोई सभी एक क्रिकेट ऐसा नहीं होगा मतलब मैच जो मैंने ना देखा हो, हंसी नहीं, और मैं बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता था, हद से ज्यादा अच्छी, और शोएब अख्तर को फॉलो करता था।
0: क्योंकि नाम भी आसपास ही है, और जाहिर बात है हाँ, वो आदमी भी ऐसा भाई, उसको उससे तो हर किसी को मोहब्बत है यार, मैं भी उसी में शामिल हूं।
2: बिल्कुल। तो अब जब एज के साथ बढ़ते गए, शोएब अख्तर का नाम और ज्यादा होता गया, मैं उसकी ज्यादा, मैं उसी की कॉपी करने लगा। उसका जो मतलब जो उसका जो बॉलिंग रूटीन था ना, जो उसका जो मतलब स्टाइल था, बिल्कुल उसी को कॉपी करके मैं बॉलिंग करता था, बिल्कुल एग्जैक्ट 100%।
0: तो अच्छे बॉलर भी आप इसका मतलब?
2: हाँ, बचपन से भाई मैं बहुत मतलब 5-6 साल की एज से क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, सबसे ज्यादा।
0: वाह, अच्छा लगा यार, पता चल गया।
2: तो जब से लोग मुझे शोएब अख्तर बुलाने लगे,
0: ओके, ओ हो, अरे रुको तो, जरा जोर तो डाल दू, ये तो अच्छा वाला हो गया भाई, बहुत ही अच्छा हो गया ये तो।
2: क्या हाँ, ये अच्छा वाला हुआ। अब स्कूल में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे, जो टीचर से, यार इसका नाम शोएब अख्तर है, शोएब जैदी है, मुझसे पूछे, मतलब मेरे से पूछा था तेरा नाम शोएब अख्तर है शोएब जैदी है? अरे सर मेरा नाम शोएब अख्तर है। अब घर से आया कोई, नहीं नहीं इसका नाम शोएब जैदी है। अरे यार बड़ी भारी कंफ्यूजन है। तो भाई तकरीबन मैं उस टाइम तो 4th या 5th क्लास में था, पहले शोएब जैदी चल रहा था, उसके बाद फिर वो शोएब अख्तर ही हो गया।
0: वाह वाह,
2: जब से सब लोग मेरे को शोएब अख्तर के नाम से ही जानते हैं, और आज भी डॉक्यूमेंट्स में, हर डॉक्यूमेंट्स में, हर घर में, मतलब बस सिर्फ शोएब अख्तर है, जैदी के नाम से मुझे कोई जानता
0: यार ही। ये तो कहानी वाकई शोएब अख्तर को सुननी चाहिए यार, अगर कभी मौका लगे तो उनको बताइए, उन तक पहुँचाइए ये बात भाई।
2: अरे वो अभी 2-3 साल पहले इधर आए थे ना दोहा में।
0: जी जी जी जी जी,
2: मैंने बहुत कोशिश की उनसे मिलने की, लेकिन बस मिल नहीं पाया,
0: मौका नहीं लगा। ओके यार,
2: मौका नहीं मिला।
0: इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, चलिए ऐसा भी होता है। वैसे और कोई नाम नहीं दिया गया दोस्तों ने या किसी और ने वैसे वाला, गोलू पप्पू

0: पहले तो नजरिए से नहीं देखते थे
1: मतलब
0: उसी हिसाब से मतलब जैसे कि भाई चलो भाई ठीक है भाई अख्तर छोटे अख्तर छोटू अख्तर हाँ लोगों ने कहा छोटू अख्तर
1: क्या बात है क्या बात है यार ये तो अच्छा अच्छा हुआ यार ये तो जबरदस्त मजा आया सुन के तो शुभ भाई अब चलिए आ जाते हैं अब तीन का दम की जानिब क्या कहते हैं रेडी हैं
0: नहीं अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ
1: चलो तो सही छोटू अख्तर कहाँ जा रहे हो
0: रोड पे खड़ा हूँ गाड़ी लगा के
1: साइड में लगी हुई ना कोई बात दो मिनट लगी
0: साइड में लगी
1: एक मिनट 35 सेकंड बस खाली आ जाइए जल्दी से कहीं नहीं जाने दूंगा आपको तो पता आ गए तो आम का रंग कैसा होता है ये बताइए
0: आम के रंग तो बहुत तरह के होते हैं मतलब किस तरह की बात कर रहे हो कौन से लेवल की स्टार्टिंग वाले की मीडियम वाले
1: जो जग जाहिर है जो जग जाहिर है
0: येलो येलो होता है
1: ओके फाइन किताब पढ़ते हैं या खाते हैं
0: किताब तो पढ़ी जाती है
1: पढ़ी जाती है चलिए ठीक है बहुत ही नॉर्मल बहुत ही आसान सा एक टेबल पर प्लेट में 4 लड्डू रखे हैं और टेबल के करीब 5 अफराद बैठे हैं अगर लड्डू सबको बराबर बराबर तकसीम करें तो किसके पास कितने लड्डू जाएंगे ये आप पहले पता है आपको या नहीं पहले तो ये बताइए क्योंकि अब बहुत सारे सवाल की घिचड़ पिचड़ हो गई है
0: नहीं नहीं सच में मैंने नहीं सुना ये पहले
1: अच्छा चलिए तो फिर बता दीजिए
0: 4 लड्डू है और 5 आदमी है
1: बिल्कुल
0: एक नहीं खाएगा बस और क्या चार
1: नहीं, खा नहीं नहीं नहीं ये काम है आपको दिया गया है खास तौर पे वरना बॉलिंग करने नहीं मिलेगी बांटना 5 में ये लड्डू
0: एक डायबिटीज का पेशेंट है उसको नहीं दिया
1: 5 में देना बाय 5 में देखिए फिर सुनिए एक टेबल पर प्लेट में 4 लड्डू रखे हैं और टेबल के करीब 5 अफराद बैठे हैं अगर लड्डू सबको बराबर बराबर तकसीम करें तो किसके पास कितने लड्डू जाएंगे
0: एक टेबल पर प्लेट में 4 लड्डू रखे हैं और नहीं यार मेरे को पास कर दो ये
1: कितना पास करूं और इतना तो करीब है
0: नहीं समझ में आ रहा है सच में अभी दिमाग मेरा कहीं और पर है लगा ही नहीं पा रहा हूँ
1: चलिए याद आ जाए तो जरूर बताइएगा ठीक है मैसेज कर दीजिएगा मुझे और छोटू अख्तर साहब खुश रहिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शुभ भाई ख्याल रखिए ओके सर थैंक यू सो मच तो खादिनों हजरात बच्चों बुजुर्गों दोस्तों क्या क्या नाम थे क्या क्या नाम है ये भी तो बताइए और साथ ही तीन का दम भी शुरू हो गया है आइए देखते हैं कि कौन है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम कैसे
1: हैं अल्हम्दुलिल्लाह कौन है हमारे साथ
2: मैं हूं मुदस्सिर
1: हाँ मुदस्सिर भाई दूसरे मुदस्सिर भाई क्या बात है बिल्कुल भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुदस्सिर भाई आप कैसे हैं खैरियत से हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसे ठीक है खैरियत है
1: अल्लाह का शुक्र है भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो रेडी है पहले तो बताइए मुदस्सिर भाई घर का नाम क्या है घर का नाम
2: मेरा घर का नाम वो तो फर्स्ट में सही मतलब है ना उसको तो मैं तुमको बोलता है मेरा जो असल जो फेस का बॉडी का जो कलर है ना
1: हाँ
2: वो रेड है रेड हमको फर्स्ट में माँ बाबा बहन भाई बोल देते है ना सुर
1: इसका मतलब लाल होता है अरे तो ये तो नाम सभी जगह ये तो हमारी माँ मेरा लाल मेरा प्यारा मेरा बेटा
2: नहीं नहीं नहीं मैं जो है ना मेरा जो ज्यादा है ना वो मैं दोस्तों में यही नाम दिया था
1: हाँ नहीं नहीं मैं समझ गया ये तो हमारे यहाँ भी होता है हमारे यहाँ भी कहा जाता है मेरा लाल मेरा प्यारा बेटा कैसा है मगर वो लाल वो वाला लाल नहीं होता आप तो वाकई रेड रेड इंडियन वाला लाल निकले और ये सुर कहा जाता है सुर है सुर का मतलब रेड इन पश्तो
2: सुर
1: ये भी नया पता चला आजकल पश्तो भी सीख रहा हूँ मैं सुर क्या बात है यार क्या बड़ा ही प्यारा नाम है यार आपको मिस्टर रेड कहूंगा आज से मैं कहूंगा आपको मिस्टर रेड सुन रहे हो मुदस्सिर भाई मैं कहूंगा आपको मिस्टर रेड ठीक है चलिए साहब तो रेडी हैं तीन का दम के लिए चलिए ठीक है चाय पीते हैं या खाते हैं मछली पानी में रहती है या हवा में
2: पानी में
1: ओके, एक तालाब में एक कमल खिल रहा है, एक फूल खिल रहा है जो हर रोज पहले से दुगना हो जाता है, यानी अगर एक इंच आज है तो कल दो इंच, परसों चार इंच, इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। अगर ये रोज पहले से दुगना हो जाएगा तो हिसाब लगा के बताइए कि ये

0: फूल इस तरह पूरे तालाब को कितने दिन में ढक लेगा? मैंने आपसे अलग तरीके से पूछा था, अब अलग तरीके से पूछूंगा। भाई देखिए बहुत आसान है, एक तालाब में एक अजीब फूल खिल रहा है, ठीक है? हाँ हाँ बोलते रहिए मेरे साथ, जो हर रोज पहले से दुगना हो जाता है। क्लियर? क्लियर हो गया? यानी अगर आज एक इंच है तो कल दो इंच, परसों चार इंच। क्लियर हो गया?
1: Okay.
0: इसी तरह हर रोज पहले से दुगना हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। हिसाब लगाया गया कि अगर ये फूल इसी तरह बढ़ता रहा तो वो 30 दिन में पूरे तालाब को ढक लेगा, यानी एक महीने में। ठीक है, ये तो मैंने पहला जवाब आपको अपने आप दे दिया। अब आपको ये बताना है कि ये फूल आधे तालाब को कितने अरसे में ढकेगा, जब 30 दिन में पूरे तालाब को ढक रहा है।
1: तालाब में फूल क्या कर रहा है?
0: खिल रहा है?
1: नहीं खेलता है ना, तालाब में पानी होता है तो पानी।
0: मिस्टर रेड अपनी लेके आए। अरे भाई तालाब में ही खिलता है, कमल का फूल जानते हैं, लोटस, लोटस वो खिल रहा है। चलिए ऐसे कर लेते हैं,
1: सही होता है ना, तालाब में फूल नहीं होता है ना, उदरस का फूल है तो सही है। तालाब में फूल क्या कर रहा है? फूल है नहीं तालाब में, नहीं होता है ना।
0: कमल का फूल जानते हैं आप?
1: नहीं, कमल का तो मैं नहीं जानता हूँ।
0: लड्डू लड्डू बांटने आते हैं आपको? लड्डू बांटने आते हैं?
1: लड्डू तो मैंने कहा है नहीं है।
0: अच्छा ये बात है, तो इसका मतलब जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। चलिए ठीक है साहब, नो प्रॉब्लम मिस्टर रेड, आज आपको ऐसे ही जाने
1: तो
0: देता हूँ।
1: जवाब दे रहा था वो किश्ती वाला, उसमें मेरा इमरजेंसी कॉल आ गया था।
0: कौन सा जवाब दे रहा था?
1: वो जो आपने बोला था ना कि समंदर में एक कश्ती है ना, कुछ ऐसा सवाल था।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: तो था। वो जवाब मुझे मालूम था, लेकिन इसमें इमरजेंसी कॉल आ गया था मुझे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं चलिए नो प्रॉब्लम।
1: जब मैं दोबारा फोन करता था ना, फिर वो दूसरा मुदस्सिर आ गया था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए यार मुदस्सिर भाई ख्याल रखिए अपना, और बड़ा ही प्यारा नाम है आपका, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे मिस्टर रेड हमारे साथ, जिन्होंने अपना नाम बताया, इतना ही प्यारा नाम, जितने प्यारे ये खुद। तो भैया आज जैसे कि मैंने कहा था, इरफान मोहम्मद इरफान की है बर्थडे, और वहीं हमारे पास सुदेश भोसले साहब का भी बर्थडे है। तो कमिंग अप नेक्स्ट

हां जी, तो फिलहाल एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ये गाने दोनों बर्थडे बॉयज के। पहले आ रहा है आपके लिए दर्द दिलों के कम हो जाते मोहम्मद इरफान साहब की आवाज में और साथ में नीति मोहन इनका साथ निभा रही हैं। सन एंड साउंड पे इस वक्त सर्वर मिर्ज़ा आपके साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
2: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

यू रेडी? फ्राइडे 9 पीएम लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स।

0: रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी।
0: सुदेश बोसले जी का बर्थडे भाई, इस शख्स ने ऐसे ऐसे लोगों को आवाज दी है और ऐसी ऐसी लोगों की आवाज को रिप्लेस किया है कि जब सबसे पहले तो जाहिर बात है अमित साहब की, अमिताभ बच्चन साहब की आवाज, हमें ये अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं है, ये सुदेश भोसले साहब की आवाज है जो आप सुन रहे हैं इस वक्त। इसी तरीके से कई सारे कॉमर्शियल एड, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट और बहुत सारे टीवी सीरियल्स और जो जो हम सोच नहीं सकते, इतना काम किया है इन्होंने और इतनी अपनी आवाज को फैलाया है पूरे ही बॉलीवुड में, पूरी ही दुनिया में। आज है सुदेश भोसले साहब का बर्थडे, तो उनको हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे।

0: क्या बात है साहब, शाबाश शाबाश उदित नारायण, अलका याग्निक और सुदेश भोसले साहब की आवाज में। याद है आप लोगों को कौन सी फिल्म है ये?
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड
2: आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी
3: ट्रांसपोर्ट एंड लोकल ट्रैफिक अपडेट्स।
0: बिल्कुल सही भाई, और क्या क्या हो रहा है लोकल ट्रैफिक अपडेट में आइए जान लेते हैं। फिलहाल मेरे सामने इस वक्त शहर के ज्यादातर मेन रोड्स पर तो ट्रैफिक मॉडरेट है। ऑफिस और कमर्शियल एरियाज में भी आम दिनों की तरह ही कुछ नॉर्मल मामला है, क्योंकि जाहिर बात है अब छुट्टियां शुरू हो गई हैं बच्चों की, तो ट्रैफिक वगैरह पे भी अल्हम्दुलिल्लाह असर पड़ा है। कहने का मतलब ये है कि आराम हो गया है जरा रोड्स पे। सी रिंग रोड पे भी नॉर्मल है, जंक्शन क्लियर है बिल्कुल। डी रिंग रोड पे भी मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन जाहिर बात है इस वक्त स्लो मूविंग भी है। सलवा रोड इज फाइन, लुसेल भी मैंने चेक किया, और दोहा एक्सप्रेस वे एंड वेस्ट बे एंड कॉर्निश, इंशाल्लाह ताला सब खैर है और अल्लाह ताला आगे भी खैर का मामला करे सभी के साथ। अगर आप जाहिर बात है इस वक्त रोड पे हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो भाई सारी चीज़ों का ध्यान रखें, जितनी भी चीज़ें, सबसे पहले सीट बेल्ट है और मोबाइल है, और मोबाइल का इस्तेमाल ना करना है एक्चुअली, और बाकी ये है कि पानी वगैरह पीते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिए, और मेरे साथ भी आप शेयर कर सकते हैं अगर कोई अपडेट है आपके पास तो। यहाँ पर मैसेजेस, उसके बाद हम बढ़ेंगे कॉल की जानिब। कौन है हमारे साथ? हाँ बिल्कुल, अजमल भाई हमारे साथ थे और इनके वॉइस नोट थे और इन्होंने सही जवाब दिया किसी एक पहेली का, मुझे याद नहीं, और कोई शेर भी सुनाया था, बोले कि मैंने इनकी शेर की तारीफ नहीं की जो इन्होंने कहा था, मैं याद नहीं मुझे वाकई अजमल भाई, वरना मैं ज़रूर बता देता। ओके ओके, यहाँ थैंक यू आया है। जसविंदर हमारे साथ हैं शाहजी, कहते हैं ओके बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपका भी जवाब सही है शाहजी। ओके आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ए इरफान, ओके इरफान का गाना सुन के शायद खुश हैं। एम के हैं हमारे साथ, एम के आपका नाम क्या है? रमेश यादव साहब हमारे साथ आ गए, कहते हैं दुनिया में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं पर काम के लोग चंद मिलते हैं, जब मुसीबत का वक्त आता है सब के दरवाजे बंद मिलते हैं। रमेश बाबू गुड आफ्टरनून कह के और खूब सारे आम पे, पूरी आम की पेटी भेजी है मुझे। कहते हैं सलाम सरूर भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, बिजी बॉय हैं यहाँ पे। नाम क्या है आपका बिजी बॉय? मैसेज तो आपने भेज दिया। इमरान खान हमारे साथ, कहते हैं निकनेम तो बहुत सुना है, आज मंसूरा में खाना खाया। ओके नाम बता रहे हैं रेस्टोरेंट का, मगर कहते हैं शायद ये इसका ओके चाय।

0: हमारे पीते हैं लेकिन ओके इमरान मैंने मैसेज पढ़ लिया है बट थोड़ा मैंने उसको सेंसर कर दिया है. कहते हैं मेरे दोस्त जितना हैं सब गोरे हैं, मैं थोड़ा काला हूँ. यार ज्यादा भी काला नहीं, इसलिए सब लोग मेरे को कालिया बुलाते हैं, बट जो मेरे से भी अच्छा थोड़े ज्यादा काले हैं वो भी मेरे को कालिया ही बुलाते हैं. तो इनका नाम कालिया है एक्चुअली ये कहना चाहते हैं. तो हैं कौन हमारे साथ? महफूज रोबन. महफूज भाई का घर का नाम कालिया, शत्रुघ्न सिन्हा का भी था एक टाइम पे. अस्सलाम वालेकुम अमजद इकबाल पाकिस्तान से. ओ अमजद भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. देयर इज एन अपडेट फॉर यू अमजद भाई. और बाकी लोगों को भी अपडेट कर दूं मैं, अमजद भाई और अपडेट को मिला दिया मैंने. वो ये कि अगर आप इस वक्त जैसे कि अमजद भाई पाकिस्तान चले गए फॉर गुड एंड ये इनकी मोहब्बत है, बड़प्पन है कि हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं. और इनका भी इनाम निकला जैसे बाकी लोगों के इनाम निकल रहे हैं, अभी तक जिनके नहीं आए उनके भी इनाम पहुंच जाएंगे, बेफिक्र रहिए. अमजद भाई का इनाम निकला और वो यहाँ मौजूद नहीं है और अब उनका बैंक अकाउंट वगैरह नहीं है. तो हमें जो मुझे अपडेट मिली है वो ये कि आप अपने मुल्क में भी इंशाल्लाह वो रकम जो है वो पा सकते हैं. बस आपने एक मेल भेजना होगा, मेल मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अमजद भाई को जैसे मैं अभी करने जा रहा हूँ. और उसके बाद उसके अंदर आपने अपनी पूरी डिटेल बता देनी है, अपनी रीजन बता देनी है कि क्या है. दैट्स इट, इंशाल्लाह ताला खैर होगी. ओह खादिम भाई कहते हैं मैं भी कॉल पे हूँ. और बिल्कुल यहाँ पर काफी लोग कॉल पर हैं मेरे साथ, देखता हूँ अगर खादिम भाई हैं तो. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम जी.
0: अहलन व सहलन गुलजार भट्ट साहब हमारे साथ.
1: जी गुलजार भट्ट बात कर.
0: कैसे हैं गुलजार भाई? खैरियत से? आपका तो नाम ही इतना गुलजार है माशाल्लाह. घर
1: वो तो है ना, लोग याद करते हैं जैसे अमजद को हम याद करते हैं ना.
0: हाँ
1: जी, अभी भी आप जिक्र कर रहे थे.
0: जी जी
1: तो
0: जी.
1: वो एक शेर है ना, कटे वक्त चाहे अजाब में किसी ख्वाब में के शराब में.
0: आए हाय हाय हाय, कटे वक्त चाहे किसी ख्वाब में शराब में.
1: कटे वक्त चाहे शराब शराब शराब वो होती है ना.
0: नहीं मैंने बीप कर दिया, मैंने बीप कर दिया था.
1: वो शराब वो होता है जब आप रेगिस्तान में जाते हैं.
0: मैं समझ गया, शराब में. ओके
1: शराब शराब में, शराब में.
0: समझ गया मैं.
1: कटे वक्त चाहे ख्वाब में, पता नहीं अब शेर ही भूल गया.
0: सहराब में या ख्वाब में अगले मिसरे पे आ जाते हैं.
1: जो नजर से दूर निकल गया उसे याद करता है हर कोई.
0: ओए होए होए होए होए
1: होए. वो अमजद इकबाल याद होते हैं मेरे को तकरीबन दूसरे दिन रब्ता होता है, दूसरे एक दिन दो दिन बाद रब्ता होता है मेरा से.
0: बड़े अच्छे और बड़े प्यारे अमजद भाई, और अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे वो जहाँ पे भी हैं. और
1: अल्लाह ताला खुश रखे जिधर लिखा आदमी, जिधर रिज़्क लिखा आदमी पहुंच जाता है.
0: बेशक बेशक, सब अल्लाह की वसीयत है और अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं. हमारे लिए जो बेहतर है वो अल्लाह ताला ही जानते हैं. गुलजार साहब, आज बात हुई घर के नाम के हवाले से, तो कोई ऐसा नाम है आपका जो आपको, मुझे तो खैर कहना और पूछना भी अच्छा नहीं लग रहा, आप इतने सीनियर हैं आवाज से तो लगते हैं, बट फिर भी अम्मा अब्बा के लिए तो हमेशा बच्चा बच्चा ही होता है. तो क्या कोई ऐसा नाम था आपका प्यार का घर पे?
1: नहीं, प्यार को मेरा माँ तो गुलजार ही बुलाती या बेटा बुलाती थी. तो और गांव वाले तो रंग परंगी नाम बुलाते थे ना.
0: हाँ वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं.
1: वो कोई मेरा नाम गुलजार, कोई किसी को वैसे कोई प्यार से गुल्ले के आली.
0: हाँ मैं यकीन जानिए मैं इसी पे आ रहा था. मैं आपको गुल्लू कहने वाला था. गुल्लू?
1: नहीं नहीं, वो भी सुने ना. वो जिसको मैं कोई बच्चे जैसे उस वक्त मजाक चलता था, अभी तो नहीं चलता है. उस मजाक चलता था चाचे की लड़की मामे लड़के मल्ले तक गया गाँव तक अपने दूसरे फैमिली के, उसको किसी को कुछ कुछ नाम उल्टा बना देना गुल्लू या गुल्ली या गुल्ली. गुल्ली थोम की होता है ना दादा, उसको गुल्ली बोलते हैं ना.
0: जी जी जी.
1: गुल्लू या गुल्ली
0: यूजुअली क्या होता है? जी हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, हमारे बड़े भाई की तरह है गुफरान साहब, और या गुलफाम साहब हो, गुफरान हो, गुलरेज हो, सबको गुल्लू ही कर दिया जाता है एक्चुअली यूजुअली. गोलू या गुल्लू?
1: मेरे मामे के लड़का है ना गुर्रेज उस में होते हैं
0: जी,
1: उसको गुल्लू बोलते हैं साहब. गुल्लू?
0: सही सही
1: और ना. तो मेरे को वैसे ज्यादा ये कोई कोई जो झगड़े में या किसी में वो बोलते थे, वैसे मेरे को गुलजार बोलते थे या लाला, जो बड़ा करके ना लाला गुल्ला.
0: लाला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: लाला. ज्यादा मेरे को जो गांव के ना बच्चे दूसरे कौम के कोई भी है और जो मेरे से छोटे हैं थोड़े, वो मेरे को लाला बोलते थे.
0: क्या बात है भाई. तो मैं भी बोलूं गुल्लू बाजी आज से.
1: आप जैसा मर्जी बोलो जी.
0: अरे आप हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई
1: हैं. कुछ लोग नहीं बताते

0: लेकिन बताना चाहिए कोई
1: हाँ, पता नहीं क्या क्यों शर्म आती है यार, कोई ऐसी बात नहीं, नाम रख दिया जाता है।
0: बड़ा प्यार होता है जी, बड़ा प्यार होता है।
1: अरे इसमें घुल घुल के रस भरा होता है इन नामों में, तो भाई प्यार की चाशनी जो है वो इस नाम में ही होती है गुल्लू भाई।
0: हर जी मैं गांव के रहने वाला हूँ ना
1: जी,
0: गांव में 5-6 गांव के आदमी लोग जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन शहर में कोई महल दूसरी चीज ही गली में शायद ना जानता हूँ।
1: सही
0: ये मसला है, गांव के बहुत लोग दुनिया जानती है जी।
1: सही,
0: ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे।
1: ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत
0: शुक्रिया,
1: थैंक यू,
0: सबको सलाम, सबको प्यार,
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। तो भाई ये थे गुल्लू पाजी हमारे साथ, और कॉल मुझे करने के लिए भी हुक्म हुआ था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वक्त नहीं है, और जल्दी से कुछ अपडेट और एक कॉल वैसे मैं ले सकता हूं, और कॉल बैक तो नहीं कर पाऊंगा माजरत के साथ, मगर यहां पर कोई है तो उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे बहुत दूर से आवाज आ रही है, करीब आ जाइए करीब।
2: एक्चुअली मैं ब्लूटूथ ऑफ कर रहा था, माजरा चाहता हूं।
1: अच्छा कर दिए फौरन, सारे जितने भी दांत हैं आपके पास नीले पीले वो सब बंद कर दीजिए, और प्यारे प्यारे जो आपके सफेद दांत हैं उन्हीं से हमसे बात करिए। कौन है हमारे साथ?
2: जी मैं रईस बात कर रहा हूँ, सरवर भाई।
1: माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और भी ज्यादा रईस करे, और ये वालदेन की मोहब्बत है कि आपका नाम भी इतना प्यारा रखा है कि ऐसा नाम रख दो ताकि दौलत जो है वो तो कम से कम पास रहे, कुछ रहे ना रहे।
2: मेरे दादा ने रखा था मेरा नाम। और उसके लिए मेरी माँ हमेशा बोलती रहती थी कि इसका दादा।
1: अरे अम्मी जान तो शाहरुख खान से भी कहा करती थी कि बेटा कोई गांव छोटा वाला नहीं होता, रईस है।
2: तो वैसे ही है कुछ।
1: चलिए साहब, तो घर का नाम क्या है? ये तो रईस तो माशाल्लाह से असल नाम।
2: मेरे घर का नाम आरजू है।
1: आए आए आए आए, कितनों की?
2: ये सवाल मुझसे बहुत लोग कर चुके, कितने के आरजू हो तुम?
1: ओए वाह वाह वाह वाह, क्या बात है यार। नहीं बड़ा प्यारा नाम है यार, और बड़ा आपके दोनों ही नाम बड़े प्यारे हैं एक्चुअली।
2: रईसी सब किसी की ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश का दूसरा नाम आरजू है।
1: वाह वाह वाह वाह, ले आओ भाई ले आओ ले आओ, ये वाटर कूलर ले आओ, आज इनको दे देते हैं रईस भाई को। वाह क्या बात है यार, क्या कहने भाई। रईसी हर किसी की आरजू। अरे क्या कैसे बताया एक बार और?
2: रईसी होना हर किसी की ख्वाहिश होती है, और ख्वाहिशी का जो दूसरा नाम आरजू है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। जितनी आरजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है वो आपसे बिल्कुल कुछ नहीं होंगी, ये तो बता दूं।
2: मैं तो आपसे रोज रास्ता करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन
1: अरे
2: आप इतने मसरूफ रहते हैं कि कभी मेरा नंबर ही कनेक्ट नहीं हो पाता।
1: अरे सर नहीं नहीं यार,
2: कभी होता है तो मेरा नंबर नहीं लग पाता है।
1: अरे नहीं देखिए, ये मोहब्बत है कि आज हम आप एक साथ कनेक्टेड है, और इतना खूबसूरत दिन के आपके नाम में ही आपके सारे नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसी बात नहीं है। कोशिश रहती है सर के सभी से बात कर सकूं, प्रोग्राम की जो नौयत है उसके हिसाब से जो चीजें शेयर करनी है, मैसेज लेने, तो काफी कॉल मिस हो जाती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे नाराज मत हुआ करें, मजबूरी।
2: नहीं, मैं समझ सकता हूं नाराज होने के, जस्ट आप मेरे बड़े भाई हैं तो आपसे मैं दिल की बात शेयर नहीं करूंगा, किससे करूं?
1: अरे मेरा भाई कैसा रईस भाई पे वाकई पैसा ही पैसा, आप तो सारा पैसा। चलिए साहब, तो रईस भाई क्या कहते हैं, चलते चलते तीन का दम हो जाए फिर आज आप जब तशरीफ ले आए हैं तो?
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्या कहने भाई, तैयार आए? पहले कोई क्वेश्चन याद है किसी का, आंसर वही पूछ लो, पेपर आउट कर दूं, मैं क्वेश्चन लीक कर दूं।
2: वो जो अदनान की दादी थी ना, जो वो शूटर बना रही थी।
1: अरे भाई साहब बच गया, मैं आपसे यही पूछने वाला था, अब नहीं पूछूंगा। चलिए नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है कि अगर ये ओपन हो जाए, मगर कल थर्सडे है यार, कल तक घुमाने दो इस क्वेश्चन को, थोड़ा दूसरा पूछ लेते हैं ठीक है। आज वैसे लड्डू के हवाले से काफी बातचीत चल रही है, वो बता सकते हैं?
2: लड्डू के हवाले से आपने ये पूछा था कि चार लड्डू है, पांच आदमी है।
1: हाँ बिल्कुल,
2: तो उसमें कैसे हम तकसीम करेंगे जो बराबर से सब में बट सके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सवाल में एक बार और दोहरा देता हूँ। एक टेबल पर प्लेट में चार लड्डू रखे हैं, और टेबल के करीब इर्द गिर्द पांच अफराद या लोग खड़े हैं या बैठे हैं, अगर लड्डू सबको बराबर बराबर तकसीम करे जाएं तो किसके पास कितने लड्डू आएंगे?
2: चार

0: देखिए, पांच पांच लड्डू है और चार आदमी है, तो मेरे हिसाब से तो चार हम एक एक में सब में बांट देंगे, और बचा हुआ जो एक है उसको चार भाग में तकसीम करके चारों में डिवाइड कर देंगे।
1: भाई यार, क्या ये वही आदमी कर सकता है जिसको मोहब्बत बहुत हो?
0: बिल्कुल, मैं बिलीव करता हूँ कि शेयरिंग इज केयरिंग।
1: हाँ बिल्कुल, शेयरिंग इज केयरिंग, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अब वक्त हो गया कि मैं आपसे इजाजत ले लूं, और इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ कनेक्ट होंगे। रईस भाई बहुत प्यारे हैं आप, बड़े अच्छे प्यारे नाम भी हैं आपके, दुआओं में याद रखिए, और इसी तरीके से हमारे साथ कनेक्टेड रहिए सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो भाई अब मैं इजाज़त ले लेता हूँ आप लोगों से, और इंशाल्लाह ताला अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, जिनसे बात नहीं हो पाई आज उन सभी से माजरत। इंशाल्लाह कल वीकेंड है भाई, यौमुल खमीस, कल इंशाल्लाह आप लोगों से बात होगी, जुड़ेंगे एक साथ, बातचीत करेंगे और महफिल जमाएंगे। करना आपने बस ये है कि FM 107 के साथ कनेक्टेड रहना है, जैसे कि आप लोग रहते भी हैं। यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी रह गए भाई, जाते जाते पढ़ दूं क्या नाम एक आध और। फराज भाई हमारे साथ, सुहेल हैदर साहब हमारे साथ, राजू चलते चलते आगे बोले मेरा नाम राजू है, खुश रहिए। तो फिलहाल चलिए साहब, आज के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होती है, देखते सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
4: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये वो प्रोग्राम है जहां खेलों की दुनिया के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स और उनके पीछे छुपी कहानियां आप तक हम पहुंचाते हैं। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एथलेटिक्स और दुनिया के वन ऑफ द लीडिंग लेजेंड्स उसेन बोल्ट के बारे में। उसेन बोल्ट क्या रिकॉर्ड है, उसेन बोल्ट के नाम और वो दुनिया के सबसे तेज इंसान है। This is more important, एक ग्लोबल आइकन जिनकी बिजली जैसी रफ्तार और बड़ी शख्सियत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आज हम इसी लेजेंड के बारे में हम बात करेंगे, उसेन बोल्ट, वो इंसान जिन्होंने ट्रैक और फील्ड को दोबारा डिफाइन किया। 1986 में शेरवुड कंटेंट जमैका के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ उसेन बोल्ट, नंगे पांव पहाड़ों में भागता हुआ वो बच्चा जिनकी एनर्जी कह रही थी ये लड़का कुछ और ही है,

2002 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जब वो 15 साल के थे तब उन्होंने 200 मीटर गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को हिला दिया। उनकी 6 फुट 5 इंच लंबी कद और लेड बैक स्माइल उन्हें सबसे अलग बनाती थी, लेकिन असली बात थी उनकी बिजली सी रफ्तार। 21 साल का उसेन बोल्ट स्टेज पर छाया हुआ था। 100 मीटर तूफानी रेस, 200 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड, 4x100 मीटर रिले, गोल्ड मेडल दोबारा, और सब कुछ मुस्कुराहट के साथ, स्टाइल के साथ। और उनका लाइटनिंग बोल्ट का जो वो पोज था एक निशान बन गया फतेह का। वो सिर्फ जीता नहीं, वो डोमिनेंट था। कभी कभी तो फिनिश लाइन से पहले सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था। बेजिंग हो, लंदन 2012 या रियो 2016 ओलंपिक गेम्स, वही तीन इवेंट्स, वही डोमिनेशन। 8 ओलंपिक गोल्ड्स और बन गया एक ही स्प्रिंटर जिनका नाम है ट्रिपल ट्रिपल चैंपियन उसेन बोल्ट। नाम तो सुना होगा, लेकिन हर चमक के पीछे दोस्तों कुछ अंधेरे भी होते हैं। इंजरीज ने उन्हें बड़ा ही परेशान किया और क्रिटिक्स कहना शुरू करते हैं, क्रिटिक्स का काम क्या है? क्रिटिक्स हमेशा बोलते रहते हैं क्या वो अपनी स्पीड बरकरार रख पाएगा। लेकिन बोल्ट ने कब हार मानी? उन्होंने हार्ड ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और अपनी खुशी भरी एनर्जी के साथ हर चैलेंज का सामना किया। ट्रैक से हटकर भी वो बन गया एक ग्लोबल एम्बेसडर, जमैका के नए रनर्स के लिए एक रोल मॉडल। और फिर 2009 बर्लिन, जर्मनी के शहर, जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन, उन्होंने बनाया वो रिकॉर्ड जिसको आज भी हम थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे मुमकिन है ये रिकॉर्ड बनाना। 100 मीटर रेस इन 9.58 सेकंड्स, यानी 9.58 सेकंड में ये जीत। 100 मीटर रेस समझ लीजिए आप, क्या तेज, क्या तूफानी रेस। 17 साल के बाद भी आज तक कोई उस रिकॉर्ड के करीब भी नहीं आया। That is the domination of Usain Bolt. 2017 में Usain Bolt ने retirement तो ले ली, लेकिन उनका असर आज भी जिंदा है। आज भी लोग महसूस करते हैं Usain Bolt था

एथलीट हैं और एथलेटिक्स को छोड़ने के बाद कोई खिलाड़ी चुप कैसे बैठा रह सकता है, तो उन्होंने फुटबॉल ट्राई किया और एक स्कूटर कंपनी भी लॉन्च की, एक रेगा एल्बम तक ड्रॉप किया। ये है उसेन बोल्ट, ये है उसेन बोल्ट, जमैका। जमैका जो जजीरा नुमा जो मुल्क है, एक कलरफुल आइलैंड है, क्योंकि यहाँ से कई ऐसे कलरफुल कैरेक्टर्स निकले हैं। अब क्रिकेट की बात करूँगा तो ये प्रोग्राम काफ़ी आगे तक खिंच जाएगा, म्यूज़िक की बात करूँ तो काफ़ी आगे तक खिंच जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा आप लोग सोशल मीडिया में उसको थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं कि टू ऑफ द बेस्ट नोन जमैकन लेजेंड्स दैट हैव कम फ्रॉम दिस आइलैंड, और वो उसेन बोल्ट से काफ़ी पहले एंड आज भी वो लेजेंड्स हैं। तो जमैका बेसिकली एक कलरफुल आइलैंड है, लोग बड़े खुश मिजाज टाइप रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और इसके बाद उन्होंने जब रेगा एल्बम लॉन्च किया तो बोल्ट ने सोचा कि कुछ समाज के लिए कुछ किया जाए, तो उन्होंने अपनी उसेन बोल्ट फाउंडेशन के जरिए बच्चों के फ्यूचर को सपोर्ट करना चालू किया। आज वो एक वालिद हैं, एक फिलंथ्रोपिस्ट हैं और एक इंस्पिरेशन है। स्टेडियम्स में आज भी उनकी रोशनी महसूस होती है और उनके रिकॉर्ड्स अब भी अनबीटेबल हैं। दोस्तों उसेन बोल्ट सिर्फ भागा नहीं, वो उड़ा और पीछे छोड़ी इंस्पिरेशन की एक ट्रेल, या दोस्तों जो आने वाले जनरेशन के लिए रास्ता दिखा रही है। जैसे मैंने बताया कि आज भी उसेन बोल्ट को याद किया जाता है कि हु इज द फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ। अगर क्लासरूम में कोई टीचर पूछे, शायद कोई बच्चा जवाब दे पाए, तो ये एक जनरल नॉलेज है। नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, दुनिया सबसे तेज तरीन इंसान उसेन बोल्ट ही है। बर्लिन में बनाया गया वो रिकॉर्ड आज भी कायम है और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। बोल्ट की एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड, लंबी स्ट्राइड और बेमिसाल कॉन्फिडेंस ने उन्हें दुनिया का सबसे मशहूर स्प्रिंटर बना दिया। इस कारकर्दगी ने स्प्रिंटिंग के मायार को ही बदल दिया और दुनिया भर के एथलीट्स के लिए एक नया बेंचमार्क मुकर्रर कर दिया। उसेन बोल्ट एक स्प्रिंटर, एक शोमैन, एक लेजेंड जिन्होंने गेम को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा दोस्तों, एक बात यह है कि लोग कहते हैं, लोग पूछते हैं कि उसेन बोल्ट क्यों सक्सेसफुल रहा। दोस्तों बात यह है कि हमेशा सिर्फ टैलेंट से नहीं होते, कभी कभार होता है कि कॉन्फिडेंस, यू नो यू नीड दैट टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस और टैलेंट दोनों का ही कॉन्कॉक्शन था विद उसेन बोल्ट। उनको रोकना मुश्किल इसलिए था कि क्योंकि उनके पास कुदरती सलाहियतों और ट्रेनिंग का बेमिसाल कॉम्बिनेशन था। लेकिन उनकी हाइट, जैसे मैंने बताया, काफ़ी यू नो लंबे कद के, जो आम एलीट स्प्रिंटर से काफ़ी ज़्यादा थी, और इस वजह से वो कम कदम लेकर ज़्यादा फासला तय करते थे, यू नो लॉन्गेस्ट स्ट्राइड्स। बर्लिन में उन्होंने रेस सिर्फ 41 स्ट्राइड्स में मुकम्मल की, जबकि उनके अक्सर मुकाबल रनर्स को 45 या उससे ज़्यादा कदम चाहिए होते थे। तो आप समझ रहे हैं, बिग स्ट्राइड्स मीन्स फास्टेस्ट रन, मतलब आपके अगर पैर थोड़ा से लंबे हैं तो आपके स्ट्राइड्स थोड़ा सा लंबा ही पड़ेगा ना। तो उसेन बोल्ट के साथ कुछ ऐसा ही था। तो उसेन बोल्ट वाज अनबीटेबल, उनके जो कॉम्पिटिटर थे उनको मतलब उसेन बोल्ट को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था। सबसे खास बात ये थी कि बोल्ट सिर्फ लंबी स्ट्राइड ही नहीं रखते थे, बल्कि उनकी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी भी बहुत तेज थी। अक्सर लंबा एथलीट रफ्तार में पीछे रह जाता है, लेकिन बोल्ट ने दोनों क्वालिटीज को एक साथ जोड़ दिया। अच्छा, हैरान की बात यह कि स्पोर्ट्स साइंटिस्ट के मुताबिक उनकी मैक्सिमम स्पीड 12.3 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा थी, और वो रेस के आखिरी हिस्सों में भी इस रफ्तार को बरकरार रख सकते थे। तो देर इज़ अ साइंस, देर इज समथिंग कॉल्ड, तो टैलेंट हर किसी में नहीं होता दोस्तों, हर किसी में नहीं आता है, ये तो कुदरती है, ये अल्लाह का देन है। बोल्ट को तारीख का अजीम तरीन स्प्रिंटर इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बनाए, बल्कि उन पर हुक्मरानी की डोमिनेटेड देम। वो ओलंपिक 100 मीटर और 200 मीटर टाइटल्स तीन लगातार मुसलसल ओलंपिक्स में जीतने वाले वाहिद स्प्रिंटर हैं, और उनके नाम 100 मीटर और 200 मीटर दोनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आज भी मौजूद हैं। दैट मेक्स हिम अ वेरी स्पेशल एथलीट राइट नाउ इन मॉडर्न स्पोर्ट्स। बर्लिन की वो जो रेस के बारे में मैंने आपको बताया था, 9.58, ये याद रखिएगा, 9.58 सेकेंड वाली दौड़ को आज भी
एथलेटिक्स की सबसे परफेक्ट

0: परफॉर्मेंसेस में से शुमार किया जाता है। कई एक्सपर्ट्स और फैंस के नज़दीक ये सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बल्कि इंसानी रफ्तार की इंतहा का नुमाया मिसाल है। दैट इज उसेन बोल्ट, डिफरेंट थे। और आज भी अगर कई ऐसे एथलीट्स गए हैं, कई एथलीट्स गुजरे हैं, कई एथलीट्स आज भी हैं, लेकिन उसेन बोल्ट जैसे कैरेक्टर आई डोंट थिंक कि कोई आस पास कोई नज़र आ रहा होगा, बिकॉज ही वॉज और ही इज रादर आज भी वो इतने एनर्जेटिक हैं, वो इतने एनर्जेटिक थे और आज भी एथलीट्स को वो मुतासिर कर सकते हैं। वो रन आज भी कोई देख ले, 2009 में बर्लिन में वो रेस, इसका जो अगर कोई फुटेज देख ले, इस फुटेज को देखकर कोई भी यंगस्टर बड़ा ही इंस्पायर हो सकता है। एंड फॉलोड बाय द बीजिंग ओलंपिक्स 2008 बीजिंग ओलंपिक्स एंड फॉलोड बाय द अदर ओलंपिक्स 2014 के ओलंपिक्स जो रियो में हुआ था, 12 में जो लंदन में हुआ था, इस तीनों ओलंपिक गेम्स के जितने भी फुटेजेस हैं वो आप लोग देख सकते हैं ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका बच्चा अगर एथलेटिक्स में शौक रखता है और उसे ये महसूस होता है कि भाई वो कुछ अच्छा कर सकता है, तो मेरा ये मानना है कि आप लोग उन बच्चों को थोड़ा सा वो दिखा सकते हैं, उनके उसेन बोल्ट के जो फुटेजेस हैं फ्रॉम ऑल दिस ओलंपिक्स और बर्लिन, ये है सोशल मीडिया में मौजूद है, ये फुटेजेस ये क्लिप्स मौजूद है, उसको दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द वे यू नो इट्स अ लेसन फॉर द ऑल द यंग जनरेशन ऑफ एथलीट्स, कि वो देखने के बाद ही उनको समझ आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली, आई मीन पूरा तो नहीं समझ आएगा बट एक्चुअली यू कैन लर्न फ्रॉम दोज यू नो स्टार्टिंग ब्लॉक से, किस तरह से वो उनका स्टार्ट लेना, किस तरह से यू नो बेंड होना, किस तरह से यू नो फिनिशिंग लाइन पे वो जो डैश है वो किस तरह से वो मुकम्मल करते थे। ये थोड़ा सा ना ये टिट बिट्स जो है ये आप लोग जो है अपने बच्चों को थ्रू द फिल्म्स दिखा सकते हैं। एंड आई फील दैट उसेन बोल्ट आज मॉडर्न जनरेशन मॉडर्न स्पोर्ट्स में एक नुमाया एथलीट हैं और आज भी हर कोई उसेन बोल्ट का नाम लेता है, चाहे वो कोई भी हो, क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे कोई भी बास्केटबॉल प्लेयर हो, उसेन बोल्ट का नाम हमेशा रेस्पेक्ट के साथ दिया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ द फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ। और आज 9.58 सेकेंड का जो रिकॉर्ड है वो आज भी अनब्रोकन है। दोस्तों ये तो थी उसेन बोल्ट के रिकॉर्ड के बारे में, रेस के बारे में मैंने बात की, और अभी एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मजीद और भी रिकॉर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: वेलकम बैक टू दिस शो जिसका नाम है स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन, और ब्रेक से जाने से पहले हमने इस प्रोग्राम का आगाज किया था उसेन बोल्ट से। उसेन बोल्ट दुनिया का नंबर वन, ऑब्वियसली ही इज द फास्टेस्ट मैन, नॉट नंबर जस्ट नंबर वन बल्कि फास्टेस्ट मैन, दुनिया का तेज तरीन इंसान है। 9.58 सेकेंड का जो टाइम है वो टाइम आज भी अनब्रोकन है। नाउ मूविंग ऑन टू सम अदर रिकॉर्ड, जहां हम देख सकते हैं कि किस किस यू नो डिसिप्लिन्स में, द रेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में क्या क्या रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। लेट्स टॉक अबाउट जोनाथन एडवर्ड्स। जोनाथन एडवर्ड्स एथलेटिक्स से ही हैं, और जोनाथन एडवर्ड्स का ट्रिपल जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और ये ट्रिपल जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड एथलेटिक्स की दुनिया में सबसे पुराने और मुश्किल रिकॉर्ड्स में से एक है। और ब्रिटिश एथलीट जोनाथन एडवर्ड्स का ये ट्रिपल जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड, ही वाज़ द फर्स्ट मैन टू डू दैट। एडवर्ड्स ने 1995 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 18.29 मीटर की छलांग लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। ट्रिपल जंप में एथलीट को हॉप, स्टेप और जंप के तीन मराहिल मुकम्मल करने होते हैं। तो अच्छा लगता है देखने में, इट्स वेरी नाइस टू वॉच, यू नो रादर देन मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ट्रिपल जंप, इतनी लंबी छलांग लगाना गैर मामूली ताकत, बैलेंस और टेक्निक का मुतालबा करता है। तीन दिहाइयों के करीब गुजर जाने के बावजूद यह रिकॉर्ड कायम है, और दुनिया भर के एथलीट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि कब एडवर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन कुछ रिकॉर्ड होते ही हैं टूटने के लिए, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं ना टूटने के लिए। आई मीन दैट इज अमेजिंग। जस्ट लाइक इन क्रिकेट, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का जो बैटिंग रिकॉर्ड है 99.96 एवरेज, आज भी वो अनब्रोकन है।

इन सेंचुरी सेंचुरी आई मीन मोर देन 100 इयर्स नाउ, और आज भी इस बात को हम सोचते पड़ गए हैं, सोच में पड़ गए हैं कि कौन इस रिकॉर्ड को, कौन बल्लेबाज इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। देखिए कितने महान बल्लेबाज आए हैं, कितने मारूफ बल्लेबाज आए गए, सुनील गावस्कर, कैली जैसा ही अब्बास, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बाबर आजम, जितने भी पुराने बैट्समैन थे आज नए दौर के बैट्समैन हैं, आज भी वो रिकॉर्ड टूटा नहीं। वैसे ही हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड, वैसे ही एडवर्ड्स का रिकॉर्ड आज भी कोई तोड़ नहीं पाया। हो सकता है कि फ्यूचर में हो, कब हो किसी को नहीं पता। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल, और फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है दोस्तों, और फुटबॉल वर्ल्ड कप में अगर हम एक रिकॉर्ड के बारे में यहाँ पे ना जिक्र करूँ तो सही नहीं बैठता है। और रिकॉर्ड किसका है वो भी बता दूँ, ईरान के वन ऑफ द लीडिंग स्ट्राइकर्स ड्यूरिंग हिज टाइम, अली दाई 1990s के दौर में वन ऑफ द लीडिंग स्ट्राइकर्स थे एशिया के, और आज भी उन्हें बहुत माना जाता है। विद रेस्पेक्ट अली दाई ने इंटरनेशनल फुटबॉल में 109 गोल स्कोर करके कई सालों तक दुनिया का रिकॉर्ड अपने नाम रखा। अली दाई टॉप स्कोरर ऑफ गोल्स इन इंटरनेशनल मैचेस। दाई ने ये गोल्स ईरान के लिए एशियन कप्स, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और दोस्ताना मैचेस में किए। उनकी हेडिंग एबिलिटी और फिनिशिंग बहुत मशहूर थी। ही वॉज टॉल, बड़े लंबे थे, और यू नो ही वॉज अ क्विक फिनिशर Inside the penalty box, inside the 18-yard box. जब उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया तो इंटरनेशनल फुटबॉल में 100 गोल्स का सोचना भी मुश्किल समझा जाता था। But he broke that mark. 100 goals for Ali Dai and 100 goals for any player in international football. Ali Dai ने एशियन फुटबॉल को दुनिया भर में पहचान दिलाने में अहम किरदार अदा किया, और उनका रिकॉर्ड फुटबॉल हिस्ट्री का एक यादगार बाब रहा। That is what we talk about. आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो is a highest goal scorer. अगर you know international matches को लेकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, all international matches में friendly matches भी होते हैं। तो Ali Dai was the first international player जिन्होंने 100 से ज़्यादा goals score किए। And today Iran में Ali Dai is an idol for all the footballers जो कि striker बनना चाहते हैं। Now moving on to tennis, अभी हाल ही में French Open खत्म हुआ, और French Open में हमने देखा कि Andreeva, एक 19-year-old Russian teenager, वो Grand Slam title जीतती हैं, and it was her first Grand Slam, maiden Grand Slam। और अगर men singles की बात करूँ तो Andre Zverev German के player हैं, और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये सब ने पढ़ा तो नहीं होगा, बट मैं आप लोगों को बता दूं, ज़ेवरेव ये जीत 10 साल से लगातार कोशिश के बाद आई है। और एक बात सबसे अहम है कि ज़ेवरेव इज़ अ डायबिटिक पेशेंट, 6 साल की उम्र से वो डायबिटिक हैं, और टेनिस कोर्ट में बैठकर वो अपना जो इंजेक्शन है, जो लगाने वाला जो इंजेक्शन, जो डायबिटिक शॉट्स लेते हैं वो लगाते हुए नजर आए, और लोगों ने हैरान होकर ये नज़ारा देखा कि क्या ये बंदा, आई वुड से बीमार नहीं बट फिजिकल एबिलिटी में थोड़ी सी कमी हो जाती है, यू बिकम स्लो, यू बिकम टायर्ड, और ज़ेवरेव ने ये सब को करके, आई मीन जीत कर, फ्रेंच ओपन टाइटल जीत कर सबको चौंका दिया कि किसी को भी नहीं पता था कि इतने छोटे से उम्र से वो डायबिटिक पेशेंट है। एनीवे कांग्रेचुलेशंस टू ज़ेवरेव एंड कांग्रेचुलेशंस टू Andreeva। लेकिन आज हम बात करेंगे मार्गरेट कोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन टेनिस लेजेंड मार्गरेट कोर्ट के नाम टेनिस में सबसे ज्यादा 24 सिंगल्स यानी 24 सिंगल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल्स का रिकॉर्ड है। और यहीं अगर मेंस की बात करूं तो नोवाक जोकोविच का भी ये रिकॉर्ड है, 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल। और आज भी नोवाक जोकोविच कोशिश कर रहा है कि कहीं तरह से कोई एक ग्रैंड स्लैम टाइटल मिल जाए, तो ही बिकम्स 25th विनर ऑफ ग्रैंड स्लैम। और मार्गरेट कोर्ट, अगर हम यहाँ पे यू नो डोंट टॉकिंग अबाउट वीमेंस और मेन सिंगल्स, बट अगर हम सिर्फ एक टेनिस खिलाड़ी की बात करूँ तो मार्गरेट कोर्ट के साथ नोवाक जोकोविच का भी नाम है। और अगर यहाँ पे मैं आज मार्गरेट कोर्ट के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज शी इज़ अ वुमेन प्लेयर। उन्होंने 1960 और 1970 में टेनिस पर हुक्मरानी की, और ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन में कई खिताबात जीते। कोर्ट की फिजिकल स्ट्रेंथ और अटैकिंग स्टाइल ने उन्हें अपने दौर की सबसे कामयाब खिलाड़ी बना दिया। आज भी उनका ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड टेनिस की तारीख के सबसे अजीम रिकॉर्ड में शुमार होता है, और नए खिलाड़ी इस मकाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
Let's move on to swimming. Swimming में देखते हैं आज किन का नाम है. जी हाँ दोस्तों, आज है मार्क स्पिट्स का नाम. जी मार्क स्पिट्स.

7 ओलंपिक गोल्ड मेडल चैंपियन, और ये रिकॉर्ड हुआ था 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में, और अमेरिका से वो बिलोंग करते हैं और अमेरिकन यू नो टीम को उन्होंने रिप्रेजेंट किया द ओलंपिक्स। एक ही ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। हर रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, क्या बात है। और उस दौर में ये अचीवमेंट नामुमकिन सी लगती थी। मार्क स्पिट्स की परफॉर्मेंस ने स्विमिंग को नई बुलंदियों तक पहुंचाया और वो कई सालों तक ओलंपिक हिस्ट्री के सबसे बड़े हीरो रहे। उनका रिकॉर्ड 36 साल तक कायम रहा और आज भी ओलंपिक स्पोर्ट्स की सबसे यादगार कामयाबियों में से एक माना जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल में विल चेम्बरलेन के 100 पॉइंट्स एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बास्केटबॉल की तारीख का सबसे मशहूर रिकॉर्ड इनके नाम है, विल चेम्बरलेन अमेरिका के हैं। चेम्बरलेन ने 1962 में एक NBA मैच में 100 पॉइंट स्कोर किए थे। ये कामयाबी आज तक किसी भी खिलाड़ी ने हासिल नहीं की। उस मैच में उनकी स्कोरिंग इतनी जबरदस्त थी कि हर क्वार्टर में वो बास्केट पे बास्केट करते रहे। बास्केटबॉल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रिकॉर्ड स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे मुश्किल रिकॉर्ड्स में से एक है। आज भी जब स्कोरिंग रिकॉर्ड्स की बात होती है तो विल चेम्बरलेन का 100 पॉइंट गेम सबसे पहले याद किया जाता है। Now let's move on to motorsport. Motorsport. इसको हम देखते ही हमारे अंदर में जितनी भी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, वो आई थिंक मल्टीपल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे सेबेस्टियन वेटल की कंसेक्यूटिव विंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जर्मन फॉर्मूला वन ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल ने 2013 सीजन में लगातार 9 ग्रां प्री रेसेस जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। वेटल ने अपनी रेडबुल कार के साथ पूरे सीजन में गैर मामूली परफॉर्मेंस दिखाई। फॉर्मूला वन में हर रेस मुख्तलिफ ट्रैक और हालात में होती है, ये तो आप लोगों को पता है। एक ही सेंटर में नहीं, एक ही कंट्री में नहीं, मुख्तलिफ रेसेस होती हैं और ये हर जगह के रेस ट्रैक डिफरेंट होते हैं और इसलिए लगातार जीतना बहुत मुश्किल माना जाता है। वेटल की कंसिस्टेंसी, स्पीड और स्ट्रैटेजी ने उन्हें मोटरस्पोर्ट हिस्ट्री

0: मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी स्टेडियम्स कतर के जो वर्ल्ड कप स्टेडियम्स बने हैं वो बुरे हैं या कुछ और, बट लुसेल स्टेडियम की लोकेशन अगर देखें कि अगर दोहा से अगर आप ड्राइव करके यू आर गोइंग टूवर्ड्स अलखोर या लुसेल की तरफ जा रहे हैं, तो एक एक सडनली आपके सामने यू नो इट जस्ट जट्स आउट, इट ओपन्स अप बिग सॉसर पैन. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लुसेल स्टेडियम. और रिकॉर्ड आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ मैं, 88,966 ये लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है कतर का, बल्कि इन एशिया का, और इसे 40,000 कर दिया जाएगा इन द फ्यूचर. ऐसे कि कतर का एक प्लान है, इस स्टेडियम से कुछ हिस्से जो है वो डोनेट कर दिया जाएगा टू सम ऑफ दिस कंट्रीज जहां पे फुटबॉल खेली जाती है एंड फुटबॉल इज़ इक्वली पॉपुलर. ये स्टेडियम की अगर लोकेशन बताऊं तो दोहा से अराउंड 20 किलोमीटर दूरी पर है और ये लुसेल सिटी में है. लुसेल स्टेडियम को इनॉग्रेट किया गया था 9 सितंबर 2022 में एक छोटा सा, अभी नॉट से छोटा सा, बट एक पॉपुलर मैच के साथ, सुपर कप गेम के साथ. सिंस दैट डे अंटिल नाउ लुसेल स्टेडियम, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक स्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इट इज़ अ लेगेसी, एक इज़ अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर कतर फुटबॉल्स ग्लोरियस डेज दैट हैपेंड ड्यूरिंग द 2022 वर्ल्ड कप फुटबॉल. दोस्तों इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ. आज हमने बात की अबाउट उसेन बोल्ट के बारे में, जो कि दुनिया के सबसे तेज तरीन इंसान हैं, और उन्होंने 9.58 सेकंड का जो टाइमिंग है इन रेस ऑफ 100 मीटर्स, उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया था 2009 में. इसी के बारे में आप लोगों से शेयर किया, साथ ही साथ बाकी रिकॉर्ड्स के बारे में भी जिक्र किया मैंने. तो मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन, और अगली किस्त में हम किसी और अजीम स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी A4 अमिता और इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 1:30 यानी इट्स टाइम फॉर,
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम A4 अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
2: सो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? जब भी वेंसडे आता है ना, सो इट फील्स लाइक कि वीकेंड आ गया है। मतलब आज थोड़ा सा कंफ्यूजन न जाने क्यों मुझे हो जाता है, ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है क्या? वेल, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन FM 107, मैं हूं आपकी A4 अमिता एंड एस्केप रूम भाई यहां पर आ चुके हैं। बड़ा शानदार शो है हमारा, एक घंटे प्रॉपर चलता है एंड इसमें आपको नए नए लाइफ के चैलेंजेस मिलते हैं, नई सिचुएशंस मिलती हैं जहां पर आप फंस जाते हैं एंड देन यू हैव टू एस्केप और लास्ट में आपको प्रूफ करना होता है कि भाई आपका दिमाग सबसे तेज चल रहा है। वेल, आज एस्केप रूम की सिचुएशन क्या होगी बॉस? देखो गर्मी बहुत तेज है तो आज थोड़ा ठंडा ठंडा हम फील करेंगे, ठीक है? अब समुंदर की गहराइयों में जाएंगे। तैरना आता है आपको कि नहीं आता है पहले बताओ? देखो आए ना आए, लेकिन आज आपको तैरना भी है और समुंदर की गहराई में जाना भी है और वहां से बच के निकलना भी है, ठीक है? वरना बड़ी मुश्किल होने वाली है बॉस। तो आज के एस्केप रूम की सिचुएशन बस कुछ ही देर में आपके सामने आने वाली है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो आपने क्या करना है, बने रहना हमारे साथ और 666-22-107 इज आर नंबर, इस पर आप मैसेजेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। एंड मीनवाइल जब तक ब्रेक है अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, यू नो यू जस्ट कैन एंजॉय, कुछ अपना अच्छा खा लीजिए या फिर कुछ एंजॉय कर लीजिए, कोई ड्रिंक चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो हॉट ड्रिंक हो, जस्ट एंजॉय इट और फिर

आपकी हमारी मुलाकात होगी आज की चैलेंजिंग सिचुएशन के साथ। ओ भाई साहब, बड़ा शानदार गाना है या बाबा, एंजॉय कीजिए। हमारी नौरा फतेही ने तो वाकई में कमाल कर दिया, परफॉर्मेंस बड़ा खूबसूरत है। स्टेडियम टू FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देखे.
4: वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज कहाँ जा रहे हैं हम भाई. एस्केप रूम में आज का माहौल काफी गहरा और काफी ठंडा है क्योंकि हम पहुंच रहे हैं समुंदर की गहराइयों में. यस अंडर वाटर. महसूस कीजिए इस आवाज को ठीक है कि आप पानी के अंदर हैं. यस रेड इमरजेंसी लाइट्स फ्लैश कर रही हैं. इमेजिन कीजिए आप ओशन की सबसे गहरी ट्रेंच में एक सबमरीन के अंदर कैद हैं. ये वो

जगह है जहां पर सूरज की रोशनी भी पहुंच नहीं पाती, ठीक है। बाहर पानी का इतना ज्यादा प्रेशर है कि मेटल हल चीख रहा है, एक छोटा सा लीक हो गया है और कंट्रोल रूम में बर्फीला पानी स्प्रे हो रहा है, क्योंकि इस वक्त आप गहरी ट्रेंच में एक सबमरीन के अंदर कैद हैं। कंप्यूटर लॉकडाउन मोड में जा चुका है। अगर आपको बलास्ट टैंक्स को खाली करके सरफेस पर आना है तो आपको इस गहराई की मुश्किल पहेलियों को सुलझाना पड़ेगा। आर यू रेडी गाइस? वेल, कमांड सेंटर में एक लेंस चमक रहा है, ठीक है। अब सोचें कि क्लू नंबर वन जब आपको मिलेगा तो उसका जवाब क्या होगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्लू नंबर वन, कमांड सेंटर में जो लेंस चमक रहा है उस पर दिखाई दे रहा है, मैं सबमरीन की वो निगाह हूँ जो पानी के नीचे रहकर भी ऊपर का मंजर दिखाती है। मैं एक लंबा पाइप हूँ जो कैप्टन को बाहर की दुनिया दिखाता है। बताइए मैं क्या हूँ? जल्दी कीजिए, ऑक्सीजन लेवल्स गिर रहे हैं। समझ में आया? क्लू नंबर वन फिर से दोहराऊंगी। देखिए, आज की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। हम समुंदर की गहराइयों में एक सबमरीन के अंदर कैद हो चुके हैं, प्रेशर बढ़ते जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी सबमरीन में एक छोटा सा छेद हो चुका है, पानी लीक हो रहा है फव्वारे की तरह, एंड वी डोंट वांट कि हम यहाँ पर डूब जाए, हमें निकलना है, ठीक है। क्लू नंबर वन हमारे लिए है कि मैं सबमरीन की वो निगाह हूँ जो पानी के नीचे रहकर भी ऊपर का मंजर दिखाती है। मैं एक लंबा पाइप हूँ जो कैप्टन को बाहर की दुनिया दिखाता है। बताइए मैं क्या हूँ? Come on guys, search for your answers. मुझे सही जवाब दीजिए 6622107, 6622107 पर अपने नाम के साथ, ताकि ये पहला फेज आप पार कर पाए। और अभी के लिए छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद जवाब के साथ अमिता हाजिर हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो।
1: Yes, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी फरमीता and I'm very very certain कि ये जो कमाल का म्यूजिकल ब्रेक आपको मिला था, अब आपने अपने सही जवाब सोच लिए होंगे। तो जनाब, आज के एस्केप रूम की सिचुएशन कि आप समुंदर की गहराइयों में एक सबमरीन के अंदर कैद हैं, ठीक है। पानी का प्रेशर काफी तेज है और काफी गहरा है, काफी बढ़ रहा है, और दिक्कत ये हो गई है कि जो हमारी सबमरीन है उसमें एक छोटा सा लीक हो गया है जिससे फवारे की तरह ठंडा पानी अंदर आ रहा है। अभी पानी बस आ रहा है, मतलब इतना तेज़ी से नहीं भरा है कि हमारी जान चली जाए, लेकिन जान जा सकती है क्योंकि हम एकदम समुंदर की गहराइयों के बीच है, हमें बचना है, ठीक है, और क्लूज को सॉल्व करके जल्दी जल्दी जल्दी बाहर निकलना है, ठीक है। क्लू नंबर वन हमको मिला, मैं सबमरीन की वो निगाह हूँ जो पानी के नीचे रहकर भी ऊपर का मंजर दिखाती है। मैं एक लंबा पाइप हूं जो कैप्टन को बाहर की दुनिया दिखाता है। बताइए मैं क्या हूं? ये जो सवाल है भाई, इस पर हमारे लिसनर्स कुछ अलग ही चीजें लिख रहे हैं। किसी ने लिखा है टेलीस्कोप, किसी ने लिखा है दूरबीन, किसी ने लिखा है पनडुब्बी की दूरबीन, किसी ने लिखा है पेरिस्कोप। देखिए, आप सब आगे पीछे सही हो रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक जवाब जो है वो है पेरिस्कोप, ठीक है, या पनडुब्बी की दूरबीन। तो जिन्होंने भी ये सही जवाब लिखा है, जोरदार ताली आप सबके लिए। क्या बात है, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। सबसे पहले सही जवाब हमें दिया है अली, अल्ताफ, मुश्ताक ने, फातिमा यूसुफ ने, मोहम्मद यूसुफ ने भी, और इनका नाम देख लिया जाए, इनका नाम है अहमद सियाम। बस हमारे आज यही लिसनर्स हैं जिन्होंने सही जवाब देने की कोशिश की है। थोड़ा मुश्किल हो गया क्लू नंबर वन, हाँ, लेकिन जवाब आप आसानी से दे सकते हैं अगर थोड़ा सा गौर फरमाएं। चलिए, पहला लेवल आपने सॉल्व कर लिया है, अब दूसरे लेवल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पेरिस्कोप हमने सही जवाब दिया, अब सबमरीन जो है

है वो ड्रिफ्ट कर रही है, इसे रोकना होगा। क्लू नंबर टू आपके लिए ये रहा, जब आपको रुकना होता है तब आप मुझे फेंक देते हैं और जब जाना होता है तो मुझे वापस खींच लेते हैं। मेरा वजन कई टन्स है और मैं जहाज को संभाल कर रखता हूँ, मैं क्या हूँ? कम ऑन, इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट क्लू। आप इसका जवाब मुझे फटाफट दीजिए 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ। एंड लेट मी सी कि आप में से कितने लोग हैं जो इस दूसरे फेज को पार कर पाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम समुंदर की गहराइयों में कैद हैं। क्लू नंबर टू एक बार फिर से दोहराऊंगी आपके लिए कि जब आपको रुकना होता है तब आप मुझे फेंक देते हैं और जब जाना होता है तो मुझे वापस खींच लेते हैं। मेरा वजन कई टन्स है और मैं जहाज को संभाल कर रखता हूँ। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी अपने जवाब दीजिए क्योंकि आपका जवाब ही आपको इस डूबती हुई सबमरीन से बाहर निकाल सकता है। और फिलहाल एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देश से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: Yes, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी फरमीता। Escape Room का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में है, दोपहर के 2:02। Make a wish कि आज इस समुंदर की गहराई से आप बचकर बाहर निकल पाए।
4: आप सुन रहे हैं Escape Room A for अमीता के साथ Only on FM 107 दिल से दी।
3: हाँ जी जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। वंस अगेन एस्केप रूम की सिचुएशन काफ़ी गहरी होती जा रही है, क्योंकि इस वक्त हम कहाँ कैद हैं, एक सबमरीन के अंदर जो कि गहरे समुंदर में है। उफ, पानी का प्रेशर बढ़ते जा रहा है, हमारी सबमरीन में पानी लीक हो रहा है उसके अंदर। परेशानी थोड़ी सी है, लेकिन ये परेशानी जल्दी सॉल्व हो सकती है। बस एक एक करके हमें सवालों के सही जवाब देने हैं और फिर हम सीधा बाहर निकल आएंगे, पानी की सतह से बाहर एकदम ताज़ी हवा महसूस कर पाएंगे। पहला क्लू आप सबने सॉल्व किया जिसका सही जवाब था पेरिस्कोप, कुछ ने लिखा पनडुब्बी की दूरबीन, दैट्स आल्सो राइट। और क्लू नंबर टू आपके लिए था कि जब आपको रुकना होता है तब आप मुझे फेंक देते हैं और जब जाना होता है तो मुझे वापस खींच लेते हैं। मेरा वजन कई टन्स है और मेरे जहाज और मैं जो हूँ वो जहाज को संभाल कर रखता हूँ। तो जवाब हमें क्या क्या आए हैं, आइए जरा उनकी तरफ रुख करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी किसी ने एंटीना लिखा है, एंटीना कैसे हो सकता है भाई, एंटीना नहीं है, गलत जवाब है। बलस्ट लिखा है, वो भी गलत जवाब है। जिन्होंने भी लिखा है एंकर, इट्स द राइट आंसर। वाह, कंग्रेचुलेशंस। लगता है आज एस्केप रूम की सिचुएशन और क्लूज थोड़े डिफिकल्ट होते जा रहे हैं हमारे लिसनर्स के लिए, क्योंकि सही जवाब बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। आ हा, लेकिन जिन्होंने भी सही जवाब दिए भाई अपनी पीठ थपथपाइए, यू डिड अ गुड जॉब। आइए देखें जिन्होंने गुड जॉब किया है। सईद अल्ताफ अली मुश्ताक, एंड देन वी हैव मोहम्मद यूसुफ खान, फातिमा यूसुफ, हिशाम, अहमद सियाम, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बात है, मिस्टर खान ने भी सही जवाब दिया है और एहसान ने तो मुझे पिक्चर तक दे दिया है। सो हमारे सारे लिसनर्स ने इन्होंने सही जवाब दिया है, तो ज़ोरदार तालियां आप सबके लिए। क्या बात है, क्या बात है। दूसरा क्लू भी आपने सॉल्व किया जो कि बड़ी कमाल की चीज़ है। अब आखिरी कदम है, ठीक है, एकदम लास्ट स्टेप पर हम पहुँच चुके हैं। सोना स्क्रीन पल्स कर रही है और हमें अब रास्ता चाहिए, ठीक है। तो क्लू नंबर थ्री आपके लिए ये रहा, मैं एक ऐसी आवाज हूँ जो किसी दीवार से टकराकर वापस आती है, मैं अंधेरे में सबमरीन को रास्ता दिखाती हूँ, मेरा नाम अंग्रेजी में ई से शुरू होता है, बताओ मैं क्या हूँ। इसका जवाब दीजिए और इस समुंदर से बाहर निकलने का रास्ता पाइए। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से ये तीसरा क्लू सॉल्व कीजिए, आखिरी लेवल पर हम पहुंच चुके हैं। आई रिपीट अगेन, मैं एक ऐसी आवाज़ हूँ जो किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। ये कौन सी आवाज़ होती है जो दीवार से टकराकर वापस आ सकती है। मैं अंधेरे में सबमरीन को रास्ता दिखाती हूँ, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरा नाम अंग्रेजी में ई अल्फाबेट से शुरू होता है। कम ऑन, गिव मी द राइट आंसर। 6622107 इज आर नंबर, 6622107। इस पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए एंड आई एम वेरी सर्टन कि आप ये आखिरी लेवल पार कर पाएंगे। क्या हो गया, सोच में डूब गए? देखिए, सोच में मत डूबिए, हमें आज के एस्केप रूम की सिचुएशन से बाहर निकलना है। तीसरे क्लू को सॉल्व कीजिए और सोचने के लिए मैं आपको एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक दे देती हूँ, तो एंजॉय कीजिए इस म्यूजिकल ब्रेक को, रिलैक्स कीजिए और आके जवाब दीजिए। हाँ, 6622107 पर स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो।
1: वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और एस्केप रूम की सिचुएशन से आज बच पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कॉज मुझे लग रहा है कि हमारे लिसनर्स थोड़ा सोच में पड़े हुए हैं कि एक के बाद एक जो क्लूज मिलते जा रहे हैं उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए। आखिरी क्लू पर मुझे लगता है हर कोई सोच में पड़ा हुआ है कि जवाब क्या हो सकता है। देखिए अभी आप एक सबमरीन के अंदर है, समुंदर की गहराइयों में, जहां सबमरीन के अंदर एक छोटा सा लीकेज भी हो गया है, पानी धीरे धीरे भर रहा है, एंड यू फीलिंग कि हम बाहर कैसे निकले। देखो बाहर निकलने के सिर्फ तीन रास्ते हैं, तीन सवालों का सही जवाब दो अपने आप बाहर आ जाओगे बिना किसी टेंशन के, ठीक है। पानी का प्रेशर बढ़ रहा है एंड आई नो दिमाग का प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। दो क्लूज आपने सॉल्व किए, पहले का जवाब था पेरिस्कोप, दूसरे का जवाब था एंकर और तीसरे में थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स अटक गए हैं। वेल तीसरा जो क्लू था वो ये है कि मैं एक ऐसी आवाज हूं जो किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। ऐसी कौन सी आवाज है जो दीवार से टकराकर वापस आती है? कम ऑन, उस पर फोकस कीजिए। मैं अंधेरे में सबमरीन को रास्ता दिखाती हूं। मेरा नाम अंग्रेजी में अल्फाबेट ई से शुरू होता है। फोकस, कम ऑन फोकस, बताओ क्या सही जवाब है। आई कैन सी कुछ लोगों ने अलार्म लिखा है, कुछ ने सोना लिखा है, सोना। ओके देखिए ये एक टेक्नोलॉजी है सोना, जिसका आपने जवाब दिया है। ये किस चीज़ से चलती है इस पर सोचिए, कौन सी चीज़ को डिटेक्ट करके ये वर्क करती है, ठीक है। कम ऑन नाउ थिंक। फिर से क्लू नंबर थ्री पर गौर फरमाए कि मैं एक ऐसी आवाज़ हूँ जो किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। मैं अंधेरे में सबमरीन को रास्ता दिखाती हूँ। मेरा नाम अंग्रेजी में ई से शुरू होता है एंड आई एम वेरी सर्टन कि अब आप सही जवाब दे पाएंगे। फोकस ऑन द अल्फाबेट ई, ये ऐसी आवाज़ है जो टकरा कर वापस आती है। कम ऑन गिव मी द राइट आंसर अपने नाम के साथ 666-22-107 पर 666-22-107। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर, क्योंकि बस आखिरी लेवल आपने पार करना है। आखिरी सही जवाब आपको सीधा इस डूबती हुई सबमरीन से बाहर ले जाएगा और आप एकदम, वो कहते हैं ना, ताजी हवा महसूस कर सकेंगे। ओके आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन हमारे लिसनर्स थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई देखो लास्ट टाइम मैं दोहराऊंगी और अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपके सही जवाब आएंगे, वरना आज एस्केप रूम की सिचुएशन से निकल पाना बहुत मुश्किल है बॉस। तो मैं एक ऐसी आवाज हूँ जो किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। मैं अंधेरे में सबमरीन को रास्ता दिखाती हूँ। मेरा नाम अंग्रेजी में ई से शुरू होता है। नाउ थिंक अबाउट इट। देखो भाई म्यूजिक सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट रियली हेल्प्स इन थिंकिंग, सो थिंक एंड गिव मी द राइट आंसर। बने रहिए एफएम 107 पर दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: हम भी वो हैं जो कभी

0: सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: यस मेरे दिल से देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूँ आपकी ये फॉरमीता और इस वक्त आप कहाँ हैं? पानी की गहराइयों में, समुंदर की गहराइयों में, एग्जैक्टली सबमरीन के अंदर, और वो सबमरीन जहाँ हल्का पानी का लीकेज भी है। भाई एस्केप रूम की सिचुएशन आज बड़ी चैलेंजिंग है हम सबके लिए, और हमारे कुछ लिसनर्स लिख रहे थे कि भाई हमको तो तैरना भी नहीं आता, अमिता कहाँ फंसा दिया। देखो ये तो गेम की सिचुएशन है, यहाँ पर आपकी स्किल्स उतनी काम नहीं आएगी जितना आपका दिमाग काम आएगा। आपको सोचना है, सही जवाब देना है और खुद ब खुद सारे रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपके पास तीन सवाल थे जिसका आपको जवाब देना था। पहला क्लू आपने सॉल्व किया, सही जवाब था पेरिस्कोप। दूसरा क्लू एंकर। तीसरे क्लू में थोड़ा सा मुझे लग रहा है हमारे लिसनर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार दोहरा के अब सही जवाब की तरफ हम रुख करेंगे। तो क्लू नंबर थ्री वॉज कि मैं एक ऐसी आवाज़ हूँ जो किसी दीवार से टकराकर वापस आती है, मैं अंधेरे में सबमरीन को रास्ता दिखाती हूँ, मेरा नाम अंग्रेजी में अल्फाबेट ई से शुरू होता है, बताओ मैं क्या हूँ। इसका जवाब देना है हमें ताकि हम समुंदर से बाहर निकल सकें। सो देखते हमें क्या क्या जवाब आए हैं। पहले हमें कुछ लोगों ने लिखा अलार्म, ठीक है, कुछ ने लिखा सोना, कुछ ने लिखा एनर्जी। ओके, वेल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सही जवाब इज एको। यस दिस इज द राइट आंसर। और जिन्होंने भी सही जवाब दिया, भैया अपनी पीठ थपथपा लो जल्दी जल्दी, वेरी गुड। वेल अली ने सही जवाब दिया, मोहम्मद यूसुफ खान ने, फातिमा यूसुफ ने सही जवाब दिया, और कौन कौन हमारे साथ जुड़ते जा रहा है, एहसान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, और मिस्टर खान ने भी सही जवाब दिया, इशाक ने भी सही जवाब दिया, अहमद सियाम ने भी सही जवाब दिया, हिशाम ने भी सही जवाब दिया, रॉबिन ने भी सही जवाब दिया, एंड मोहम्मद इजरार, यस इन्होंने भी सही जवाब दिया है। सो मुबारक, आप सब ने आखिरी फेज को पार कर लिया और अब आप सीधा समुंदर से बाहर निकल चुके हैं। हाँ भाई, तो कैसा लग रहा है, ताजी ताजी हवा फील हो रही है, आर यू फीलिंग फाइन। चलिए इसी बात के साथ आज के लकी विनर का नाम बता दिया जाए तो आज के लकी विनर है अहमद सियाम। हाँ भाई मुबारक, कंग्रेचुलेशंस, क्या बात है, हर एक सवाल का सही जवाब आपने दिया, गिव अप नहीं किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और इसी बात पर मैं सारे हमारे लिसनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो लगातार हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे और कोशिश करना नहीं छोड़ी। यस, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के एस्केप रूम को इतना खास बनाने के लिए। एंड ऑन दिस नोट भाई, देखो आज का जो टाइम था वो तो बिल्कुल समुंदर की गहराइयों में चला गया, लेकिन अगला सफर ऐसी जगह होगा जहां आप खुद को हजार बार देखोगे। हाँ, मतलब ये वीकेंड स्पेशल होने वाला है जहां आप फंसेंगे एक मिरर मेज में। सो बी रेडी। हाँ, कल दोपहर 1:30 बजे आपकी मेरी मुलाकात होगी और एफएम 107 के हमारे एस्केप रूम ये खासम खास शो पर, तो मैं आपकी ए फॉरमीत आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, और अभी के लिए क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए एफएम 107 के, और अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं, और अपना रेस्ट ऑफ द डे खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए और हाइड्रेटेड रहिए। ठीक है, डिहाइड्रेट मत हो जाना। और जाते जाते भाई ये कहना तो बनता है, हम हेराही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

Assalamu alaikum saathiyon and welcome back to our favorite eco-friendly corner on FM 107 jiska naam hai Eco Switch aur main hu aapki host Safa. To bhai aaj ka topic hai office mein eco switch yani kaam ki jagah par choti choti aadaton mein tabdili lakar hum environment ko kaise bacha sakte hain aur saath hi apni productivity ko bhi boost kar sakte hain. भाई देखिए अब ऑफिस का नाम सुनते ही ना दिमाग में कंप्यूटर्स एसी लाइट्स प्रिंटर्स और एंडलेस पेपर्स का ख्याल आ जाता है और सच कहूं तो ऑफिसेज दुनिया के सबसे ज्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग स्पेसेस में से एक होते हैं. देखिए एक एवरेज ऑफिस वर्कर हर साल ऑलमोस्ट 10,000 शीट्स ऑफ पेपर यूज करता है और रिसर्च के मुताबिक अगर एक ऑफिस सिर्फ डबल साइडेड प्रिंटिंग अडॉप्ट कर ले तो वो अपने पेपर वेस्ट को नियरली 40% तक कम कर सकता है. अब जरा सोचिए कि सिर्फ एक छोटी सी हैबिट चेंज से कितने दरख्त बच सकते हैं. चलिए इसे सिंप्लीफाई और रिलेटेबल बनाते हैं. देखिए सोचिए आप ऑफिस में अपने डेस्क पर बैठे हुए हैं, एसी फुल ऑन ठंडा चल रहा है, लाइट्स पूरे फ्लोर पर ऑन है और आप सिर्फ एक ईमेल चेक कर रहे हैं वहां बैठे हुए. अब अगर उस वक्त हम इको स्विच अडॉप्ट करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एनर्जी अवेयरनेस. मतलब जब आप रूम से 10 मिनट के लिए भी बाहर जाते हैं तो मॉनिटर स्लीप मोड पर और लाइट्स ऑफ. ये छोटी सी आदत हर ऑफिस वर्कर अगर अपना ले तो एक ऑफिस अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को 15-25% तक कम कर सकता है और ग्लोबली अगर देखा जाए तो सिर्फ ऑफिसेज की वजह से जो एनर्जी वेस्ट होती है वो एक छोटी सी कंट्री को साल भर चला सकती है. अच्छा अब बात करते हैं एसी की, जो गल्फ कंट्रीज जैसे कि कतर है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यहाँ एसी का यूज ऑलमोस्ट पूरा ईयर होता ही होता है, लेकिन इको स्विच का मतलब ये नहीं है कि हम भाई गर्मी में जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज करते रहे, बल्कि स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल है ना. देखिए आइडियल ऑफिस टेम्परेचर 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है. हर एक डिग्री कम करने से एनर्जी कंजम्पशन लगभग 6-8% तक बढ़ जाता है. तो अगर ऑफिस 21 डिग्री पर चल रहा हो सिर्फ एक्स्ट्रा कूलिंग कंफर्ट के लिए तो ये अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट है ना. देखिए अगर इसकी एक रिलेटेबल एग्जांपल हो ना तो अगर आप घर पर फ्रिज का दरवाजा बार बार खुला छोड़ देते हैं तो बिजली ज्यादा लगती है और कूलिंग वेस्ट होगी. बिल्कुल वैसे ही एसी का यूजेज भी होता है.

0: करती हूँ। अच्छा अब आते हैं पेपर वेस्ट पर, जो ऑफिस पोल्यूशन का साइलेंट हीरो होता है, केप पहना हुआ। आज भी कई ऑफिसेज में हर छोटी चीज प्रिंट हो रही होती है, ईमेल्स, ड्राफ्ट्स, इवन रिमाइंडर्स भी। अच्छा इको स्विच यहाँ ये सजेस्ट करता है कि डिजिटल फर्स्ट अप्रोच रखें। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वन टर्न ऑफ पेपर बनाने के लिए लगभग 17 मेच्योर ट्रीज काटने पड़ते हैं और 26,000 लीटर पानी जो है वो यूज होता है। जरा सोचिए अगर एक ऑफिस सिर्फ अपने इनिशियल कम्युनिकेशन को डिजिटल कर ले तो वो हर साल भाई एक मिनी फॉरेस्ट को बचाने के बराबर होगा। और इसी में हमारे जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शेयर ड्राइव्स होती हैं, या हमारे जो इंटरनल मैसेजेस एप्स होती हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं, वो यूज करना सीखें। अच्छा आप थोड़ी सी बात करते हैं छोटी छोटी हैबिट्स की जो इको स्विच को पावरफुल बनाती हैं, जैसे कि मग कल्चर अडॉप्ट करना, डिस्पोजेबल कप्स यूज करने के बजाय अगर हर एम्प्लॉय अपना रीयूजेबल मग यूज करे तो एक ऑफिस साल भर में हजारों प्लास्टिक कप लैंडफिल में जाने से रोक सकता है। एक फन फैक्ट पता है क्या है इसका? एक फन फैक्ट ये है कि प्लास्टिक कप को आप कह लें कि डीग्रेड होने में कितने 200 से 500 साल लगभग लग जाते हैं। मतलब जो कप आप 5 मिनट में यूज करते हैं वो आपके ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के टाइम तक भी इस जमीन में रह सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट इको स्विच टिप ये है कि स्मार्ट प्रिंटिंग सीखें। मतलब प्रिंट सिर्फ तब करें जब जरूरी हो और ड्राफ्ट मोड पर यूज करें। ड्राफ्ट मोड इंक कंजम्पशन को 30% तक रिड्यूस कर देता है और अगर पॉसिबल हो तो ग्रे स्केल प्रिंटिंग यूज करें क्योंकि कलर प्रिंटिंग ज्यादा इंक यूज करती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अननेसेसरी हाई रेजोल्यूशन में जो है ना कोई वीडियो डाउनलोड करें। जब लो रेजोल्यूशन होगी तो भाई काम चल ही जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो साथियों इको स्विच का ऑफिस वर्जन ये है, लेस वेस्ट, मोर अवेयरनेस, स्मार्टर चॉइसेस। आप जब अगला ईमेल भेजें जरा सोचिएगा क्या प्रिंट की जरूरत है। जब एसी एडजस्ट करें तो सोचिएगा क्या टेम्परेचर बैलेंस्ड है। जब लाइट्स ऑन करें तो सोचिएगा कि क्या इसकी जरूरत है। ये छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। और आखिर में सफा की तरफ से एक सिंपल सा रिमाइंडर, ऑफिस सिर्फ काम की जगह नहीं होता, ये एक इकोसिस्टम है और जब हम इस इकोसिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो ये हमारी बेहतर एनवायरमेंट, बेहतर हेल्थ और बेहतर फ्यूचर रिटर्न करता है। स्टे ट्यून्ड विद FM 107। यहाँ हम हर छोटी आदत को एक बड़ा चेंज बनाते हैं। मैं हूँ सफा, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे जुमे के दिन की अहमियत के बारे में। जुमे का दिन इस्लाम में बहुत खास मकाम रखता है। इसे तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि इबादत, दुआ और रूहानी तरक्की का एक मौका होता है। इस दिन गुस्ल करना, पाक कपड़े पहनना और जुमे की नमाज के लिए वक्त पर मस्जिद जाना बहुत फजीलत रखता है। खुतबे को तवज्जो से सुनना भी इबादत का हिस्सा है। इस दिन दुआओं की कबूलियत के भी खास लम्हे होते हैं, जहां बंदा दिल से मांगे तो अल्लाह कबूल फरमाते हैं। आज के मसरूफ दौर में हमें जुमे के दिन को सिर्फ रूटीन ना समझकर एक खास रूहानी दिन के तौर पे मनाना चाहिए। आज का अमल ये है कि जुमे के दिन कुछ एक्स्ट्रा वर्क अल्लाह के लिए निकालें और दिल से दुआ करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One step to 2030.
3: आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ इनोवेशन मिनट्स पर। जी हाँ, आज के इस फास्ट पेस दुनिया में इनोवेशन मिनट्स का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि छोटी यानी कुछ मिनट्स के अंदर ही अपने नए आइडियाज को सच्चाई या ये कहो कि ग्राउंड लेवल पर लेकर आना। इनोवेशन सिर्फ बड़ी डिस्कवरीज तक महदूद नहीं है बल्कि रोजाना जिंदगी के छोटे इम्प्रूवमेंट्स भी इनोवेशन का हिस्सा होते हैं। जी हाँ, इनोवेशन असल में नए आइडियाज, मेथड्स या प्रोडक्ट्स क्रिएट करने का प्रोसेस है जो जिंदगी को बेहतर बनाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर इनोवेशन किसी बड़ी मशीन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। कभी कभी एक सिंपल आइडिया जिसमें काम को आसान बनाना या टाइम बचाना भी इनोवेशन का एक हिस्सा होता है। इनोवेशन मिनट्स का मतलब ये है कि इंसान अपनी डेली रूटीन में थोड़ा सा टाइम निकाले, सोचे समझे और फिर कुछ चीजों को एनालाइज करे। जब हम अपने काम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो हमें नए सॉल्यूशंस मिलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी का तरीका चेंज करे या कोई एम्प्लॉय अपने काम को फास्ट और बेटर करे तो ये भी तो इनोवेशन ही हुआ ना। आजकल इनोवेशन हर जगह नजर आता है। स्मार्टफोन्स, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सब इनोवेशन की मिसालें हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। ये इन्वेंशन इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और उनकी जरूरियात को समझा। इनोवेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये प्रोग्रेस और ग्रोथ को प्रमोट करता है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, नए जॉब्स क्रिएट करता है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ इनोवेशन सोसाइटी के बड़े प्रॉब्लम्स, चाहे फिर एनवायरमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इनके सॉल्यूशंस भी देता है। जी हाँ, इनोवेशन मिनट्स हमें ये सिखाती है कि चेंज लाने के लिए हमेशा ज्यादा टाइम नहीं चाहिए बल्कि सोच चाहिए। कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट्स ही क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, नए आइडिया के लिए काफी हो जाते हैं। और ये हैबिट अगर रोजाना डेवलप हो तो इंसान अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। बस आखिर में कहना जरूरी है कि इनोवेशन सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम नहीं है, ये हर इंसान अपने लेवल पर जरूर कर सकता है। जब हम अपने नए आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं और इन पर काम करते हैं तो हम अपनी जिंदगी के साथ साथ सोसाइटी को भी बेहतर बनाते हैं। इसीलिए हर दिन कुछ इनोवेशन मिनट्स निकालिए क्योंकि छोटी सी सोच कभी कभी बड़ा चेंज लेकर आती है। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब

0: के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2020.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: FM 107
0: दिल से देसी.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत. सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महाविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीत टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है।

0: आइए सामीन सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं उनकी अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड के बारे में। तो उमर खय्याम का असल नाम गियात अल-दीन अबुल फत उमर बिन इब्राहिम खय्याम था। उनकी पैदाइश सन 1048 में निशापुर, जो आज का ईरान है, में हुई थी। निशापुर उस वक्त इल्म और फन का एक मशहूर मरकज था। उनकी तालीम का सफर यहीं से शुरू हुआ और उन्होंने अपनी तालीम काफी मशहूर आलमों से ली। उमर खय्याम का दिमाग बहुत ही तेज था और उन्होंने अपनी तालीमात को उस वक्त के इल्म हुनर के मरकज में भी आजमाया। उनकी जिंदगी में इल्मी, फनी और फालसफी रुझान का काफी ताल्लुक रहा। दोस्तों, उमर खय्याम की तालीम में फिलॉसफी, लॉजिक और मेटाफिजिक्स जैसे एडवांस टॉपिक्स भी शामिल थे। उमर खय्याम का ताल्लुक अपने शहर निशापुर से बहुत गहरा था और वहां का इल्म हुनर काफी बड़ा था, जो उनकी सोच और काम को नई राह दिखाता रहा। निशापुर काफी वक्त तक ईरान का इल्म फन का मरकज रहा, जहां तलबा और फुकरा के दरमियान इल्म का इस्लाह और फरोख होता रहा। आइए अब बात करते हैं उनके एजुकेशन और साइंटिफिक परस्यूट्स पे। तमीन उमर खय्याम ने अपने इल्म को सिर्फ फारसी और अरबिक तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई इल्म व फन के मैदान में काफी अहम काम किए। उन्होंने अपने इल्म का सफर बगदाद, बुखारा और समरकंद तक भी जारी रखा। ये शहर उस वक्त इल्म और सबक देने के लिए मशहूर थे। उमर खय्याम ने मैथ और साइंस के कई थ्योरीज पर काम किया। उनका सबसे मशहूर इल्म उनका काम मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर था। उन्होंने उस वक्त के फेमस एस्ट्रोनॉमर नासिर अल-दीन अल-तुसी के साथ मिलकर एक ऑब्जर्वेशन सेटअप किया। ये सेटअप अपनी एक्यूरेसी के लिए मशहूर हुआ। उमर खय्याम ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स और ऐसे लिखे जो उनकी साइंटिफिक सोच का सबूत हैं। सामईन, उन्होंने अपनी जिंदगी काफी वक्त एस्ट्रोनॉमी को दी और उन्होंने एक ऐसे कैलेंडर की तहकीकात की जो उस वक्त के जॉर्जियन कैलेंडर से काफी बेहतर था। उनका कैलेंडर एक बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम था, जो ईरान और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में आज भी इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने अपने वक्त के लोगों को एस्ट्रोनॉमी का इल्म दिया और उन्हें समझाया कि किस तरह से हम अपने आसपास के सामान और सितारे देखकर वक्त और मंजरों को समझ सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं साइंटिस्ट वर्ल्ड सर्वर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: आइए अब एक नजर डालते हैं उमर खय्याम एज अ फिलोसोफर। सामईन, उमर खय्याम सिर्फ इल्म के शौकीन नहीं थे, बल्कि वो एक अहम फिलोसोफर भी थे। उनकी फिलॉसफी काफी गहरी थी और उनके नजरियात ने उन्हें अपने जमाने से काफी आगे रख दिया। उन्होंने अपनी सोच को रुबाइयत में बयान किया, जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। उनकी फिलॉसफी में सबसे ज्यादा जो बात समझने वाली थी वो थी फनियत, यानी दुनिया की माया। उमर खय्याम की नजर में दुनिया सिर्फ एक बेकार चीज नहीं थी, जो इंसान के गम, खुशी और तलाश की वजह से रंग बदलती थी। उनका कहना था कि इंसान को अपनी माया और दुनिया के दूसरे फसाने में ना फसाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वक्त की राह में सब कुछ फानी है, हम सिर्फ उस राह में अपनी किस्मत का हम सफर है। उनका ये नजरियात इंसान को अपनी असली मंजिल की तरफ दावत देता है। खय्याम के लिए जिंदगी का असल मकसद अपनी दोस्ती, अपनी मंजिल और अपनी हकीकत को समझना था। उन्होंने अपनी रुबायत में बहुत सी गहरी बातें लिखी, जो आज भी हर इंसान के लिए एक दर्स हैं। आइए अब जानते हैं कि उमर खय्याम की मैथमेटिक्स के लिए क्या कंट्रीब्यूशंस रही। उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर

0: उनका काम सिर्फ उनके जमाने तक नहीं था बल्कि उनका असर हर दौर और हर इल्म व फन में महसूस किया गया। उनकी रुबाइयत, उनकी फिलॉसफी और उनके इल्म की राह दुनिया भर में इंसान को अपनी सोच को समझने की एक बेहतरीन नजर दे रही है। उमर की शोहरत मगरिब में उनकी रुबाइयत यानी चार मिसरात की मजमूए की वजह से है। चार मिसरात एक ऐसा शेर होता है जो चार लाइंस पर मुसल्लस होता है, जो आम तौर पर आ या अबा काफिया से होता है और ये एक पैगाम के करीब होता है। उमर के अशार को बहुत कम तवज्जो मिली थी जब तक इन्होंने फिट्स ग्रैंड को इंस्पायर नहीं किया, जिन्होंने अपनी मशहूर किताब द रुबाइयत ऑफ उमर खय्याम लिखी, जिसमें कुछ अब मशहूर जुमले हैं जैसे अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड थाओ, टेक द कैश एंड लेट द क्रेडिट गो, और द फ्लावर दैट वंस हैज ब्लाउन फॉरएवर डाइज। ये चार मिसरे हर बड़ी जुबान में तर्जुमा किए गए हैं और ये अक्सर यूरोपियन लोगों के पर्शियन शायरी के हवाले से सोचने का तर्ज बदलने का सबब बने हैं। समयन कुछ उलमा ने शक किया है कि क्या उमर ने वाकई शायरी लिखी थी। उनके मुअस्सर वक्त में उनके अशार पर किसी ने तवज्जो नहीं दी थी और उनकी वफात के 200 साल बाद चंद चार मिसरात उनके नाम से सामने आए। फिर भी ये अशार ज्यादातर उन नजरियात के खिलाफ कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल किए गए जो उमर के हवाले से माने जाते थे, जिससे कुछ उलेमा ने ये शक किया ये मिसरात शायद उमर के नाम से जोड़कर बनाए गए हैं क्योंकि उनकी इल्म की शोहरत थी।
1: आप सुन रहे हैं साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: हर एक उमर का क्वाड्रेंट अपने आप में मुकम्मल शेर है। फिट्ज़गेराल्ड ने इस ख्याल को सोचा कि इन रुबियात के एक सिलसिले को एक मुसलसल एलिगी में शामिल किया जाए जो कि एक इंटेलेक्चुअल इत्तेहाद और कंसिस्टेंसी रखता हो। फिट्ज़गेराल्ड की जर्रा और खूबसूरत पैराफ्रेजिंग ने उनके तर्जुमे को यादगार और मुख्तसर बना दिया। दोस्तों, फिट्ज़गेराल्ड और दूसरे लोगों के तर्जुमे किए हुए अशार एक ऐसे शख्स को दिखाते हैं जो गहरी सोच रखता है, जो हकीकत और अबादियत, जिंदगी की नापायदगी और अनिश्चितता और इंसान का इल्मी मजहब के साथ रिश्ता जैसे सवालों से परेशान है। मुसन्निफ खुदाई इसारत और आखिरत की मौजूदगी पे शक करता है, मजहबी यकीन का मजाक उड़ाता है और इंसान की कमजोरी और जहालत को गहराई से महसूस करता है। जब उसे अपनी उलझनों के जवाब नहीं मिलते तो वो अपनी वफादारी को इस हालत में दरियाफ्त कर लेता है कि वो मादी दुनिया की चंद छोटी खुशियों और हुस्न की पुरमस्ती का लुत्फ उठाए। दोस्तों, आज हमने जाना उमर खय्याम के इल्म, उनकी शायरी और उनकी फिलॉसफी के बारे में। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन तरीके से गुजारा और दुनिया को अपनी सोच से नई राह दिखाई। उनकी रुबाइयत ना सिर्फ उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है बल्कि ये हमारे लिए एक मिसाल है। उनकी इल्म, उनकी सोच और उनकी पोइट्री आज भी दुनिया में पढ़ने, समझने और इंस्पायर करने का सबब है। उनका काम हमारी सोच को गहरा करता है और हमेशा अपने असर से रोशनी देता रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मजीद दूसरे साइंटिस्ट और उनकी दिलचस्प तारीख को तलाश करेंगे जो हमारी नॉलेज में मजीद इजाफा करेगी। अगर आपने हमें सोशल मीडिया में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो इसी के साथ हमारे साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को दीजिए इजाजत। सुनते और

0: FM 107 Time Check.
1: अभी कल ही तो आई थी तुम, इतने जल्दी जाने का मन भी बना लिया। जब हाथ में हाथ होता है तुम्हारा तो दिल खुश होता है। एक दिन के अंदर इतनी तेजी से तुम खर्च हो जाती हो, तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। तुम हाथ पकड़ के रखा करो, ए सैलरी तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है जाने की। तुम जाती हो तो दिल तड़पता है और गाता है कि तड़प

0: छूट गए। इंटरनेट से लेकर बाकी हर एक काम में बहुत जल्दी खर्च होती है। जब किसी अपनी चीज के लिए तुमको खर्चा करना चाहता हूँ तो तुम हाथ से छूट जाती हो, निकल जाती हो। ए सैलरी, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें जाने की? हबीबी सलाम अलैकुम।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: हाँ जी, अभी भी टाइम चेक कर लो, FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में 4:02, और जितनी जल्दी आती उतनी जल्दी जाती भी है, ये मतलब आते ही जाती है सैलरी ऑब्वियसली। तो इनके आने पर जो खुशी है, इनके जाने पर उतना ही दुख होता है। हाथों में मतलब एक ग्रिप होनी चाहिए पैसे को खर्च करने से पहले, लेकिन वो ग्रिप आने के बाद, ये ग्रिप 25 से 30 तारीख जो है ना, ग्रिप मजबूत हो जाती है, पैसे खर्च इंसान कम करता है। लेकिन पता नहीं ये 30 से लेकर 10 तारीख तक, 12 तारीख तक क्या होता है, ग्रिप खत्म हो जाती है भाई। इतनी तेजी से सरक जाती है सैलरी, पता नहीं चलता है। कहरामा से लेकर बाकी छोटे मोटे इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज, घर का किराया, सब में ऐसे निकलती है भाई कि पूछो मत। ऐसा लगता है हाथों से रेत निकल गई। तो दोस्तों, इस्तकबाल आप सभी का FM 107 में, 4:03 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और ये शो द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आपकी अपनी मर्जी के गाने प्ले होते हैं और हर रोज एक थीम होती है जिस पर हम गाना जो है वो प्ले करते हैं। और आज की थीम क्या है? कल हमने जिस तरह के गाने प्ले किए थे, मजा आया था लोगों को, और कई लोगों को जो रिक्वेस्ट थी प्ले नहीं हो पाई थी, तो माजरत के साथ जिनकी रिक्वेस्ट प्ले नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, आज हम कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट प्ले हो जाए। तो आज मुझे पूरा यकीन है कि हमारे ऑब्वियसली लोग जो सुनने वाले हैं वो जवान हैं, और जवानी की दहलीज पर कदम रखा है आपने। क्या 50 के हो आप? हाँ तो क्या हुआ, दिल तो जवान है, है? तो जवानी की दहलीज पर अगर आपने कदम रखा है तो हनी सिंह को आप पसंद करते होंगे, और इसलिए आज की थीम है हनी सिंह के गाने। 1 जुलाई और ये वेंसडे का दिन, अच्छे बेहतरीन गाने से अगर शुरुआत करेंगे तो उम्मीद है कि जुलाई का महीना और बेहतरीन गुजरेगा। तो हनी सिंह के गाने आज आप रिक्वेस्ट करिए, एक से बढ़कर एक उनके गाने रहे हैं, और क्या वो रैप रहा हो, क्या वो किसी भी या कह सकते हैं सिंगर के लिए शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही हनी सिंह की जो शुरुआत थी वो भी लाजवाब थी। तो शुरुआत के गाने भी आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे कई गाने उनके याद है, लेकिन उनमें से एक जो मेरे दिमाग में सबसे पहले चढ़ा था, तो मैं बारात से लौट रहा था, मुझे याद है बारात से लौट रहे थे, और अंग्रेजी बीट कोई गाना था, और मुझे पता भी नहीं ये हनी सिंह कौन है, नया नया आया था ये, लोग लेकिन बहुत ज़्यादा सुनने लग गए थे, तो मुझे गाने का इतना ज़्यादा उस वक्त शौक नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये गाना जो चल रहा था तो अंग्रेजी बीट मुझे अच्छा लगा, और हाईवे पे गाड़ी चल रही थी, मेरा दिमाग एक बार को लगा, और फिर मैंने ड्राइवर से कहा यार एक बार फिर से प्ले करना, अच्छा गाना था। फिर 2-3 बार मैंने उसे सुना पूरे रास्ते में, तो मैंने कहा यार ये कौन है। पहली बार तब मुझे गाने का सुनने का सुनाने का शौक जो है वो बढ़ गया था, और हनी सिंह के इसी गाने से मैं तो शुरुआत करना चाहता हूँ। बाकी अब आपकी मर्जी है, जो भी आप गाना कहेंगे वो गाना यहाँ पर प्ले होगा, हनी सिंह का होना चाहिए, तेज तर्रार बेहतरीन रैप वाला गाना। FM 107 पे आज की थीम हनी सिंह के गाने।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: भाई 99% पे आग बरसाता हुआ हमारा मोबाइल, और बेहद चार्ज है, मतलब आज तो दोबारा चार्ज लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैसेज की तरफ जल्दी से बढ़ लेते हैं। सलाम आया है शाम साहब, वालेकुम अस्सलाम। फरहत साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, खैरियत फज्जू भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। पायल पायल, अच्छा ओके, मतलब वो जो मैं बात कर रहा था उसके बारे में तो नहीं बात हो रही है, या फिर ये पायल कोई गाना है हनी सिंह का? बाकी एक और गाना था पायल, तो नहीं पागल होगा ये लड़की, पागल है पागल है, वो तो किसी और का था शायद, सॉन्ग कह रहे हैं पायल, पायलिया है, हनी सिंह का तो नहीं है यहाँ पे पायलिया। चलो एक एक करके पहले मैं मैसेज देख लूँ, फिर हम पायल पे आते हैं। फिर ये है ब्राउन रंग, हनी सिंह का सुनना है, ओके लेट मी चेक, ये वाला तो गाना है पक्का, आई एम श्योर, डेड श्योर, ब्राउन रंग। कीबोर्ड अपना कमाल दिखा दो, जल्दी से सर्च हो जाओ ब्राउन रंग।

0: ठीक है, तो सबसे पहला गाना पायल तो नहीं मिला, लेकिन ये गाना जरूर मिल गया। कोई कोई कॉल पर है, जरा इनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है?
1: हेलो,
0: जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार कोशिश करिएगा कि कनेक्ट हो जाए दूसरे नंबर से, एक बार ट्राई कर लें अगर है तो, वरना हम दोबारा ट्राई करेंगे। हेलो, एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी फजील भाई, क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान, आप सुनाएं कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मालिक का शुक्र। क्या मेरी आवाज़ नहीं?
0: नहीं नहीं, आप वाली वो दूसरे वाले थे। आप अलग हैं।
1: वो मैं
0: हेलो, नहीं वो आपकी दूसरे नंबर पे लाइन पे थे, आप दूसरे लाइन पे थे, लेकिन वो जो पहली आवाज थी वो दूसरी थी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे
0: अच्छा,
1: लगनी चाहिए।
0: हाँ, नहीं
1: तो
0: आज
1: तो बड़ा उछल कूद वाला सीन है।
0: अच्छा
1: क्योंकि
0: हाँ,
1: भाई ला देना बोला
0: हनी सिंह की है बात, तो उछल कूद तो होगी और फिर उनके जो गाने हैं आज 1 जुलाई पे तो ऑब्वियसली प्ले होने भी चाहिए यार, क्योंकि आज यू नो वेंसडे का दिन है, वीकेंड कल है खैर, लेकिन फिर भी तैयारी तो आज से ही करनी शुरू करेंगे अपन लोग। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: गार्डन गार्डन तो होता है ना भाई।
0: हाँ ये
1: भाई, मैं हूँ क्लासिक वाला, और हर सिंगर की जना खासियत होती है, एक आधा गाना तो ऐसा गा देता है कि इंसान बोलता है हाँ यार, इसमें इसमें भी इसके पास दुख भी है। तो एक उसका गाना है,
0: है अपन, ये तो यार सनमपुरी का है जो इन्होंने दोबारा गाया है, है अपना दिल तो आवारा। हनी सिंह, अच्छा हिमेश के साथ इन्होंने गाया था एक्सपोज 2014 मूवी में, है ना?
1: बिल्कुल
0: ठीक है, ये वाला मिल गया मुझे। ठीक है, तो अपन ये गाना भी प्ले करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नाम एक बार बताते जाइए।
1: मेरा नाम हमजा भाई।
0: हमजा, ओके, तो दोस्तों हमजा की रिक्वेस्ट पे गाना चलेगा, लेकिन हमजा भाई तीसरे नंबर पे आपका गाना है। ठीक है, सबसे पहले ब्राउन रंग है, फिर एक भाई ने आदत की बात कही थी और बहुत दिन से कह रहे हैं एमडी हुसैन आदत, इनका गाना, फिर आपका गाना। ओके
1: ओके
0: ब्रो भाई, शुक्रिया।
1: सैलरी बची नहीं बची आपके पास?
0: अरे कहां भाई, उस पे तो आग लग गई है यार, सैलरी कहां बचती है?
1: आते ही आप भी दिल के दुख छेड़ देते हैं कि नहीं बस बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब नहीं हो सकता है मुझसे।
0: अभी कल ही तो मैंने उसको अपने हाथ लगाया था, जो हाथ छोड़कर जाने भी लग गई, बड़ी जल्दी है उसको।
1: एक ही याद है जो जिंदगी भर सताती रही मुझे।
0: आहा, क्या दर्द है। और ये सब सैलरी के लिए है?
1: बिल्कुल।
0: अच्छा तब ठीक है,
1: खुश रहे, याद रखें।
0: ओके भाई,
1: खुश रहे, ठीक है,
0: अस्सलाम वालेकुम। देखो मैं, मुझे लग रहा मेरे ही दर्द हैं जो छलक रहे हैं, और लोगों की भी दर्द हैं। एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते फिर गाने की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है आपने?
2: नहीं नहीं, कोई ब्लूटूथ।
0: आपकी आवाज ऐसे कट रही है जैसे आपके पास या तो इंटरनेट है, आपने कॉल करा, हालांकि इंटरनेट नहीं है। एक ही रियाल बचा था क्या कॉल करने के लिए? कट रही आवाज है, नहीं आ रही है भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप शायद मेरे ख्याल से या तो अंडरग्राउंड कहीं पार्किंग वगैरह में होंगे, इस वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है, इससे पहले भी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, बाकी मैसेज की तरफ जल्दी से बढ़ लेते हैं। यूसुफ भाई ने सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी वेंसडे इवनिंग। आते ही आज भी सैलरी की शायरी, क्या बात है फजील, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत कहाँ होती है, जब सैलरी हाथ से निकलती है तो दुख दर्द पीड़ा सैडनेस परेशानी ये सब आपके दिल के करीब रहता है जब सैलरी हाथ से निकल रही होती है। दुख दर्द पीड़ा सैडनेस परेशानी, यार थोड़ा थोड़ा तो शायर मेरे अंदर भी है। वाई हनी सिंह, अच्छा मोहम्मद, ये कोई रीजन है? अब मैंने कभी आपको कहा कि वाई 90s हैं? मैंने तो कभी नहीं कहा। आज आप कह रहे हैं वाई हनी सिंह। अरे भाई, हनी सिंह के बहुत सारे मोहब्बती हैं। बाकी लोगों के मैसेज एक एक करके लेंगे। सबसे पहले तीन गाने अपन लोग प्ले करने वाले हैं, एक तो ब्राउन रंग ऑब्वियसली, और फिर हुसैन भाई की रिक्वेस्ट पे आदत, और हमजा ने कहा था है अपना दिल तो आवारा। ये तीन सॉन्ग बैक टू बैक एंजॉय करें FM 107 पे, दिल से देसी।

0: little slow one, but a beautiful song sung by Honey Singh and Himesh Reshamiya.
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
0: दिल से देसी हाल है बीबी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एफएम 107 पे इस्तकबाल है और ये शो द रिक्वेस्ट शो आपकी अपनी मर्जी के गाने बस आपको रिक्वेस्ट लिखनी है 666-22107 पे हनी सिंह के जो भी गाने आपके अपने दिमाग में आ रहे हैं वो बताइए और वो गाने यहाँ पर प्ले होंगे जैसे अभी तक प्ले हुए हैं बाकी दो गाने अपन तैयार कर चुके हैं और एक तो है अंग्रेजी बीट दे हजार भाई बहुत ही शुक्रिया इस गाने को रिक्वेस्ट किया आपने क्योंकि ये मेरा वाला फेवरेट है और अपनी मर्जी से तो प्ले नहीं कर सकते थे तो शुक्रिया बहुत ज़्यादा फिर एक दिलजीत भाई का गाना कहा था पंगा वो पंगा गाना मुझे मिला नहीं है रियली सॉरी भाई फैजान भाई ने कहा है ये गाना प्ले करने को काला स्टार हनी सिंह का गाया हुआ ये गाना काफ़ी ज़्यादा चला भी था और इससे पहले अपन एक बार प्ले कर भी चुके तो फैजान भाई आ रहा है ये दो गाने आपके लिए आ रहे हैं सबसे पहले अंग्रेजी बीट और फिर फैजान भाई का गाना हनी सिंह का काला स्टार इसके बीच और भी कुछ गाने हैं जल्दी से लोगों के मैसेज देख लेता हूँ ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दी है मैंने बहुत दिन बाद सुनूंगा बिलाल साहब बहुत ही शुक्रिया इस गाने को रिक्वेस्ट करने के लिए ब्लू आईज सो ये गाना भी यहाँ पर अवेलेबल है क्या बात है यार आप लोगों की पसंद ना मैं बता रहा हूँ आप लोगों की पसंद अच्छी है बस एक ही मामले में ख़राब होनी है वो जब होगी तो आपको पता चल जाएगा कि किस मामले में फजील भाई कह रहे थे कि किस मामले में पसंद ख़राब हो गई यहीं पर बस मार खा गए अपनी बातों से सलाम वालेकुम फजील भाई ब्लू आईज एक बार प्लीज़ ये कहा है अब्दुल ने अब्दुल और साथी किस भाई की रिक्वेस्ट पे अब्दुल और बिलाल की रिक्वेस्ट पे ये गाना ब्लू आइज भी प्ले होगा लेकिन थोड़ा सा रुक के ठीक है फिर ये चाय की तस्वीर भेजी है ठीक है ओके एक और है प्लीज़ प्ले शेख अरफान अल कासमी कहते हैं ब्लू आइज प्ले कर दे ठीक है अरफान साहब थोड़ा सा रुकिए यही गाना आपके लिए आ रहा है अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई देसी कलाकार सुनना है देसी कलाकार देसी कलाकार यही वाला ना ठीक है हनी सिंह ओके आई कैन नॉट प्ले दिस एज आई कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास ये गाना अवेलेबल हो के भी अवेलेबल नहीं है बट मैं सुनता हूँ अगर ये गाना अवेलेबल हो के अवेलेबल हो सकता है तो क्यों नहीं प्ले करेंगे लेकिन उससे पहले ये दो गाने आपके लिए प्ले कर रहा हूँ सबसे पहले अंग्रेजी बीट और फिर कलर स्टार हनी सिंह की आवाज़ में और आज जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है उनको बता दें कि आज की थीम है वन एंड ओनली हनी सिंह इनका एक एरा था और एरा था क्या है वापस आ गए थोड़ा लंबा इन्होंने ब्रेक लिया लेकिन वापस आने के बाद क्या बवाल काट रहे हैं अगर आप नए गाने भी सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल हनी सिंह के गाने सुन सकते हैं और इस वक्त आज की थीम द रिक्वेस्ट शो में है हनी सिंह के गाने तो ये रहा अंग्रेजी बीट सॉन्ग और आप रिक्वेस्ट करें नंबर है 666-22107

रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: Yeah. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: पूरा वक्त गुजर जाता पता ही नहीं चलता। हनी सिंह की आवाज में ब्लू वॉइस सुना आपने।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: बहुत देर से मैं सोच रहा था यार, एक गाना जो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है वो लोगों ने अभी तक रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन फाइनली रिक्वेस्ट कर लिया है। और ये हैं आदिल भाई जिन्होंने रिक्वेस्ट किया हनी सिंह की आवाज में हाई हील्स। अरे बहुत देर से मैं सोच हाई हील्स नहीं सुनना चाह रही यार, क्या बात हो गई। लेकिन फाइनली आदिल भाई आए, बहुत दूर से गई, कह रहे हाई हील्स प्ले हो जाते तो मजा आ जाए, क्यों नहीं यार। फिर उसके बाद कैसर साहब ने कहा इंग्लिश सॉन्ग प्ले करोगे? नहीं मेरा भाई, इंग्लिश तो नहीं बिल्कुल। अभी हनी सिंह ने कोई अंग्रेजी गाना गाया हो वो अलग बात है, लेकिन उनके जो असली गाने हैं और जो हमारे सुनने वाले हैं वो हिंदी उर्दू वाले हैं ना, तो ये मसला है। बाकी फरज साहब ने थम्स अप दे दिया है। उसके अलावा एक और है, जवानी इराकी सॉन्ग प्ले प्लीज है, ये गाने भी गाए हैं क्या हनी सिंह ने। बाकी एक सलाम है गाजी साहब का, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई कैसे हैं। दो गाने हैं यहाँ पर, एक तो हाई हील्स हो गया और नाहिद खान ने कहा है लुंगी डांस। लुंगी डांस इसके भी फैन है क्या? मैं इस बारे में सोच रहा था कि अगर जो फैन होंगे आमतौर पे वो बेहतरीन आला दर्जे के गाने पे होंगे, हालांकि लुंगी डांस भी अच्छा गाना है, मतलब ये नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है यार, ऐसा लुंगी डांस में वाइब करने के लिए गाना अच्छा, ये तो मैं मानूंगा भाई, इस गाने पे वाइब जो है वो आप अच्छी कर सकते। बाकी लुंगी डांस में किसका था ये लुंगी डांस? लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस रावण का था क्या? रावण मूवी का ट्रैक, लेट मी चेक, अगर ये मिल जाए तो क्यों नहीं, ये भी प्ले हो जाएगा। फिलहाल एक कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू।
0: जी
2: मुजीद भाई।

0: मैं बहुत बढ़िया हूँ भाईजान, आप कैसे हैं?
1: बस आपकी दुआएं हैं, एक एक दिन कट रहा है।
0: एक एक दिन कट रहा, क्या हुआ? तैयारी कर ली है क्या कहीं जाने की?
1: नहीं भाईजान, कहीं जाने की तैयारी नहीं है।
0: तो फिर एक दिन कहाँ गिरना यार?
1: अब एक एक दिन निकल रहा है तो वही बंदा जाएगा।
0: अच्छा, तो क्या है आपकी डिमांड? हनी सिंह का कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं भाईजान?
1: जो आप सुना दे वही बेहतर है, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे मसले पे बात करने के लिए आपको कॉल किया।
0: अच्छा, मैं अगर माजरत मेरा भाई, अगर आप ये मसले फोन पर बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर ना रिक्वेस्ट का शो है और फिर वो वक्त जो है बड़ा मुख्तसर सा होता है, निकल जाता है बड़ी तेजी से, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे जवाब देता हूँ।
1: चलिए ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा अगर अभी एक मिनट भी टाइम दे देते तो मैं
0: बिल्कुल देता, लेकिन हमें इजाजत व्हाट्सएप पे बात करने की है, यहाँ पर अभी लोगों के सॉन्ग का है, ये मसला है।
1: ओके,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप व्हाट्सएप पे आ जाएं, वहां पर जो भी आपके सवाल है उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और 4:40, दो गाने हैं। पहला तो हाई हील्स आदिल भाई ने कहा है, और लुंगी डांस मुझे मिला नहीं है, मैं दूसरे नाम से कोशिश कर रहा हूँ। लुंगी की और क्या स्पेलिंग होगी, एल ओ हो जाएगी, एल यू नहीं है तो है ना, लेकिन ये गाना है नहीं। लुंगी डांस किस मूवी का था, मुझे तो याद नहीं आ रहा। अगर ये गाना है रावण का तो मैंने डाला, रावण की गाने भी यहाँ पर दिख नहीं रहे, अपने डेटाबेस में आने की ज़रूरत है। खैर, हो सकता है दूसरे नाम से सेव हो। फिलहाल ये गाना मैं प्ले कर देता हूँ, हनी सिंह का हाई हील्स, और उसके बाद वापस आएंगे तो बाकी मैसेज की तरफ भी हम बढ़ लेते हैं जल्दी से। चेन्नई एक्सप्रेस का है फजिल भाई, चेन्नई एक्सप्रेस ये मुझे याद है कि यार चेन्नई एक्सप्रेस होना तो चाहिए यार, मैं मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहीं तो सुने ला है। रेडी स्टडी है फिर चेन्नई एक्सप्रेस नहीं है, चेन्नई एक्सप्रेस तितली कश्मीर में तो हाँ, ये तो कन्याकुमारी तक सब है, लेकिन लुंगी डांस नहीं है। और लुंगी डांस जहाँ तक मेरा आइडिया शायद रावण का था, या गलत भी हो सकता हूँ यार, लेकिन दिख नहीं रहा है, सॉरी। तो कोई बात नहीं, मैं इस बारे में अपने टीम से मुखातिब होऊंगा, क्लास ली जाएगी कि ये गाना क्यों नहीं है। लेकिन एक गाना तो है, विच इज हाई हील्स बाय हनी सिंह। FM 107 पे गाना आपके लिए, दिल से देसी।

अरे सिंह की आवाज में हाई हील्स, ये गाना कुछ भी कहो यार, इनकी की हुई कॉम्पोजिशन, इनका बनाया हुआ म्यूजिक, यह गाना हर बार लाजवाब होता है। एक बार इन्होंने कोई ऐसा गाना बनाया जो बहुत ही ज्यादा यू नो वायरल हुआ, पसंद किया गया, तो शाहरुख खान ने कहा कि यार फला जो गाना तुमने गाया था, वो वाला गाना जो है ऐसे ही एक और बनाओ। तो इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया और कहा नहीं, वो गाना तो अब नहीं बन सकता। उन्होंने कहा क्या मतलब, वो भी एकदम दंग में रह गया कि शाहरुख खान ने कहा है और शाहरुख खान की बात काट रहा है। उन्होंने कहा कि ये गाना तो अब नहीं बन सकता, एक ही बार बनता है, अब दोबारा अगर कोई गाना बनाएंगे वो भी हिट होगा। तो हनी सिंह ने वो गाना बनाया, लिखा, और वो गाना था लुंगी डांस, जो हमारे पास नहीं है। तो शाहरुख खान ने सुना और रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये गाना मैं नहीं प्ले करूंगा अपने मूवी में, और मुझे ये गाना पसंद नहीं, मुझे उस तरह का गाना चाहिए जो तुमने पहले गाया। तो था वो कोई गाना, बता नहीं सकते। सो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये गाना तो नहीं प्ले होगा। बट अगेन उन्होंने इंसिस्ट किया, नहीं माने। फिर उसके बाद काफ़ी कहने के बाद डायरेक्टर जो है वो राज़ी हुए मूवी में डालने के लिए। शाहरुख खान का मन नहीं था, लेकिन बाद में जब लुंगी डांस गाना प्ले हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो गाना हिट हुआ। हिट होने के बाद शाहरुख खान ने कहा, बात तो है यार, तुमने जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस से मना किया था, उसके बाद जो तुमने लुंगी डांस बनाया है, तुम्हें पता था कि एक जो गाना बन गया है वो गाना बन गया, उस तरह का दोबारा कोई गाना नहीं प्ले करना चाहिए ना बनाना चाहिए, इसलिए नए जो गाने होते हैं वो नए ही होंगे पूरी तरह से, चाहे वो कॉम्पोजिशन की बात हो, चाहे वो म्यूजिक की बात हो, चाहे वो लिरिक्स की बात हो, उस तरह का गाना नहीं, कुछ नया और बेहतरीन वो भी होता है। खैर 4:48 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और हनी सिंह ने तय कर लिया है कि यार वो आएंगे, इतने सालों बाद जो आए हैं, उन्होंने धमाल मचाया भी है और धमाल एग्जैक्टली उनके गानों में दिखा भी है। अब फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने पहचान कौन गेम की तरफ, जहाँ पर मैं एक गाना जो है कहीं से प्ले करूँगा, यानी कि गाने के लिरिक्स बीच से प्ले करूंगा, और आपको गेस करना होता है गाने का नाम, क्योंकि आज का थीम था हनी सिंह, आज हनी सिंह के गाने ही प्ले हुए हैं, तो आज भी हनी सिंह के गाने को बीच से कहीं मैं काटूंगा, उसे प्ले करूंगा, और आपको गेस करना है गाने का असली नाम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गाना आ रहा है पहचान कौन में, वो है

हाँ जी बताइए ये गाना कौन सा है। थोड़ा टफ जरूर है लेकिन इसके बाद के जो गाने हैं वो थोड़े से आसान है, बट ये मुझे लगता है कि लोगों के लिए टफ जरूर होगा। क्या लगता है ये वाला है आसान, आ रहा है आपके दिमाग में? नहीं बताओ भाई गाने का नाम। मैं कह सकता हूं कि इसमें मुझे लगता है तकरीबन गाना तो आपने 100% लोगों ने सुना होगा। ऑब्वियसली हनी सिंह का गाना है, कैसे हो सकता है कि ना सुना हो, लेकिन गारंटीड ये है कि 90% या 95% लोग पहचान ही नहीं पाएंगे, और जो 5% पहचानने वाले हैं वो घर पहुंच गए होंगे अभी तक। अच्छा यूसुफ भाई भी कह रहे हैं कोई नहीं पहचानेगा, मैं खुद भी वही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कोई पहचान पाएगा। कोई अगर पहचान ले तो मज़ा है, क्योंकि आज ये गाना जो है मैं ये तो गारंटी ले सकता हूँ कि 100% आपने ये गाना सुना जरूर होगा। इसका हुक अभी प्ले करूँगा एंड आई एम श्योर कि आप बता पाएंगे। देखो एक गलत जवाब आया है महफूज रॉबिन का, कहते हैं यार देर कर देते उसके बाद जो सही जवाब आता है मुझे उस पर शक होता है कि आप लोगों ने कहीं से सर्च कर लिया है। ब्राउन रंग कहा है सबसे पहला जो जवाब आया गलत जवाब है। और सलाम फजल भाई, वालेकुम सलाम। सूरज ने भी ब्राउन रंग कहा है गलत जवाब है। जुनैद ने सही जवाब दिया है और फिर अब्दुल ने सही जवाब दिया, क्या बात है। तो गाना जो म्यूजिक था कटा हुआ, बीच से जो लिरिक्स प्ले किया था वो था ये।

यहाँ पर थोड़ा सा वो खेल हुआ है, बिल्कुल सही है। और कुड़िया नी तेरे ब्राउन रंग ने ये गाना है। और अब एक और यहाँ पर खेल है, ठीक है। एक ब्राउन रंग मुंडे वाला सॉन्ग था, एक है ये कुड़िया नी तेरे। यहाँ पर आप फंस गए। बाकी जो ब्राउन रंग कहा है, अगर इस लहजे से कह रहे हैं कि कुड़िया नी तेरे के बाद जो लाइन है ब्राउन रंग, वो ठीक है, वो हालत अलग है, फिर वो तो आपका जवाब सही है, लेकिन कुड़िया नी तेरे गाने का नाम है। अब आते हैं दूसरे वाले गाने पे। दूसरा वाला गाना है ये। ना ना ना ना ना, इसके आगे नहीं, फिर तो पोपटी हो जाना है, फिर बचा ही क्या। अच्छा, ये वाला मैं बता सकता हूँ कि सुना तो 100% लोगों ने होगा, कई लोगों ने। मेरा एक दोस्त था, उसने इस टोन को लगा रखा था कॉलर टोन में, और बहुत लंबे वक्त तक लगा रखा था भाई, और जबकि वो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था उसका उसके बाद ये वाला लगा रखा था। अब आपको पता चल गया होगा, अभी जब ये प्ले होगा तो आपको पता चलेगा ये कौन भाई जान है। ओके, महफूज ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये वाला सॉन्ग तो सबको पता होगा। यूसुफ ने सही जवाब दिया है, फिर उसके बाद जुनैद ने सही जवाब दिया, बहुत ही उम्दा। लव डोज नहीं मेरा भाई, गलत जवाब अब्दुल। फिर एक और मैसेज है दानिश आज़ाद का, बिल्कुल सही जवाब। और फिर हिशाम साहब का जवाब बिल्कुल सही है। एक बार फिर से, और फिर सोचो जो अनएम्प्लॉयड बंदा है वो कॉलर टोन लगा रहा है।

इसे गाया मीका सिंह, भाव्या और हनी सिंह ने, और इसकी वजह से क्योंकि मीका सिंह थे इसमें, मुझे लगता है ये गाना थोड़ा सा हनी सिंह के नाम का नहीं बना, मीका सिंह के नाम का ज़्यादा बना। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। तीसरे नंबर पे जो सॉन्ग है उसे हनी सिंह ने गाया प्योरली, और आपको इस गाने को पहचानना है, 100% लोग इस गाने को पहचान जाएंगे।

क्या बात है, ये गाने सुनने के बाद ना आपको ऐसा नॉस्टैल्जिया हिट होता है, कहीं से ऐसा लगता है कि यार ये वाले गाने सुनने के बाद, एक तो आया था ये मुझे लगता है थोड़ा हल्का हल्का मौसम था जब मैंने सुना था, मुझे तो याद है ऐसा खेतों में बैठो है, आम के पेड़ के नीचे हल्की सरसराहट वाली हवा, ऊपर से थोड़ी सी मक्खियां भी हैं, लेकिन अब आम के बाग में मक्खियां तो होंगी, लेकिन ये गाना सुनने के बाद दिल खुश हो जाता है, तो वैसे ही वाला फील है। इस गाने का नाम बताइए, व्हाट्सअप नंबर है 6662210 7666221 07। यूसुफ भाई ने बिल्कुल

सही पहचाना है. फिर उसके बाद महफूज रॉबिन ने भी बिल्कुल सही पहचाना है, एंड देन जुनैद ने सही पहचाना है, शाम ने सही पहचाना है. और भाई 2014 के टाइम आया था ये गाना, दानिश आज़ाद कह रहे हैं. औरा था भाई, अरे औरा है, वापस भी तो आ गए. फिर ये मैसेज है एहसान अली का, बिल्कुल सही पहचाना है कि नहीं, बिल्कुल सही है. फिर एक और मैसेज है वी मिस काकी नाहिद खान. ओके, मैं देखो क्या अच्छा खासा मूड चल रहा था काकी की बात आ गई. फिर अब्दुल्ला भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. तो सही जवाब मोस्टली लोगों के सही जवाब है, और द करेक्ट आंसर इज

क्या बात है यार, ये गाने सुनने के बाद आपका दिन जो है वो बन जाता है। हनी सिंह का ये वो गाना है जो थोड़ा सा रोमांटिक भी है, बीट भी अच्छी है, स्लो पेस भी है, लेकिन स्लो पेस नहीं है, स्लो पेस होकर स्लो पेस नहीं, मतलब म्यूजिक कॉम्पोजिशन अच्छे, इंस्ट्रूमेंट सब कुछ इस गाने में है लाजवाब। बाकी हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:55, यहाँ से कल्टी मारने का वक्त आ गया, लेकिन उससे पहले देसी कलाकार फुल एल्बम प्ले कर दे मेरा भाई। मैंने आपको बताया देसी कलाकार कांट प्ले दिस सॉन्ग क्योंकि मसला है, कभी कभार होता है ना लिरिक्स में कोई मसला होता है। हाय धीरे धीरे से गाना है, बिल्कुल सही, परवेज आलम इनका नाम, आपने बिल्कुल करेक्ट पहचाना है। फिर एक और ये मैसेज है, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई। फिर ये है मोहम्मद साहब कहते हैं, भाई मैं सबकी गुजारिश करता हूँ कि इस शो में कॉल ना करे, टाइम नहीं होता। या बिल्कुल सही बात है भाई, मतलब वैसे कॉल कर भी सकते हैं बट गेम खेलने के लिए अलग से कोई बात है, मुश्किल हो जाता है। चेन्नई एक्सप्रेस का सॉन्ग है लेकिन लुंगी डांस मिला नहीं मुबशिर भाई। चेन्नई एक्सप्रेस एक और भाई ने कहा हुसैनी सैयद, बिल्कुल सही लेकिन सॉरी गाना है नहीं। मैं टीम से बात जरूर करूंगा इस वाले बात। सलमान साहब कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम, और सलमान भाई आई गेस वही वाले हैं जो हमेशा कह रहे हैं दिल दिया गल्ला प्ले कर दो मेरा भाई, मैं पक्का किसी दिन प्ले कर दूंगा। सलमान खान की मूवी के बारे में बात आ गई, सबसे पहला गाना सलमान भाई की ही बात पे होगा, कहीं ऐसा तो नहीं सलमान भाई दूसरे नंबर से मैसेज कर रहे हैं, सलमान भाई असली अकाउंट से आओ। फिलहाल बेहतरीन से गाने के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, ये गाना है हनी सिंह की आवाज में

बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे आप इस गाने को हनी सिंह की आवाज में गाया हुआ। फिलहाल मुझे यानी कि फसील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे इसी बेहतरीन थीम के साथ। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: आज हम लहरों के बीच में से शो कर रहे हैं। आ हा हा हा हा, वाह वाह वाह वाह, ऐसे में अगर आ हा हा, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया।

जरा और वो रहा वीकेंड, और रहा भाई उड़े उड़े खड़ा है, देख रहा है वीकेंड आपको बहुत गौर से, आंखों से आंखें मिला के कह रहा है आ जाओ मेरे पास में, तुम्हें बहुत बहुत बहुत प्यार दूं। तो एक दिन और है आज, तो मेरे हिसाब से क्या है आज मंगल तो नहीं है, ज्यादा जज्बाती हो गया हूँ मैं, नहीं आज वेंसडे ही है, शुक्र है, शुक्र है, नहीं तो मेरी पंचलाइन जो थी वो नीचे गिर जाती जमीन पे। एनीवे आप कैसे हैं, मुद्दा ये है कि आप मैसेज नहीं करेंगे तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी भाई साहब। 5:03 हो चुके हैं पहले ही, आप नंबर नोट करो पहले। कल एक भाई ने बोला कि आप बहुत तेज नंबर बोल देते हैं, समझ में नहीं आता है, तो आज मैं एकदम स्लो मोशन में जा रहा हूं, 666-22-107। अभी भी अगर नोट करने में दिक्कत है तो दिक्कत मुझ में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, वालेकुम अस्सलाम, वदे अस्सलाम कबीर भाई, वालेकुम अस्सलाम जुमेरा तिरन भाई, क्या हाल है भाई के, हमजा भाई, आलिया भाई, वालेकुम अस्सलाम, एक नंबर एंट्री भाई, क्या हाल है भाई के।

0: एक भाई कह रहे हैं अब्दुल साहब कौन से अब्दुल भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार क्या हिशाम साहब, वालेकुम अस्सलाम, सैयद हुसैन साहब, खादिम हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम, शाहिद साहब वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल करीम साहब लिखते हैं क्या हमें बड़ा अफसोस हुआ आज और कल सुन के फिर दो दिन नहीं सुन पाएंगे आपको भाई, आपका आपकी मोहब्बत भाई, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आए थे कि साथी भाई, इतने क्यूटी पटूटी हो रहे हो ना आप लोग, मैं क्या बताऊँ। एक भाई ये क्या मैसेज है, कबीर भाई आपके पास कोई ऐसी कॉल नहीं आती जैसे फजील भाई के पास आई, मुझे लगता है कि आप सुना देते हैं। कौन सी कॉल आ गई, क्या हो गया, किसी ने कॉल वॉल कर दी क्या, हुआ क्या। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, टुडे यू सेंड मी स्टोरी प्लीज। खलील भाई कोई टेंशन थोड़ी भाई, टेंशन को नहीं भाई, भेज देंगे। वालेकुम अस्सलाम फरहत भाई, क्या हाल है। एक मैसेज नियाज भाई का, नियाज भाई और भाई गायब रहा करो भाई तुम तो। एक और मैसेज है, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, मौसम बहुत सुहाना है, बहुत सुहाना है, बहुत सुहाना मौसम है डीपी भाई, बर्फ गिर रही है भाई, कहती चादर लगी हुई है बर्फ की, क्या बात कर रहा हूँ। एक जय मुबशर मशीर आलम साहब का, वालेकुम अस्सलाम, जय काबिर भाई, चलो दुबई निकल रहे हैं आपको सुनते हुए जाना है। अरे क्या बात है सैम भाई, सैम भाई कुछ काम है आपसे। फरहत भाई वालेकुम अस्सलाम, और एक और मैसेज है, कौन से बीच पर हो, मैं इनलैंड सी की लहरों में पड़ा हुआ हूँ, पीठ पर सवार हूँ मैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, बढ़िया भाई, ख्वाजा मोहम्मद इरफान साहब। एंड देन मैसेज है, जनाब क्या हाल है, बढ़िया भाई, जैस भाई क्या हाल है भाई के। और नियाज भाई के कह रहे हैं, भाई आपके दिल में है तो गायब कैसे रहेंगे। अरे रे रे रे, आवारापन टू आने वाली है, सब के सब लौंडे जो हैं। वैसे आपकी सारी खबर रखते हैं हम, मेरी खबर भाई साहब, मैं ऐसा आदमी हूँ ना, मेरी खबर जासूस भी नहीं रख सकते, जासूस अपनी नौकरी ख़त्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं नौकरी, मेरे बारे में पता करना कोई हलवा है क्या। एनीवे, आज 5:30 बजे जो कहानी आएगी उस कहानी में बहुत कुछ है, इस कहानी ने मुझे बहुत सताया है, मैं क्या बताऊँ, दुखी कर दिया, दुखी लिटरली उर्दू में कहते हैं ना, आजिज कर दिया आज की कहानी ने। तो ये 5:30 बजे आएगी, आई विल टेल यू कि किस तरह इस कहानी ने मुझे परेशान किया, दैट विल बी अनदर स्टोरी, बट 5:30 बजे आएगी कहानी वो, बाकी सवाल जवाब और बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। सो 666-22107 नंबर है, 666-22107, डू लेट मी नो। और 5:06 शो का फॉर्मेट जानते हैं, 11:02 के बाद आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इवनिंग अदकार के बाद। तो जाना नहीं है आपने, मैसेज करते रहा करो भाई, मिलते हैं कुछ देर में, है जाना नहीं है, बेस्ट जगह है भाई, मैं तो खुद यही सुनता हूँ। हाँ स्टे ट्यून्ड,
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर। الله لا إله إلا هو الحي القيوم

0: डोंट नो, आई हैव जीरो क्लू. एक कॉल आ रही है, उठा लेता हूँ पहले तुम्हें. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह.
0: अरे भाई जी, गुड इवनिंग. सॉरी, आपको तो गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा ना. गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या हाल है भाई के?
1: गुड मॉर्निंग जी, मॉर्निंग बढ़िया भाई, आप बताओ.
0: आंखें खुल गई भाई साहब? हाँ
1: भाई साहब, आंखें खुली तो आप एकदम से आ गए. मैंने कहा भाई ने भाई के भाई हाजिरी लगाओ.
0: ये हुई बात, ये हुई बात. क्या चल रहा है भाई?
1: बस कुछ नहीं भाई, अभी निकले हैं, थोड़ा पैरल की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कैसा सीन वीन है.
0: यही है जिंदगी के मजे, तो आप ही ले रहे हैं. पता नहीं अभी क्या होगा अगले मोड़ पे, लेकिन चल पड़े हैं, बस जो होगा देखा जाएगा. ये भी सही है.
1: देखा जाएगा बस.
0: नहीं सही है. मैं एक सवाल पूछ रहा था, जब जैस भाई आए गए तो पूछ लेता हूँ मैं आपसे. जैस भाई, कौन सी चीज आपको ज्यादा वो लग रही है कि काम की है? दो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको. ऑप्शन वन, जानवरों से बात करना, या ऑप्शन टू, सारी की सारी लैंग्वेजेस आना. कौन सी चीज आपको लगता है कि अगर चूज करने का ऑप्शन होता तो, हाइपोथेटिकली, तो क्या चूज करते आप?
1: सारी लैंग्वेजेस आना भाई,
0: सारी लैंग्वेजेस. व्हाई?
1: क्योंकि भाई साहब इंसान का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ निकल ले, कौन से देश निकल ले, कौन सी कंट्री निकल ले, और किस नस्ल के इंसान मिले. तो इसलिए जो है ना, सारी लैंग्वेजेस आना बहुत जरूरी है. क्योंकि पहले हम पे क्या है ना, जब भाई अपने इंडिया से बाहर नहीं निकले थे ना, जब इंडिया से बाहर नहीं निकले थे तो हमें लगता था खाली जो है ना इंग्लिश या हिंदी अपने लिए इम्पोर्टेंट थी. जब फर्स्ट टाइम कुवैत गए ना भाई साहब, दो चार दिन तो भाई लोगों के साथ, दो चार दिन भाई लोगों के साथ रहे तो कोई टेंशन नहीं थी भाई साहब. उसके अगले हफ्ते जैसे जो कफिल के पास पहुंचे ना, अब वो अरबी में पड़वा रही है, इंग्लिश में पड़वा रहा, तो अपने तो पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा.
0: तो अभी करंटली कितनी भाषाएं आती है भाई को?
1: अभी तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अरबी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और अपने तो उर्दू तो है ही, जो भी है.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सही जा रहा है, बहुत सही.
1: थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो है ना, थोड़ी पंजाबी भी पकड़ ले भाई.
0: अरे ये तो भाई, ये तो हमारी तरफ का ही पकड़ लेते हैं. अब तो गानों नहीं सिखा दिया, गानों नहीं सिखा दिया ना भाई. ये सही है, ये सही है. हाँ
1: इंसान, अरे अपने इंडिया में रहकर भाई सब नहीं सीख सकते इतनी सारी लैंग्वेज अपने इंडिया के अंदर रहेंगी.
0: हाँ और क्या भाई, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है
1: भाई. पहले तो वो काफी टाइम पहले मैंने देखा था ना, मैंने थोड़ा चेक करा था, 1600 कुछ तो लैंग्वेजेस थी, 1672
0: भाई. 10-20 किलोमीटर पे चेंज हो जाती है भाषा, क्या बात कर रहे हो. अकेले अपने अपने इंडिया में इतनी सारी है भाई तो. पर वही है ना कि वो थोड़ी ऐसा है कि समझ में आती है, बोलने में दिक्कत होती है, और कुछ भाषाओं में वड़ा और खा बड़ा अलग किस्म का लगता है, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है.
1: मगर एक बात है यार, तुमने कल वाली स्टोरी नहीं भेजी यार.
0: कल वाली स्टोरी नहीं मिली क्या?
1: इंसान
0: क्या बात कर रहे हैं
1: यार, कि भाई मैं भेजूंगा भेज ही नहीं, मतलब इतना भाई, इतना भी आलस किसी काम का नहीं है भाई.
0: ये तो इल्जाम जो मुझ पे लगा है, ये तो मुझे देखना पड़ेगा. ये तो बड़ा ही क्रिटिकल इल्जाम लगाया है आपने मुझ पे. अच्छा जी, लो अभी भेज देते हैं भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी है. नहीं मिली तो अभी मिल जाएगी.
1: उससे पहले की बिना भेजिए भाई साहब, हर बार में ना कॉल पे ना भाई भेजूंगा मैं जरूर.
0: चलो आज हो गई भाई साहब, कमिटमेंट हो गई आज. एक कहानी में से नहीं हो गया. अब आप देखो कैसे भरता हूँ आपका व्हाट्सएप, देखो फिर आप. ठीक है, बैठेगी अपने नेस्ट में. हाँ हाँ क्या बात
1: भाई, कसम से मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा
0: भाई. अभी देखो भाई, अभी देखो भाई, अभी तो तैयार होया का भाई, आलस छोड़ चुका होगा भाई. देखो अभी आप.
1: अरे चलो इंशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे मेरे
0: आमीन,
1: भाई.
0: आमीन.
1: आपके सालक के कोसों दूर आपसे रखे.
0: आमीन आमीन आमीन
1: आमीन सम्मा आमीन. अल्लाह चलो थोड़ी बहुत तरह गनीमत हुई के भाई का हालत छूटा
0: भाई. बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो ना सोशल मीडिया में देखिए, सरप्राइज इंशाल्लाह देंगे अभी कुछ इसी हफ्ते में.
1: चलिए देखते हैं इंशाल्लाह. ठीक
0: है भाई, ख्याल रखो.
1: ओके ठीक,
0: अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. और जैस भाई के बाद जो है कॉल और आ रही है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसा मेरा भाई?
0: बढ़िया भाई एकदम. आप सुनाए क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सुनाए कैसा रहा सफर आपका भी? और दोबारा एक तो आप लोगों का यार बड़ा मजा है ये काम में ना, कि हर हफ्ते आ जाता आप लोगों का यार.
0: हर हफ्ते क्या हो जाता है?
2: वीकेंड आ जाता आप लोगों का.
0: अरे भाई तो मैं बताऊं, पूरे हफ्ते मुझे तो पढ़ाई करनी पड़ती है. मुझे ऐसा लगता है मैं स्कूल जा रहा हूँ डेली भाई. ये जो कहानियां तैयार करनी पड़ती है ना, अरे भैया ना पूछो.

0: रूम के बाहर ही बैठा हुआ गाड़ी के अंदर आपसे बात करके, अभी जाएंगे ऊपर, कुछ भी नहीं करना, गेट खोलना, बिस्तर पे गिर जाना
1: भाई, कुछ नहीं करना आज, कुछ नहीं करना, एकदम बढ़िया एकदम ये फर्नीचर की तरह घर पे पड़ जाओ एकदम, एक साइड में सोफा, दूसरे सोफे आप पड़े हुए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, यही करो, यही करो, आज यही करो, ठीक है, मैं भेज दूंगा गाने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
0: और आपका सवाल सुना यार, आपने मेरे दिल की बात कर ली, कभी मुझे मौका मिले ना तो मैं जानवरों से बात करना चाहूंगा।
1: अच्छा, तो आप सारी लैंग्वेजेस नहीं सीखना चाहते, आप मौका मिले तो जानवरों से बात करना जरूर आपको पसंद आएगा। Why?
0: वैसे मैं ये समझता हूँ कि अगर अगर जानवरों से आपको बात करनी आती है ना, बट जैसा भाई बोले थे कि यार आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए, वो तो एक प्लस पॉइंट आपको आनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप दुनिया में किसी भी जगह जाते हो ना, आपको कोई मिले ना मिले जानवर जरूर मिलते
1: हैं, वो तो
0: चाहे सन्नाटा ही क्यों ना, वहां पे आपको कोई जानवर जरूर मिल जाएगा भाई।
1: अगर ऐसा हो जाता ना, लोग
0: ऐसी होती है
1: कोने में बैठे मच्छर से बात कर रहे हैं, हाँ भाई क्या बात है, बहुत दुखी कर रखा तूने।
0: भाई अमेज़न की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है यार।
1: हाँ वो तो है। क्या तो कैसे सॉल्व करते हैं, एनाकोंडा से जाके बात करते हैं, एनाकोंडा से बात करते हैं।
0: अब जाहिर सी बात, अब जाहिर सी बात है, जब जानवरों से बात करने आ गए तो सारे भाई मेरी, हाँ भाई आ जाओ आज बैठेगा जरगा।
1: हाँ गाड़े भाई, भाई कौन सी चक्की का आटा खाते हो भाई, इतने बड़े कैसे हो भाई, कौन सी चक्की का आटा खाया आपने। अच्छा बढ़िया, हाँ तो वो शाम से ही बात करोगे ना भाई, आपकी पूंछ अटक रही है जरा देख के चलो। वाह, वैसे कितनी भाषाएं आती हैं आपको, कितनी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं
0: भाई? मैं वैसे पाकिस्तान में रहता हूँ, पंजाबी, उर्दू और सिंधी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, इंग्लिश तो वैसे नॉर्मली अच्छी आ जाती है।
1: सिंधी भाषा कैसी होती है, कुछ कुछ बोल के बताओ, मुझे जहन में नहीं आ रहा कैसे कैसे बोलते हैं, कुछ कुछ एक सेंटेंस ही बोलते हैं।
0: सिंधी में जो है चाल है, तो हाँ बताओ, ठीक है,
1: तो ऑलमोस्ट मतलब सेम ही लग रही है, तो मतलब सीखने आसान है सिंधी,
0: थोड़ी बहुत सिंधी आसान है, अगर आप वहाँ रहते हो तो आप सीख जाओगे।
1: अच्छा,
0: बट ये कि बीच में कुछ, आप जितना भाई, हम लोग भाई बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं अदा।
1: अच्छा, मतलब थोड़े बहुत ये वर्ड जो है वो वही है ना, बोलने वाला होना चाहिए सामने, तब इंसान ज्यादा अच्छी तरीके से सीख पाता है। हाँ ये वाला मसला है, ठीक है ठीक है,
0: और उनका एक्सेंट थोड़ा चेंज हो जाता है इसलिए बस।
1: अच्छा, मैंने कभी क्योंकि ज्यादा सुनी नहीं है, मैंने ये भाषा सुनी नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो अलग अलग तरह की, तो वो मिक्सअप हो जाता है, खिचड़ी पक जाती है, तो ये मैंने भाषा कभी सुनी नहीं थी, बट नाउ दैट यू टोल्ड मी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे पता लग गया। एक और भाई ने मैसेज किया, दिशान शरीफ भाई, कह रहे हैं हे यो बोल रो आहे, हाई हे यो बोल रो आहे, ये अच्छा ये सिंधी है। अरे यार एकदम से लिख दिया, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया जीशान भाई यार। तो ये
0: हमारे उधर सिंधी बोली जाती है, सराइकी बोली जाती है। अच्छा। पंजाबी है। हाँ। पंजाबी में जना तकरीबन 8-10 एक्सेंट्स हैं।
1: हाँ तो वो तो मुझे पता है, मैं पाकिस्तान में पंजाबी थोड़ी सी हमसे थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है।
0: हाँ। उसके बाद उर्दू नॉर्मली बोली जाती है।
1: हाँ।
0: ये पश्तो बोली जाती है, ठीक है, ये 4-5 जबानें जो है ये तो मेन है जो ज्यादा बोली जाती है।
1: राइट, ओके।
0: और उसके अलावा अगर कोई बोली जाती है तो पता नहीं, मैंने आपका इंडिया का चेक किया था, जिसका मैंने चेक किया था, मैंने को ये था कि 900+ जो है वो जुबानें बोली जाती है।
1: दुनिया का काम है बोलना। और ये दिशा में लिखा है, नो आई एम नॉट सिंधी, स्कूल में इम्पोज सिंधी पढ़ाई जाती है। अच्छा ओके, ये मुझे पता नहीं था, तो थैंक यू सो मच।
0: हमारे कराची के सिंध के अंदर हमारा सिंध बोर्ड है और फेडरल बोर्ड है जिसको पंजाब बोर्ड कहा जाता है।
1: अच्छा,
0: तो जो सिंध बोर्ड है उसमें एक सब्जेक्ट प्रॉपर
1: कंपल्सन है, कंपल्सन है। अच्छा ओके ओके, आपको पता लगा, ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए।
0: बड़ा ठीक है जी, बस कहने का इंतजार करेंगे ना भाई, क्योंकि हम कल ही उठेंगे भाई।
1: दाना भाई, कोई टेंशन नहीं, अभी पड़ जाओ, भूल जाओ दुनिया को, स्विच ऑफ। ठीक है, ओके भाई, वालेकुम सलाम, आप भी खुश रहिए। और भाई क्या सैयद आदिम हुसैन साहब कहते हैं कि कबीर भाई वेस्ट वे बहुत ट्रैफिक है, अच्छा ख्याल रखिए भाई। हमारे यासिर साहब वालेकुम अस्सलाम, प्रिंस साहब वालेकुम अस्सलाम, नसीम साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग गोजी, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक जरा कॉल उठा लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई के?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है
1: जी भाई।
2: कबीर भाई आपकी क्या हाल है?
1: मैं बढ़िया भाई, एकदम भला चंगा
2: भाई। सवाल तो नहीं सुना अभी, लास्ट में सुना था,
1: मैं सवाल बताता हूँ। सवाल ये था, अगर आपको मैं ऑप्शन दूं, दो ऑप्शन है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है एकदम, बस फर्ज करना है, इमेजिनेशन, दो ऑप्शन है।

0: या तो आप तमाम जानवरों से बात कर सकें या तमाम लैंग्वेजेस आप बोल सकें, तो आप क्या चूज करेंगे दोनों में से?
1: भाई तमाम जानवरों से बात करने वाली लैंग्वेज चूज करेंगे भाई, टार्जन वाली फीलिंग आ रही है।
0: अरे इंसानों से बात करने कोई मन नहीं है मेरा, मैं जानवरों से बात
1: कोई मन नहीं है।
0: इतने परेशान हो गए ना, वो बात ही नहीं करनी मुझे कि इंसानों से। अच्छा क्या बात,
1: टार्जन वाली फीलिंग आ रही है भाई।
0: अच्छा तो कौन से जानवर से बात करते हैं वैसे आप, कौन सा फेवरेट होता है आपका बात करने के लिए?
1: फेवरेट तो ऐसा कोई जानवर फेवरेट में तो नहीं है।
0: अरे तो किसी से बात करने का मन करता ना कि भाई शेर, शेर वेर से बात करेंगे। और भाई क्या हाल है, बहुत डरा रखा है तुमने मार्केट में।
1: शेर से बात करेंगे भाई,
0: शेर से बात करोगे?
1: हां शेर से बात करेंगे भाई, तू अपना दुश्मन है, चल भाई तेरे को खाना चाहिए ना, मैं खिलाता हूं।
0: शेर से बोले पिंजरे की तरफ, कान इधर लाओ भाई साहब, इसको भेज रहा हूं मैं, पिंजरा खोल रहा हूं, छोड़ना नहीं इसको। अरे भाई वो मैं समझ गया था, मुझे लगा ही था कमाल भाई बोलेंगे इंसानों से बात नहीं करनी, मुझे बहुत हो गया। अब मुझे जानवरों से बात करने का मन है।
1: भाई, भाई उन लोगों से बात करने का, उनके भी तो हालात सुनना चाहिए ना। परिंदे हैं, आप बात करके सोचिए उनके अंदर क्या, इंसानों से क्यों इतना डरते हैं, सबसे खतरनाक इंसान। वालेकुम अस्सलाम,
2: फोन लगा इसीलिए।
0: तो ये आपने अपने इस जवाब पे टिके हुए हैं अभी, मतलब आपका मन है कि इन्हीं से बात की जाए तो ज्यादा बढ़िया है।
1: हाँ इन्हीं से बात किया जाए तो अच्छा है।
0: वेरी गुड, वेरी गुड कमाल भाई। और अभी कहानी सुनिएगा, थोड़ी अलग किस्म की कहानी है, ऐसी वाली कहानी नहीं सुनी होगी आपने, थोड़ी अलग है।
1: ठीक है भाई, इंतजार कर रहा हूँ।
0: ठीक है मेरा भाई, अभी शुरू करता हूँ। ठीक है ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कमाल भाई के बाद एक भाई कह रहे हैं, यूसुफ भाई के सवाल पूछ चुके हैं आप, मेरा पहले का जवाब वही था, अभी भी है सवाल। देखो रिपीट होंगे यूसुफ भाई, रेडियो का सिस्टम ऐसे ही होता है, ऑडियंस चेंज होती है, चीज़ें रिफ्रेश होती हैं, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, है ना। तो आपके कानों में हेडफोन लगा रहता है मुझे पता है, सबके कानों में हर टाइम हेडफोन नहीं होता है, तो देर आर पीपल हु चेंज, है ना। तो सवाल आते रहेंगे, सवाल ये 10 साल बाद भी आएगा, 5 साल बाद भी आएगा, 3 साल बाद भी आएगा, तो रिलैक्स। कह रहा है आई प्रीफर ऑल लैंग्वेजेस बाय विच आई कुड इजीली कम्युनिकेट विद द पीपल वेर एवर आई गो अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड आप कहाँ जाते हैं ये बताइए पहले तो मुझे आप, अराउंड द वर्ल्ड क्योंकि आपने बोल ही दिया है तो बताइएगा। हमजा भाई कह रहे हैं हाई कबीर, सिंधी इज लिटिल डिफिकल्ट टू राइट ऑल्सो। अच्छा आप मुझे देखना पड़ेगा, ये लिखा है आपने बसंती, पूरा जो आपने लिखा एंड में बसंती पढ़ पाया हूँ मैं। नीजो नालो छे ए बसंती, तुम्हारा क्या नाम है बसंती, ये लिखा ना आपने। ओके ये पहला कैसे वर्ड है, ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं? नालोचा। अरे भाई मैं ट्राई भी नहीं करना चाहता। सर घूम गया मेरा, एक सेकंड कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई,
0: क्या हाल है प्रिंस भाई के?
3: अरे बहुत ही बढ़िया भाई।
0: हाँ जी प्रिंस भाई बताएं, क्या चूज करेंगे आप दोनों में से?
3: बताऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, आप पूछ ही लीजिए, सुना देता हूँ।
0: है क्या मतलब, है क्या क्या मतलब? समझो
3: आपने कहा बताएं। हाँ। बताऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, है? सुना देता हूँ, सुन लीजिए।
0: सुना दीजिए, सुना दीजिए। क्या सुनाएंगे आप? आपने सवाल सुना, मैंने क्या पूछा
3: भाई? नहीं नहीं
0: तो मैं सवाल ही कह रहा था कि अगर ऑप्शन आपके पास हो सारे जानवरों से बात करने की ताकत या फिर सारी लैंग्वेजेस पे काबू करने की ताकत, ये बट मींस वन ऑप्शन इज यू नो ऑल द लैंग्वेजेस एंड द अदर ऑप्शन इज यू कैन कॉन्वर्स, यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद ऑल द एनिमल्स, तो क्या चूज करेंगे आप
3: भाई? ऑप्शन दो तो दो, कम से कम
0: दो ही तो दिए ऑप्शन, एक है सारे जानवरों से बात करना, एक है सारी लैंग्वेजेस आना जो इंसान बोलचाल की भाषा में बोलता है, तो क्या चूज करेंगे?
3: अगर आप मेरे सामने बैठे हुए रहते ना, मैं आपको बहुत बहुत बहुत बहुत इरिटेट कर देता ऐसे ही बोल बोल के कि आप दो ऑप्शन दो, दो ऑप्शन दो, दो ऑप्शन दो,
0: है तो सही दो ऑप्शन।
3: हाँ मुझे पता, इरिटेट हो गए ऐसे ही। हाँ। मैं करता अगर आप सामने बैठे
0: होते,
3: वो बताता हूँ
0: जवाब तो बता दो।
3: एक ऑप्शन ऐसे है कि अगर सारी लैंग्वेजेस आएगी तो सारी में तो सारी आ गई, बचाई क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, जो हम लोग आपस में मतलब इंसान इंसान लोग, इंसान लोग नहीं, ओनली इंसान लोग जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो अलग है, और हाँ वो अलग है। तो आप बताइए
3: भाई, मैं चाहता हूँ कि मुझे हर किस्म की लैंग्वेज आए।
0: ओके
3: इंसानों से बात करने वाली, जानवरों की तो फिर भी समझ ही जाते हैं थोड़े बहुत की लैंग्वेज, या फिर चाहे जो भी उनके साइंस एक्चुअल,
0: अच्छा
3: समझ में आ ही जाते हैं।
0: क्या बात है, मोगली, मोगली आपका बेस्ट फ्रेंड रहा है मुझे लगता है।
3: तो इंसान एक ऐसा जानवर है जिसकी लैंग्वेज कभी समझ में नहीं आती। तो इसे ये वाली समझ में आनी चाहिए
0: आज मुझे।

0: रहा है कि कुछ दिक्कत है प्रिंस भाई, आज आप परेशान लग रहे हैं।
1: भाई देखो, लोग बोलते कुछ और है, मतलब कुछ और होता है, लेकिन चाहते कुछ और ही हैं।
0: इतना डीप जाना नहीं था प्रिंस भाई, इतना डीप मीनिंग नहीं था इसका मेरे भाई। आप कुछ आज मुझे लग रहा है आपने कुछ सैयारा या वारापन का ट्रेलर वेलर देख लिया है। सुबह सुबह शो ना मिले मुझे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाऊंगा मैं सवेरे सवेरे उठ के, ये डन।
1: अरे बहुत ही बढ़िया,
0: हाँ ये डन है मेरी तरफ से। पर प्रिंस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कहानी की तरफ बढ़ना है मुझे, तो इंशाल्लाह कहानी के बाद बात करेंगे, ठीक है?
1: जरूर भाई, कहानी के बाद। कहानी ऐसी सुनाओ कि सवाल पूछने में मजे आए।
0: अरे डन डन डन, अभी बस अभी शुरू कर रहा हूँ कहानी।
1: अरे बढ़िया मेरे भाई, कर दा उड़ा दिया।
0: थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, ख्याल रखिए।
1: ओके भाई, टेक केयर, अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम। और हमारी यासर बहन ने लिखा है, लिखती हैं कि डा, जानवरों से बात करना इज मच बेटर देन आजकल के इंसानों से बात करना। माय बिल्लू बिस्कुट इंस्टेंट से ज्यादा समझता है मुझे, ये इंसानों से ज्यादा समझता है ना, वही मैं कह रहा हूँ। फॉर सम रीजन आपके क्वेश्चन से सॉन्ग याद दिलाया, आंखें तो होती हैं दिल की जुबान। अरे रे रे बहन, अभी अगले हफ्ते आवारापन 2 के गाने रिलीज हो रहे हैं, ठीक है? हमें और कहीं फोकस नहीं करना है, वेरी शार्प फोकस होना चाहिए अभी। लिखा मैं तो इन्फॉर्म किया, ये नहीं बोला कि हमेशा हमेशा काम में नहीं रहता हेडफोन, जब आपके सभी इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत आवाज़ को सुनता हूँ। आप तो पूरे दोहा को सुनते ही हो भाई। अमन भाई कह रहे हैं सारी लैंग्वेजेस को चूज़ करता मैं, भाई मैं आपको कॉल करता लेकिन थोड़ा सा टाइम कम है अमन भाई, माजरत चाहूँगा। एक मैं शो की बात कर रहा हूँ, कहानी की बात कॉल करता हूँ। और ये क्या लिखा है संधि में, यस तुंजो नालोचे आए बसंती, आहे बसंती, आहे बसंती, बहुत मुश्किल लग रही है लैंग्वेज, मैं सिंधी ट्राई भी नहीं करूँगा। वरना लोग मुझे ढूंढ ढूंढ के मेरे लोकेशन मांगेंगे। मुझे 52 लेटर्स होते हैं सिंधी में, 52 लेटर्स होते हैं हिंदी में, सिंधी में, बाप रे। ओके, मैंने हल्की फुल्की कुछ दिनों पहले स्पेनिश की ऑनलाइन क्लासेस ली थी, भूल गया मैं, कोई बात ही करने वाला नहीं स्पेनिश में, तो क्या करूं? कब तक आदमी स्पेनिश सीख के डेस्पासितो सुनता रहेगा। एक मैसेज है मोहम्मद अशफाक साहब का, सलाम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम ईशान अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैसेज है राव मुस्तफा साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कह रहे हैं मैसेज सभी को पता है, तभी तो मैं सिर्फ आरजेज लिखा हूँ। बड़े ही डिप्लोमेट हैं आप यूसुफ भाई, आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलना चाहिए। मजर भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? लर्निंग ऑन द लैंग्वेज इज मच बेटर देन एनिमल लैंग्वेजेस, वाई? इसका रीजन भी दिए, घर आ गया भाई, कह रहे गाने शुरू कर दो, घर आ गया। अरबाज भाई अब तो घर आ गया, पहले बताती। चलो मैं कहानी शुरू कर देता हूँ, पर मैं बस थोड़ा सा बता दूँ 10 सेकंड के अंदर। कहानी जो है आज की, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टोरीज दैट आई हैव टोल्ड यू। हमेशा ही कहता हूँ, बट आज की कहानी सच्ची में वो टॉपिक है, वो जॉनरा है जो मैंने छुआ नहीं था अभी तक, क्योंकि ये ऐसा भी होता है आप सोचेंगे और आप हैरान होने वाले हैं। तो ये कहानी बस एक प्रोमो के बाद मैं सुना रहा हूँ, और ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, आई एम नॉट गोना टेक मच टाइम, एक प्रोमो बस एंड देन द स्टोरी बिगिंस।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे। सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: हाँ जी, तो अमन भाई का मैसेज पढ़ दूं मैं, एनिमल्स कैन अंडरस्टैंड यूनिवर्सल लैंग्वेजेस जेस्चर्स बट ऑल लैंग्वेजेस वी कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच अमन भाई मैसेज करने के लिए। और अजहर भाई का मैसेज पढ़ दिया है, ओके हो गया है। यूसुफ भाई से मेरी बातचीत चल रही है, हेल्दी डिस्कशन, वो कह रहे थे डिप्लोमेटिक होना अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं है, मैं अच्छा सवाल ये पूछूंगा कभी मैं। जुल्कनैन साहब वालेकुम अस्सलाम, और भाई को प्यारा सलाम। ओके सो अब ज़रा कहानी शुरू कर लेते हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो जो जो किस्सा है वो बड़ा कमाल का है। सबसे पहले तो मैं किधर गई कहानी, बुलेट पॉइंट्स किधर गई। ओके तो शुरू करते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा भी एकदम बढ़िया रॉ असली कहानी है, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस। तो फोकस कीजिए।

मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे और आज आपको एक अलग सफर में ले चलता हूं, ठीक है। तो आज का जो किस्सा है ये शुरू होता है 1980 से। सो लेट्स गो टू 1980, नवंबर का महीना और दोपहर का वक्त था। इस वक्त 28 साल का एक बंदा जिसका नाम था जॉन, वो एक होटल के वरांडे में बैठा हुआ था और वहां पे वो बैठ के बस सोच रहा था, क्योंकि उसके सामने बहुत इंपॉर्टेंट शख्स बैठा हुआ था। जहां पर ये था जॉन, बेसिकली एक छोटा सा गांव था बार्सेलोस ब्राजील में, और ये यहां पर बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से आया था। 2 दिन की इसने बोट राइड करी थी और यहां पे पहुंचा था, और ये आया था अमेजॉन जंगल की सबसे डीपेस्ट सिटी से जिसका नाम है मनाउस। जॉन के सामने टेबल की दूसरी तरफ जो बंदा बैठा था वो कोई आम बंदा नहीं था, वो एक लेजेंडरी चीफ था ऑफ उगा मंगोलोला ट्राइब। इस बंदे का नाम था टटुनका नारा। टटुनका नारा लगता भी ना ट्राइब का लीडर होगा। सो टटुनका नारा नाम का बंदा सामने बैठा हुआ था, और जॉन जो था वो 10 दिन से यहां पर था और इसी बंदे की तलाश में था। कई मरतबा मिल चुका था वैसे तो, पर बस मिलके ऐसे होता था ना, इंसान सामने कोई इंपॉर्टेंट शख्स बैठा हो तो मेस्मराइज हो जाता है, तो जॉन के भी वही हालात थे। अब तक वो 2 से 3 बार मिला था इस टटुनका से और ही वॉज ब्लोन अवे। ये उसकी जिंदगी का सबसे ग्रैंड एडवेंचर था, या यूं कहें कि उसकी शुरुआत थी। और जॉन कहां से आया था यहां तक, ये जानना बड़ा जरूरी है, तभी आप उसकी मेहनत समझ पाएंगे। जॉन की पैदाइश हुई थी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में। जब वो छोटा था तब से उसका सपना था पढ़ाई करने का, बुक रीडिंग का, और वो काफी किताबें पढ़ता था। और एक किताब में उसे एक नाम मिल गया था और एक एडवेंचर के बारे में पढ़ लिया था, और उसका मन बस एक ही जगह पे टिक गया था कि मुझे टटुनका नारा से मिलना है। एंड अब वो शख्स सामने बैठा हुआ था और वो जानता था कि अगर चीजें बढ़िया गईं इनसे बात करने के बाद तो जॉन को कभी भी अपने घर लौटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दरअसल बार्सेलोस में एक लॉस्ट सिटी है जिसका नाम है आकाकोर। इस शहर के बारे में पढ़ा था जॉन ने किताब में। इस शहर का नाम किसी भी किताब में नहीं है, किसी मैप में नहीं है, कोई वर्ल्ड मैप में मेंशन नहीं, किधर भी मेंशन नहीं है, मगर इस शहर के बारे में किताब में पढ़ा था उसने। उस किताब का नाम था क्रॉनिकल्स ऑफ आकाकोर। इसका जो ऑथर था वो एक जर्नलिस्ट था, उसका नाम था कार्ल ब्रूगर, और कार्ल ने लिखा था कि आकाकोर एक कैपिटल सिटी है एक सालों पुरानी सिविलाइजेशन की। सालों पहले यहां पर लोग रहते थे, बड़ा सा एम्पायर होता था और कई सारे खजाने यहां पे दफन हैं। तकरीबन 12,000 साल पुराना ये सिविलाइजेशन है। उसने किताब में लिखा कि यूरोपियंस आए और आकाकोर को लूटने के लिए जब पहुंचे तो तब तक शहर अंडरग्राउंड हो चुका था, सब लोग गायब हो चुके थे, और अभी भी ये सिटी, ये कैपिटल अंडरग्राउंड है और लोग अभी भी छुपे बैठे हैं अपने खजानों के साथ। कार्ल ने ये बुक निकाली और कार्ल की इस बुक को ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने नकार दिया कि यार इट्स नथिंग बट फिक्शन, ऐसा थोड़ी होता है, खामखा की बात लिख दी है उठा के। लेकिन जॉन जो था वो उनमें से था जो इस किताब को पढ़ के यकीन करते थे कि ऐसा जरूर है, और उसका डाउट मिट गया क्योंकि किताब में जिस बंदे का नाम था वो उसके ठीक सामने बैठा हुआ था, टटुनका। टटुनका के बारे में किताब में लिखा था कि टटुनका नारा वो एक लौता बंदा है पूरे अमेजोन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कार्ल जिसने किताब लिखी है उसे पता लगा कि इसके अलावा कोई भी सिविलाइजेशन में नहीं गया है। इस सिविलाइजेशन में, इस सिटी में पहुंचने का रास्ता सिर्फ टटुनका नारा को पता है। और कंफर्म कैसे हुआ कि वही बंदा है? उसके हाथ पे एक टर्टल का, एक कछुए का टैटू बना हुआ था जैसा किताब में लिखा हुआ था। तो जॉन के लिए ये ऐसा था जैसे आप नजरों के सामने कुछ देख रहे हैं, एंड इट इज टू रियल टू बी ट्रू, लेकिन You are just stunned, आप कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। होता ना कि आपका बहुत बड़ा सा सपना हो और बस चंद मिनटों में या कुछ दिनों में पूरा हो जाए तो आपको यकीन नहीं होता, अरे ये कैसे हो गया। एंड जॉन की भी हालत वही थी।
और वो टटुनगा से बहुत सारी कहानी सुन रहा था आका कौर की, और टटुनगा की जो आवाज थी वो हैवी एक्सेंट अंग्रेजी का वो बोलने की कोशिश कर रहा था। एंड जॉन जानना चाहता था कि आखिर ये शहर किस तरफ है। वो बोलता रहा कि सर सर ये बताइए, आप जिस शहर में गए सिविलाइजेशन में, टटुनगा सर मुझे वहां पे वहां ले जाइए प्लीज, मुझे वहां जाना है। पर टटुनगा ने उससे बोला, वहां तुम नहीं जा सकते, वो लोग छुपे रहना चाहते हैं, उनकी लोकेशन में तुम्हें नहीं दे सकता। और हमेशा यही बात होती थी, जब भी वो बोलता कि मुझे शहर में जाना है, टटुनगा नारा उसे बोलता, तुम नहीं जा सकते, वो लोग छुपे रहना चाहते हैं, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, तुम्हारे मन में लालच है, ये है वो है, बोल के बात खत्म हो जाती थी। लेकिन आज के दिन जब ये बैठा हुआ था नवंबर की इस दोपहर में, तो जॉन को लग रहा था कि आज कुछ बात अलग है, एक बार और पूछ लेता हूं। उसने बोला, सर देखिए मेरे जाने का वक्त आ गया है, यहां से मेरे मन में कोई लालच नहीं है, मैं खजाने के लिए नहीं जाना चाहता, मैं ना घर वापस नहीं जाना चाहता, मुझे शहर में ले जाइए, मैं वापस भी नहीं आऊंगा, उनके बीच रहने लग जाऊंगा, मगर प्लीज मुझे इस शहर में जाना है। अब ये सुनने के बाद सामने जो टटुनगा नारा बैठा हुआ था चीफ, वो एकदम चुप था। बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोला, इट वॉज जस्ट साइलेंस। और बार बार उसे टोकने की हिम्मत जॉन में थी नहीं, क्योंकि सामने ट्राइब्स का लीडर बैठा हुआ है। अभी थोड़ी कह सकते हैं कि अरे बोलो ना, अरे बोलते क्यों नहीं। ही वाज जस्ट साइलेंट कि अभी जवाब देंगे। फिर टटुनगा नारा एकदम से टेबल की तरफ आगे झुका और फिर बोला, ठीक है। अब कहानी को मैं 9 साल आगे ले जाता हूं, फिर हम इस पे आएंगे। तो कहानी को जरा 9 साल आगे बढ़ाते, ठीक है। स्प्रिंग का सीजन था, 1989 ईयर था। जॉन जो भी टटुनगा नारा के सामने बैठा हुआ था 9 साल पहले, उसकी जो बहन थी वो 35 साल की हो चुकी थी, 35 ईयर ओल्ड। इनका नाम था सैंडी रीड। सैंडी जो थी वो एक ड्राइववे पे जा रही थी और अपने घर के एरिया में आई, उन्होंने गाड़ी पार्क करी, दिस वॉज इन सैन फ्रांसिस्को। अपने घर के पास उन्होंने गाड़ी लगाई, गाड़ी से निकली और बहुत थकी हुई थी, शी वॉज रियली रियली टायर्ड, बहुत काम करके आई थी। और उनका जो मेल बॉक्स था वो घर के बाहर लगा हुआ था, क्योंकि पहले तो ऐसे ही होता था। तो मेल बॉक्स की तरफ वो गई, लिटरली देखा भी नहीं, बस मैं ऐसे उसे खोल के अंदर हाथ डाला, सारे के सारे जो खत आए थे उन्हें बाहर निकाला। एंड शी वॉज रियली रियली टायर्ड, क्योंकि वो सेल्स जॉब में थी, शी वॉज आउटसाइड लगातार, एंड उनका मन भी नहीं था ये सारे खत एक साथ अभी पढ़ने का, मगर ठीक है बॉक्स खाली करना था तो उन्होंने निकाला। इन सारे खतों में से एक खत पे सैंडी की नजर टिक गई, वो मजबूर हो गई इस खत को खोलने के लिए, क्योंकि ये जो खत था इस पे रिटर्न एड्रेस था जर्मनी का। और सैंडी को याद आ नहीं रहा कि वो किसी को जानती है जर्मनी में, क्या कोई उनके जानने वाला रहता है। एंड शी वाज लाइक, नहीं, आई डोंट नो एनीबॉडी इन जर्मनी, तो ये जर्मनी के रिटर्न एड्रेस से मुझे खत क्यों आया। शी वाज रियली रियली शॉक्ड। अचानक से इसी थकान में घर के अंदर दाखिल होने से पहले ही उन्होंने उस खत को खोला। एंड शी वाज रियली रियली शॉक्ड। जब खत खोला तो उनके हाथ कांपने लगे, शी वाज रियली ट्रेम्बलिंग। उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, क्योंकि ये खत जो था एक जर्मन डिटेक्टिव का था, जिसने लिखा था कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में जानता हूं और बहुत जरूरी बातें जानता हूं, बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। तो जॉन सैंडी का भाई 9 साल पहले गया था आका कौर देखने के लिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। सैंडी और उसके पूरे खानदान को यह पता था कि वो वहां गया है और वो बचपन से दीवाना है और शायद वो वापस नहीं आएगा, मगर वो खत लिखता रहता था। एंड दे यूज्ड टू नो के आएगा नहीं आएगा, क्या चल रहा है, अपडेट मिलती थी। लेकिन उसका आखिरी खत 1980 में ही आया था, 9 साल पहले, उसके बाद कोई खत नहीं आया। सैंडी को जब ये खत मिला डिटेक्टिव का कि तुम्हारे भाई के साथ कुछ बुरा हुआ है, वो बहुत ज्यादा घबरा गई। ऑल्दो शी वाज नॉट सरप्राइज्ड कि उसका भाई 9 साल से खत नहीं लिख रहा, क्योंकि वो ये बोल के गया था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, और बहुत जिद करके लड़ मर के कई बार घर से भागा भी। एंड दे वर लाइक, ठीक है रह रहा होगा अपने मजे में। सो दे डिड नॉट नो कि कुछ हुआ है उसके साथ। सैंडी वॉज लाइक, क्या करें, क्योंकि उसने बचपन में कहा था मुझे वो लॉस्ट सिटी देखनी है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो इन लोगों ने भी जाने दिया। 10 साल तक ये लोग इसी
चीज में जीते रहे, पर अभी शी वॉज पैनिक्ड एंड कंफ्यूज्ड। उनके जहन में ये आ रहा था कि मेरा भाई अगर खतरे में है, भले ही 10 साल हो चुके हैं, पर मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो इस जर्मन डिटेक्टिव से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जब कांटेक्ट हुआ तो उसने बताया कि जर्मन पुलिस ने बहुत ज्यादा कोशिशें करी हैं, मगर जो ब्राजील की जो गवर्नमेंट है वो उन्हें बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रही। उसने ये भी बताया कि 3 और जर्मन सिटीजन्स हैं जिन्हें जर्मनी ढूंढ रही है, और साथ में एक उनका भाई भी है, एंड सबने एक बुक में ये पढ़ा कि एक लॉस्ट सिटी है, वहां पे खजाना है, और सब के सब चल दिए। डिटेक्टिव ने बताया कि बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं इस आकाकोर नाम की जगह के पीछे। एक और जर्मन जर्नलिस्ट था जिसने इन्वेस्टिगेशन करी, और उसने बताया कॉन्टेक्ट करने के बाद कि कुछ नहीं कर सकते, ब्राजील वाले जो हैं इस केस में घुसने ही नहीं देंगे किसी को। सैंडी बहन होने के नाते और बड़ी बहन होने के नाते उन्हें लगा कि अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो अब शायद मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और जून के महीने में 1989 में सैंडी ने फैसला किया कि अब वो फाइनली ब्राजील जाएंगी, और वो पहुंची मनाउस। उन्होंने वही होटल बुक किया जहां पे खतों में मेंशन किया था उनके भाई ने कि वो यहां रहा है, वहां चेक इन किया, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने भाई को ढूंढेंगी। एंड इट वाज नॉट इजी, क्योंकि 10 साल बाद कैसे कोई सोच सकता है कि किसी शहर में जाके अचानक से कोई बंदा मिल जाएगा जो 10 साल से कॉन्टेक्ट में नहीं है। बट सैंडी वॉज राइट देयर, एंड उन्हें किसी बात से मतलब नहीं था, शी जस्ट वॉन्ट टू बी इन चेक। तो डिसाइड ही किया सैंडी ने कि अपनी सारी की सारी सेविंग्स को तोड़ा, नौकरी छोड़ी, और अपने भाई की तलाश में ब्राजील यहां इस होटल में चेक इन कर लिया। उनके साथ में एक टेप रिकॉर्डर वो लेके आई थी ताकि सबका इंटरव्यू ले सकें, कुछ चीज मिस ना हो जाए, और आकाकोर जगह कहां पर है जहां उनका भाई खतरे में है उसके बारे में जान सकें। और शुरुआत में उन्हें रियलाइज हुआ कि यह आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। लोकल्स के सामने जब उन्होंने बात करने की कोशिश करी तो बात करने में दिक्कत आ रही थी, बिकॉज ये लोग सीधी अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे थे, लोकल्स कुछ भी बोल रहे थे। फिर उन्होंने अपने भाई का फोटो भी लोगों को दिखाना शुरू किया, और किसी ने बोला कि हाँ हाँ हाँ मैंने इसको देखा है, मुझे याद आ रहा है मैंने इसे कहीं देखा है। और एक बंदे ने बोला कि अरे उसको तो गोली मार दी। फिर एक आया, उसने बोला कि हाँ हाँ ये आपका भाई इधर ही कहीं रहता है, और सब अलग अलग कहानियां बता रहे थे, किस पे यकीन किया जाए। सैंडी वॉज कंफ्यूज्ड। फिर सैंडी ने लोगों से बात करना शुरू करी जो इस आकाकोर के नाम को सुनकर डर रहे थे। उसने पूछा कि अच्छा सब छोड़िए, ये आकाकोर शहर कहां पड़ता है, और सबके सब डर रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। और सैंडी बोल रही थी अरे बोलिए ये कहां है ये शहर, मुझे पता बताइए, पर सबके सब कोई कुछ नहीं बोलेगा। एंड अभी बहुत फाइनेंशियली टूट रही थी, क्योंकि सारा पैसा लगा के यहां पे सैंडी आई थी अपने भाई को ढूंढने के लिए। फिर एक बंदा उन्हें टकराया जिससे जब उन्होंने पूछा कि सर ये आकाकोर शहर कहां पर है, ये किधर मिलेगा, मेरा भाई वहां पर है, तो उस बंदे ने एकदम से अपनी पूरे एक्सप्रेशन को एकदम सीरियस किया, ऐसा जैसे पता नहीं कोई बुरी खबर सुनाने वाला है। और फिर उसने कहा कि हमारा एक लोकल चीफ है, सिर्फ वही उस जगह के बारे में जानता है, उसका नाम है ठठुनका नारा। सैंडी ने उसको ढूंढने में, इस चीफ को ढूंढने में 3 हफ्ते बिताए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ रहता है, या कोई बताने से डर रहा था, नोबडी नोज। बट देन इधर उधर भटकते हुए उसने ये जरूर जाना कि सब के सब ठठुनका से डरते हैं। एंड फिर वो मौका आया जब एक लोकल ने कहा कि हाँ मैंने कहीं देखा है उन्हें, शायद एक स्विस टूरिस्ट है जो बता सके। तो एक टूरिस्ट जो वहां पे घूम रहा था वो भी ठठुनका की तलाश में आया था, और वो भी ढूंढ रहा था ठठुनका को। अभी 2 लोग ढूंढ रहे हैं एक बंदे को। फाइनेंशियली पूरे से टूट जाने के बाद जब उन्होंने फैसला कर लिया सैंडी ने कि मैं

वापस लौट जाती हूँ, ये पता नहीं किस लीडर की बात कर रहा है, क्यों सब डरे हुए हैं। फिर उन्हें एक लीड मिली एंड फिर उन्हें कहा गया कि यहां पहुंच जाओ। तो फिर वो पहुंची उस जगह पर, ठठुनका के सामने खड़ी थी वो। और उन्होंने फिर बात करना शुरू करी कि बताइए, मुझे बताइए जरा ठठुनका जी, आप आखिर करते क्या हैं, आप कौन हैं, क्यों लोग आपसे डरते हैं। और सबके सब जो आसपास के थे वो सारे घबराए हुए घूम रहे थे, सबके सब उस कैबिन से जहां पर वो मिली सबके सब दूर भाग गए। तो उसने बताया कि वो चीफ है, वो एक इंडिजिनस सोसाइटी का हिस्सा है एंड बहुत ही प्राउडली सब बता रहा था। उसके जो शर्ट के बटन थे वो खुले हुए थे, लीन बॉडी थी उसकी एंड हाइट भी ज्यादा नहीं थी, 5'4" होगी उसकी हाइट तकरीबन। एंड उसे देखकर सैंडी को अजीब सा लग रहा था कि ये लीडर है। पर वो फिर भी बात करी जा रही थी। बात करने के बाद उसने एक और चीज नोटिस करी कि हाँ, इसके पास टर्टल टैटू है जो किताब में लिखा हुआ है। उसने ये भी नोटिस किया कि ये जो भाषा बोल रहा है, जिस तरह किसे अंग्रेजी बोल रहा है, वो बड़ी अजीब सी अंग्रेजी है। फिर उसने बात करते करते जब उसे और भी ज्यादा सस्पिशन होने लगा तो उसने अपने भाई का फोटो निकाला और संडे ने बोला, ये मेरा भाई आपसे मिलने के लिए आया होगा। ठठुनका ने उस फोटो को अपने हाथ में लिया और फिर स्माइल करने लगा सैंडी को देखते हुए, लेकिन सैंडी ने स्माइल नहीं करी एंड शी न्यू समथिंग इज रॉन्ग। एंड जो रॉन्ग था वो सैंडी ने पकड़ लिया। जब सैंडी बात करने के बाद इस चीज को ले गई, उसने जर्मन डिटेक्टिव्स को इसकी आवाज सुनाई, जर्मन्स ने समझ लिया कि ये बंदा जो है जिस टाइप की अंग्रेजी बोल रहा है, ऐसी अंग्रेजी वो लोग बोलते हैं जो जर्मन्स होते हैं, तो ये प्रॉबली कोई जर्मनी का है। बहुत ही कायदे से चोरी छिपे उसका सॉर्ट ऑफ डीएनए, बहुत सारी चीजें सबूत किए सैंडी ने और जर्मन के डिटेक्टिव्स को दिया। और जो चीज सामने आई, इट वाज सो वियर्ड कि आपको यकीन नहीं होगा कि आज भी ऐसे लोग रहते हैं। तो दरअसल आखाकोर नाम की कोई जगह है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड इससे भी ज्यादा वियर्ड बात, जो पूरी की पूरी किताब उस जर्नलिस्ट ने लिखी थी, ठठुनका नारा की कहानी, वो कोई चीफ नहीं है, कोई लेजेंडरी फिगर नहीं है, वो खामखा का टैटू जो उसने बनवा रखा है उस टर्टल का, वो कोई अमेजोनियन चीफ नहीं है। उसका असली नाम है गुंथर हॉक। वो एक जर्मनी का बंदा है जो अपनी बीवी से भाग कर आया था 1960 में अमेजोन में रहने के लिए, और क्योंकि वो वापस नहीं जा सकता है, वो एक किस्म का भगौड़ा हो चुका है जर्मनी के लिए, और उसे वहां पर भी अपने बच्चे के लिए वहां पे पैसे देने अपनी वाइफ को और एलिमनी देनी है, तो इस वजह से वो भाग के छिपके यहाँ पे आ गया था। अब जब वो 1960 में अमेजोन में आ गया और उसे अंदाजा हुआ कि तो मेरी भाषा समझते ही नहीं है, तो उसने अपनी अंग्रेजी को इस तरीके से बोलने की कोशिश करी कि लोगों को लगे कि ये कोई तो बड़ी चीज है, और फिर वो समझ गया कि लोग बेवकूफ बन रहे हैं। तो उसने एक कहानी बनाई सिर्फ वहां पे रहने के लिए, उसका मकसद सिर्फ पहले इतना ही था। और उसने अपने आप को बताया कि वो एक बहुत लॉस्ट सिटी से आया है, लॉस्ट सिविलाइजेशन से, जिसका नाम आखाकोर है। ये उसने खुद ही डिजाइन किया। और जब इसकी बातों को सुनते सुनते वहां एक राइटर पहुंचा, तो उसको भी उसने यही कहानी पढ़ाई और इस राइटर ने उठा के एक किताब छाप दी। तो जो इस बंदे ने सोचा था झूठ बोल के रुक जाऊंगा, वो झूठ जो था कुछ ज्यादा ही कन्विंसिंग हो गया। इतना ज्यादा कन्विंसिंग कि इसके इस झूठ के बलबूते पर पूरी एक टूरिज्म इंडस्ट्री तैयार हो गई अमेजोन में, पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री। ये किताब लोगों तक पहुंची, बहुत पैसा बना, और बहुत पैसा बनाया इस आदमी ने अपने आप को एक लेजेंडरी चीफ बता के। सालों तक, तकरीबन 30 सालों तक लगातार कहानियां खत्म नहीं होती है। लोग आते थे इसको ढूंढने के लिए कि आखाकोर शहर कहां है, हमें देखना है, और ये उन लोगों को मार दिया करता था। देयर इज नो प्रूफ कि वो मार देता था, मगर दैट इज द मोस्ट वायबल थ्योरी जो सामने आई। इसने कभी कबूल नहीं किया, ना कभी इसके खिलाफ कोई सबूत मिला, लेकिन जितने भी लोग इस शहर को ढूंढने के लिए आए वो कभी घर वापस नहीं गए। और सबसे इसने बहुत कमाई की और पूरी जगह अपनी दहशत बना के रखी। एंड वेट,
कहानी खत्म नहीं हुई। वो राइटर जिसने किताब लिखी थी इस बंदे के कहने पे लॉस्ट सिविलाइजेशन की, उसे किसी ने गोली मार दी 1984 में। किसने मारी? वेल, नोबडी नोज। एंड अभी भी खत्म नहीं हुई। देयर इज द लास्ट एंड द मोस्ट वियर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। गुंथर नाम का बंदा इस तक जर्मनी के हाथ आज तक नहीं पहुंचे हैं। आज तक लोगों को जाकर मुंह पे बताया है कि भाई ये कोई चीफ वीफ नहीं है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। एज इफ नाउ 2026 में ये गुंथर नाम का बंदा आज भी ठठुन का नारा के नाम से अभी भी रहता है अमेजोन में, और आज भी लोग यकीन करने वाले आकाकोर नाम के शहर को ढूंढने इसके पास जाते हैं। आई रियली होप ये कहानी मुझे दोबारा ना सुनानी पड़े कि कोई और गायब हुआ, बट फॉर नाउ ये एक रिकॉर्डेड केस है एंड इट इज स्टिल देयर एंड अभी तक ये खुला घूम रहा है। इसके ऊपर चार्जेस लगे लेकिन नोबडी कुड रीच हिज नेक एंड दैट इज द मोस्ट वियर्डेस्ट पार्ट ऑफ द होल स्टोरी। तो ये थी कहानी आपके हवाले। 666-22107 666-22107। बहुत खेल हो रहे हैं बाबू दुनिया में, तो अगर यहां जाए तो आका कौर ढूंढने नहीं जाना है। 666-22107 इस नंबर पे जरूर मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, स्टे ट्यून्ड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक
2: चेक चेक चेक 6:03 क्या और आज की कहानी जो है आई डोंट नो मैं इसको फनी बोलूं ट्रेजेडी बोलूं नो वर्ड्स भाई कमाल की दुनिया है कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे यार।

Then away. Away. नहीं पूछने का नहीं, ठठुन खनारा की कहानी मैंने सुना दी है, ठठुन खनारा। तो सबसे पहले मेरा इंट्रो नाम ऐसे रख के मैं भी कहीं चला जाऊं क्या? कहीं दूर जहां मेरी भाषा को कोई समझता ना हो, उनसे बोल दूंगा मैं भी बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन से आया हूँ, खखुन खनारा है मेरा नाम, खखुन खनारा।

0: क्या समझ के आए थे सबासी, तो आप देंगे कहानी कैसे लगी आप बताएंगे। हमने तो भैया सुना दी कहानी, आप बताइए कैसी लगी आपको। एक कॉल आ रही है, उठा लें का, तो उठा लेते। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी मेरा भाई।
1: अरे अभी एक हफ्ता पहले देखा था लॉर्ड सिटी ऑफ द जेड। और आज आज ये कहानी सुना रहे हैं।
0: हाँ तो कमाल भाई, आप
1: झूठ का पहाड़
0: है क्या?
1: झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया उसने।
0: तो क्या सोचा है आपने, इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे?
1: नहीं हो पाएगा।
0: आप भी अपना नाम वाम बदल लिया, ठठुन का ऐसा कुछ भारी सा नाम रखिएगा, बिल्कुल ऐसा लगे कहीं ट्राइब व्राइब से आया। हैं कमाल भाई,
1: है ना
0: क्या?
1: अरे भाई नाम ही तो है,
0: क्या नाम?
1: नाम ही ऐसा खतरनाक बताया था, ठठुन का।
0: हाँ ठठुन का नारा भाई, वजन है नाम में, तभी तो भाई खेल गया वहां जाके। समझ रहे आप,
1: कुछ ऐसी होती है कभी भाई। हाँ। जो झूठ भी जो है ना इतना बड़ा हो जाता है।
0: हाँ।
1: कि लोग उस पर यकीन कर लेते हैं।
0: हाँ तो भाई वो कराने की जो है ना, वो जो कन्विंसिंग पावर होती है, वो भी तो एक चीज होती है ना। देख रहे हैं आप 30 साल क्या चीज होती है, अभी तक भाई, अभी तक ही इज देयर जब हम बता रहे हैं कहानी है। तो सोचिए आप
1: कहा। हाँ। वहां की गवर्नमेंट भी नहीं वो कर रही, बताइए उसको।
0: चूंकि हो क्या रहा है कि उसके आसपास के जो लोग हैं ना, उन्होंने एक किस्म की दीवार बना लिया, बिकॉज उनकी उनकी जो मान्यता है, जो वो मान रहे हैं, वो किसी को छूने भी नहीं देते उसको, बिकॉज उनके लिए तो वो एक बहुत ही बड़ा ट्राइबल लीडर है। समझ रहे हैं आप, इसीलिए यस, सो दैट इज द थिंग। तो भाई ने अपना ओरा सेट कर लिया, ओरा फार्मिंग कर रहा है वो। समझ रहे हैं, इसलिए। पर कमाल भाई आपको अच्छे लगे कहानी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई होप आपको अच्छा लगे।
1: एक हफ्ता पहले ही देखा था लॉस्ट सिटी अपडेट।
0: क्या बात है, फिर तो ये इत्तफाकन आपकी इस समय कहानी आ गई।
1: वो भी जो है लॉस्ट सिटी ढूंढने के लिए निकला था।
0: हाँ।
1: सैनिक था, जापान का ही कहानी थी ये।
0: पर ठठुन का नारा नहीं मिला ना उसे?
1: नहीं ठठुन का नारा नहीं मिला।
0: कोई नहीं, कल देखिएगा, कोशिश करते हैं। कल एक बहुत बढ़िया मुझे हॉरर स्टोरी मिली है, मजा आएगा कल आपको सुन के। ठीक है, बस इसी वीक से मेरे भाई सब डन हो गया, मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया, मैंने दो कहानियां जो है सेट कर दी हैं, आज ड्रॉप कर देंगे आजकल में। ठीक है,
1: मैं तो सब
0: YouTube
1: भी आपका वो रखता
0: हूँ। बस अभी सब ऑन है भाई, एकदम ठीक है।
1: ठीक है, अच्छा है, हमारी यही तो दुआ है भाई।
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। ख्याल रखिए अपना कमाल भाई।
1: ठीक है,
0: ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। अब जरा एक भाई हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ, सबसे पहले इनको कॉल कर लूँ। भाई बहुत देर से इनको कॉल नहीं करे, रुक जाओ अमन भाई, जाने का नहीं अभी, एक सेकेंड, ये रही मेरी कॉल। जाके पूछ अपने बारे में। अमन भाई हेलो कबड्डी, उठा लेंगे तो बात हो जाएगी, वरना मैसेजेस तो हैं, हम पढ़ देंगे मैसेज, जब तक नहीं उठाते एक मैसेज पढ़ देता हूँ। यूसुफ भाई कह रहे हैं कि आज की स्टोरी को अजीब सी लगी, दुनिया के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इजीली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये कहानी ये साबित करती है। और कबीर, वो सैंडी का भाई का क्या हुआ? नहीं मिला भाई, इसे कोई पता नहीं है, वो जिंदा है नहीं है, किधर गया बेचारा, मोस्ट प्रॉब्ली जिंदा नहीं होगा, कहानी में उसका जिक्र नहीं हुआ। हाँ भाई, वो पता नहीं उसको क्या हुआ, नथिंग नो सबूत उसके लिए या उसके खिलाफ। वैसे इट्स लाइक आतंक का नया नाम बाबू हुआ है। हाँ फराज भाई बिल्कुल वैसा ही ओरा है भाई का, ओरा फार्मिंग करी है भाई ने। तो एक सेकंड भाई, ये कॉल आ रही है कि जा रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके हाँ फराज भाई, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और एक मैसेज किया है, टुडे आई मिस द स्टोरी ड्यू टू फुल वर्क, प्लीज़ शेयर, ऑफकोर्स आई विल। एक मैसेज आया है मज़र भाई का कह रहे हैं, कबीर भाई आई थॉट दिस स्टोरी इज़ लाइक KGF सिटी। नहीं भाई, KGF सिटी ऐसे नहीं है लगते, बट लेटर केम टू नो दैट अमेजोन लॉस्ट सिटी स्टोरी इज टोटली स्कैम, द गोल्डन सिटी डज नॉट एग्जिस्ट, बट ही इज स्टिल आउट देयर इन द जंगल प्लेइंग ड्रेस अप एज अ टूर गाइड। वर्स्ट पार्ट इज अ फ्यू टूरिस्ट हु वेंट लुकिंग फॉर इट लिटरली वैनिश्ड, प्लॉट ट्विस्ट ऑफ द सेंचुरी। भाई अभी भी है वो बंदा, मौज कर रहा है भाई साहब वो। और आसरा बहन ने उन्होंने मैसेज किया, वो कह रही है कैसा गैर जिम्मेदार आदमी है, बताइए जर्मनी से वाकई कर रहा है, जर्मनी में इतना दिमाग लगा लेता ना तो सही रहता है इसके लिए। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम सर, आज लेट आप आए हैं क्यों? कौन लेट आया है? मैं कहाँ लेट आया हूँ। प्रिंस भाई ने मैसेज किया, भाई ये क्या सुना दिया, समा बांध दिया। अपने दिल से आवाज़ आ रही है, पार्ट टू प्लीज़। नहीं भाई पार्ट टू मत करवाओ, जितने लोग निपटने थे निपटा दिए इसने, और मैं नहीं चाहता इसकी कंटिन्यूएशन करना। मुझे सैंडी इतने सालों बाद भाई को क्यों ढूंढने निकली, आई मीन उतने साल बाद उसको याद आया गया, याद नहीं आया। उसके भाई जो था, जैसे मैंने कहानी बताया, उसके भाई ने कह दिया था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, एंड ही लेफ्ट। और वो बचपन से जिद करता आ रहा था कि उसे लॉस्ट सिटी जाना है, लॉस्ट सिटी जाना है। सारे काम धाम छोड़ के अपने घर से संन्यास लेके निकल गया था भाई वो। और उसके बाद घर वालों ने भी कहा कि ठीक है, एंड दिस वाज 1960s 70s 80s, तो ऑब्वियसली आपके पास टेलीफोन नहीं है, मतलब टेलीफोन है सेल फोन नहीं है, सो दे हैड नो कॉन्वर्सेशन बिटवीन। वो खत लिखता रहता था कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, देन लेटर सडनली स्टॉप्ड। और क्योंकि उसने कहा था कि वो वापस नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है मजे कर रहा होगा भाई अपना, लेकिन पता ही है बाकी कहानी आपको। मैसेज भाई वो आंटी का क्या हुआ, वो भी गई वापस, नहीं वो वापस आ गई भाई, आंटी वापस आ गई। अशफाक भाई वैसे कबीर भाई आपका चैनल का लिंक दीजिए, अभी देता हूँ। पैसा कमाने का अच्छा तरीका है अब्दुल करीम भाई, मत करना, ये है पता चला आप भी लौट के कहीं बांग्लादेश में या कहीं इंडिया वगैरह में कहीं आपने भी खोल लिया कि मैं हूँ टचुन खानारा। हमारे वाले नहीं मानते ये सब बातें। 6:14, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मैंने मैसेज किया, भाई जब आप ये कहानी सुनाते तो आखिर ढूंढते कहाँ से हैं, ऐसी कहानियाँ हमें क्यों नहीं नज़र आती। आती हैं भाई, आप सुनते होंगे पर शायद उतना ध्यान नहीं देते होंगे, क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन

0: लोगों का कम हो गया है तो लोग सुन के इग्नोर कर देते हैं और मैं आपको बैठा के सुना देता हूँ। तो वही सेम चीज़ जो आपकी शायद रील में कभी आई हो वही मैं आपको सुना रहा हूँ। एक मैसेज है गुरलाल सिंह भट्टी साहब, क्या हाल है भाई साहब, गुड इवनिंग आपको। वैसे भाई वो आर्मी वालों की सैटेलाइट फ़ोन क्यों नहीं लेकर गया, वो आर्मी वालों का सैटेलाइट फ़ोन लेके क्यों नहीं गया। हाँ ऐसी फ्री में बट रहा है ना, हैं ठेले पे ककड़ी जैसे मिलती है वैसे ही। वाह वाह वाह वाह शेरा वाह। उमर भाई, अरे कबीर भाई सेंड मी स्टोरी, आई विल सेंड यू स्टोरी, डोंट वरी उमर भाई। एक में से नाइस स्टोरी, हंसी और गुस्सा दोनों आ रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली सिद्दीकी भाई, मेरे साथ भी था जब ये कहानी में तैयार कर रहा था, मुझे गुस्सा और हंसी दोनों ही आ रहे थे, समझ नहीं पा रहा था करना क्या है, इस कहानी पे क्या रिस्पॉन्स दिया जाए। बट नंदलेस जो होना था वो तो हो गया, बाजी मार गया लड़का। 666-22107 नंबर है, आप ज़रा मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ ये टटून का नारा को ढूंढने कभी मत जाना, कोई आपसे इस बारे में जिक्र भी करे तो मेरे पास भेज देने का, ठीक है, मैं देख लूँगा उसे। 666-22107 ये है नंबर। और आ रहे हैं बंटाए, एक और मैसेज पढ़ दूँ। लॉस सिविलाइजेशन को लाइव मटन सप्लाईज दे रहा है टटून का नारा, ये नाम मुझे बढ़िया लगा। एक मैसेज है, ये मैसेज फनी वे में लीजिए प्लीज़, अमेरिकन ये मैं नहीं पढ़ सकता, ये नहीं पढ़ सकता मैं, मतलब भाई मैं नहीं पढ़ सकता। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से मेरे भाई, आप सुनाइए क्या हाल है। राशिद भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और अब है बंटाई की पब्लिक,
1: आ गया मैं, हाँ जल्दी से कर दो अब लाइट्स कैमरा एक्शन, जाऊं मैं गर्दी जमा कर दूं जैसे मैं माइकल जैक्सन,
0: माइकल जैक्सन,
1: माइकल जैक्सन।

0: Pasito para parmilegi para pal. भाई साहब मैसेज आया है सीधा अमेरिका से, डिट्रॉइट मिशिगन से हमारे भाई ने मैसेज किया। भाईजान क्या हाल है आपके? बढ़िया। शाह सईद भाई ने मैसेज किया है सीधा यूएसए से। भाई आपकी तो मतलब उर्दू और हिंदी थोड़ी खराब हो गई होगी यार, वहाँ रहते रहते बाद में हर जगह अंग्रेजी अंग्रेजी बोले जा रहा है, तो आप भी एक्सेंट के साथ बोलते हैं क्या? वो क्या होता है ना, कुछ लोग जब बाहर रहने लग जाते हैं ज़्यादा इन कैनेडा और आउटसाइड इन ए फॉरनर्स, फिर उनकी उर्दू मिक्स हो जाती है अंग्रेजी के साथ ना। मैं मुंडा साउथ चोलदा तू कुड़ी बटन रही थी, मैं क्या जी ऐ देखो मेरा पिंड दा पेड़। ऐसा होता होगा ना, आई थिंक अमेरिका में रह रहे के इतना ज़्यादा बोल बोल के अंग्रेजी हिंदी इधर की उधर हो जाती है, यहाँ लेकिन अंग्रेजी ख़राब हो जाती है। आई गो यू कम नियर द ट्री लार्ज बिल्डिंग नंबर टू, तो यहाँ पूरा ही चेंज जाता है मामला। खैर एक दो मैसेज है। हाय हाय हाँ जी हाय हाय हाय हाय हाय, क्या नाम है आपका? एक तो पता नहीं कौन से फॉन्ट में लिखा है, प्रशस लिखा, प्रशस। एक मैसेज है अब्दुल अमजद साहब का। अब्दुल अमजद भाई बहुत टाइम बाद आए भाई, बहुत जमाने हो गए आपका तो मैसेज आए हुए। तो बस मैन बिल्कुल मिलेगा आपको, कहानी मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। मैसेज है भाई क्या है, और मैसेज ऑटो डिलीट हो जा रहे हैं 24 घंटे मेरी तरफ में, डिसअपीयरिंग ऑफ करा मैं फिर भी डिलीट हो रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? एक सेकंड मुझे देखने दो। अच्छा अब नहीं होंगे, रुको अब नहीं होंगे, मेरी तरफ से था शायद, अभी देखो अभी नहीं होंगे। एक और मैसेज है, ये वाली इंग्लिश ज़बरदस्त है भाई, यो वाली इंग्लिश ज़बरदस्त है। कौन सी वाली, यहाँ वाली कि वहाँ वाली? वहाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ पे वो उर्दू और इंग्लिश जब मिल जाती है ना, वही कह रहा हूँ मैं। द मुंडा साउथ उल्टा टू खुड़ी पठिन रही थी, मैं कहा जी तोड़े भी मिस हो रहे हैं। एक सेकेंड, ये सबके डिसअपेयरिंग मैसेज क्यों ऑन हो रहे हैं भाई? अच्छा यहाँ वाली तो ज़बरदस्त है, यहाँ वाली ज़बरदस्त है। जब तक इंसान को यहाँ पर कतर में, सबसे खास बात है, पता नहीं लगता कि सामने वाला जो है वो मेरी भाषा बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, तब तक बहुत ही ऑकवर्ड सीन हो जाता है। आई रिमेम्बर मैंने कैब बुक करी थी, तो जो भाई बैठे हुए थे सामने, वो थे तो कुर्ते पजामे में, पर वो बड़ी ख़तरनाक अंग्रेजी बोल रहे थे। मैंने कहा हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, ये शायद सच में ही बाहर की हूँ, हो सकता है भाई को लगाओ कि आई वांट टू ट्राई सम कल्चर, उन्होंने कुर्ता पजामा पा लिया हो जी, मुझे क्या पता। फिर भाई ने अचानक से जो शिफ्ट किया भाषा को अपनी कॉल पे, तब मैंने कहा ओ हो मैं इतनी देर से काम वगैरह अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ। सारा कॉल सेंटर निकलवा दिया इन्होंने मेरा। फिर मैंने कहा भाई साहब आगे से राइट लेना है ठीक है, और उससे पहले मैं ये कर रहा था, यू नीड टू टेक अ राइट आफ्टर द रेड लाइट, या यू सी या। मोहम्मद राणा साहब वालेकुम अस्सलाम, मैं बढ़िया भाई आप सुनाओ कैसे हो भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई मेरे साल एकदम बढ़िया है। और ये सबके मैसेज डिलीट हो रहे हैं, मैं जरा देख रहा हूँ क्योंकि डिसअपीयरिंग मैसेज आई थिंक सबके ऑन हो चुके हैं, तो लेट मी सी ये क्यों ऑन हो रहे हैं। लो अभी मैंने ठीक कर दिया, आई थिंक अभी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं कहानी बेचता हूँ तो लोगों के मैसेज उड़ जाते हैं। मेरा भी सेम है, रुको भाई हाथों हाथ सबके फिक्स कर रहा हूँ मैं। हाथों हाथ। अच्छा सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हर जगह मौजूद है, तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस, इन तमाम जगहों पर आप जुड़ सकते हैं इस नाम से। और अगर आप मुझे ढूंढना चाहें तो दोहा वाला कबीर FM107 इस नाम से मिल जाऊंगा आपको। इनफैक्ट मैं आपको टिकटॉक से लेकर हर जगह मिल जाऊंगा, सर्च करेंगे आपका फ़ायदा, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ सरप्राइज़ मिलेगा आपको, बहुत सारी स्टोरीज़ जो आप यहाँ पर सुनते हैं, या फिर छुट्टी पर भी हो सकता है आपको फ्राइडे भी स्टोरीज़ मिलना शुरू हो जाए, बट वहाँ पर आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। उस्मान मोहम्मद साहब कह रहे हैं भाई मेरी भी कल वाली स्टोरी सुने बगैर गायब हो गई। करते हैं कुछ एक मैसेज। हाय फर्स्ट टाइम किसी का मैसेज ऐड किया, इतनी खुशी फर्स्ट टाइम किसी ने मैसेज ऐड किया मेरे एफएम पर, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, पर आपका नाम क्या है, नाम क्या है, प्रेशियस नाम रखा है आपने व्हाट्सएप पे, आई वांट टू नो, ये आपका नाम तो नहीं है आई एम प्रीटी श्योर, मोहम्मद अवेस नाम है, ऐसा बोलने का ना, तो प्रेशियस क्यों रखा है आपने? आप हैं खास, मैं बिल्कुल मांग रहा हूं, मगर ये मैं समझ नहीं पाया। गाजी साहब स्टोरी सेंड कर दिया, करेंगे भाई अभी कुछ देर में करते हैं, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है? मैं बढ़िया भाई, टेम्परेचर का हाल तो मैं बता ही रहा हूँ, अभी कुछ देर में सब बात करेंगे, टेंशन मत लो। ट्रैफिक का हाल आप मुझे बता दो, 666-22-107 पे एंड द नेक्स्ट ट्रैक।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी,
0: दिल से देसी।
2: बेसो,
0: थोड़ा अंग्रेजी टाइप गाना लगाने का मन कर रहा था कबीर भाई। अच्छा मैं भेजता हूँ, रुक जाओ। एक और मैसेज है, क्या भेजा इन्होंने? Did you know Maharashtra have dominated the world football arena? अच्छा था, अच्छा था।

0: जी क्या हाल है? अच्छा मैं एक मैसेज पढ़ देता हूँ। मैं तो मोहम्मद उवैस भाई का मैसेज आया, अब इंशाल्लाह आपको फॉलो करूंगा क्योंकि आपका रिस्पांस आता है। बट नाइस प्रोग्राम है आपका, थैंक यू सो मच। क्या बात है, अच्छा ये टेस्ट कर रहे थे, जो आरजे रिप्लाई करेगा उसी को फॉलो करूंगा मैं, वरना मैं किसी को नहीं करता फॉलो। सही, ये एटीट्यूड अच्छा है, मुझे अच्छा लगा आपका एटीट्यूड, वेरी नाइस। एक मैसेज है, ओप्स आई टर्न ऑन द डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन योर चैट यस्टरडे एज वेल, वी हैव टू डू इट टू अवॉइड इश्यूज व्हाइल इंटरनेशनल ट्रैवल, नॉट श्योर हाउ इट अफेक्टेड योर लिस्ट, आई डोंट नो ब्रो। आर यू ऑन सिंगल मैसेज एज वेल, दैट इज मोर सिक्योर फॉर इंटरसेप्शन इन प्राइवेट इशूज मेटा क्रेडिट्स। अरे करने दो कलेक्ट, हमारे पास कौन से खजाने हैं कुछ ना मिलेगा मेटा को हमारा डेटा कलेक्ट करके। अभी क्या है, कॉल उठा लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि टाइम कम है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, कैसे हैं?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाओ।
1: बस ठीक हूँ। देखा आपने लस्सी वाला सैंडविच साथ
0: में? ये क्या है ये लस्सी और सैंडविच कॉम्बिनेशन भाई, मजा आ गया देख के यार। क्या सैंडविच किस चीज का खा रहे थे अभी
1: करके देखिए एक बार, बहुत अच्छा है।
0: हाँ आप टटून का नारा बन सकते हैं, मुझे लगता है आपके अंदर है कैपेबिलिटी।
1: नहीं मैं किसी को मैं बहन में नहीं डालूंगा 30 साल तक
0: लंबा बहन रहेगा। कैसे लगी आपको
1: 30 साल तक? वाकई में ये सच है जी, लोग यकीन कर लेते हैं, लोग ऐसा माहौल बना लेते हैं कि दूसरा बंदा भी डरने लग जाता है।
0: भाई साहब बहुत ही कर्रा किस्म का बिजनेस है ये, क्या सोच रहे हैं आप?
1: ये सही बात है।
0: तो क्या समझ रहे हैं आप, बहुत लंबी चीज है ये तो, ये आप पढ़िएगा, बहुत कमाल की कहानी है। बाकी तो आपने सैंडविच खा ही लिया, हमको भूख लगवा दी आपने, अच्छी बात थोड़ी है ये।
1: इसके अंदर वो स्ट्रिप्स हैं बड़ी वाली।
0: वाह वाह वाह वाह, वो साइड में सैंडविच मेकर भी लेके बैठे हुए, मतलब आप है?
1: मैं सोचा आपको दिखाता हूँ, रूह अफ़ज़ा और लस्सी योगर्ट में रूह अफ़ज़ा डालिए और थोड़े 2 चम्मच चीनी के और इलायची पाउडर डालना मत भूलिए। देखिए स्वाद
0: क्या भाई साहब, बस कीजिए, आदमी अभी चाय पे जिंदा चल रहा है, अभी शो में टाइम है, क्या है ये पूरी रेसिपी बता दी।
1: चाय भी अच्छी है, चाय तो नंबर 1 पे रहेगी हमेशा।
0: हाँ वो तो है, उसका तो कोई कॉम्बिनेशन तोड़ ही नहीं
1: चाय तो नंबर 1 पे जी। स्टोरी अच्छी थी, मोरल ऑफ द स्टोरी इज के जब तक असलियत पता ना चले तब तक यकीन नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एकदम सही है।
1: और वो लड़की ने, जो लड़की, वो लड़की थी ना इंटरव्यू करने गई
0: थी, हाँ सैंडी नाम था, हाँ
1: उसने ही हिम्मत दिखाई है।
0: हाँ भाई सैंडी, सैंडी के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा, तालियां तालियां
1: जोरदार तालियां,
0: गुड जॉब, गुड जॉब डन।
1: हैं लोग कुछ ऐसे जो असलियत जान जाते हैं।
0: हाँ सुन के बताते हैं आदमी कैसा है। ठीक है अमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है, थैंक यू, थैंक यू कभी भाई।
0: ओके भाई,
1: आपने कॉल किया था, सॉरी मैं इधर किचन में था।
0: कोई गल नहीं भाई,
1: मैंने मोबाइल देखा फटाफट।
0: ना जी कोई गल नहीं, आराम करो।
1: ओके
0: ठीक है मेरा,
1: ओके शुक्रिया, शुक्रिया कभी भाई,
0: अल्लाह हाफिज़। और जल्दी से मैसेज पढ़ दूं मैं? नहीं अभी टाइम नहीं है, मैं अजान के बाद इंशाल्लाह सारे मैसेज पढ़ूंगा। जाना आपने ही नहीं, सबसे बढ़िया जगह पर हैं आप, कहने की जरूरत ही नहीं। स्टे ट्यून्ड।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दशम गाना FM 107 पर शायद मालिया रफ्तार और प्रीतम दा का संगीत 6:35 by the clock. Let's go.

0: मजाक में बहुत जल्दी ये भी निकल जा रहा है, बिल्कुल आधे आधे साल में पहुंच चुके हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह, समझ
1: गए। कैसे हैं इंशाल्लाह?
0: सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: मैंने तो आज मेवश बैंक से क्या, मैंने कहा कबीर भाई के लिए मेरे पास गिफ्ट था, तो बोली सॉरी यहाँ पर नहीं दे सकते
0: आपकी।
1: दिल ना तोड़ेंगे
0: महवेश बहन ने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, मैं बोलूं उनसे या आप रख लेती हैं।
1: हाँ क्या आप उनसे कहना कहना कि रख लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
0: रामपुर
1: वालों के अंदर खासियत यही वाली बात है।
0: अरे बहुत पार रामपुरिया हो रहा है भाई, कतई हमारे यहाँ भी रामपुर के लोग हैं भाई, बढ़िया जा रहे हो। ठीक है भाई, पर आपकी मोहब्बत मेरे साथ, बहुत बहुत
1: शुक्रिया, बहुत बहुत आपने फोन रिसीव किया। मैं इंशाल्लाह मुलाकात करूंगा,
0: इंशाल्लाह भाई, जरूर जरूर।
1: तो सुबह में कब है आपकी ड्यूटी? नहीं
0: मेरी सुबह की ड्यूटी नहीं है भाई, मैं दोपहर में आता हूँ।
1: ओके ओके इंशाल्लाह
0: जरूर मेरे भाई,
1: शुक्रिया।
0: अल्लाह हाफिज मेरे भाई, ख्याल रखिए। और भाई की मोहब्बत के बाद एक अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम?
2: क्या आप बार बार भूल जाते हैं मेरा नाम?
0: अच्छा भूल जाते हैं मेरा नाम, जो अपने लहर के बोला मैं समझ गया। बताइए क्या हाल है, क्या हाल है आपके? मैं सब समझ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, नजर ना लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह।
2: आप बताएं आप कैसे हैं?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
0: आज कैसे इस गरीब को याद किया आपने?
2: ऐसे ना बोला।
0: अरे लेजिट क्वेश्चन है भाई, हद हो गई, मतलब कवाली हो गया।
2: मैं वो आपके स्टूडियो के सामने से गुजर रही थी, तो मैंने सोचा आपको चले याद है, इस टाइम कबीर का शो चल रहा होगा, तो मैंने सोचा चले आपको याद कर लेते हैं।
0: अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ निकली है सवारी, कहाँ निकली है पलटन, किधर जा रही है आप?
2: हम आ रही है वापस, बच्चों को टॉय फेस्टिवल लेके गए थे।
0: अच्छा हाँ, टॉय फेस्टिवल है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। कैसा है इस बार का, कैसा लगा आपको?
2: मुझे इस बार का बिल्कुल भी अच्छा नहीं
0: लगा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या क्या दिक्कत है?
2: लास्ट टाइम जो थे ना, थीम्स ज्यादा थे, टाइम बस कलरिंग पेंटिंग आ रही, तो मैं इस चीज से बहुत बोर हो गई।
0: तो आप खुद टीचर है ना, प्रॉब्लम पता क्या, आप खुद टीचर है ना, आपके अंदर की टीचर कहती है नहीं नहीं बहुत हो गया मुझे, मैं जा रही हूँ पहाड़ी पे। तो उस वजह से
2: यार जा ही तो नहीं पा रही हूँ, दो महीने की छुट्टी है, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे बच्चे जाना नहीं चाहते इंडिया।
0: क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों नहीं जाना चाहते?
2: नहीं उनको हाइजीन से इशू हो जाता है।
0: ओह माय गॉड, यही तो प्रॉब्लम है, ये
2: प्रॉब्लम है, यही एक मसला है जो बच्चे यहाँ रहते हैं, मैं क्या बताऊँ।
0: तो आपने ट्रेन नहीं किया उस तरीके से, थोड़ा खिलाते
2: छोड़ दें, जो बच्चा नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, जो आ रहा है उसको लेकर।
0: ये क्या बात है,
2: उनको अपने बच्चे से मिलना है।
0: तो उन्हें बताइए बेटा इसे, तो उन्हें बताइए हाँ बेटा इसे नाली कहते हैं, नाली बह रही है, इसके साइड में खड़े होकर लोग बिरयानी भी खाते हैं, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, ये बताया आपने?
2: नाली नहीं, मुंबई में इस टाइम तो नाले बह रहे हैं। आपका
0: ऑब्वियसली आपके तो फिर मामला ही अलग है, आपके तो मामला ही अलग है। नहीं वही है,
2: स्विमिंग कर लेंगे वहां पे जाके।
0: तो फिर बहन आप शुरुआत में लेने गई होंगी ना उन्हें मुंबई या फिर इंडिया इन जनरल? तो
2: मैं ले जा चुकी हूँ, जब भी जाती हूँ ना तो वहाँ पे क्या बोलूँ मैं, हमारे जो यहाँ बच्चे रहते हैं ना उनको वाटर बोर्न डिजीज, ये डिजीज वो डिजीज हो जाता है।
0: अरे रे रे रे रे, ऐसे कैसे
2: बहुत
0: चलेगा,
2: क्या बोलूं मैं, अब इनके चक्कर में मैं भी नहीं जा पाती हूं, so sad ना।
0: अरे रे रे रे, मैं आपके आपके दुख को सुन के पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक्सप्रेशन क्या
2: दूं। कबीर भाई आप देख लेंगे
0: क्या,
2: भाई अच्छा। होने का कुछ तो फर्ज निभाएंगे।
0: अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ जाइए आप, जाइए आराम से पहाड़ी पे जाइए, मैं तो कह रहा हूँ आप अकेले जाइए, कल्ले कल्ले।
2: तीनों को छोड़ जाऊंगी।
0: तीनों को छोड़ जाऊंगी, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, किराया ले लूंगा मैं आपसे बता रहा हूँ। हाँ टीचर साहिबा, तो कब कब कब स्कूल खुल रहे हैं अभी, क्या क्या डेट है, कब से आप वापस जॉब शुरू हो?
2: अभी तो 2 महीने छुट्टी है, मैं वही सोच सोच के मैं थक गई हूँ कि 2 महीने तीनों को झेलना पड़ेगा मुझे अकेले।
0: तालियां तालियां, हमें अपडेट देती रहा करें हर दिन का, मैं आपका अपडेट लेता रहूंगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी, जानना चाहूंगा कैसे बीत रहे हैं दिन।
2: मैंने आपसे ये पूछा है मैं तीनों को छोड़ जाऊंगा, आपके पास आपका जवाब नहीं आया।
0: मैंने बोला ना छोड़ दीजिए, किराया लूंगा मैं आपसे पूरा का पूरा। कोई इसमें रियायत
2: नहीं, भाई बन रहा हूँ आपका,
0: 30% डिस्काउंट आपको चाहिए, 30%।

0: परसेंट डिस्काउंट छोड़ जाइए सबको.
1: 30% ईच.
0: हाँ 30% ईच 30% ईच आपके लिए. चलिए
1: हाँ होते जा रहे हैं.
0: बस बस शुक्रिया. ऐसा ही है अपना तो बताइए. नया बिजनेस खुल जाएगा इस बहाने मेरा. है क्या
1: आपका समर ब्रेक कैसा जा रहा है?
0: मेरा तो समर ब्रेक कौन सा ब्रेक, किधर का ब्रेक? अब मेरा ब्रेक है दिसंबर में सीधा. मैं दिल्ली की ठंड देखने जाऊंगा. बढ़िया, अभी मेरा कोई ब्रेक नहीं है.
1: सही
0: नहीं, पर आप शो में
1: जाना चाहिए ना, बारिश में भी जाना चाहिए थोड़ा.
0: वाह वाह वाह, मतलब यहाँ पे गर्मी जाऊँ फिर दिल्ली की गर्मी झेलू लू वाली है, फर्क क्या जाएगा?
1: देखिए आया ना पॉइंट यहाँ पे.
0: क्या पॉइंट आ गया?
1: उधर जाना नहीं चाहते.
0: क्यों नहीं जाना चाहते? अरे तो भाई तो दोनों जगह गर्मी है ना.
1: बर्दाश्त कर लूंगा 50 डिग्री दिल्ली की गर्मी.
0: दिल्ली की गर्मी देखिए मुंबई वालों, है गर्मी देखिए.
1: मुंबई वाले नहीं बोल रहे, आप मुझे यूपी वाली भी बोल सकते.
0: चलिए यूपी वाली, दिल्ली की गर्मी देखी है आपने? लू चलती है यहाँ पे, चप्पलें घिस जाती हैं बाइक पे बैठे बैठे. 50 डिग्री
1: बिल्कुल देखिए.
0: हाँ तो उतनी खूबसूरत ठंड भी है हमारी, तो इसलिए वो ठंड के लिए मैं हमेशा विंटर्स में ब्रेक लेता हूँ मैं, इसीलिए.
1: वैसे हमें तो दोनों चीज का ऑप्शन होता है कि हम विंटर्स में भी जा सकते हैं, समर में भी. लेकिन
0: आई बड़ी जा तो पानी रही है हमेशा, दोनों टाइम
1: जा नहीं पा रहे हैं. यार मैंने पता है, हमने डिसाइड किया है, मेरी एक्चुअली बहन गई हुई है, तो मैंने उसको बोला तुम्हारी 2 महीने की छुट्टी है, तुम एक महीना छुट्टी मना के आओ, फिर ये तीनों तुम्हारे पास छोड़ूंगी, फिर मैं एक महीने के लिए. तीनों मेरे ऊपर
0: हिसाब बिठाइए. ये तो आपका काम है, मतलब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, हो जाएगा कहीं ना कहीं, फिक्स कर दीजिए तीनों को, क्या दिक्कत है?
1: आप कुछ ना करिएगा.
0: मैंने तो आपको ऑफर दे दिया. मेरा क्लियर ऑफर है, मैंने कुछ नहीं छुपाया है.
1: हाँ 30% ईच
0: और क्या. ये मंसूरा में शीशे वाली बिल्डिंग है एक बढ़िया सी, उसके साइड में रहा करो, वहाँ छोड़ जाइएगा तीनों को, मैं पिक कर लूंगा.
1: अच्छा एक दिन का ट्रायल लेते हैं हम लोग.
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं.
1: कल मैं छोड़ के जाऊंगी. हाँ
0: एडवांस पेमेंट लेते हैं हम, ठीक है?
1: एडवांस ट्रायल के लिए कोई पेमेंट नहीं है, यहाँ पे जो ट्रायल देते हैं ना उसके हाँ. लिए कोई पेमेंट नहीं है, जीरो पेमेंट.
0: वाह वाह वाह, ये आप इतनी हाँ. डीलिंग कर रही हैं, इतने में तो आप कहीं निकल जाती, लेके चली जाती इतने में तो.
1: किसको लेके चली जाओ?
0: सबको लेके चली जाओ आप कहीं ना कहीं. कमाल हो गया, कमाल हो गया. नहीं पर सबको मेरा सलाम कहिएगा, और जब मौका मिले तो जरूर सुनिया करें, शाम में आ जाया करें.
1: जी जी बिल्कुल जरूर, आज अब से जरूर सुनूंगी आपको 2 महीने तक.
0: बिल्कुल बिल्कुल, टाइम निकाल, ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया.
1: ओके
0: अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. तो मसला मसाइल आप समझ ही रहे होंगे. और लास्ट कॉल एक ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान.
0: मेरा नाम आप फैजान भाई कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वही हड्डी वही खाले मेरे भाई, बताइए क्या कहना चाहेंगे?
2: बस मैं तो अभी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और यही बात सुनी है गर्मी की, तो मैं गर्मी का बताऊंगा.
0: बताओ क्या बताऊं?
2: पाकिस्तान में जो मेरी सिटी है सरगोधा, आज रिकॉर्डेड गर्मी पड़ी है हिस्ट्री में. 54 था टेम्परेचर, और अभी अभी 10 मिनट पहले ऐसी बारिश, क्या कमाल की भाई, क्या बात, मूसलाधार बारिश
0: भाई.
2: 54 तक गया है सरगोधा का टेम्परेचर आज, और अल्लाह ताला को रहम आ गया, अल्लाह ताला ने फौरन ऐसी शानदार बारिश दी है कि मैं कहता हूँ क्या बात,
0: क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह. लेकिन इधर बारिश की उम्मीद मत बांध लेना भाई. यहाँ के 50 डिग्री देख के इधर ना होने की भाई बारिश.
2: मुझे लगता है कतर वालों के गुनाह बहुत
0: है. वाह वाह वाह, ये सही बहाने हैं देसी लोगों के. बारिश नहीं हो रही तो हाँ, सारी ज्योग्राफी और क्लाइमेट चेंज सब क्या ऐसी तैसी. इसलिए नहीं हो रही बारिश. नहीं नहीं नहीं भाई, मुबारक हो आपके शहर वालों को. टॉपिक तो भाई कब का खत्म हो चुका, शो बिल्कुल आखिर में है, अब आखिरी कॉल है आप. हाँ तो कहानियां नहीं, सब खत्म हो गया भाई. स्टोरी भी सुना दी भाई, कब का भाई, घंटे भर हो गए उसको.
2: अच्छा मुझे भेजी नहीं,
0: डन मैं भेजूंगा.
2: बिजी था इसलिए फिर मैंने वो ना फजील भाई के साथ भी मेरा ख्याल पार्टिसिपेट नहीं किया आज ना.
0: अच्छा कोई बात नहीं,
2: 4 बजे वाले शो में चले, नो प्रॉब्लम. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी बात सुनके.
0: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई,
2: और जज़ाकअल्लाह, थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच भाई, अल्लाह हाफिज. और भाई से बात करते करते हो चुका है टाइम इजाजत लेने का आप लोगों से, तो कहानी का टेंशन मत लीजिएगा. क्या है ओके, एक और मैसेज आया मेरे पास. आज मुझे लग रहा है कि ऑफिस में होगी पिज्जा पार्टी, और एक भाई ने मुझे गाड़ी का नंबर, अरे ये फोटो खींच खींच के लोग भेज रहे हैं. ओके तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी. 5 बजे मिलेंगे, आपको पता ही। एंड ऑल्सो कल जो है, क्योंकि थर्सडे है, सो एक वीकेंड स्पेशल कहानी भी आपको सुनने को मिलेगी। आई डोंट नो कौन सी क्या करने के लिए होगी, बट कहानी बढ़िया होगी, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। ठीक है, 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, एंड इंशाल्लाह होगी आपसे कल मुलाकात। कहानी की टेंशन मत लीजिए, कहानी आपकी तरफ आ रही है, बस कुछ देर में चाय पीते पीते ये ड्रुप करके गिरेगी कहानी आपके फ़ोन पे। दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मां सलामा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं
3: हेल्थ गाइड
2: डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: इसने ये देखना है कि आपका दिल कितना धड़क रहा है, आपका दिमाग कितनी तेजी से काम कर रहा है, आपकी आंतें कैसे काम कर रही हैं, और आप जनरली आप में एनर्जी कितनी ज्यादा है. तो अगर ये कम करेगा काम तो कम हो जाएगा, अगर ज्यादा करेगा तो ओवर एक्टिव हो जाएगा इंसान. तो आप समझें ब्रॉडली तो ये दो हैं इसके. और तीसरा ये है कि जैसे हर उज्व में कैंसर हो सकता है, ऐसे इस तरह इसमें भी कैंसर हो सकता है. सो ये एक बहुत ही अहम गुदूद है जिसको लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि इसकी अहमियत है क्या. क्योंकि यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कई लोगों को कि वो बहुत बार बार पूछते हैं, दवाई खा रहे होते हैं थायरोक्सिन, तो बार बार पूछते हैं हम छोड़ क्यों नहीं सकते, हम छोड़ दें. तो
1: बहुत आम सवाल है, ये क्या बात है कि वो ठीक ही नहीं हो रहा जैसे पूछते हैं.
0: जी हाँ ये एक मैं आज इस फोरम के ज़रिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी कि जो थायरोक्सिन मिलती है, जिन लोगों को थायरोक्सिन मिल रही होती है, यानी कि जिनका गुदूद कम काम कर रहा होता है और आप सप्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो थायरोक्सिन बिल्कुल सेम वही है, बायो आइडेंटिकल है उनकी अपनी थायरोक्सिन के साथ. तो वो कोई ऐसा कोई बैरूनी मादा नहीं है या केमिकल नहीं है, वो बिल्कुल सेम वही है जो उनकी बॉडी बनाती है. तो इसलिए आप उसको एक सप्लीमेंट समझें, जैसे आप विटामिन लेते हैं या कुछ. और अगर वो खाना है तो उसके लिए वो ज़रूरी है, उसको बहुत ही कम बहुत रेयर केसेस होंगे जिनका छूट जाता है, लेकिन आमतौर पर अगर एक बार ये शुरू हो गया तो रहता है.
1: ठीक, मगर ये कि शुरू हो गया, मगर जैसे आपने कहा कि बिल्कुल वही है जो कि हमारे नेचुरली हमारे जिस्म के अंदर बनती है, तो उसमें नुकसान नहीं होता.
0: जी नहीं,
1: क्योंकि आमतौर पर यही कॉन्सेप्ट है ना, कोई भी हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका जो नुकसान है वो होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो ये बहुत बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. जी डॉक्टर साहब, इसमें हम जो ये ख़वातीन में जैसे रेचो वो हैं, मर्द ज़ात में भी ये डिजीज़ हैं, मगर ये कि ख़वातीन में क्यों ज़्यादा कॉमन है, थोड़ा ज़रूर पूछना चाहूँगी.
0: जी इसकी
1: और एज भी थोड़ी सी मैं पूछूँगी कि क्या एज जो है उसमें हो सकती है ज़्यादा.
0: जो इसकी दो इम्पॉर्टेंट एजेस हैं वो एक बुलूगत के टाइम पर और एक मेनोपॉज़ के टाइम पर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स हैं जिनके अंदर के हो सकता है, फिर प्रेगनेंसी के अंदर भी, प्रेगनेंसी के फौरी बाद भी, यानी कि जब भी कभी हॉर्मोन्स का उथल पथल होगा तो साथ इसका है. क्योंकि डायरेक्टली जो हार्मोनल मैकेनिज़म्स हैं वो लिंक्ड हैं आपके मुदाफ़ती निज़ाम के साथ, और ख़वातीन का जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो ख़ास है, वो स्पेशल बनाया अल्लाह ताला ने. क्योंकि अगर आप देखें कि जब हमल ठहरता है तो उनका मुदाफ़ती निज़ाम बिल्कुल नीचे हो जाता है, क्योंकि ताकि वो बेबी को एक्सेप्ट करे उनकी बॉडी, और फिर उसके बाद जब जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसके बाद एकदम एक सर्ज होती है इम्यून में, और उस वो टाइम है ऐसा जिसमें कि थायराइड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. तो पहली बात तो ये है कि उनका मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो ख़ास है. दूसरी बात ये है कि उनमें जो हार्मोन्स के उतार चढ़ाव होते हैं वो मर्द हज़रात में इतने नहीं होते. और तीसरी बात ये है कि जो उनके अंदर हमल ठहरता है या औलाद पैदा करने की सलाहियत जो है वो भी उन्हीं में है. तो ये तीन चार बातें हैं जो उनके अंदर ख़ास हैं. सो अगर किसी की फैमिली में वालदा को है या खाला को है तो फिर ये बहुत चांस होगा कि उनको भी हो सकता है, क्योंकि मौरूसी तौर पर भी आता है. तो जो यानी कि जो इसका मौरूसी ताल्लुक है वो किसी भी हालत में, जैसे कोई फ़िज़ा ऐसी है कि स्ट्रेस हो गया या इन्फेक्शन हो गई तो उससे ट्रिगर हो सकता है. तो अगर आपकी फैमिली में है किसी को और आपको लग रहा है कि कुछ अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन चेक करा लेना चाहिए.
1: ठीक है, कि ये इसमें डॉक्टर साहब आपने कहा कि इसमें हेरिडिटी यानी मौरूसी भी होता है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं या रिस्क पर होते हैं?
0: कई लोगों में ये जीन्स होती हैं मगर उनको नहीं होगा. इसके लिए माहौल साजगार होना चाहिए उसके लिए, जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन हुई, स्ट्रेस वायरस हुआ, प्रेगनेंसी हुई, या आपको कोई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ, कोई नफसियाती स्ट्रेस हुआ या जिस्मानी स्ट्रेस हुआ. बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि वो स्ट्रेस की बेसिस के ऊपर उनका ये ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि वो सारा जो एक जीन्स का एक सेटअप है वो अपसेट हो जाता है और उसके बाद ये ट्रिगर हो जाता है.
1: ठीक जी लिसनर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये भी सवाल पूछा जाता है अक्सर जो पेशेंट्स हैं, वो पूछते हैं कि क्या हमारे ख़ानदान में किसी एक को है तो क्या हमें हो सकता है. तो डॉक्टर साहब ने उसका जो जवाब दिया बहुत ही जो रीज़नेबल, और बिल्कुल हमें यही सुनना भी था. जी इसमें जो ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हैं डॉक्टर साहब, आपने कहा हाइपोथायरायडिज्म हाइपर ज़्यादा हो जाता है, या खुदा ना खास्ता कोई नोड्यूल हो सकता है, या कैंसर भी खुदा ना खास्ता, तो इसमें ज़्यादा कॉमन कौन सी जो है वो टाइप होती है?
0: ज़्यादा कॉमन जो है वो अंडर एक्टिव हाइपोथायरायडिज्म या जिसको हाशिमोटोज़ कहते हैं, यानी कि वो

0: तो उनको उसको चेक करना चाहिए कंट्रोल, अगर नहीं है और उनको ये कोई अलामत हो गई तो चेक करा लें।
1: ठीक है, इसमें डॉक्टर साहब कोई जैसे कॉजेज हम पूछें, जैसे हम वैसे किसी भी डिजीज़ पर कोई भी बात करते हैं तो कॉजेज का भी ज़रूर होता है, तो इसकी कोई कॉज और हो सकती है, जैसे हाइपोथायरायडिज्म की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या वजूहत हो सकती है?
0: जी वायरसेस भी होते हैं, कई बार ऐसे कुछ वायरसेस आते हैं जैसे अक्सर जो वायरल थायरोडाइटिस जिसको कहते हैं, यानी कि किसी वायरस की वजह से थायरॉयड में इतनी सोजिश हो गई है कि उसके अंदर जो है वो थायरॉयड हार्मोन बनना बंद हो गया, तो उसमें बुखार आता है और एकदम जो है आपको दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीने आते हैं और एकदम बहुत सा थायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी में, यानी कि इंजन बहुत तेज चलता है आपका, उसके बाद जो है वो अंडर एक्टिव हो जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा उसमें सोजिश हुई कि सेल्स की जो है ना वो कमी हो गई। तो ये वायरल भी है, ऑटोइम्यून जैसे हमने कहा आपको कि वो है, और कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे जो है उनका बहुत छोटा थायराइड होता है, यानी कि बना नहीं होता प्रॉपरली जो है वो
1: अंडर
0: ग्रोथ में, तो वो उनका फिर ये होता है कि उनको चाहे कई बार ऐसे होता है कि आपको एंटीबॉडीज ना भी मिले ब्लड में, आप हमेशा टेस्ट कराते हैं उनका, कई बार नहीं भी मिलती, 10% लोग हैं जिनमें एंटीबॉडीज नहीं भी मिलती, तो उनके बगैर एंटीबॉडी नेगेटिव होकर भी उनका थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव हो सकता है, और या फिर ये कि टिश्यू ही कम था बचपन से ही कम था।
1: अच्छा अच्छा ठीक ठीक, ऐसा भी हो सकता है कंजेंटल जैसे कम है, वैसे तो वो जाहिर है माँ के उस पर होते हैं मगर बाज़ औक़ात जी भी कम भी हो सकता है। इसमें आपने बता दिया कि जो अलामत हैं वो वही हैं कि वेट गेन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी बाज़ दफ़ा
0: जी एग्जैक्टली
1: जी, तो फिर कब ये नॉर्मल भी बाज़ दफ़ा ये जो हैं सिम्टम्स अलामतें आ सकती हैं, तो कैसे जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाए कि हाँ ये जो है वो रेड फ्लैग्स जो नज़र आ रहे हैं या कुछ है? जी
0: जी आपने अच्छा सवाल किया ये, क्योंकि ये जो है ख़ास तौर पर जब लोग जैसे प्यूबर्टी शुरू होती है तो बच्चे बहुत सोते हैं या मेनोपॉज होने लगता है तब ये लोग सुस्त फील करते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आपको लगे कि दिस इज़ नॉट मी, मैं तो इस तरह नहीं सोती थी या मैं इस तरह मुझे इस तरह कॉन्स्टिपेशन नहीं होती थी या मेरे बाल ऐसे खुश्क नहीं थे, तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पर आप चेक करा लें, एक ब्लड टेस्ट ही है तो वो आप करवा लें तो बहुत बेहतर है, कोई रेड फ्लैग इसका उस तरह से नहीं है, बहुत सा एक सिम्टम्स हैं जो बहुत के जनरल सिम्टम्स हैं तो उस तरह से कुछ नहीं है, यानी कि आजकल पहले ऐसे होता था कि लोगों से मिस हो जाता था इसका डायग्नोसिस, वो इतना एडवांस होता था कि वो कोमा में चले जाते थे लोग।
1: अच्छा।
0: तो मेरा ख्याल ये है कि जब से आपको लगे कि ये क्यों ऐसे हो रहा है कि भाई मुझे इतनी थकान क्यों हो रही है या मैं क्यों इस तरह सो रही हूँ या सो रहा हूँ, आपको लगे कि ये दिस इज नॉट यू तो आप करवा लें उस वक्त।
1: ठीक है, और ये कि वेट अगर ज़्यादा हो रहा है,
0: वजन वजन ज़्यादा हो रहा है और आप समझ रहे हैं कि मैं तो खा नहीं रही इतना तो फिर भी ज़्यादा हो रहा है, फिर भी आप करा सकते हैं, या आपकी बहुत से लोगों का हेयर फॉल बहुत होता है हेयर फॉल होता है और स्किन बहुत ड्राई फील होती है, वो छोटी छोटी बातें दो चार आपकी इकट्ठी हो जाएँ तो आप करवाएँ टेस्ट ज़रूर।
1: ठीक है, इसमें एज का हम पूछ सकते हैं कि किस एज में जो है हम ज़्यादा केयरफुल होना है? आपने जब बता दिया कि जैसे ही आप जो है मेनोपॉज़ल और बुलुग़त की जो उम्र है उसमें ख़वातीन में से है, और जो मर्द हज़रात हैं उनकी
0: उनको भी उनका भी ये है कि उनको 30s में 40s में और कुछ को टीन्स में भी हो जाती है, सो अगर उनको फैमिली में हिस्ट्री थी और कुछ ऐसे ट्रिगर्स आए टाइम पर जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस आया किसी टाइम पर 15-16 ईयर्स की एज पे, तो उनको उस टाइम पे उनका भी प्यूबर्टी पे ट्रिगर हो सकता है और उनका भी 30s-40s में भी ट्रिगर हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब आपने कहा कि जो स्ट्रेस है या कुछ इस मेंटल जो हेल्थ है उसकी भी अगर आपकी बैलेंस में नहीं है तो भी वो थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगी मैं।
0: जी सो आप जो स्ट्रेस है वो आपका जो अगर इम्यून सिस्टम जो है उसको चेंज कर देता है स्ट्रेस,
1: ठीक है
0: वो, और ये जो थायराइड है इसके लिए इम्यून सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ही इम्यून सिस्टम अपसेट होता है तो थायराइड भी अपसेट हो जाता है, सो उसका जैसे अगर आपको किसी किस्म का भी जिस्मानी स्ट्रेस हुआ या आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ तो आपका इम्यून सिस्टम सारा चेंज हो जाता है, उसके चेंज होने से फिर जो थायराइड की ऑटोइम्यूनिटी है वो भी चेंज हो जाती है और वो ट्रिगर होकर तो या हाइपो या हाइपर जिस तरफ भी उसको जाना होता है वो चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन के नीचे जेनेटिक्स क्या है, कि कई रेसेस जो हैं जैसे हमारे लिए तो रेलेवेंट नहीं है लेकिन जैसे ईस्ट एशियंस हैं जो चाइनीज रेसेस हैं उनको हाइपरथायरॉयडिज्म ज़्यादा होता है, यानी कि उनको ओवर एक्टिव ज़्यादा होता है बिकॉज उनकी जो अंडरलाइंग जीन्स हैं वो ऐसी हैं कि उनको ओवर एक्टिव हो जाता है, तो फिर होता उनका भी स्ट्रेस से ही ट्रिगर है।

0: आपको बताता है कि तुमने अब थायराइड हार्मोन बनाना है तो थायराइड के अंदर T4 बनता है और T3 बनता है अब जो T4 है वो तो मेनली थायराइड के अंदर ही बनता है लेकिन T3 जो है वो टिश्यूज में यानी कि लिवर वगैरह में बनता है उसके लिए अभी थोड़ी देर में बात भी करेंगे लेकिन T3 जो है वो ब्रेन पे काम करता है सो अगर कुछ बहुत रेयर किस्म के सिंड्रोम्स हैं जिनमें अगर बेबीज में बनता ही नहीं है थायराइड ही नहीं है थायराइड हार्मोन ही नहीं बन रहा है तो उनको फिर ये है कि सीवियर मेंटल रिटार्डेशन यानी कि ब्रेन के फंक्शन के लिए थॉट्स को कोहेरेंट करने के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी है सो इसलिए जिन लोगों का कम है वो थॉट प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे यानी कि उनका सारा कुव्वत फैसला उनकी कम आहिस्ता आहिस्ता होएगी और जिनका ज़्यादा है वो सो ही नहीं पाएंगे इतनी एक्टिविटी है ब्रेन के अंदर कि वो सोने ही नहीं देगी उनको और वो जो है उनको गुस्सा आएगा चिड़चिड़े हो जाएंगे और ये वाले जो हैं ये सोना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ब्रेन बिल्कुल स्लो हो गया जिनका अंडर एक्टिव है वो सोना ही पसंद करेंगे और वो बात सही से कर नहीं पाएंगे सोच नहीं पाएंगे सही से इम्तिहान अगर बच्चा दे रहा है तो स्कूल में फॉल बिहाइंड कर जाएगा और जिनका ओवर एक्टिव है वो जैसे कि मैंने कहा कि वो उनको बस उनकी थॉट्स का कोई एंड ही नहीं है
1: ठीक जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि वैसे तो हाइपोथायरायडिज्म नहीं था मगर हो जाए
0: जी हो सकता है क्योंकि पोस्टपार्टम वैसे ही क्योंकि इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ होता है प्रेगनेंसी में क्योंकि उसने बेबी को रखना होता है और जैसे प्रेगनेंसी ख़त्म होती है एकदम इम्यून सिस्टम ओवरशूट करता है
1: ठीक है
0: और उसके अंदर फिर ये होता है कि वो अब जो उसको लगता है कि ये थायराइड ही समझ रहा है कि ये मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं तो वो थायराइड पर ही अटैक कर देगा उसके अलावा जो बेबी के सेल्स प्रेगनेंसी में माँ के डिफरेंट ऑर्गन्स में आए होते हैं उनको भी फॉरेन सेल्स समझ के उन पर भी वो अटैक करेगा तो एक तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एज सच जो है वो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से और जो एक समझें आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स कम हो जाते हैं और उसका स्ट्रेस है तो उसकी वजह से ये ट्रिगर हो सकता है यकीनन और पहले 6 माह जो है उनमें ये इसका हाईएस्ट रिस्क होता है यानी कि बेबी के बॉर्न होने के फर्स्ट 6 मंथ्स में
1: ठीक है बिल्कुल जी डॉक्टर साहब इसमें आपने हमें एज भी बता दी कि सिम्टम्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं होते हैं अलामतें कि वो हमें पता होना चाहिए और लिसनर्स आप हमें जो कॉल है वो कर सकते हैं 4434377 पर व्हाट्सएप पर आप कॉल ना कीजिए क्योंकि आप इस पर सिर्फ हमें जो SMS कर सकते हैं कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं
0: अच्छा फौजिया मैं एक बात करना चाहती
1: हूँ जी
0: जैसे जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस या PCOS या जिसको PMOS अब कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ये बच्चियों में मैंने देखा है कि हमारी कम्युनिटी की बच्चियाँ जो हैं वो आमतौर पर पढ़ती रहती हैं फिजिकली इतना एक्टिव नहीं होती और फिर ये वेट गेन कर लेती हैं फास्ट फूड लेती हैं अच्छा उसका भी है कि थायराइड और PCOS का बहुत गहरा ताल्लुक है आपस में ये एक दूसरे को पोटेंशिएट करते हैं तो अगर तो आपको किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि PMOS या PCOS है तो वो लिवर में जो चेंजेस होते हैं जहाँ पे लिवर में जाके T4 या T3 में चेंज होना होता है तो T3 जो है जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत एक्टिव हार्मोन है वो T4 से ज़्यादा एक्टिव है वो फौरी तौर पर 8 घंटे तक वो काम करता है बहुत तेज काम करता है अब वो क्या होता है कि आपके अगर ये हो गया हुआ है PCOS हो गया है तो लिवर में उसकी कन्वर्जन नहीं होती तो T3 कम हो जाता है तो बच्चियाँ और सुस्त हो जाती हैं और ज़्यादा कम वो जो है ना खेलने कूदने के लिए या एक्टिविटी में तो ये एक विशेष साइकिल में चला जाता है ये और फिर ये है कि उसके साथ थायराइड नोड्यूल्स के साथ भी उनका ताल्लुक है यानी कि नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं थायराइड में सो आई थिंक ये जो एक टाइम है जिसके बारे में हमें पता है कि प्यूबर्टी या अर्ली टीनेज ईयर्स में ये कॉमन है तो इसमें मेरा ख्याल है कि माँ बाप को एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी चाहिए और बच्चों को देखना चाहिए कि उनकी डाइट कैसी है या उनकी एक्टिविटी कैसी है क्योंकि अकल को उन्हीं बच्चियों ने जो है उनके बेबीज होंगे और अगर वो उस वक्त हेल्थी नहीं है यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है लिवर में फैट है और फिर थायराइड काम नहीं कर रहा जो कि परमानेंट भी हो सकता है तो ये फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस फार रीचिंग
1: बिल्कुल
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
1: सर आज हम बात कर रहे हैं थायराइड के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उन पर और डॉक्टर ताबिंदा डोगल जो कि सीनियर कंसल्टेंट है हमारे साथ हैं अभी जैसे कि हाइपोथायरायडिज्म हाइपर ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए या बहुत स्लो हो जाए जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं ख़ास तौर पर ख़वातीन को हमें बता रही हैं कि किस किस तरह से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं डॉक्टर साहब इसमें जो है इसको फिर डायग्नोज आपने कहा कि टेस्ट से जैसे कि

0: एडिसन्स हो सकता है, अब बी ट्वेल्व पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, या आपको या आपके जो है वो विटिलाइगो हो सकता है.
1: ठीक जी डॉक्टर साहब, हमारे ये लिसनर हैं मोहम्मद कलीम, ये आपको सलाम कह रहे हैं, और उनकी वाइफ है और सेवन मंथ्स प्रेगनेंट है, मगर वो पूछे ये रहे हैं कि कोई लाइन डार्क कलर की कुछ लाइन है वो आ जाती है, तो वो क्यों ऐसे,
0: किस चीज़ पर?
1: शायद आई डोंट नो, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें मोहम्मद कलीम साहब तो फिर है ये डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको जवाब देंगे, क्योंकि मुझे खुद भी समझ नहीं आई कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आप कर सकते हैं. ठीक है,
0: स्किन में शायद डिस्कलरेशन की बात,
1: तो डिस्कलरेशन हो सकती है
0: जी, बिल्कुल हो सकती है जी.
1: तो उसका कोई हल?
0: उसका देखिए, अगर विटिलाइगो हो गया तो वो तो एक आपके जो पिगमेंट मेकिंग सेल्स हैं उनके अगेंस्ट एक इम्यून मैकेनिज्म शुरू हो गया, वो उसकी तो कैमोफ्लाइजिंग ही है विद यू नो लाइट थेरेपी के साथ. लेकिन अगर ये
1: उन्होंने लिखा है कि पूरे जिस्म पर ही इसी जगह पर भी वो लाइन की तरह जैसे हो जाती है, तो ये क्या है, आई डोंट नो किस जगह पर भी जाती है वो लाइन जो है, एक लाइन की तरह कलरेशन की होगी ना, नीले कलर की, ब्लू कलर की.
0: ओके, अब देखे बगैर तो बताना मुश्किल है जी. आप वो उनको अगर कहें, अगर वो उनके पास कोई है स्नैपशॉट तो आपको व्हाट्सएप कर दें
1: तो जी, आप अगर कर सकते हैं तो मोहम्मद कलीम साहब आप कर दीजिए, फिर डॉक्टर साहब उसे देख कर तो फिर जो है बता सकते हैं आपको. जी ठीक है जी, मगर इस तरह की कोई होती है डिस्कलरेशन तो वैसे होती है
0: जी, हो जाती है बिल्कुल यकीनन हो जाती है जी.
1: और इसमें क्या हाइपोथायरायडिज्म में ज़्यादा होता है या वैसे भी हो सकता है?
0: हाइपोथायरायडिज्म में ज़्यादा होती है जी, उसमें ये एक इसकी एसोसिएशन है विटिलाइगो, तो जिसको जैसे फुलबेरी है जी, तो अगर किसी को खाली, कई बार ऐसा होता है कि स्किन के चेंजेस कई साल पहले आ जाते हैं थायराइड के आने से पहले, तो अगर किसी को स्किन चेंजेस भी आ गए हैं, लग रहा है कि कोई पैचेस हैं, वाइट पैचेस आ गए हैं, उनको भी चेक कराना चाहिए कि हमारा कोई थायराइड का इशू तो नहीं है. वो अगर जिनको किसी को स्किन इश्यूज हो रहे हैं तो
1: जी जी.
0: जैसे ड्राई स्किन भी हमने बताई है, हेयर फॉल भी बताई है, उस तरह ये पैचेस भी हैं
1: जी. इसमें डॉक्टर साहब जैसे कि हाइपर में कुछ जो आईज हैं वो भी बाहर को प्रोड्यूट हो जाती हैं, तो वो भी इसका एक खास है अलामत जी.
0: जी वो भी वो इस तरह है कि वो हम उसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, जैसे कि वो जिसने डिस्क्राइब किया था पहले उनका नाम ग्रेव्स था, अदरवाइज ऐसा कोई इसमें वो चक्कर नहीं है कि ग्रेव को ले जाती है ये. ये बेसिकली ये है कि आपका जो थायराइड को स्टिमुलेट करने वाली एंटीबॉडी जिसको टी रैप बोलते हैं, थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडी, वो उसके सिर्फ दो ही टारगेट्स हैं. उसका एक टारगेट तो थायराइड है, दूसरा जो आपकी आई, जो आँख के जो बॉल है, आई बॉल के पीछे जो फैट है उसको टारगेट करती है. तो उसमें सोजन जब होती है तो आँख आहिस्ता आहिस्ता आगे आना शुरू हो जाती है, बिकॉज वो उसके जो पीछे जिस फैट के सहारे वो आँख रुकी होती है उसको पुश मिलना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसमें बहुत सोजिश हो जाती है, उसमें सारी स्वेलिंग हो जाती है. तो वो उसमें फिर ये है कि अगर बिनाई मुतासर होने का रिस्क है, आँख की बिनाई जाने का रिस्क है.
1: अच्छा.
0: तो अगर किसी को ऐसा लगे कि हमें आँख हमारी पूरी बंद नहीं हो रही रात को, क्योंकि वो कर्निया उनका एक्सपोज होता है, तो उसमें अल्सरेशन, वहाँ से उनकी बिनाई को प्रॉब्लम. और कई बार ऐसे होता है कि वो आई बॉल इतना ज़्यादा पुश होता है कि जिस नर्व के साथ अटैच होके वो जाता है दिमाग की तरफ, वो नर्व डैमेज हो जाती
1: है.
0: तो उसमें फिर ये है कि वो भी एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसको आँख का स्पेशलिस्ट देखता है. हम पिक करते हैं पहले, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको रेलिवेंट, हमारे पास एक डॉक्टर है जिनको स्पेशल इंटरेस्ट है इसमें, थायराइड आई डिजीज़ में, उसको थायराइड आई डिजीज़ कहते हैं. और उस वो फिर कभी तो उसके लिए स्टीरॉयड्स देने पड़ते हैं, कभी इसके लिए बहुत नई दवाइयाँ भी आ गई हैं, और बहुत एक्सट्रीम केसेस में कई बार सर्जरी करके डीकम्प्रेस करना पड़ता है.
1: अच्छा अच्छा ठीक. इसमें डॉक्टर साहब हमारे एक लिसनर हैं अहमद, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या जैसे आप बता रही हैं कि प्रेगनेंसी में अगर हाइपोथायरायडिज्म या थायरायडिज्म की कोई भी बीमारी है तो बच्चे की जो सेहत है उस पर क्या असरात होते हैं?
0: जी, बच्चे की सेहत पे असरात जो हैं वो पहली बात तो ये है कि हमल का ठहरना मुश्किल हो जाता है. अगर हमल ठहर गया है तो पहले 12 हफ्ते में जो बेबी है वो अपनी वालदा से लेता है, उसमें दिमाग की नशोनुमा यानी कि जो आप आईक्यू है बेबी का वो कुछ पॉइंट्स कम हो जाएगा आम बच्चे से, यानी कि वो नॉर्मल ही होगा लेकिन शायद इतना ब्राइट ना हो जितना कि पहले ब्राइट उसको होना था. सो आईक्यू की उसकी ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो मेनली मुतासर होती है. اور اگر مستقل اگر والدہ ہائپو تھائرائیڈ ہے تو پھر جو ہے وہ کئی بچے وہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی باڈی پھولنا شروع ہو جاتی ہے, لیکن 12 ویکس کے بعد وہ اپنی بھی بنا رہے ہوتے ہیں. سو وہ اپنا بنا رہے ہوتے ہیں تھائرائڈ ہارمون, لہٰذا ان کو بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا انلیس کہ ان کے اپنے میں بھی خرابی. سو یہ مینلی یہی ہے کہ دماغ کی نشو نما جو ہے وہ پہلے 12 ہفتے میں آرگنس کی نشو نما اسی میں ہوتی ہے, اور اس میں تھائرائڈ ہارمون کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے.
1: ٹھیک ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے وہ بات کی گلڈ جسے ہم عام طور پر عام زبان میں کہا جاتا ہے, تو اس میں آیوڈین ڈیفیشینسی کی وجہ سے بھی جیسے ہو جاتا ہے, تو کیا یہ بھی اسی ڈیفیشینسی سے ہوگا یا کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے؟
0: سو جو گلڈ ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک آپ کا تھائرائڈ ہے وہ زور لگا رہا ہے کہ میں کام کروں زیادہ, کیونکہ آیوڈین جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک گھر بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اینٹیں سیمنٹ چاہیے, تو جو آیوڈین ہے وہ اینٹ اور سیمنٹ ہے تھائرائڈ کا ہارمون بنانے کے لیے.
1: ٹھیک ہے,
0: تو اگر وہ کم ہوگی تو پھر وہ کھینچ کھینچ کے لائے گا اور وہ بنانے کی کوشش کرے, اس میں وہ بڑا ہو جائے گا گوٹا. عام طور پر یہ ہے کہ جو لوگ سمندر کے پاس رہتے ہیں ان میں آیوڈین کی کمی نہیں ہوتی.
1: اچھا,
0: تو جو لوگ رہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں یا اوپر رہتے ہیں ان کو یہ ہے کہ آیوڈین کی کمی ہو جاتی.
1: ٹھیک ہے,
0: پھر یہ ہے کہ اکثر ملکوں ممالک میں تو آیوڈین جو ہے وہ نمک میں ملایا ہوتا ہے, تو لہٰذا تو اب جو ہے اس کا بڑا ہونا جو ہے وہ مثلاً اس ایک فیزیولوجیکل ہی میکینزم ہے, کیونکہ وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کام کروں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آیوڈین کم ہے اور وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا, پھر اس میں نوڈیولز بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں کئی بار, تو وہ ایک آٹومیٹک ایک میکینزم شروع ہو جاتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہی چلا جاتا ہے.
1: ٹھیک ہے, اس میں جی ڈاکٹر صاحب وہ انہوں نے جیسے وہ بلو کلر کی جو لائنس ہیں وہ لکھے ہیں کہ نیلے اور پیلے کلر کی لائنیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں, تو اس میں میرا خیال ہے یہ کچھ ویریکوز ٹائپ تو نہیں
0: ہے؟ ہاں پاسبلی
1: پاسبلٹی ہو سکتی ہے, تو اس سے اگر تھوڑا زور وہ لگاتی ہیں تو درد بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے.
0: یہی بات ہے, جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں.
1: ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے,
0: جی
1: ہاں ایسی پاسبلٹی,
0: جی ہاں, اور پریگنینسی بھی ہے اگر تو پھر
1: بالکل ایسے ہی. اور جو یہ تمام جو اس میں انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں اس میں بھی یہی بات کہ اس کو جتنی جلدی ڈائیگنوز کر لیا جائے گا تو جو بیماری ہے اسے جلدی پکڑنا ہے, اور پھر جو ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی بہتر اور آسان بھی ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے.
0: ہو جاتا ہے, لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ ٹیبلٹس کئی دن تک نہیں کھاتے.
1: جی اس پر ہم ابھی بات کریں گے کہ اسپیشلی کہ کس طرح سے اس کی مینجمنٹ ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی.
1: یعنی سنز آج ہم بات کر رہے ہیں تھائرائڈ کے جو مختلف مسائل ہیں ان پر, جیسے کہ ہائپو تھائرائڈزم, اس کی تھائرائڈ کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے ہائپر تھائرائڈزم, اس کے علاوہ کبھی نوڈیولز ہو سکتے ہیں اس کے اندر, گلٹیاں سی بن سکتی ہیں نظر آتی ہیں, یا خدا نخواستہ کینسر بھی ہو سکتا ہے. اب ہم اس کی مینجمنٹ پر ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے, اور جیسے کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ ٹائمنگس کا بھی ایشو ہو سکتا ہے, ڈوز کا, یہ تو اس سب میں بات ہوگی. جی ڈاکٹر صاحبہ,
0: جی
1: پہلے ہم ہائپو تھائرائیڈ,
0: جی ہائپو تھائرائیڈ کا جو ہے وہ تو سمپل ہے, وہ ایسے ہے کہ جو آپ کی باڈی میں نہیں بن رہا وہ آپ باڈی کو دے رہے ہیں, اور وہ صبح لینا ہے نہار منہ آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا اور اس کو فالو کرنا, اور میرا خیال ہے اسی چیز پہ لوگ جو ہیں وہ اسٹرگل کرتے ہیں, کیونکہ صبح نہار منہ لینا ہوتا ہے سب کو, صبح میں جلدی ہوتی ہے تو وہ کئی بار بھول جاتے ہیں, مگر بہت ضروری ہے کہ اس کو ٹائم پہ لیا جائے, کیونکہ اگر نہیں لیں گے تو ٹی ایس ایچ زیادہ ہونا شروع ہوگا جو برین سے آتا ہے, اور پھر خدا نخواستہ پچوٹری گلینڈ جو ہے وہ انلارج ہونا شروع ہو جاتا ہے بیکاز آف دیٹ. سو اس کے بہت سے اثرات ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ پرولیکٹن زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بہت کچھ ہو جاتا ہے, تو وہ لینا بہت ضروری ہے. اگر ایک دن بھول گئے تو نیکسٹ دن دو دن کی دوائی ملا کر لے لیں آپ, اور اگر دو دن بھول گئے تو تین دن کی اکٹھی ملا
1: کر
0: آپ اکٹھی لے سکتے ہیں, تو اس کا کوئی نقصان نہیں.
1: لسنز ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو کال ہے وہ 4443 4377 پر کیجیے, اور 666-221-07 پر ہم صرف SMS ریسیو کر سکتے ہیں. जी डॉक्टर साहब,
0: तो जो ओवर एक्टिव थायराइड है उसके लिए उसका इलाज थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसके लिए मॉनिटरिंग ज्यादा करनी पड़ती है। जब कुछ दवाइयां हैं जैसे न्यूमरकाजोल के नाम से है वो या प्रोपाइल थायरूरसिल, अगर प्रेगनेंसी में हो गया ओवर एक्टिव तो हम प्रोपाइल थायरूरसिल इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई पहले से न्यूमरकाजोल खा रहा है और वो प्रेग्नेंट हो गया है तो उनको फौरी तौर पर प्रोपाइल थायरूरसिल पे मूव करना है और वो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो नहीं खा सकते, काबेमाजोल सेफ नहीं है इनिशियल प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में, और उनको भी फौरी रब्ता करना चाहिए डॉक्टर के साथ। तो उसकी वो कुछ भी डोज हो सकती है 5 मिलीग्राम से लेके 40 मिलीग्राम तक, रेगुलरली हम उसको मेजर करते रहते हैं, TSH को हम मेजर करते रहते हैं। अब तीसरी जो चीज़ है वो है नोड्यूल्स, वो भी बहुत कॉमन है यहाँ पे और अक्सर लोगों को इस बात का शक रहता है कि ये नोड्यूल्स जो हैं ये कहीं कैंसर में तब्दील तो नहीं हो जाएंगे खुदा न खास्ता। तो अब वो नोड्यूल्स जो हैं उनकी 5 टाइप्स हैं, तो एक से लेके 1 और 2 तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, वो बिनाइन हैं, उनको कुछ भी करना नहीं,
1: ठीक है।
0: और 3 जो है उसके अंदर 5% चांस है कि वो उसके अंदर कैंसर हो सकता है, 4 जो है उसके अंदर 15% है और जो 5वां ग्रेड है उसके अंदर जो है 25-30% चांस है। तो ये अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि क्या ग्रेड है उसका, 1 या 2 है या 3, 4, 5 है
1: जी।
0: अब उनके साइजेस पे डिपेंड करता है, अब एक साइज होता है जिसके ऊपर हम बायोप्सी कर सकते हैं और बहुत इजीली ऐसा होता है कि 9.9 out of 10 टाइम्स वो बिनाइन ही निकलता है,
1: ठीक है।
0: और उसकी जो है इलाज बहुत ईजी है, अगर नोड्यूल बहुत बड़ा हो गया तो वो साइड निकल सकती है, अगर नोड्यूल में एबनॉर्मल सेल्स आए हैं तो फिर हम सारा थायरॉयड रिमूव कर लेते हैं। तो और अगर खुदा न खास्ता किसी को
1: उससे पहले जो बायोप्सी है वो करते हैं,
0: वो बायोप्सी करना जरूरी है। अगर खुदा न खास्ता किसी को थायरॉयड कैंसर है भी तो वो बहुत ईजीली उसका इलाज हो सकता है और उसके लिए जल्दी अगर रब्ता कर लें आप तो वो लोकली रहता है, थायरॉयड के अंदर ही रहता है, उसका भी बहुत ईजीली इलाज हो सकता है। तो वो इतना कॉमन नहीं है मगर वो काफ़ी ईजी है उसका इलाज एज कम्पेयर टू बाकी कैंसर के
1: जी। डॉक्टर साहब हमारे लिस्टनर हैं मोहम्मद यूसुफ खान, पूछ रहे हैं, इस्लाम कह रहे हैं आपको, और ये कि पूछ रहे हैं कि कोई नेचुरल रेमेडी हो कि हमारा जो थायराइड की डिजीज़ है वो रिवर्स हो जाए
0: जी। अब पता नहीं क्या है इनकी थायराइड की, हाइपर है या हाइपो है जी हाँ। तो जो ओवर एक्टिव थायराइड है वो तो नहीं रिवर्स होगा अपने आप, वो उसका तो उसको सुप्रेस करना ही पड़ेगा। जो अंडर एक्टिव है कई बार ऐसा है उसके लिए जैसे आप सप्लीमेंटल, जैसे मैंने कहा कि आप अगर आपकी खुराक के अंदर आयोडाइज सॉल्ट नहीं है तो आप आयोडाइज सॉल्ट लें, आपको अगर एंटीबॉडीज ज़्यादा सेलेनियम लें तो उससे कई बार ऐसा होता है कि एंटीबॉडीज़ इतनी कम होती हैं हो जाती हैं काफ़ी कम हो जाती हैं कि वो उसका चांस, फिर ये कि ग्लूटेन फ्री डाइट कई बार लेते हैं लोग उससे भी एंटीबॉडीज मॉडरेटली कम हो जाती हैं। तो हो सकता है इसके कॉम्बिनेशन से इतना फ़र्क पड़ जाए कि वो, लेकिन ये चांस इसका कम है काफ़ी। और अगर थायरोक्सिन लेनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि उसमें कोई तजब्जुब नहीं करना चाहिए, ले लेनी चाहिए क्योंकि वो आपकी लाइफ की सस्टेनेंस के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही जो ओवर एक्टिव थायरॉयड है वो किसी नेचुरल रेमेडी से ठीक होने वाला नहीं अनलेस कि आप उसको निकाल दें
1: जी,
0: यही हो सकता है कि रिमूव कर दें क्योंकि एक उसका इलाज ये भी है। तो जब इलाज हम बात करें तो मैं मेंशन करना भूल गई कि कई बार हम रेडियो एक्टिव आयोडीन भी ले लेते हैं ओवर एक्टिव
1: थायराइड
0: और कई बार सर्जरी करके निकाल भी देते हैं। तो लेकिन ये है कि नेचुरल रेमेडीज जो हैं वो है मगर वो कितना असर करेंगी या मुकम्मल तौर पर
1: नहीं कर सकते, सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर साहब इसमें जैसे कि ओवर एक्टिव है और आयोडीन जो वो आइसोटोप मतलब उससे ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें क्या बाद में हाइपो में चले जाते हैं पेशेंट्स?
0: अच्छा,
1: वो जरा जरूर बताइए।
0: वो इस तरह है कि आप एक आयोडीन का एक टाइप है जो देते हैं उनको जो वो ड्रिंक में वो पी लेते हैं और वो सारा क्योंकि हमें पता है कि आयोडीन एक ही जगह पर जाती है बॉडी में वो थायराइड है तो वो क्योंकि रेडियो एक्टिव होती है तो वो जाके थायराइड में जो सारी जगह जो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं सेल वो उनको टेक ओवर कर लेती है और वो सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना ख़त्म कर देते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत से सेंटर्स में वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा काम करता रहे लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि रेडियो एक्टिविटी काफ़ी देर तक रहती है थायराइड के अंदर वो काम करती रहती है। और फिर ये है कि आपको इवेंचुअली यही है कि थायरोक्सिन लेनी ही पड़ती है तो एक गोली ख़त्म करके आपको दूसरी गोली रिप्लेस करनी ही पड़ती है क्योंकि थायराइड अब आपका काम नहीं कर रहा, मुकम्मल तौर पर उसने काम ख़त्म कर दिया अपना।
1: ठीक, इसमें डॉक्टर साहब कोई लाइफस्टाइल चेंजेस से या कोई स्पेशल फूड, जैसे वो तो आपने बता दिया कि जो ग्लूटेन फ्री है या कुछ इस तरह से कुछ हैं नेचुरल चीज़ें जो हैं, उससे बिल्कुल रिवर्स तो नहीं किया जा सकता, मुझे स्लो डाउन,
0: हाँ जी सपोर्ट कर सकते,
1: सपोर्ट कर
0: जैसे
1: सकते
0: आप सी फूड वगैरह लेते हैं उसमें आयोडीन है तो वो आपका थायराइड जो है क्योंकि वो उससे बनाता है, आयोडीन चाहिए होती है उसको, तो वो उसको मुनासिब मकदार में मिलता रहेगा और सपोर्ट होता रहेगा वो। और कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जैसे बोजवेलिया वगैरह है तो वो नोड्यूल्स के लिए लोग कहते हैं कि आप वो ले लें, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं तो नोड्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो वो कम हो जाएंगे, तो लोग लेते हैं उनको, लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज जो बन गई ना, नोड्यूल बन गया तो वो कैसे खत्म होगा
1: जी, ठीक है उसकी सर्जरी जो है वही जरूरी
0: जी,
1: है
0: जी
1: ठीक है। इसमें डॉक्टर साहब हमारे लिसनर हैं, इनका नाम है गुलाम अहमद, और ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई हम अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो हम थायराइड से बच सकते हैं, मतलब थायराइड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच सकते हैं
0: जी। ख़ास तौर पर ये देखें, जैसे एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम होता है आपका, हर किस्म का स्ट्रेस आपका कम हो जाता है, तो आप वो करें। और ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अब उनकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या जो PCOS है उसको कम से कम रखें, अपना वज़न जो है वो मुनासिब पे रखें। हमारा बॉडी मास इंडेक्स यानी कि हाइट और वेट का जो एक मेजर है वो 23 या उससे कम होना चाहिए, 25 नहीं है हमारा, 23 है,
1: ठीक है।
0: और जो लिवर की फैट है उसको कम से कम रखें क्योंकि लिवर के अंदर थायराइड हार्मोन्स की कन्वर्जन होनी है,
1: ठीक है।
0: तो वो लाइफस्टाइल यही है कि आप अपना वजन जो है वो आप नॉर्मल रेंज में रखें, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कम से कम रखें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आपकी जो है वो नशास्ते वाली अशिया जो है वो कम हो,
1: जैसे रोटी है चावल जैसे आम,
0: एग्जैक्टली
1: ज्यादातर जो अपराध है वो यही समझते हैं,
0: राइट बिल्कुल एग्जैक्टली।
1: और शुगर है
0: जैसे लोग फिर ये समझते हैं कि फल हेल्दी है, हालांकि फल के अंदर भी बहुत नशास्ता है और वो फौरन इंसुलिन स्पाइक करता है, तो उनको भी मुनासिब मकदार में ही खाना चाहिए,
1: ठीक है। और आजकल तो जैसे मैंगो हैं तो वो तो बहुत ही,
0: वो तो एक ही रोज का खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खा सकते।
1: जी डॉक्टर भाई कॉल है, हम अपने लिसनर्स की तरफ चलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम
4: जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा
1: जी,
4: महमूद बोल रहा हूं जी
1: जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं
4: जी,
1: क्या पूछना चाहेंगे
4: डॉक्टर साहब को भी, मेरा बहुत बहुत सलाम। मुझे ये पूछना था कि ये जो मैं पूरा प्रोग्राम सुन नहीं सका किसी वजह से, तो ये जो अंडर एक्टिव थायराइड जो होता है इसकी कोई अलामत क्या है?
0: इसकी महमूद साहब वालेकुम अस्सलाम, इसकी अलामत हैं ऐसे सुस्त पड़ जाता है जिस्म, आप जो काम पहले कर सकते हैं वो नहीं करते, आपके मसल्स में पेन होता है, आपको कब्ज़ हो सकती है, सर के बाल गिरते हैं और स्किन खुश्क हो जाती है बिलावजह, मुंह आपका ऐसे फूला फूला सा, गालें फूली फूली सी रहती हैं, आपको टिशू फूला फूला सा लगता है मुँह अपना, और जो है आपकी जो सोच है वो आपकी सुस्त हो जाती है, नींद बहुत आती है आपको, सुस्ती रहती है
4: जी। बिल्कुल सही कह रही है, मेरे साथ यही सिचुएशन चल रही है, बड़ा लेथार्जिक मैं हो जाता हूँ और ख़ास तौर पे खाने के बाद, और नींद जो है वो अजीब सी सूरत हाल होती है, वीकनेस बड़ी बॉडी में होती है, तो ये उसकी वजह अंडर एक्टिव थायराइड की वजह से तो नहीं ऐसा?
0: आप चेक करा लीजिए और आप अपना शुगर टेस्ट भी कराइए ज़रूर, क्योंकि खाने के बाद हो रहा है ना, तो वो भी ज़रूर कराएं आप।
1: ठीक,
4: अच्छा मेरा शुगर जो है वो तो बिल्कुल ठीक है।
0: आपने करवाया टेस्ट?
4: जी मैं HbA1c जो है मेरा 6 के करीब है, 6.2
0: तो नहीं, वो भी प्री डायबिटीज है ना, 6.2
4: जी,
0: वो प्री डायबिटीज है 6.2 जो है,
4: या प्री डायबिटीज, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था किसी को कंट्रोल रखो इसके नीचे, और वैसे भी मेरा मॉर्निंग में मैं जो होता है वो फास्टिंग वो तकरीबन 100 के करीब होता है, और रैंडम जो 126-128 इस तरह से।
0: हाँ नहीं, आपको प्री डायबिटीज है तो आप अपना खुराक को भी देखिए कि उसमें आप प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा कर लें, और जो आप अगर पोर्शन छोटा कर लें अपना, जो चावल का या रोटी का पोर्शन छोटा कर लें।
4: अच्छी बात, दैट्स वेरी गुड। तो इसके लिए जो है वो थायराइड का कोई चेकअप कोई है इसका सिलसिला?
0: जी आप अपना TSH करा लें, वो एक एक स्क्रीनिंग टेस्ट है TSH के की तरह से, और अगर TSH नॉर्मल हुआ फिर तो मजीद कुछ कराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर TSH अब नॉर्मल हुआ तो उसके बाद दो मजीद टेस्ट होंगे, फ्री T4 और फ्री T3।
4: अच्छा TSH टेस्ट इसको?
0: जी TSH टेस्ट आप करवा लें जी,
1: तो अगर नॉर्मल इंशाल्लाह होगा, और अगर कुछ भी थोड़ा सा उसमें बैलेंस में ना हुआ तो फिर दोबारा और कराने पड़ेंगे,
0: फिर वो मजीद दो कराने।
1: ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।
4: चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच,
0: खुदा हाफिज़।
1: جی ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے لسن ہیں خادر عبدالحدی, سلام کہہ رہے ہیں آپ کو.
0: وعلیکم السلام.
1: اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو تھائرائڈ ہے وہ کڈنی ڈیمیج کو مطلب کڈنی ڈیمیج کر سکتا ہے یا اوبیسٹی کو انکریز کر سکتا ہے؟
0: تھائرائڈ جو ہے نا وہ کڈنی کو تو ڈائریکٹلی کچھ نہیں کرے گا, مگر یقیناً بہت زیادہ اوبیسٹی نہیں کرتا, لیکن اگر آپ وزن کم کرنے کی کوشش کریں وزن کم نہیں ہوگا. اور میں بھی چار یا

0: पांच किलो आपका ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपका वजन नहीं करेगा वो. ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपका वजन अगर 50 किलो ज्यादा हो गया, 30 किलो ज्यादा हो गया, वो थायराइड की वजह से नहीं है. थायराइड की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो स्लो हुआ है ना, तो वो आपकी वर्जिश कम हो गई या आपका जो है हर चीज जो बर्न होनी थी वो बर्न नहीं हो रही उस स्पीड के साथ, वो उसको करेगा. लेकिन इटसेल्फ 4 या 5 के जी हार्डली उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन किडनी के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं.
1: सही, बिल्कुल. और इसी तरह से और भी जैसे प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्टली उसके साथ नहीं होते, मगर ये कि स्लो डाउन है,
0: जैसे हार्ट स्लो डाउन कर जाता है. हार्ट स्लो डाउन हार्ट को डायरेक्टली होता है, हार्ट के अराउंड फ्लूइड भी आ जाता है, हार्ट स्लो डाउन भी कर जाता है, जैसे आंतें स्लो डाउन कर जाती हैं.
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें प्रिवेंशन पर हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको इस तरह से?
0: जी, प्रिवेंशन में मेनली यही है कि आप आने से तो इसको रोकने के लिए यही है कि आप अपना लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, सेहतमंद रखें. और जो अगर आपको लगता है कि आपकी कुव्वत मुदाफियत कम है, वायरसेस से बचने के लिए यही है कि आप अपने सी विटामिन को, डी विटामिन को आप ऑप्टिमम रखें. विटामिन डी का भी बहुत रोल है इसकी थायराइड डिजीज के अंदर. तो विटामिन डी, जैसे आयोडीन ठीक हो, विटामिन डी ठीक हो, सेलेनियम ठीक हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसको एक बैलेंस में रखेंगी, तो काफ़ी चांस है कि प्रिवेंट हो जाएगा.
1: और ये कि अपनी जो मेडिसिन वगैरह हैं वो रेगुलरली लेनी है, और टेस्ट भी है जैसे जैसे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. यानी सर, आप ये प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहें तो आप जुमे के दिन सुबह 8 बजे प्रोग्राम पेश किया जाता है, तो आप सुन सकते हैं. जी डॉक्टर साहब, कोई क्या आप हमें कहना चाहेंगी, मैसेज क्या देना चाहेंगी?
0: मैं अपनी कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे लाइफस्टाइल्स जो हैं उनमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, और हमें हमारा सारा बॉडी जो है घर की तरह है, तो घर के एक कमरे में शोर हो रहा हो तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है. तो हमारा थायराइड अगर आपको छोटा भी लगता है तो लेकिन ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. और हमें अगर हम अमूमी तौर पर अपनी बॉडी को अगर हम सेहतमंद रखेंगे तो हमारे सब ऑर्गन सेहतमंद रहेंगे. और ये मैंने इधर यहाँ पर आके अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा मिल के देखा है कि अनहेल्थी लाइफस्टाइल होने की वजह से बहुत से लोगों के थायराइड जो हैं वो ख़राब हुए हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक विशेष साइकिल में चले जाते हैं लोग.
1: ठीक है, और इस तरह से लाइफस्टाइल जो है वो
0: ज़रूरी है. और दूसरा ये है कि अगर आप थायरोक्सिन खाते हैं, आपको डॉक्टर दी, वो प्लीज़ लाजमी आपने छोड़ दी नहीं, डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं छोड़े आप.
1: कुछ वो अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर लेते हैं,
0: कम ज़्यादा कर लेते हैं. जी
1: ऐसा बिल्कुल नहीं,
0: ऐसा नहीं करना चाहिए. जी
1: ठीक है. जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने
0: हमें बड़ी डिटेल
1: में बताया, और
0: बहुत शुक्रिया मुझे.
1: अच्छा, हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी हमारे साथ साथ रहे, और आपने बहुत उनके जो है क्वेश्चंस के आंसर जो हैं किए. और सामिन मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर ताबिंदा डोगल जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, फौजिया शफीक और हमारे साथ रहे असल भंडारा, उन्हें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.

0: सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम कतर और दुनिया भर में एफएम 107 सुनने वाले तमाम लिसनर्स को सफा का बहुत एनर्जेटिक और स्पोर्टी सलाम। आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स, वो प्रोग्राम जहां हम सिर्फ स्कोर बोर्ड्स और ट्रॉफीज और मेडल्स की बात नहीं करते, बल्कि उन कहानियों तक आपको लेकर जाते हैं जो जनरेशंस को इंस्पायर करती हैं, माइंडसेट्स को चेंज करती हैं और स्पोर्ट्स की दुनिया में नए स्टैंडर्ड सेट करती हैं। आज का हमारा एपिसोड एक ऐसे स्पोर्ट के नाम है जो स्पीड, फोकस, रिफ्लेक्सेस और मेंटल टफनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। एक ऐसा स्पोर्ट जहां एक सेकंड का डिले पूरा मैच तब्दील कर कर रख देता है। आज हम बात करने वाले हैं बैडमिंटन की, लेकिन सिर्फ बैडमिंटन नहीं, हम बात कर रहे हैं उस एथलीट की जिसने हर स्मैश को हिस्ट्री बना दिया, हर रैले को डिटर्मिनेशन का सिंबल बना दिया और हर मैच के साथ मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स को इंस्पायर किया। जी हाँ साथियों, आज का नाम है पीवी सिंधु, इंडिया की बैडमिंटन सुपरस्टार भाई, ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन और विमेन्स स्पोर्ट्स की दुनिया में रेजिलियंस और कंसिस्टेंसी का एक ग्लोबल सिंबल। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कई एथलीट्स टेम्पररी फेम हासिल करते हैं साथियों, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जो एरा डिफाइन करती हैं और पीवी सिंधु उन्हीं में से एक है। साथियों, पीवी सिंधु के बारे में क्या कहा जाए, उनकी जर्नी सिर्फ मेडल्स की कहानी नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस और प्रेशर हैंडल करने की स्टोरी है। जब हम बैडमिंटन देखते हैं ना साथियों, तो शायद टीवी स्क्रीन पर सब कुछ इजी लग रहा होता है, फास्ट रैलीज, पावरफुल स्मैशेस और क्विक मूवमेंट, लेकिन रियलिटी ये है कि बैडमिंटन दुनिया के सबसे डिमांडिंग स्पोर्ट्स में से एक माना जाता है। एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर को लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस, एक्सट्रीम स्टेमिना और रेजर शार्प फोकस मेंटेन करना पड़ता है और सिंधु ने सालों तक वर्ल्ड लेवल पर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके प्रूव किया कि भाई ग्रेटनेस एक दिन में नहीं बनती। साथियों, पुसरला वेंकटा सिंधु की पैदाइश 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुई। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। उनके पेरेंट्स पीवी रमाना और पी विजया दोनों प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर्स थे। उनके फादर को अर्जुना अवार्ड भी मिला था, लेकिन सिंधु ने वॉलीबॉल के बजाय बैडमिंटन चूज किया भाई, और शायद इसी डिसीजन ने इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री का डायरेक्शन ही बदल कर रख दिया। सिर्फ 8 साल की एज में ही उन्होंने बैडमिंटन ट्रेनिंग स्टार्ट की और उस वक्त से ही उनकी डिसिप्लिन लेवल डिफरेंट थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाई, सिंधु रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करती थी। जरा सोचिए, 4 बजे जब बहुत से बच्चे अभी सो रहे होते हैं, तब एक यंग गर्ल बैडमिंटन कोर्ट पर अपने ड्रीम्स बिल्ड कर रही होती है। भाई ये होता है चैंपियन माइंडसेट। टैलेंट इम्पोर्टेंट होता है साथियों, लेकिन कंसिस्टेंसी टैलेंट को ग्रेटनेस में कन्वर्ट करती है। सिंधु ने अर्ली एज से ही ऐसी कंसिस्टेंसी को अडॉप्ट किया। उनकी ट्रेनिंग लेजेंडरी कोच पुलिला गोपीचंद की एकेडमी में हुई, जो इंडिया के टॉप बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर्स में से एक हैं और अभी भी माने जाते हैं। डेली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, इंटेंस ड्रिल्स और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उनकी रूटीन का हिस्सा थे और ऑनेस्टली इसी स्ट्रगल ने उनकी मेंटल टफनेस बिल्ड की भाई। जूनियर लेवल पर ही उन्होंने अपना टैलेंट शो करना स्टार्ट कर दिया था। 2013 में सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और वो मेडल उनकी इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू आइडेंटिटी बना। लेकिन असली एक्सप्लोजन तब आया जब उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता भाई। उस वक्त सिंधु सिर्फ 21 यानी 21 इयर्स की थी और उन्होंने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर रख दिया था। ओलंपिक फाइनल तक पहुंचना ऑलरेडी हिस्टोरिकल अचीवमेंट था साथियों, लेकिन फाइनल में उनकी फाइटिंग स्पिरिट ने सबकी रिस्पेक्ट जीत ली। सिंधु ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाली इंडिया की पहली फीमेल बैडमिंटन प्लेयर बन गई भाई और इसी के साथ उनका नाम ग्लोबल बैडमिंटन इलीट में ऑफिशियली इंक्लूड हो गया। लेकिन ग्रेट एथलीट का रियल टेस्ट एक अचीवमेंट के बाद स्टार्ट होता है। बहुत से प्लेयर्स एक मेजर सक्सेस के बाद प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, क्रिटिसिज्म इंटेंस हो जाता है और कॉम्पिटिशन टफर होता जाता है, लेकिन सिंधु ने हर प्रेशर को फ्यूल बना दिया। 2017 और 2018 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप्स में उन्होंने सिल्वर मेडल्स जीते। फिर 2019 में उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी जब वो

BWF World Championships जीतने वाली पहली इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बन गई। भाई फाइनल में उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को डोमिनेंट परफॉर्मेंस के साथ हराया और ये विक्ट्री सिर्फ एक टाइटल नहीं थी बाबू, ये प्रूव था कि सिंधु सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि मेंटली अनस्टॉपेबल एथलीट हैं। अच्छा स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हाँ, तो भाई सिंधु दुनिया की उन रेयर बैडमिंटन प्लेयर्स में शामिल हैं जिन्होंने ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स सब में मेडल जीते हैं। उनके पास मल्टीपल BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स हैं, एक गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज। अच्छा 2020 के बारे में बात की जाए तो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसी अचीवमेंट के साथ वो इंडिया की पहली विमेन एथलीट बन गई जिन्होंने दो ओलंपिक मेडल्स जीते। अच्छा इस लेवल की कंसिस्टेंसी वर्ल्ड स्पोर्ट में बहुत रेयर होती है और इसी वजह से सिंधु को सिर्फ इंडियन एथलीट नहीं बल्कि ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन माना जाता है। लेकिन नंबर्स और मेडल्स के बियॉन्ड भी उनकी स्टोरी बहुत पावरफुल है साथियों। देखिए सिंधु की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका काम माइंडसेट है, प्रेशर मोमेंट्स में भी उनकी बॉडी लैंग्वेज कंपोज्ड होती है। जब पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस उनके शोल्डर पर होती है ना तब भी वो फोकस मेंटेन करती हैं और ये क्वालिटी यंग एथलीट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होती है। सक्सेस सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं आती, मेंटल बैलेंस से भी आती है भाई। आज विमेन्स स्पोर्ट्स में विजिबली बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये और सिंधु ने बैडमिंटन को साउथ एशिया में मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी देने में ह्यूज रोल प्ले किया है। उनकी सक्सेस के बाद इंडिया में बैडमिंटन अकेडमीज की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई, यंग गर्ल्स ने रैकेट उठाना स्टार्ट कर दिया, पेरेंट्स ने स्पोर्ट्स को सीरियसली करियर ऑप्शन के तौर पर देखना शुरू कर दिया और ये इम्पैक्ट किसी भी एथलीट की रियल लेगेसी होती है साथियों। अच्छा कतर में भी ना आज बैडमिंटन रैपिडली ग्रो कर रहा है, स्कूल्स, एकेडमीज और कम्युनिटी टूर्नामेंट्स में गर्ल्स पार्टिसिपेशन स्टेडली इंक्रीज हो रही है और जब यंग एथलीट सिंधु जैसे पर्सनालिटीज को देखती है ना तो उन्हें ये फील होता है कि डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के थ्रू इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा पीवी सिंधु की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि टॉप पर पहुंचना डिफिकल्ट होता है, टॉप पर डटे रहना, बने रहना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हर नए सीजन में नए चैलेंजेस होते हैं, नए एक्सपेक्टेशंस होते हैं और नया प्रेशर होता है, लेकिन सिंधु ने सालों तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ये प्रूव किया है कि ग्रेटनेस सिर्फ टैलेंट नहीं एक लाइफस्टाइल होता है। उनकी जर्नी हर यंग लिसनर को ये मैसेज देती है कि ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए सेक्रीफाइस, पेशेंस और सेल्फ बिलीव की जरूरत होती है और शायद इसीलिए आज भी जब बैडमिंटन कोर्ट पर सिंधु का नाम अनाउंस होता है ना तो सिर्फ एक प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं होती, एक इंस्पायरेशन कोर्ट पर एंटर करती। तो साथियों अगर आप आज का एपिसोड सुन रहे हैं तो एक मोमेंट के लिए खुद से पूछिए क्या ग्रेटनेस सिर्फ विनिंग का नाम है या फिर वो एबिलिटी है कि प्रेशर के बावजूद कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहने की। पीवी सिंधु की स्टोरी शायद इसी सवाल का जवाब है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107 कतर। हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107 कतर और अपनी थॉट्स शेयर करें, चाहे तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं 666-222-107 पर, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्पोर्ट्स डिस्कस नहीं करते, हम उन लेजेंड्स को सेलिब्रेट करते हैं जो जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। साथियों यकीन मानिए कतर में बैडमिंटन सिर्फ एक रिक्रिएशनल गेम नहीं रहा बल्कि विमेन एम्पावरमेंट का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन रहा है। आज से कुछ साल पहले तक बैडमिंटन को कतर में मोस्टली एक कैजुअल इंडोर एक्टिविटी समझा जाता था, फैमिलीज वीकेंड्स पर खेल लेती थी इस गेम को, स्कूल में कभी कभी स्पोर्ट्स डे पर मैचेस हो जाया करते थे। लेकिन अब पिक्चर चेंज हो रही है, आज बैडमिंटन कतर के फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडोर स्पोर्ट्स में काउंट होता है स्पेशली विमेन और गर्ल्स के लिए। साथियों दोहा और दूसरे एरियाज में कम्युनिटी बैडमिंटन कोर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, स्पोर्ट्स क्लब्स विमेन फोकस ट्रेनिंग बैचेस इंक्लूड कर रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यंग गर्ल्स अब बैडमिंटन को सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि सीरियस कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स के तौर पर भी देख रही हैं। अच्छा बिफोर वी स्टेप इनटू टुडेज मेन स्टोरी चलिए नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर जो वुमेन स्पोर्ट्स को ग्लोबली और कतर में शेप कर रहे हैं। देखिए कतर के मल्टीपल स्कूल्स में गर्ल्स बैडमिंटन पार्टिसिपेशन स्टेडली इंक्रीज हो रही है, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग सेशंस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जहां स्टूडेंट्स बेसिक रैकेट हैंडलिंग से लेकर मैच डिसिप्लिन और टूर्नामेंट एक्सपोजर तक सीख रहे हैं। पीई क्लासेस के अंदर रैकेट स्पोर्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बैडमिंटन रिफ्लेक्सेस

स्टेमिना और मेंटल शार्पनेस इंक्रीज करता है। अच्छा, कतर फाउंडेशन इंडिपेंडेंट स्कूल्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। बहुत सी स्कूल्स अब गर्ल्स बैडमिंटन टीम्स ऑफिशियली रजिस्टर कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है भाई। जब स्कूल लेवल पर स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है ना, तभी फ्यूचर एथलीट्स डेवलप होते हैं और कतर इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर हम फिगर्स के बारे में बात करें तो ग्लोबली बैडमिंटन दुनिया के टॉप 5 मोस्ट प्लेड स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया जाता है, जिसमें मिलियंस ऑफ फीमेल प्लेयर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। एशिया में स्पेशली विमेन बैडमिंटन का क्रेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कतर भी इसी ट्रेंड को अडॉप्ट कर रहा है। साथियों, दोहा में कम्युनिटी स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशंस में रीसेंट ईयर्स के अंदर फीमेल रैकेट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन नोटिसेबली इंक्रीज शो कर चुकी है। देखिए, लोकल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक विमेन ओनली बैडमिंटन सेशंस और बिगिनर कोचिंग प्रोग्राम्स की डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। अच्छा, नेशनल कॉम्पिटिशन की तरफ देखिए तो विमेन पार्टिसिपेशन एथलीट्स बैडमिंटन और इंडोर गेम्स में स्टेडिली इंक्रीज कर रही हैं। पहले लिमिटेड टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, लेकिन अब स्ट्रक्चर्ड पाथवेज डेवलप किए जा रहे हैं, जहां टैलेंटेड फीमेल प्लेयर्स को एकेडमीज और हाई लेवल कोचिंग तक एक्सेस मिल सके। कतर की स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अब इंक्लूसिविटी एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड बन चुका है। साथियों, कम्युनिटी लीग्स भी इसी चेंज का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट बन रही हैं। दोहा में रिक्रिएशनल बैडमिंटन लीग्स और फिटनेस क्लब्स यंग गर्ल्स को एक सेफ और मोटिवेटिंग एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सी वर्किंग वुमेन और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी इवनिंग बैडमिंटन सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं। ये सिर्फ फिटनेस का मैटर नहीं है, ये कॉन्फिडेंस और सोशल कनेक्शन का भी पार्ट बन गया है। देखिए, कतर का फोकस यूथ डेवलपमेंट पर क्लियर नजर आता है। गवर्नमेंट सपोर्टेड इनिशिएटिव्स, अकेडमीज और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पर ज्यादा काम कर रही हैं। गर्ल्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो स्पोर्ट्स को सिर्फ टाइम पास नहीं समझें, बल्कि डिसिप्लिन और ग्रोथ का प्लेटफॉर्म भी बनाएं। और बैडमिंटन इसी मिशन में एक एक्सेसिबल और प्रैक्टिकल स्पोर्ट बनकर सामने आ रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि बैडमिंटन ही क्यों? क्यों भाई इतनी गर्ल्स इस स्पोर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं? भाई, इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है और पावरफुल भी है। बैडमिंटन एक फास्ट पेस्ड स्पोर्ट है जो एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर भी स्टार्ट किया जा सकता है। इंडोर एनवायरनमेंट होने की वजह से कतर के वेदर कंडीशंस में भी ये आइडियल स्पोर्ट माना जाता है। भाई, इसमें एगिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन और मेंटल फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे खास बात ये कि इसमें गर्ल्स को फिजिकली एक्टिव रहने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव कॉन्फिडेंस भी मिलता है। अच्छा, कतर के अंदर अब मल्टीपल स्पोर्ट्स हॉल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स वुमेन फ्रेंडली स्केड्यूल ऑफर कर रहे हैं। लेडीज ओनली कोचिंग बैचेस का कॉन्सेप्ट स्पेशली पॉपुलर हो रहा है। बहुत सी मदर्स अपनी बेटियों को बैडमिंटन क्लासेस में एनरोल करवा रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्पोर्ट डिसिप्लिन और हेल्दी लाइफस्टाइल दोनों सिखाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो रिसेंटली आप देख लें कुछ सालों में देखा गया है, वो ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर बैडमिंटन पार्टिसिपेशन भी ग्रो कर रही है। फीमेल स्टूडेंट्स इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक्सपोजर उन्हें लीडरशिप और टीम वर्क स्किल्स भी सिखाता है। स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल्स नहीं देता, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बिल्ड करता है। साथियों, कतर बैडमिंटन फेडरेशन और लोकल ऑर्गेनाइजर्स भी अवेयरनेस इवेंट्स और टूर्नामेंट्स के जरिए इस स्पोर्ट को प्रमोट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया कैंपेन्स, यूथ टूर्नामेंट्स और फैमिली स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स बैडमिंटन को पब्लिक लेवल पर विजिबल बना रहे हैं। और ऑनेस्टली, जब विजिबिलिटी बढ़ती है तब इंस्पायरेशन भी बढ़ती है। अच्छा, आज की जो मैं कहूँगी कि यंग जनरेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जब एक यंग गर्ल किसी और फीमेल एथलीट को कोर्ट पर कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करते हुए देखती है ना, तो उसके दिमाग में भी एक थॉट तो आता ही है कि भाई मैं भी कर सकती हूँ, और वही थॉट एक फ्यूचर एथलीट क्रिएट करता है। देखिए, ग्लोबली अगर हम विमेन बैडमिंटन आइकन की बात करें ना, प्लेयर्स जैसे कि पीवी सिंधु ने ये प्रूव किया है कि बैडमिंटन विमेन के लिए एक हाईली कॉम्पिटिटिव और रिस्पेक्टेड स्पोर्ट है। इन एथलीट्स की अचीवमेंट्स ने एशिया और मिडिल ईस्ट में बैडमिंटन इंटरेस्ट को और बूस्ट दिया है। साथियों, कतर में भी अब पेरेंट्स का माइंडसेट ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। पहले एकेडमिक्स को ही सब कुछ समझा जाता था, अब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन टुगेदर दे कैन गो हैंड इन हैंड। बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स गर्ल्स को फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग और

लॉन्ग-टर्म वेलनेस एक्टिविटी भी बन सकता है। हर प्लेयर प्रोफेशनल एथलीट नहीं बनती, ये मैं मानती हूँ, लेकिन हर प्लेयर हेल्दियर और स्ट्रॉन्गर जरूर बनती है। इसीलिए कम्युनिटी बैडमिंटन कल्चर ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, दोहा के अंदर जब अब फैमिली स्पोर्ट्स कल्चर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हम देख रहे हैं वीकेंड बैडमिंटन सेशंस होते हैं, मॉल्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स और इंडोर एक्टिविटी प्रोग्राम्स फैमिलीज को एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ इनकरेज कर रही हैं। बहुत सी लड़कियां अपने सिबलिंग्स और पेरेंट्स के साथ बैडमिंटन स्टार्ट करती हैं और फिर ग्रेजुअली कोचिंग लेवल तक पहुंच जाती हैं। साथियों, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन से यंग गर्ल्स में सेल्फ स्टीम इम्प्रूव होती है, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं। और ऑनेस्टली ये सारी की सारी चीजें लाइफ के हर फील्ड में हेल्प करती ही हैं। कोर्ट पर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, वो क्लासरूम और करियर में भी नजर आता है। साथियों, कतर विजन 2030 का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हेल्दी और एक्टिव सोसाइटी बिल्ड करना भी है। तो भाई, विमेन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इस मिशन का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुकी है ऑलरेडी। बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेसिबल है, इंक्लूसिव है और सस्टेनेबल है।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: आज अगर हम रियलिस्टिकली देखें ना तो वुमेन बैडमिंटन डेवलपमेंट अभी जर्नी के अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन डायरेक्शन बहुत पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है, अवेयरनेस ग्रो कर रही है और सबसे इंपॉर्टेंट गर्ल्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। हर एथलीट ओलंपिक मेडल से स्टार्ट नहीं करता साथियों, मैं आपकी बात मानती हूँ, हर चैंपियन एक स्मॉल कोर्ट से स्टार्ट करता है ना, एक सिंपल रैकेट और एक नर्वस फर्स्ट मैच से स्टार्ट करता है ना। तो शायद इस वक्त कतर में भी कोई यंग गर्ल बैडमिंटन कोर्ट पर प्रैक्टिस कर रही हो बिना ये रियलाइज किए कि उसका फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक पेरेंट हैं या सिंपली कोई ऐसा इंसान है जो स्पोर्ट को अप्रिशिएट करता है ना, देन सपोर्ट वुमेन इन स्पोर्ट्स, एनकरेज गर्ल्स टू पार्टिसिपेट, सेलिब्रेट एफर्ट्स नॉट जस्ट ट्रॉफीज, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तब टैलेंट खुद सामने आ जाता है। बैडमिंटन हमें एक बहुत सिंपल लेसन देता है साथियों, शटल कभी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी फास्ट कभी स्लो, बिल्कुल लाइफ की तरह। लेकिन जो प्लेयर फोकस रहता है ना, वो भाई इवेंचुअली पॉइंट जीत ही लेता है। याद रखिए, कोर्ट्स सिर्फ गेम्स नहीं बनाते, कोर्ट्स कॉन्फिडेंस भी बनाते हैं। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एथलीट की जिसने सिर्फ बैडमिंटन नहीं खेला बल्कि प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, इंजरीज और इम्पॉसिबल सिचुएशंस के अगेंस्ट फाइट की। एक ऐसी प्लेयर जिसकी काम पर्सनालिटी के पीछे स्टील जैसी डिटर्मिनेशन छुपी हुई थी। आज की हमारी स्टोरी ऑफ द वीक है इंडिया की बैडमिंटन सुपरस्टार पीवी सिंधु की। साथियों स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, ये हम मानते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, लेकिन सिर्फ टैलेंट किसी एथलीट को लेजेंड नहीं बनाता। देखिए लेजेंड वो बनते हैं जो प्रेशर में परफॉर्म करते हैं, लॉसेस के बावजूद वापस खड़े होते हैं और इयर्स तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, और सिंधु की स्टोरी एग्जैक्टली इसी चीज का नाम है। तो भाई टू अंडरस्टैंड पीवी सिंधु हमें हैदराबाद इंडिया जाना होगा। भाई यूं समझ लें कि 5th जुलाई 1995 को पैदा होने वाली एक लड़की एक स्पोर्ट्स फैमिली में ग्रो करती है। उनके फादर पीवी रामाना और मदर पी विजया दोनों नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर्स थे। उनके फादर को इंडिया का प्रेस्टीजियस अर्जुना अवार्ड भी मिला था। घर का एनवायरनमेंट ऑलरेडी स्पोर्ट ओरिएंटेड था, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और फिटनेस उनकी डेली लाइफ का हिस्सा थे। अच्छा यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वॉलीबॉल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की जो कि वॉलीबॉल प्लेयर्स की बेटी हो, उसके बावजूद सिंधु ने बैडमिंटन चूज किया और ये डिसीजन बहुत अनयूजुअल था क्योंकि वॉलीबॉल उनके घर का नेचुरल स्पोर्ट था ना। लेकिन सिंधु को बैडमिंटन कोर्ट्स का स्पीड और इंटेंसिटी अट्रैक्ट करती थी। अच्छा वो बैडमिंटन प्लेयर पुलेला गोपीचंद से बहुत इंस्पायर्ड थी, स्पेशली जब उन्होंने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती, उस मोमेंट ने यंग सिंधु के दिमाग में एक ड्रीम क्रिएट कर दिया। लेकिन ड्रीम देखना इजी होता है, उस ड्रीम के लिए रोज सेक्रीफाइस करना बहुत मुश्किल होता है, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है। भाई सिंधु का ट्रेनिंग

रूटीन जो था वो बहुत टफ था। रिपोर्ट के मुताबिक वो सुबह 4 बजे उठती थी ताकि प्रैक्टिस सेशंस के लिए एकेडमी पहुंच सके। हैदराबाद का ट्रैफिक और डिस्टेंस की वजह से उनके पेरेंट्स उन्हें डेली लॉन्ग ट्रैवल करवाते थे। कभी कभी उनका टोटल डेली कम्यूट 50 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाता था। भाई इमेजिन कीजिए, स्कूल गोइंग गर्ल सुबह अंधेरे में उठकर प्रैक्टिस करने जा रही है जब ज्यादातर बच्चे अभी सो रहे होते हैं। ये वही फेज होता है जहाँ मोस्ट पीपल गिव अप कर देते हैं, मोस्ट पीपल जस्ट इट्स टू टफ करके छोड़ देते हैं। लेकिन सिंधु और उनके पेरेंट्स ने कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी बनाया, और स्पोर्ट्स में कंसिस्टेंसी ही सब कुछ होती है भाई, सबसे बड़ा सीक्रेट स्पोर्ट्स में यही होता है। अच्छा, उनके कोच गोपी चंद का एकेडमी कल्चर बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता था। जंक फूड रिस्ट्रिक्टेड था, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस लिमिटेड थे, फोकस सिर्फ ट्रेनिंग पर होता था, बहुत से प्लेयर्स मेंटली प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते थे, लेकिन सिंधु ने इस एनवायरनमेंट को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। अच्छा, बैडमिंटन देखने में तो बहुत इजी गेम लगता है, एक शटल कॉक ली, एक रैकेट लिया, नेट लिया और बस। लेकिन प्रोफेशनल बैडमिंटन दुनिया के टफेस्ट स्पोर्ट्स में काउंट होता है भाई। देखिए, मैचेस में स्पीड पता है कितनी होती है? 300 किलोमीटर पर आर तक जा सकती है स्पीड। प्लेयर्स को सेकंड के फ्रैक्शंस में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फुटवर्क लाइटनिंग फास्ट होना चाहिए, एंड्योरेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए, और सबसे डिफिकल्ट चीज भाई मेंटल कंपोजर। मैंने खेल कर देखी है भाई ये गेम, जितनी इजी लगती है ना उतनी है नहीं। अच्छा, जूनियर लेवल पर सिंधु ने बहुत इंटेंस कंपटीशन फेस की। एशिया के बैडमिंटन सर्किट्स ऑलरेडी एक्सट्रीमली कॉम्पिटेटिव थे। चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे कंट्रीज बैडमिंटन पावर हाउसेस थे भाई। हर टूर्नामेंट में टॉप लेवल एथलीट्स मौजूद होती थी। यंग सिंधु को रिपीटेडली स्ट्रॉन्गर और एक्सपीरियंस्ड ओपोनेंट्स फेस करने पड़ते थे। अच्छा, कई मैचेस में वो हार भी गई, लेकिन हर डिफीट के बाद उन्होंने अपना गेम एनालाइज किया। भाई कहते हैं ना, अपनी गलतियों से सीखो। उन्होंने अपना गेम एनालाइज किया, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। ये क्वालिटी उन्हें डिफरेंट बनाती थी। कुछ एथलीट्स लॉस के बाद ना इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाते हैं कि भाई अब मैं नहीं कर सकता, आई डोंट थिंक सो, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे वाले बैठे हैं। लेकिन सिंधु ना अलग थी। सिंधु ना अपनी लॉसेस को इम्प्रूवमेंट मैनुअल बना लेती थी। अच्छा, एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स बैलेंस करना भी उनके लिए चैलेंजिंग था। स्कूल असाइनमेंट्स, एग्जाम्स और इंटेंस ट्रेनिंग सेशंस के को एक साथ मैनेज करना इतना इजी नहीं होता जितना हम लोग आसानी से बोल देते हैं बच्चों को। बहुत सी यंग फीमेल एथलीट्स इसी प्रेशर की वजह से स्पोर्ट्स क्विट कर देती हैं, लेकिन सिंधु का फोकस लॉन्ग टर्म था। अच्छा, फिर आया 2012, यानी कि 2012 के अराउंड बैडमिंटन एक्सपर्ट्स को क्लियर नजर आना शुरू हो गया था कि एक स्पेशल प्लेयर इमर्ज हो रही है। सिंधु ग्रेजुअली इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स जीतने लगी थी। उन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिखानी शुरू कर दी थी। और फिर भाई 2013 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और वो पहली इंडियन विमेन्स सिंगल्स प्लेयर बनी जो इस लेवल पर मेडल तक पहुंची। ये अचीवमेंट ह्यूज थी, ह्यूज, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स बैडमिंटन का वन ऑफ द टफेस्ट स्टेजेस में से एक होता है। लेकिन असली एक्सप्लोजन अभी भी बाकी था, और पता है वो क्या था? 2016 यानी 2016 रियो ओलंपिक्स, वो टूर्नामेंट जिसने पीवी सिंधु को ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन बना दिया। ओलंपिक्स का प्रेशर किसी भी एथलीट के लिए अनइमेजिनेबल होता है। जस्ट इमेजिन, एंटायर नेशन हैज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। तो भाई एंटायर नेशन की एक्सपेक्टेशंस शोल्डर पर होती हैं लोगों के जब लोग ओलंपिक्स खेलते हैं। मीडिया अटेंशन एक्सट्रीम होती है, हर पॉइंट हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। रियो में सिंधु ने फियरलेस बैडमिंटन खेला, राउंड आफ्टर राउंड उन्होंने टॉप प्लेयर्स को चैलेंज किया। क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल परफॉर्मेंसेस ने दुनिया को शॉक कर रख दिया। उनकी स्पीड, एग्रेशन और कोर्ट कवरेज, वो भाई आउटस्टैंडिंग था। अगर आपने नहीं देखा तो एक दफा जाकर देखिएगा जरूर। सेमीफाइनल्स में उन्होंने जापान की स्ट्रॉन्ग प्लेयर को डिफीट किया और ओलंपिक फाइनल रीच कर लिया। उस वक्त वो इंडिया की पहली विमेन बैडमिंटन प्लेयर थी जो ओलंपिक फाइनल तक पहुंची। भाई फाइनल में उनका मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मरीन से हुआ। मैच हाई इंटेंसिटी का था भाई। मरीन एग्रेसिव और एक्सट्रीमली फास्ट प्लेयर मानी जाती हैं। सिंधु ने इनक्रेडिबली अच्छी फाइट दी भाई। हर रिले में डिटर्मिनेशन नजर आ रही थी उनके। वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सकी, लेकिन

0: 2017 और 2018 में सिंधु मल्टीपल मेजर फाइनल्स तक पहुंची, लेकिन कई बार वो सिल्वर मेडल्स पर रुक गई। कुछ क्रिटिक्स ने उन्हें ऑलवेज सेकंड तक कहना शुरू कर दिया। इमेजिन कीजिए, दुनिया का टॉप लेवल एथलीट होना और फिर भी क्रिटिसिज्म फेस करना, ये स्पोर्ट्स का क्रूअल साइड होता है साथियों। अच्छा हाँ, इसी पर सिंधु की मेंटल स्ट्रेंथ नजर आई। उन्होंने नेगेटिविटी को फ्यूल बना दिया भाई, लेकिन 2019 में उन्होंने फाइनली वर्ल्ड चैंपियनशिप्स गोल्ड मेडल जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। स्विट्जरलैंड में हुए टूर्नामेंट में उन्होंने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई और फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को स्ट्रेंथ गेम्स में डिफीट कर दिया। इस विक्ट्री के साथ वो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स गोल्ड जीतने वाली पहली इंडियन प्लेयर बन गई। ये सिर्फ मेडल नहीं था, सैक्रिफाइस और डिसिप्लिन का रिजल्ट था। थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आवर्स, एंडलेस ड्रिल्स, अर्ली मॉर्निंग्स, इंजरीज, लॉसेस, क्रिटिसिज्म और फिर कहीं जाकर सक्सेस। ये भी याद रखें कि इलीट एथलीट की लाइफ ग्लैमरस कम और एग्जॉस्टिंग ज्यादा होती है। ट्रैवल स्केड्यूल्स क्रेजी होते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो करनी पड़ती हैं, रिकवरी सेशंस कंपलसरी होते हैं, पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती ही पड़ती है, लेकिन फिर भी एथलीट्स परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनका पैशन उनके कम्फर्ट से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। साथियों, पीवी सिंधु की स्टोरी सिर्फ बैडमिंटन की स्टोरी नहीं है, ये रेजिलियंस की स्टोरी है, ये सेल्फ बिलीफ की स्टोरी है, ये उस यंग गर्ल की स्टोरी है जिसने एक रैकेट उठाया और दुनिया को प्रूव किया कि काम पर्सनालिटी के अंदर भी चैंपियन मेंटालिटी हो सकती है। और शायद इसीलिए मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स उन्हें एडमायर करती हैं, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक सुपर हीरो नहीं, वो रिलेटेबल लगती हैं, हार्ड वर्किंग लगती हैं, रियल लगती हैं। तो साथियों, एफएम 107 कतर के प्लेटफॉर्म से हम आज यही कहना चाहेंगे कि हर यंग एथलीट को समझना चाहिए कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। कोर्ट पर जो मेडल नजर आता है उसके पीछे सालों की अनसीन स्ट्रगल होती है। तो अगर आप भी किसी ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं ना, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्टडीज हो या लाइफ का कोई और गोल हो, देन रिमेंबर सिंधु'स जर्नी। प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, कभी कभी आप सेकेंड प्लेस पर भी फिनिश करेंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे ना तो इवेंचुअली दुनिया आपका नाम याद रखेगी। रोज थोड़ा बेटर होना ही इवेंचुअली ग्रेटनेस बनता है। तो साथियों, कीप बिलीविंग, कीप ग्रोइंग और याद रखिए, चैंपियंस सिर्फ मेडल से नहीं, माइंडसेट से पहचाने जाते हैं। तो भाई, एफएम 107 कतर के लिसनर्स, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इंस्पिरेशन यहाँ नहीं रुकती। तो साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे विमेन इन स्पोर्ट्स। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमें जरूर फॉलो करें @FM107 कतर ऑन आर सोशल मीडिया, और चाहे तो हमें फीडबैक भी भेज सकते हैं ऑन आर नंबर 6622107 पर। याद रखिए, हर चैंपियन की जर्नी एक छोटी सी बिगिनिंग से स्टार्ट होती है, लेकिन डिफरेंस उस कंसिस्टेंसी से आता है जो हर दिन आपको बेहतर बनाती है। मुझे यानी सफा को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुनते रहें एफएम 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: Absolute cinema.
4: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
5: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर न करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें,

0: की अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है। क्रिकेट हो
1: And he's hooked that away. That's four runs.
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।

0: आइए तलहा अशरफुज़मान के साथ प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के सिलसिले में, जहां हम सूरह इंसान की पहले चंद आयात पर गौर कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम पहली आयत के हवाले से काफ़ी इस पर तफसील गुफ्तगू कर चुके हैं, अब दूसरी आयत की तरफ रुख करेंगे। दूसरी आयत में अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक का मरहला बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज नबतलीहु फजअलनाहु समीअन बसीरा। बेशक हमने इंसान को एक मखलूत नुतफे से पैदा किया ताकि उसे आजमाएं, फिर हमने उसे सुनने वाला और देखने वाला बना दिया। यहाँ तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि इस आयत में इंसान से मुराद आदम अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि उनकी पूरी नस्ल यानी हम सब इंसान हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को नुतफे से पैदा किया। अरबी जबान में नुतफा हर उस थोड़े से पानी को कहते हैं जो किसी जगह मौजूद हो, चाहे वो कुएं में हो, किसी बर्तन में हो, मशकीज़े में हो या किसी और जगह। थोड़ा सा पानी नुतफा कहलाता है, लेकिन यहाँ मुराद वो मामूली सा कतरा है जिससे अल्लाह ताला पूरी इंसानियत की तख्लीक फरमाते हैं। यही वजह है कि सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने नफ्स को नसीहत करते हुए फरमाया करते थे, ऐ नफ्स, आखिर तेरी हकीकत क्या है? तू तो सिर्फ एक नुतफा ही तो था। मोता के मैदान जंग का वाक़या तारीख में महफूज है। जब जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ लम्हों के लिए अपने घोड़े पर रुके। सामने तलवारों की चमक थी, चारों तरफ जंग की शिद्दत थी और नफ्स फितरी तौर पर मौत से घबरा रहा था। उस वक्त उन्होंने अपने आप से खिताब किया, ऐ नफ्स, अल्लाह की कसम, आज तुम्हें ज़रूर उतरना होगा। तुम जन्नत से क्यों घबरा रही हो? आखिर तुम हो ही क्या? तुम तो सिर्फ एक मामूली नुतफा थी जो एक पुराने मशकीज़े में थी। इन इंसान अपने हकीकत को याद करे तो तकब्बुर खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। सामने कराम, इसलिए हमारे असलाफ जब किसी शख्स को गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला देखते तो उसे उसकी इब्तिदा याद दिलाते। सामने कराम, ज़रा गौर कीजिए कि इब्तिदा एक मामूली कतरा, इख्तिताम एक मैयत, और इन दोनों के दरमियान इंसान अपनी कमज़ोरियों के साथ ज़िंदगी गुजारता है। फिर आखिर गुरूर किस चीज़ का, तकब्बुर किस बात का, फ़ख्र किस चीज़ पर? कितने ही अहले हिकमत ने इसी हकीकत को अशार में बयान किया है। एक अरबी शायर कहता है, उसके अशार का मजमून ये है, मुझे उस शख्स पर हैरत होती है जो अपनी खूबसूरती पर फख्र करता है, हालांकि उसकी इब्तिदा एक हकीर नुतफे से हुई और चंद दिन बाद उसी जिस्म को लोग दफनाने के लिए जल्दी करेंगे। एक और शायर ने कहा, जिस वजूद की इब्तिदा कतरा आप से हुआ और जिसका अंजाम मिट्टी हो, उसे गुरूर जेब नहीं देता। सुन्नी कराम, कुरान का अंदाज भी यही है, वो इंसान को पहले उसकी हकीकत याद दिलाता है, फिर उसके बाद उसे अल्लाह की अजमत दिखाता है ताकि बंदा अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार फरमाए। सामने कराम, अल्लाह फरमाता है, मिन नुतफतिन अमशाज, एक मखलूत नुतफे से। लफ्ज़ अमशाज का माना है मखलूत चीज़, मुख्तलिफ़ अज्ज़ा का मिल जाना। यानी इंसान की तख्लीक सिर्फ मर्द के पानी से नहीं होती बल्कि मर्द और औरत दोनों के मादों के इम्तिज़ाज से होती है। कुरान ने 1400 साल पहले इस हकीकत की तरफ नहायत जामे अंदाज में इशारा फरमाया, जबकि आज की साइंस भी यही बताती है कि इंसान की तख्लीक वालिद और वालिदा दोनों के जीनियाती निज़ाम के इम्तिज़ाज से होती है। बाद मुफस्सिरीन जिसमें इमाम ज़मख़शरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अमशाज अगरचे लफ्ज़ी एतबार से जमा की सूरत में है, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल एक ही नुतफे के लिए हुआ है, क्योंकि अरबी ज़बान में बाज़ अल्फाज ज़ाहिरन जमा होते हैं मगर माने के एतबार से वाहिद पर भी बोले जाते हैं। मकसद सिर्फ ये बताना है कि यह नुतफ़ा मुख्तलिफ अज्जा के मिलाप से वजूद में आया है। उसके बाद अल्लाह ताला इस तख्लीक का मकसद बयान फरमाते हैं, नबतली है ताकि हम उसे आजमाएं। ये कुरान का नहायत अहम ऐलान है, यानी इंसान की तख्लीक बेमकसद नहीं, ये दुनिया खेल तमाशा नहीं, ये ज़िंदगी इत्तेफाकन नहीं मिली, बल्कि हर इंसान एक इम्तिहान के लिए पैदा किया गया है। اللہ تعالیٰ کبھی نعمت دے کر آزماتے ہیں، کبھی آزمائش دے کر، کبھی صحت دے کر، کبھی بیماری دے کر، کبھی مال دے کر، کبھی عزت

0: शायर करता है। जरा गौर कीजिए, एक परिंदा है लेकिन वो भी कायनात को देखकर सही नतीजा निकाल रहा है। वो देखता है कि बारिश आसमान से आती है, जमीन से पौधे उगते हैं। ये सब खुद ब खुद नहीं हो सकता, उसके पीछे एक पैदा करने वाला जरूर है, लिहाजा इबादत भी उसी की होनी चाहिए। ये कोई फलसफे की पेचीदा दलील नहीं, ये फितरत की आवाज़ है। सामिन इकराम, एक छोटा बच्चा भी अगर अपने सामने रखा हुआ खिलौना अचानक गायब देखे तो फौरन समझ जाता है कि किसी ने उठाया है। वो ये नहीं सोचता कि खिलौना खुद ही गायब हो गया। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत जानती है कि हर असर का कोई मुअसर होता है। इसी तरह अरब के एक देहाती से पूछा गया, तुमने अल्लाह को कैसे पहचाना? उसने नहायत सादा जवाब दिया कि कदमों के निशानात देखकर मालूम हो जाता है कि कोई चलकर गया है। तो फिर ये बुलंद आसमान, ये वसी जमीन, ये सितारों से भरा आसमान, ये समंदर, ये पहाड़ क्या किसी खालिक की खबर नहीं देते? यही फितरत की दलील है। सामने कराम, आज इंसान कहता है जमीन घूम रही है, सूरज अपनी जगह है, सैारे गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है उन्हें गर्दिश में किसने रखा है? और अगर कोई चीज़ हरकत में है तो ये हरकत हमेशा खुद ब खुद कैसे कायम रह सकती है? यानी पैदा भी किया, अकल भी दी, कान भी दिए, आंख भी दी, फिर अपनी निशानियां भी दिखाई और उस पर इक्तफा नहीं किया बल्कि अपने रसूल भी भेजे, अपनी किताबें भी नाजिल की ताकि कोई ये न कह सके कि हमें रास्ता मालूम नहीं था। हिदायत सिर्फ फितरत में नहीं रखी गई बल्कि वही के जरिए भी वाजे कर दी गई। कायनात भी अल्लाह की निशानी है और कुरान भी अल्लाह की निशानी है। एक निशानियां हमें आसमानों में नजर आती हैं, दूसरी कुरान की आयात में। एक को उलमा आयात कौनिया कहते हैं और दूसरी को आयात कुरानिया। दोनों का मकसद एक ही है कि इंसान अपने रब को पहचान ले। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना हदैनाहु सबील, सूरत इंसान की आयत है कि हमने उसे रास्ता दिखा दिया लेकिन फिर फैसला इंसान के हाथ में छोड़ दिया। इसीलिए आगे फरमाया इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, अब चाहे वो शुक्रगुजार बने या ना शुक्रा, यही असल इम्तिहान है। रास्ता वाज़ह कर दिया, दलील दे दी, अकल अता कर दी, अंबिया भेज दिए, किताबें नाजिल कर दी, फिर इंसान को इख्तियार दिया कि वो किस रास्ते को इख्तियार करता है, शुक्र का रास्ता या नाशुक्री का रास्ता। इसी बुनियाद पर आखिरत में हिसाब होगा। सामने कराम, आज की गुफ्तगू हमें यही सबक देती है कि हम सिर्फ कायनात को देखने वाले न बने बल्कि उसके खालिक को पहचानने वाले बने। जिस्म की साख्त पर हैरान न हो बल्कि उसके बनाने वाले पर ईमान मजबूत करें। कवानीन फितरत को जानने के साथ साथ कानून बनाने वाले रब के सामने झुकने की भी कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें अपनी आयात को सही मानों में समझने, उन पर गौर करने और उनके जरिए अपने रब की मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर शकीब अहमद और मुझे तलहा शरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मअस्सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहां कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi. Dil se desi.
4: दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है। जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं। साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है। पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है। अगर साइकिलिस्ट रेड लाइट

के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है, खास तौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों। इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए। अक्सर साइकिलिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है। हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। हेलमेट्स सिर्फ साइकिलिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है। इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, जो काफी जरूरी है, खास तौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं। साइक्लिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है। आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे शरीफ यूनुस के बारे में। शरीफ यूनुस कतर के मशहूर बीच वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं जो असल में सेनेगल में पैदा हुए, लेकिन बाद में वो कतर को रिप्रेजेंट किया। उनका टॉल और एथलेटिकली स्ट्रॉन्ग फ्रेम उन्हें बीच वॉलीबॉल के लिए परफेक्ट बनाता है। शरीफ ने अपने करियर में कतर की नेशनल टीम को वर्ल्ड स्टेज पर पहचान दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। वो अपने पार्टनर अहमद तिजान के साथ मिलकर FIVB बीच वॉलीबॉल वर्ल्ड टूर और ओलंपिक गेम्स जैसे बड़े इवेंट्स में कतर की रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। उनके खेलने के स्टाइल एग्रेसिव ब्लॉकिंग और पावरफुल स्पाइक्स पर मबनी है। शरीफ कोर्ट पर बहुत फोकस्ड और डिसिप्लिन नजर आते हैं और उनकी टीम वर्क एबिलिटी उन्हें दुनिया की टॉप प्लेयर्स के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव बनाती है। कतर ने बीच वॉलीबॉल में जो तरक्की की है उसमें शरीफ का बड़ा हाथ है। उन्होंने एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी शानदार परफॉर्मेंस दी है। शरीफ यूनुस सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि कतर के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का एक सिंबल बन चुके हैं। उनकी मेहनत, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन ने उन्हें इंटरनेशनल बीच वॉलीबॉल का एक रेस्पेक्टेड नाम बना दिया है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, अपने पर्सनल डेटा को फिशिंग से बचाने के लिए इन टिप्स पर अमल कीजिए। अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देने को अवॉइड कीजिए। कभी भी जाती मालूमात या डेटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर मत कीजिए। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की आइडेंटिटीज को वेरीफाई करें और सिर्फ उन लोगों से बातचीत करें जिन्हें आप जानते हैं। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि आपकी फैमिलीज के नौजवान यूजर्स के लिए कंटेंट कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। क्रिकेट हो,
3: And he's hooked that away. That's four runs.
2: फुटबॉल हो Goal! या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की,
0: स्पोर्ट्स की। FM 107 पर हर गाना हिट, हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे उन रोजमर्रा आदात के बारे में जो मर्द हजरात की सेहत को बेहतर बना सकती हैं, जो हमारा मॉडल

0: मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसमें ज्यादातर बैठे बैठे काम करने का रुझान बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे वजन में इजाफा, कमर दर्द, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं या बहुत ही जो फास्ट जो वॉक है वो करें, या सीढ़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और इसी तरह से साइकिलिंग कीजिए या हल्की एक्सरसाइज भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। नींद को हमेशा तरजीह दीजिए और रोज़ाना 7 से 8 घंटे की मायारी नींद जिस्म को तवानाई देती है, ज़हनी कारकर्दगी बेहतर बनाती है और बीमारियों के ख़तरे को कम करती चली जाती है। बढ़ती हुई उम्र के साथ प्रोस्टेट के मसाइल और बाज इकसाम के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, और अगर यूरिन में दुश्वारी हो, बार बार यूरिन आए या कोई गैर मामूली अलामत महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से राबिता कीजिए। मुसलसल जहनी दबाव दिल की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनता है, इसलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मुराकबा कीजिए, वर्जिश और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना हमारे ज़हनी सुकून को ज़्यादा बेहतर बनाता है। दोस्तों और ख़ानदान के साथ मजबूत ताल्लुकात ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर मुस्बत असर डालते हैं। तन्हाई और समाजी दूरी ज़हनी दबाव को ज़्यादा कर सकती है। तो लिसनर्स, ख़ास तौर पर हमारे मर्द हजरात, हमारे जो भाई हैं, उनके लिए सेहतमंद ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, अच्छी नींद और बरवक्त जो तिबी मुआयना है वो आपकी सेहत के बुनियादी उसूल हैं। आज ही अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली लाइए और सेहतमंद मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाइए। सेहतमंद रहिए और खुश रहिए।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum saathiyon and welcome back to our favorite eco-friendly corner on FM 107, जिसका नाम है Eco Switch.
2: Eco Switch.
1: और मैं हूँ आपकी होस्ट सफा. तो भाई आज का टॉपिक है ऑफिस में इको स्विच, यानी काम की जगह पर छोटी छोटी आदतों में

तब्दीली लाकर हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं और साथ ही अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट कर सकते हैं। भाई देखें, अब ऑफिस का नाम सुनते ही ना दिमाग में कंप्यूटर्स, एसी, लाइट्स, प्रिंट

0: प्रिंटिंग अडॉप्ट कर ले तो वो अपने पेपर वेस्ट को नियरली 40% तक कम कर सकता है। अब जरा सोचिए कि सिर्फ एक छोटी सी हैबिट चेंज से कितने दरख्त बच सकते हैं। चलिए इसे सिंप्लीफाई और रिलेटेबल बनाते हैं। देखिए, सोचिए आप ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठे हुए हैं, एसी फुल ऑन ठंडा चल रहा है, लाइट्स पूरे फ्लोर पर ऑन है और आप सिर्फ एक ईमेल चेक कर रहे हैं वहां बैठे हुए। अब अगर उस वक्त हम इको स्विच अडॉप्ट करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एनर्जी अवेयरनेस, मतलब जब आप रूम से 10 मिनट के लिए भी बाहर जाते हैं तो मॉनिटर स्लीप मोड पर और लाइट्स ऑफ। ये छोटी सी आदत हर ऑफिस वर्कर अगर अपना ले तो एक ऑफिस अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को 15-25% तक कम कर सकता है। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो सिर्फ ऑफिसेज की वजह से जो एनर्जी वेस्ट होती है वो एक छोटी सी कंट्री को साल भर चला सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं एसी की, जो गल्फ कंट्रीज जैसे कि कतर है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ एसी का यूज ऑलमोस्ट पूरा ईयर होता ही होता है, लेकिन इको स्विच का मतलब ये नहीं है कि हम भाई गर्मी में जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज करते रहें, बल्कि स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल है ना। देखिए, आइडियल ऑफिस टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है। हर एक डिग्री कम करने से एनर्जी कंजम्पशन लगभग 6-8% तक बढ़ जाता है। तो अगर ऑफिस 21 डिग्री पर चल रहा हो सिर्फ एक्स्ट्रा कूलिंग कंफर्ट के लिए तो ये अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट है ना। देखिए, अगर इसकी एक रिलेटेबल एग्जांपल हो ना, तो अगर आप घर पर फ्रिज का दरवाजा बार बार खुला छोड़ देते हैं तो बिजली ज्यादा लगती है और कूलिंग वेस्ट होगी। बिल्कुल वैसे ही एसी का यूजेज भी होता है साथियों। अच्छा, अब आते हैं पेपर वेस्ट पर, जो ऑफिस पोल्यूशन का साइलेंट हीरो होता है, केप पहना हुआ। आज भी कई ऑफिसेज में हर छोटी चीज प्रिंट हो रही होती है, ईमेल्स, ड्राफ्ट्स, इवन रिमाइंडर्स भी। अच्छा, इको स्विच यहाँ ये सजेस्ट करता है कि डिजिटल फर्स्ट अप्रोच रखें। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वन टर्न ऑफ पेपर बनाने के लिए लगभग 17 मेच्योर ट्रीज काटने पड़ते हैं और 26,000 लीटर पानी जो है वो यूज होता है। जरा सोचिए, अगर एक ऑफिस सिर्फ अपने इनिशियल कम्युनिकेशन को डिजिटल कर ले तो वो हर साल भाई एक मिनी फॉरेस्ट को बचाने के बराबर होगा। और इसी में हमारे जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शेयर ड्राइव्स होती हैं या हमारे जो इंटरनल मैसेजेस एप्स होती हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं, वो यूज करना सीखें। अच्छा, आप थोड़ी सी बात करते हैं छोटी छोटी हैबिट्स की जो इको स्विच को पावरफुल बनाती हैं, जैसे कि मग कल्चर अडॉप्ट करना, डिस्पोजेबल कप्स यूज करने के बजाय अगर हर एम्प्लॉय अपना रीयूजेबल मग यूज करे तो एक ऑफिस साल भर में हजारों प्लास्टिक कप लैंडफिल में जाने से रोक सकता है। एक फन फैक्ट पता है क्या इसका? एक फन फैक्ट ये है कि प्लास्टिक कप को आप कह लें कि डिग्रेड होने में कितने 200 से 500 साल लगभग लग जाते हैं। मतलब जो कप आप 5 मिनट में यूज करते हैं वो आपके ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के टाइम तक भी इस जमीन में रह सकता है। एक और इम्पोर्टेंट इको स्विच टिप ये है कि स्मार्ट प्रिंटिंग सीखें, मतलब प्रिंट सिर्फ तब करें जब जरूरी हो और ड्राफ्ट मोड पर यूज करें। ड्राफ्ट मोड इंक कंजम्पशन को 30% तक रिड्यूस कर देता है और अगर पॉसिबल हो तो ग्रे स्केल प्रिंटिंग यूज करें, क्योंकि कलर प्रिंटिंग ज्यादा इंक यूज करती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अननेसेसरी हाई रेजोल्यूशन में जो है ना कोई वीडियो डाउनलोड करें, जब लो रेजोल्यूशन होगी तो भाई काम चल ही जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो साथियों, इको स्विच का ऑफिस वर्जन ये है, लेस वेस्ट, मोर अवेयरनेस, स्मार्टर चॉइसेस। आप जब अगला ईमेल भेजें जरा सोचिएगा, क्या प्रिंट की जरूरत है? जब एसी एडजस्ट करें तो सोचिएगा, क्या टेम्परेचर बैलेंस्ड है? जब लाइट्स ऑन करें तो सोचिएगा कि क्या इसकी जरूरत है? ये छोटे छोटे डिसीजन मिलकर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। और आखिर में सफा की तरफ से एक सिंपल सा रिमाइंडर, ऑफिस सिर्फ काम की जगह नहीं होता, ये एक इकोसिस्टम है और जब हम इस इकोसिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये हमारी बेहतर एनवायरमेंट, बेहतर हेल्थ और बेहतर फ्यूचर रिटर्न करता है। स्टे ट्यून्ड विद FM 107, यहाँ हम हर छोटी आदत को एक बड़ा चेंज बनाते हैं। मैं हूँ सफा, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107.

0: आप सुन रहे हैं FM 107,
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे जुमे के दिन की अहमियत के बारे में। जुमे का दिन इस्लाम में बहुत खास मकाम रखता है। इसे तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि इबादत, दुआ और रूहानी तरक्की का एक मौका होता है। इस दिन गुस्ल करना, पाक कपड़े पहनना और जुमे की नमाज के लिए वक्त पर मस्जिद जाना बहुत फजीलत रखता है। खुतबे को तवज्जो से सुनना भी इबादत का हिस्सा है। इस दिन दुआओं की कबूलियत के भी खास लम्हे होते हैं, जहां बंदा दिल से मांगे तो अल्लाह कबूल फरमाते हैं। आज के मसरूफ दौर में हमें जुमे के दिन को सिर्फ रूटीन ना समझकर एक खास रूहानी दिन के तौर पे मनाना चाहिए। आज का अमल ये है कि जुमे के दिन कुछ एक्स्ट्रा वर्क अल्लाह के लिए निकाले और दिल से दुआ करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.
1: One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
1: One step to 2030.
2: आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ इनोवेशन मिनट्स पर. जी हाँ, आज के इस फास्ट पेस दुनिया में इनोवेशन मिनट्स का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. इसका मतलब ये है कि छोटी यानी कुछ मिनट्स के अंदर ही अपने नए आइडियाज को सच्चाई या ये कहो कि ग्राउंड लेवल पर लेकर आना. इनोवेशन सिर्फ बड़ी डिस्कवरीज तक महदूद नहीं है, बल्कि रोजाना जिंदगी के छोटे इम्प्रूवमेंट्स भी इनोवेशन का हिस्सा होते हैं. जी हाँ, इनोवेशन असल में नए आइडियाज, मेथड्स या प्रोडक्ट्स क्रिएट करने का प्रोसेस है जो जिंदगी को बेहतर बनाता है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर इनोवेशन किसी बड़ी मशीन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो. कभी कभी एक सिंपल आइडिया जिसमें काम को आसान बनाना या टाइम बचाना भी इनोवेशन का एक हिस्सा होता है. इनोवेशन मिनट्स का मतलब ये है कि इंसान अपनी डेली रूटीन में थोड़ा सा टाइम निकाले, सोचे समझे और फिर कुछ चीजों को एनालाइज करे. जब हम अपने काम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो हमें नए सॉल्यूशंस मिलते हैं. मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी का तरीका चेंज करे या कोई एम्प्लॉई अपने काम को फास्ट और बेटर करे तो ये भी तो इनोवेशन ही हुआ ना. आजकल इनोवेशन हर जगह नजर आता है. स्मार्टफोन्स, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सब इनोवेशन की मिसालें हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं. ये इन्वेंशन इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और उनकी जरूरियात को समझा. इनोवेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये प्रोग्रेस और ग्रोथ को प्रमोट करता है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, नए जॉब्स क्रिएट करता है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है. इसके साथ साथ इनोवेशन सोसाइटी के बड़े प्रॉब्लम्स, चाहे फिर एनवायरमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इनके सॉल्यूशंस भी देता है. जिया इनोवेशन मिनट्स हमें ये सिखाती है कि चेंज लाने के लिए हमेशा ज्यादा टाइम नहीं चाहिए बल्कि सोच चाहिए. कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट्स ही क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, नए आइडिया के लिए काफी हो जाते हैं. और ये हैबिट अगर रोजाना डेवलप हो तो इंसान अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकता है. बस आखिर में कहना जरूरी है कि इनोवेशन सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम नहीं है, ये हर इंसान अपने लेवल पर जरूर कर सकता है. जब हम अपने नए आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं और इन पर काम करते हैं तो हम अपनी जिंदगी के साथ साथ सोसाइटी को भी बेहतर बनाते हैं. इसीलिए हर दिन कुछ इनोवेशन मिनट्स निकालिए, क्योंकि छोटी सी सोच कभी कभी बड़ा चेंज लेकर आती है. आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: One step to 2030.
3: हम भी वो हैं जो कभी

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: इंसान ने अपनी क्यूरियोसिटी से बहुत कुछ पाया है, लेकिन बहुत कुछ खोया भी है। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे मैं हूँ फजील, और कुछ देर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यूरियोसिटी से क्या कुछ गवाया है इंसान ने, क्योंकि आजकल लोगों ने स्कैम में कुछ नया तरीका निकाला है। जहां हमें चीजों की जरूरत पड़ती है वहां वो स्कैमर्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें जॉब चाहिए तो उस जॉब के तरीके को देखते हैं कि कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको स्कैम कर सकते हैं। और वैसे ही अब एक नया तरीका आया है हमारी क्यूरियोसिटी को इस्तेमाल करते हुए आपको स्कैम करने का। इस स्कैम का नाम है स्टेगनोग्राफी स्कैम। इस स्कैम में होता यह है कि आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आपके पास एक जबरदस्त इमेज आती है। मिसाल के तौर पर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब के लिए ऑप्शन आता है रिटर्न में। ऐसे ही हो सकता है कि आपको कोई सॉन्ग भेजा जाए या फिर कोई वीडियो भेजी जाए और आप उसको क्लिक करें तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। वेल, ये स्कैम काम कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं। स्कैम अलर्ट। दोस्तों, आपको सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी या मैसेज पे कोई इमेज आती है या वीडियो आती है या फिर कोई सॉन्ग आता है, आप उसे क्लिक करते हैं, उसमें छुपा होता है एक वायरस या एक सीक्रेट मैसेज या फिर कहें एक कोड जो आपके मोबाइल में किसी भी तरह हिडन तरीके से वो एप्लीकेशन या वो कोड डाउनलोड हो जाता है और उसके बाद आपके सारे मैसेजेस, ओटीपी या जितनी भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स दूसरे मोबाइल पर जाती रहती है। ये कोड एक क्लोन की तरह काम करता है। जो भी आपके मोबाइल में हो रहा होगा वो कहीं और देखा जा सकता है इंटरनेट की मदद से, और ये वायरस आपके मोबाइल में आते ही आपकी सारी डिटेल दूसरे मोबाइल पे या दूसरे सिस्टम में इजीली देखी जा सकती है और ये बहुत ही खतरनाक होता है आपके अपने बिजनेस के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए। ये एक बड़ा स्कैम है और

लाखों की चोरी होती आ रही है इस स्टेगनोग्राफी स्कैम के जरिए। वेल, कौन कौन टारगेट किया जा रहा है? अगर बात करें टारगेट की, तो ज्यादातर जॉब सीकर्स, स्टूडेंट्स और स्मॉल बिजनेसेस में जिन्होंने अभी शिरकत की है, ज्यादातर वो लोग इस स्कैम में फंस रहे हैं। वेल, इससे बचा कैसे जा सकता है? सबसे आसान तरीका है कि किसी भी लिंक या किसी भी इमेज, वीडियो और सॉन्ग को ओपन ना किया जाए। जब आपके पास कोई अननोन मैसेज आए जिसमें इमेजेस हो या कोई कैप्शन लिखा हो या कोई बात लिखी हो, तो उसमें जरा भी दिलचस्पी ना दिखाएं, आप उससे दूर रहें, किसी भी तरह से क्लिक ना करें। इमेजिन अगर आपसे क्लिक हो भी गया गलती से, तो सबसे पहला काम नेट ऑफ करें और अपनी सारी जो डिटेल्स हैं उनको रोके। सबसे पहले जो बैंक डिटेल्स आपने डाली हैं, या मिसाल के तौर पे आपका अगर अपना कोई कार्ड है, बैंक एटीएम है जो आपके मोबाइल में है, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो इसलिए आपको कस्टमर केयर पे कॉल करके सारे ट्रांजैक्शन रुकवाने चाहिए। और आपके नेट ऑफ करने के बाद सोशल मीडिया, ईमेल के लॉगिन और ऐसी कोई भी जगह जहां से बैंक एक्सेस लिया जा सकता है, उसे आप लॉग आउट करें ताकि आपकी पर्सनल डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो सके। वेल, ये था स्टेगनोग्राफी स्कैम। वैसे तो आसान नहीं है कि इस तरह के स्कैम से बचा जा सके, लेकिन आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे कि इमेज को डाउनलोड ना करना और किसी भी तरह के ऑडियो को डाउनलोड ना करना। लेकिन क्या करें तब जब किसी अपने के तरफ से इस तरह के मैसेजेस आ रहे हों, जैसे कि हमारे ग्रुप्स में ये बहुत होता है कि जॉब के लिए एक पोस्टर आता है और फिर एक कैप्शन लिखा होता है, हम या हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो आउट ऑफ कंसर्न इस तरह के इमेजेस ग्रुप में डालते हैं या कैप्शन ग्रुप में डालते हैं, और हमें लगता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं या रिश्तेदार को लगता है कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्कैम हो सकता है। इसलिए आप इस तरह के इमेजेस को ग्रुप में भी क्लिक ना करें, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, उनको भी बताएं, और खास तौर पे जब इस तरह के जॉब्स के ऑफर आए आपसे, तो आप डायरेक्टली कंपनी से बात करें या अपने दोस्तों से बात करें कि तुमने जो ये कैप्शन भेजा है, क्या ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं। बाकी प्रिकॉशंस आपको ही लेना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा। सुनते रहें FM 107, मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए स्कैम के बारे में बात करते हुए, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: FM 107 पर हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: कतर में आकर एक्सपेक्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है। सुनिएगा जरूर इकोनॉमिक लेंस, इकोनॉमिक लेंस हर सैटरडे 1:30 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर।
1: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद आज के प्रोग्राम में, जहां हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का रोड मैप तैयार कर सकते हैं, अपने गोल सिक्योर कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। सामईन, फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ मिलियनेयर्स के लिए ही नहीं है, ये हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, एक यंग प्रोफेशनल या रिटायरमेंट के करीब हैं। आज के शो में हम आपको सिंपल लेकिन पावरफुल टिप्स देंगे जिससे आप अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकेंगे।
0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना, पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस, मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर अ हैप्पी लिविंग।

दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में यहाँ कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज के एपिसोड में डिस्कस होंगे। चलिए एक दफा उन्हें ब्रश अप कर लेते हैं। सबसे पहले है सेविंग रेट। नेशनल के हिसाब से ये वो एवरेज परसेंटेज है जो हाउसहोल्ड्स अपनी इनकम का सेव करते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है इसका आपके ऊपर, ये दिखाता है कि आपके आसपास लोग पैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं और ये सिग्नल देता है कि इकोनॉमी कितनी स्टेबल है। प्लानिंग टिप्स के हिसाब से कोशिश करें कि एवरेज से एज निकाल कर अपनी इनकम का कम से कम 20% सेव करें। दूसरे नंबर पर है पेंशन या रिटायरमेंट फंड रिटर्न्स। ये नेशनल रिटायरमेंट या पेंशन स्कीम का एवरेज रिटर्न दिखाता है। इम्पैक्ट क्या होता है इसका, ये तय करता है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी फ्यूचर इनकम कितनी होगी। प्लानिंग टिप ये कि अगर नेशनल पेंशन रिटर्न्स लो हैं तो अपना खुद का रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान शुरू करें, जैसे 401k, IRA या प्राइवेट पेंशन। और नंबर तीन पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, इसके हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये एवरीडे आइटम्स जैसे फूड, फ्यूल और रेंट की प्राइसेस में चेंजेस को ट्रैक करता है। इम्पैक्ट क्या है, CPI बढ़ने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है। प्लानिंग टिप, अपने हाउसहोल्ड बजट को हर साल एडजस्ट करें ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज का असर मैनेज हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है क्या आखिर। भाई, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करना जो आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद करे, उसी को ही कहते हैं। ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कंसीडर करता है और गाइडेंस देता है कि कैसे आप छोटे शॉर्ट टर्म टारगेट्स के साथ साथ बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। आप अपना फाइनेंशियल प्लान खुद बना सकते हैं या फिर एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर के साथ काम कर सकते हैं। एक एक्सपर्ट प्लानर के पास वो नॉलेज और वक्त होता है जो फाइनेंसेस के मुख्तलिफ पहलुओं को एक प्लान में इंटीग्रेट कर सके, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सके और आपको अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंट प्रोग्रेस में हेल्प कर सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको आपके गोल्स आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है। ये आपको एक कंप्लीट तस्वीर देता है कि आप फाइनेंशियल तौर पर कहां खड़े हैं और कौन से चेंजेस करने की जरूरत है ताकि आपके गोल्स अचीव करने के चांसेस बढ़ सकें। जैसे कौन से अकाउंट टाइप्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपकी पर्सनल सिचुएशन के लिए सुटेबल हैं, और इस इन्वेस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस जैसे कंपाउंडिंग पोटेंशियल रिटर्न्स वक्त के साथ रियलाइज होते हैं। इसलिए एक प्लान बनाना और जल्दी शुरू करना उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ। दोस्तों फाइनेंशियल प्लान आपकी कमजोरियों को भी अनकवर कर सकता है, जैसे इमरजेंसी सेविंग का कम होना या अंडर इंश्योरेंस। ये आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के डिसीजन के साथ कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करने में भी मदद करता है, चाहे मार्केट अप हो या डाउन। इसीलिए फाइनेंशियल प्लान हर एज और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ओल्डर या वेल्दी लोगों के लिए ही नहीं। याद रखें कि फाइनेंशियल प्लान एक सेटेड एंड फॉरगेटेड एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आपके सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पर एक सिंगल पर्सन के गोल्स अलग हो सकते हैं एक मैरिड कपल से, भाई जो बच्चों के साथ हैं। तो आइए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पे, जो खास तौर पे आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जो हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने में मदद भी करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग एक बोर्ड टर्म है जो मुख्तलिफ टेक्निक्स और गोल्स कवर करता है। ज्यादातर फाइनेंशियल प्लान्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग को इंक्लूड करते हैं ताकि एक होलिस्टिक व्यू मिले और ये कुछ या सब एस्पेक्ट्स को एड्रेस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर आता है कैश फ्लो एनालिसिस का। इससे आप बजटिंग के तौर पर सोच सकते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस आपको ये समझाने में मदद करता है कि हर महीने आपके पास कितनी इनकम आ रही है और आप उसे कैसे यूज कर रहे हैं। पॉजिटिव कैश फ्लो होना जरूरी है ताकि आप डेट को पे डाउन कर सकें, इमरजेंसी सेविंग्स बिल्ड कर सकें और इन्वेस्ट कर सकें। कैश फ्लो की डिटेल्स में जाकर आप कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं कि पैसा कहां जा रहा है और किन एरियाज को ट्रिम या कंप्लीटली कट किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है जनाब डेट मैनेजमेंट। जब आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेट रीपेमेंट्स होती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टूडेंट लोन्स और मॉर्गेज, तो ये मुश्किल हो सकता है डिसाइड करना कि पहले किस डेट को रीपे करें। भाई डेट मैनेजमेंट फोकस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग आप

आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि इंटरेस्ट पेमेंट को कैसे कम करें, अपने डेट्स को रीपे करने की स्ट्रेटेजीज जो आपके लिए बेस्ट हों, साथ ही आप अपने दूसरे फाइनेंशियल गोल्स और बजटिंग डिमांड्स को भी ट्रैक पर रखें। इस तरह फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए एक रोड मैप बनाता है जो पैसे मैनेज करने, डेट कंट्रोल करने और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में गाइड करता है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमें अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करनी चाहिए, लेकिन ये सवाल कि कितना सेव करें और किस अकाउंट में सेव करें थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, खासकर जब आप उस एज के करीब हों जहां आप अपना परमानेंट आउट ऑफ ऑफिस मैसेज सेट करना चाहते हैं। जो लोग रिटायरमेंट से अभी डिकेड्स दूर हैं, उनके लिए प्लानिंग इतनी सिंपल हो सकती है कि वो अपने सैलरी अलाउंसेस का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अपने रिटायरमेंट अकाउंट या इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट आरए जिसको कहते हैं में करें। जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, उनके लिए प्लानिंग में कैचअप कंट्रीब्यूशंस और ये डिसाइड करना शामिल होता है कि कौन से रिटायरमेंट अकाउंट से पहले पैसा निकाला जाए और सोशल सिक्योरिटी इनकम कैसे मैनेज की जाए ताकि एक्सपेंसेस कवर हो सके। एक स्ट्रॉन्ग प्लान आपको पीस ऑफ माइंड देता है कि आप अपनी असेट से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। चाहे आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं या अपनी वेल्थ रिटायरमेंट अकाउंट के बाहर बिल्ड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत फायदेमंद है। ये प्लानिंग आपके टाइम हॉरिजोन, फाइनेंशियल सिचुएशंस और रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक होती है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको अपनी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को एनालाइज और मैनेज करने में मदद करती है ताकि आपके इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट काम करें। ये आपको मार्केट साइकिल समझाने में भी हेल्प करती है, जैसे शॉर्ट टर्म डाउन टर्न्स एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन हिस्टोरिकली उनके बाद हमेशा अप टर्न्स आए हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको मार्केट की रफ स्ट्रेचेस में काम रहने और पैनिक सेलिंग से बचने में भी मदद देती है। अब आते हैं एक और मुद्दे पे, जो है साहब एजुकेशन प्लानिंग, और जो आजकल की जिंदगी में बहुत अहम मसला होता है। भाई, आजकल के जमाने में एजुकेशन का खर्चा बहुत महंगा होता है। इसमें कोई इफ्स, एंड्स या बट्स नहीं। अगर आप मल्टीपल बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा अलग रखना चाहते हैं तो ये और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। एजुकेशन प्लानिंग आपको ये समझने में मदद करता है कि कितना सेव करना है और कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजीज और अकाउंट यूज करने चाहिए ताकि प्री के से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन कॉस्ट कवर कर सकें। इसके बाद आइए अब बात करते हैं स्टेट प्लानिंग की। नाम से मत घबराइए, स्टेट प्लानिंग का मतलब सिर्फ बड़ा मिशन या स्टेट नहीं होता। ये प्लानिंग इस बात को इंश्योर करती है कि आपकी विशेस प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हों। बहुत सी स्टेट प्लानिंग टेक्निक्स आपके जिंदा होने के दौरान केयरफुल प्लानिंग से शुरू होती हैं। ये प्लानिंग आपके और आपके पार्टनर के दुनिया से गुजर जाने के बाद क्या होगा इसका आइडिया देती हैं। ये यंग लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे उनके पास अभी बड़ा बैंक बैलेंस हो या ना हो। जनाब, इसके जरिए ये भी तय किया जा सकता है कि अगर आप खुद डिसीजंस लेने के लायक ना रहें तो कौन करे, और अगर जरूरत हो तो आपके बच्चों का गार्डियन कौन होगा। ये हर वेल्थ लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ। और आखिर में दोस्तों, जो आजकल के जमाने के हिसाब में चल रहा है इंश्योरेंस प्लानिंग। भाई रिस्क मैनेज करना फंडामेंटल है ताकि आप फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफी का सामना ना करें जो आपके गोल्स अचीव करने में रुकावट बन सकता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस तो जानते ही हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि आप समझ सकें कि कौन सी पॉलिसीज आपको और आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करती हैं।

इस हिस्से में हम बात करेंगे दो और अहम पॉइंट्स के बारे में. पहला, हाउ मच डज फाइनेंशियल प्लानिंग कॉस्ट, और दूसरा, व्हेन शुड यू मेक अ फाइनेंशियल प्लान. तो अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल प्लानिंग की कॉस्ट कितनी होती है, तो ये जानिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग की कॉस्ट इस बात पर डिमांड करती है कि आप खुद प्लान बनाते हैं या किसी प्रोफेशनल के साथ काम करते हैं, जिसमें DIY मतलब डू इट योरसेल्फ. अगर आप खुद प्लान बनाते हैं तो ऑनलाइन टूल्स और रिसोर्सेज लो टू नो कॉस्ट होते हैं, जो आपकी मदद करते हैं आपका फाइनेंशियल प्लान तैयार करने में. मिसाल के तौर पर ऑनलाइन रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स जो एस्टिमेट करते हैं कि आपको कितना सेव करना चाहिए एक सर्टेन एज तक रिटायर करने के लिए. ऑनलाइन एडवाइजर्स भी हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करने में हेल्प करते हैं. और आखिर में प्रोफेशनल प्लानर्स, अगर आप किसी प्रो के साथ काम करते हैं तो वो चार्ज भी कर सकते हैं आपके असेट्स के परसेंटेज के बेसिस पर, आवरली बेसिस पर, या एक वन टाइम फ्लैट फी के तौर पर. वहीं दूसरा पॉइंट दोस्तों कि व्हेन शुड वी मेक अ फाइनेंशियल प्लान, भाई किसी भी वक्त फाइनेंशियल प्लान बनाना अच्छा है. यह आपको गाइड करता है कि आप अपने रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूज करें और अपनी फाइनेंशियल नीड्स हर स्टेज ऑफ लाइफ में मीट कर सकें, चाहे आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी भी हो. आप अपना प्लान कभी भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, चाहे आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं या काफी सालों से काम कर रहे हैं. लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जो प्रॉम्प्ट करती हैं प्लान बनाने या एडजस्ट करने के लिए, जैसे नई जॉब स्टार्ट करना जो इंक्रीज्ड इनकम, न्यू एक्सपेंसेस या न्यू अपॉर्चुनिटीज लाती हो, इनकम में चेंज जो आपकी एक्सपेंसेस कवर करने, डेट रीपे करने या सेव करने की एबिलिटी को अफेक्ट करें, मेजर लाइफ इवेंट्स जैसे मैरिज, बच्चों का होना या फैमिली में डेथ जो फाइनेंशियल गोल्स, स्पेंडिंग नीड्स और ऑब्लिगेशंस को अल्टर कर दें, और उसके बाद हेल्थ इशू जो इनकम और स्पेंडिंग को एग्जिस्टिंग गोल से डाइवर्ट करने पर मजबूर करें, और आखिर में इनकम विंडफॉल जैसे इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस पे आउट जो एडिशनल फंड्स प्रोवाइड करें इन्वेस्टिंग के लिए और आपके फाइनेंशियल गोल्स को इम्पैक्ट करें. दोस्तों, फाइनेंशियल प्लान एक वन टाइम टास्क नहीं है, ये रेगुलर रिव्यू और एडजस्टमेंट का तलबगार है. लाइफ सर्कमस्टेंसेस, इकोनॉमिक कंडीशन और पर्सनल गोल्स चेंज हो सकते हैं, इसलिए प्लान को कम से कम हर साल रिविजिट करना और नेसेसरी अपडेट्स करना बेहद और बहुत जरूरी होते हैं. तो दोस्तों, स्टार्ट प्लानिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर टुडे. आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर हो. याद रखिए, एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लान की चाबी है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन. आज ही शुरू करें और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस कर रहे होंगे. अपनी नीड्स और अपनी फाइनेंशियल वेलबींग पर फोकस करें अभी और फ्यूचर के लिए. ये प्लानिंग आपको कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड बनाती है, चाहे लाइफ के चैलेंजेस कुछ भी हों. याद रखिए, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है. चाहे आपकी इनकम छोटी हो या बड़ी, अगर आप अपनी जरूरत, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को

लिए बड़ी सिक्योरिटी और सुकून बन जाती है। इसी उम्मीद के साथ कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो, हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। तो भाई आज के इकोनॉमिक लेंस के इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए सरवर मिर्जा और साउंड डिजाइनर शक्ति।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार

countdown. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर।

0: हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोस्तों गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
1: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: अगर रास्तों में कहीं तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।
1: Midnight Melodies, only on FM 107. दिल से

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360. जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107.
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है. अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता. इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं. तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ. प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर.

ये लोग अपनी करनी से बाज ना आएंगे, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो कहना शुरू करेगा कि अहे मेरे रब, मुझे उसी दुनिया में वापस भेज दीजिए जिसे मैं छोड़ आया हूँ। उम्मीद है कि अब मैं नेक अमल करूँगा। हरगिज नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो बक रहा है। अब इन सब मरने वालों के पीछे एक बरज़ख हायल है, दूसरी जिंदगी के दिन तक। फिर जूं ही के सूर फूंक दिया गया, इनके दरमियान फिर कोई रिश्ता न रहेगा और न वो एक दूसरे को पूछेंगे। उस वक्त जिनके पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाएंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल दिया। वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, आग उनके चेहरों की खाल चाट जाएगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। क्या तुम वही लोग नहीं हो कि मेरी आयात तुम्हें सुनाई जाती थीं तो तुम उन्हें झुठलाते थे? वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर छा गई थी, हम वाकई गुमराह लोग थे। ऐ परवरदिगार, अब हमें यहाँ से निकाल दे, फिर हम ऐसा कसूर करें तो जालिम होंगे। अल्लाह ताला जवाब देगा, दूर हो मेरे सामने से, पड़े रहो इसी में और मुझसे बात न करो। तुम वही लोग तो हो कि मेरे कुछ बंदे जब कहते थे कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान लाए, हमें माफ कर दे, हम पर रहम कर, तू सब रहीमों से अच्छा रहीम है, तो तुमने उनका मजाक बना लिया। यहां तक कि उनकी जिद ने तुम्हें यह भी भुला दिया कि मैं भी कोई हूं, और तुम उन पर हंसते रहे। आज उनके उस सब्र का मैंने ये फल दिया है कि वही कामयाब है। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, बताओ जमीन में तुम कितने साल रहे? वो कहेंगे, एक दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा हम वहां ठहरे हैं, शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। इरशाद होगा, थोड़ी ही देर ठहरे हो ना, काश तुमने ये उस वक्त जाना होता। क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ कभी पलटना ही नहीं है? बस बालो बरतर है अल्लाह, पादशाह हकीकी, कोई खुदा उसके सिवा नहीं, मालिक है अर्शे बुजुर्ग का। और जो कोई अल्लाह के साथ किसी और माबूद को पुकारे जिसके लिए उसके पास कोई दलील नहीं, तो उसका हिसाब उसके रब के पास है। ऐसे काफिर कभी फलाह नहीं पा सकते। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो मेरे रब, दरगुजर फरमा और रहम कर, तू सब रहीमों से अच्छा रहीम है।